रखवाला कर कृपा अपनी कर राखे मात पिता ज्यों पाला रहाउ वडभागी सतगुर पाया जिन जम का पंथ मटाया

सदा सुपहाई मन चिंदे सगले फल पावहु जी कै संग सहाई रहाउ नारायण प्राण आधारा

मिल त्याई है मन बाछत फल पाई गुर पूरा हृदय त्याई गुर गोपाल आनंदा जप जप जीवे परमानंदा जन नानक नाम त्याया।

जैसा बालक पाए सुपाई लख अपराध कमावे कार्य उपदेश छिड़के बहु भांति।

हर हर नाम अवखद मुख पाया गन नानक सुख बसंती सोरठ महला पंजवा सिमर सिमर प्रभ भये आनंदा दुख कलेश सब नाथे गुण गावत त्यावत प्रभ अपना कारज सगले सांठे जग जीवन नाम तुम्हारा गुर पूरे दियो उपदेसा जप पौजल पारे उतारा रहाओ तू है मंत्री सुन है प्रभ तू है सब किश

आप प्रभु स्वामी पात मत की नी पूरी सदा सदा नानक बलिहारी बांचो संता तूरी सोठ महला पंजवा गुरपुरा नमस्कारी प्रभ सबे काज सवारी हरे अपनी किरपा तारी प्रभ पूरन पैज सवारी अपने दास को पयो सहाई सगल

आया, आद पुरख प्रभ पाया। सोठ महला पंजवा, जित पार ब्रह्म चित आया, सो कर दइए वसाया, सुख सागर गुर पाया, ता सहसा।

प्रभु की अकथ कहानी जन बोले अमृत बाणी नानक दास बखाणी गुरपुरे ते जानी सोठ महला पंजवां आगे सुख गुर दिया पाछै कुशल खेम गुर किया सर्व निदान सुख पाया गुर अपना हृदय ते आया अपने सतगुर की वडियाई।

मन निर्मल पूरन पुरख विधाता रहाउ। नानक प्रभु अमरनासी ताकी सेवना बिरथी जासी।

मिल साध संग हर प्याया, आठ पहर अरादियो हर हर, मन चिंदिया फल पाया रहाऊ, परा पूर्बला अंकुर जागया, राम नाम मन लागया, मन तन हर दर्श

हर हर हर अरादु हर अराद सबु किश पाई कार्य सगले साधु रहाव प्रेम भगत प्रबलागी तो पाए जिस वड भागी जन नानक नाम ते आया इन

सोई संत गुण गावे प्रेम भगतता का मन लीना पार ब्रह्म मन पावे आठ पहर हर का जस रवना।

ता जो शिवर तिसकी गत हुए उधर है सगले कोटा रहाउ संत संग जस गाया एहु पूरन हर तन पाया कहो नानक आप मटाया सब पार ब्रह्म।

का वह पाई, वह सफल सदा सुखदाई। नानक नाम ते आया, पूर्व लिखिया पाया। चौथ महला पंजवा, गुर पूरा आराधे, कार्य सगले साधे, सगल मनोरथ पूरे, बाजे अनहद तूरे। संत हो राम जपत सुख पाया, संत अस्थान बसे सुख सहजे, सगले दुख मिटाया। रहाउ गुरपूरे की बाणी, पार ब्रह्म मन पाणी, नानक दास वखाणी, निर्मल अकथ कहानी। चौथ महला पंजवा, भूखे खावत लाज ना आवै, त्यों हर जन हर गुण गावे। अपने काज को क्यों अलकाई, जित सिमरन दरगाह मुख उज्जल, सदा सदा सुख पाई है। रहाओ ज्यों कामी काम लुभावै,

नानक प्रभ सुखदाई जिन पूरी बणत बनाई सोठ महला पंजवा प्रभ अपना हृदय त्याई कर सही सलामत आई संतोख भया संसार।

सगले दास को सुमत दीती रहाओ प्रभ सगले थान वसाई सुख शांत फिर आए नानक प्रभ सरनाए जिन सगले रोग मिटाए सोठ महला पंजवा सर्व सुखा का दाता सतगुर ताकी सरनी पाईए दर्शन भेट होते आनंदा दुख गया हर गाईए हर रस पीवो हो पाई नाम जप हो नामो अराध हो गुरपुरे की सरनाई रहाओ तिसे प्राप्त जिस तुर लिखिया सोई पूरन पाई।

जो जन भजन करे प्रभ तेरा तिसै अंदेसा नाही। सतगुर चरण लगे पहु मिटिया हर गुण गाए मन माही। सुख सहज आनंद कनेरे सतगुर दिया दलासा जिन घर आ

कर साध संगत सिमर माधो होहे पतत पनीत काल बयाल ज्यो परयो डोले मुख पसारे मीत आज काल फुन तोहे ग्रस है समझ।

जाते भगत राम की पावे, जम को त्रास हरे रहाव। कौन कर्म विद्या कहो कैसी, धर्म कौन फुन करे। कौन नाम गुर जा कै सिमरै,

नानक निज मत साधन को पाख्यो तोहे पुकार सोठ महला नवा यह जग मीत ना देखियो कोई।

पूत संबंधी सगरे तन स्यों लागे जब ही निर्तन देखो नर कौ संग साड सब भागे कहो कहा या मन बौरे को इनस्यों ने हो लगायो दीना नाथ सकल पै पंजन जसता को बिसरायो स्वान पूछ ज्यो भयो ना सूदो बहुत जतन मैं कीनो नानक लाज बिरद की राखो नाम तहारो लीनो सोठ महला नवा मन रे गहो।

तू ठहला गयो जन्म अकारत खोयो कर पर पंच उदर निज पोखयो पश की न्यायी सोयो राम भजन की गत नहीं जानी माया हाथ बिकाना उर्ज रहे हो बिखियन संग पौरा नाम रतन बिसराना रहे हो अचेत ना चेते हो गोविंद बिरथा औध सरानी कहो नानक हर बिरद पछानो।

आसा मनसा सगल त्यागै, जागते रहै निरासा। काम क्रोध जेह परसै नाहन, तेहे घट ब्रह्म निवासा। गुर कृपा जेह नर को कीनी, तेहे एहे जुगत पछानी। नानक लीन।

बहुत हित जासियों सदा रहत संग लागी। जब ही हंस तजी एह काया प्रेत प्रेत कर भागी। एह बिद को व्यवहार बनियो है जासियो नेहो लगायो। अंत बार नानक बिन हर जी को काम ना आयो। सोठ माला पहला घर पहला अष्टपदिया चौतुकी। एक ओंकार सतगुर प्रसाद दुगदा ना पढ़ो हर बिन होर ना पूजो। मड़े मसान ना जाए कृष्णा राच ना पर घर जावा।

बिंद सुख वास्ती नाम बसै सुख पाई जिहवा नेतर सोतर सच राती जल बूजी तुझ है बुझाई आस निरास रह बैरागी।

पहाय। मनमुख जंत दुख सदा निवासी, गुरमुख देव दयाय। अपर अपार अगम अगोचर, कहने कीम ना पाय। सुन संवाद महा परमार्थ, तीन पवन पत नाम। मस्तक लेख जिया जग जोनी, सिर सिर लेख सहाम। कर्म सुकर्म कराए आपे, आपे भगत दृढ़ाम। मन मुख झूठ लह पैमान, आपे ज्ञान अगाम। जिन चाखिया से साध जानन, ज्यों गुंगे मिठियाई। अकथे का क्या कथिये भाई, चालो सदा रजाई। गुरदाता मेले तां मत होवे, निगुरे मत ना काई। ज्यों चलाए त्यों चाल है भाई, होर क्या को करे चतराई। एक भरम भला एक भगती राते, तेरा खेल अपारा। जित तुद लाए तेहा फल पाया, तू हुक्म चलावन हारा। सेवा करी जे कछ होए अपना, जियो पिंड तुम्हारा। सतगुरु

कही पाई अंतर मैल विकारी इन बिद डूबी माकुरी पाई ऊंडी सिर कै पारी दुर्मत कणी विगूती पाई दूजे पाए खुआई बिन सतगुर नाम ना पाईए पाई बिन नामे परम ना जाई सतगुर सेवे ता सुख पाए पाई आवन जान रहाई साच सहज गुर ते उपजे पाई मन निर्मल साच समाई गुर सेवे सो बूझे पाई गुर बिन मग ना पाई जिसे अंतर लोभ के कर्म कमावे पाई कूड़ बोल बिख खाई पंडित दही वलोइए पाई विचों निकले तत् जल मथिए जल देखिए पाई एहो जग एहा वत गुर बिन परम बगूचिए पाई घट घट देओ अलख एहो जग तागो सूत को पाई दह दिस बांधो माए बिन गुर गात ना छूटई पाई हाके कर्म कमाए एहो जग परम पलाया पाई कहना किशु ना जाए गुर मिले पौ मन वसे पाई पै वरना सच लेख मजन दान चंगियाईया पाई दरगहा नाम वसेख गुरे अंकस जिन नाम दिरड़ाया पाई मन वसिया चूका पेख एहो तन हाट सराप को पाई वखर नाम अपार एहो वखर वपारी सो दृढ़ पाई गुर शब्द करे विचार धन वपारी नानका पाई मेल करे वपार सोठ महल।

मन वस्या सब काज सवारन हारा उन्ना की रीस करे सो विगुच्च जिन हर प्रभ है रखवारा बिन सतगुर सेवे किने ना पाया मन मुख भौंक मुए बिललाई आवह जावह ठौर ना पावह दुख मह दुख समाई गुरमुख होवै सो अमृत पीवै सहजे साच समाई बिन सतगुर सेवे जन्म ना छोड़ै जे अनेक कर्म करै अधिकाई वेद पढ़ै तै वाद बखाणै बिन हार पत गवाई सच्चा सतगुर साची जिस बाणी भज सूत है गुर सरनाई जिन

सोठ महला तीजा दो तुकी नुगुणिया नु आपे बख्श लए पाई सतगुर की सेवा लाए। सतगुर की सेवा उत्तम है पाई राम नाम चित लाए हर जियो आपे बख्श मलाए। गुणहीन हम अपराधी पाई पूरे सतगुर लए रलाए रहाओ। कौन कौन अपराधी बख्शियन प्यारे साचे शब्द विचार भौजल पार उतारियन पाई सतगुर बेड़ै चाड़ मनूरै ते कंचन पए पाई गुर पारस मेल मलाई आप छोड़ नाउ मन वसया पाई ज्योति ज्योत मलाई हों वारी हों वार ने पाई सतगुरु कहो सद बलिहारै जाओ नाम निदान जिन दिता पाई गुरमत सहज समाव गुरबिन सहज ना उपजै पाई पूछो ज्ञानिया जाए सतगुर की सेवा सदा कर पाई विचों आप गवाई गुरमति पौ उपजै पाई पौ करनी सच सार प्रेम पदार्थ पाई पाई सच नाम आधार जो सतगुर सेव है अपना पाई तिनकै हो लागो पाए जन्म सवारी अपना पाई कुल भी लई बख्शाए सच बाणी सच शब्द है पाई गुर कृपा ते होए नानक नाम हर मन वसै पाई तिस बिघन न लागै कोय। सोरठ महला तीजा हर जियो शब्दे जापदा पाई पूरे भाग मलाई सदा सुख सुहागणी पाई अन दिन रतिया रंग लाई हर जी तू आपे रंग चढ़ाई गावो रंग राते हो पाई हर सेती रंग लाई रहाओ। गुर की कार कमावनी पाई आप छोड़ चित लाए सदा सहज फिर दुख ना लगे पाई हरे आप बसै मन आए फिर का हुक्म ना जानी पाई सा कुलखणी कुनार मन हट कार कमावनी पाई विणना वह कूड़ियार से गावह जिन मस्तक भाग है पाई पाए सच्चै बैराग अन दिन राते गुण रवह पाई निरपहो गुर लिव लाग। सबना मार जीवाल दा पाई सो सेव हो दिन रात सो क्यों मनो वसारी है पाई जिस दी

हार प्यारे अंतरजामी एक रहाओ कोट जन्म भ्रम आया प्यारे अनक जोन दुख पाई साचा साहिब विसरिया प्यारे बहुती मिलह सजाई जिन पे तै पूरा सतगुरु प्यारे ते लागे साचे नाई तिन्ना पिछे छुटिया प्यारे जो साची सरनाई मिठा करके खाया प्यारे तिन तन की तारोग कौड़ा हुए प्रतिष्ठिया प्यारे तिस्ते उपजिया सोग भोग पुंचाए उलायन प्यारी उतरै नहीं वजोग जो गुरमेल उधारिया प्यारी तिन तुरे पया संजोग माया लालच अटिया प्यारी इतना आवै मूल जिन तू विसरह पार ब्रह्म स्वामी से तन होए धूड़ बिललाप करह बहु तेरिया प्यारी उतरै नाहीं सूल जो गुरमेल सवारिया प्यारी तिनका रहया मूल साकत संग ना कीजई प्यारे जे का पार वसाए जिस मिले हर विसरै प्यारी सो मोह काले उठ जाए मन मुख ढोई नह मिले प्यारी दरगाह मिले सजाए जो गुरमेल सवारिया प्यारी तिन्ना पूरी पाई संजम सहस सियान पां प्यारी एक ना चली नाल जो बेमुख गोबिंद ते प्यारी तिन कुल लागे गाल हुंदी वस्त ना जातिया प्यारी कूड़ ना चली नाल सतगुर जिना मलाय उन प्यारी साचा नाम समाल सत संतोख ज्ञान ध्यान प्यारी जिसनो नदर करे अन दिन कीर्तन गुण रवै प्यारी अमृत पूर परे दुख सागर तिन लंघिया प्यारी भव जल पार परे जिस भावै तिस मेल लह प्यारी से ही सदा खरे समरथ पुरख दयाल देव प्यारी

करपाती रहियो नग्न फिरियो बन माही तट तीरथ सब धरती भ्रमियो डुबदा छुटकै नाही मन कामना तीरथ जाए बसियो सिर करवत तराए मन की मैल ना उतरे एह बिद जे लख जतन कराई कनक कामनी है वर गैवर बहु विद दान दतारा अन बस्तर भूम बहु अर्पे नह मिलिए हर द्वारा पूजा अर्चा बंदन दंड होता खट कर्मा रत रहता हाँ हाँ करत बंदन मह परिया।

नानक तिस भयो परापत जिस पुरब लिखे का लहना तेरो सेवक एह रंग माता भयो कृपाल दीन दुख भंजन।

तोरठ सदा सुहावनी जे सच्चा मन होए दंदी मैल ना कत मन जीबे सच्चा सोए ससुर पिए पैवसी सतगुर सेवन संग पर हर कपड़ जे फिर मिले खुशी रावे फिर संग सदा शिंगारी नाओ मन कदे ना मैं।

हर नाम ठंडोले गुरपुरख मनावै अपना गुरमती हर हर बोले हर प्रेम कसाई दिन सरात हर रत्ती हर रंग चोले हर जैसा पुरख ना लबई सब देखिया जगत मैं टोले गुर सत गुर नाम दृढ़ाया मन अनत ना काहू डोले जन नानक हर का दास है गुर सत गुर के गोल गोले पौड़ी तू आपे सिष्ट करता सिरजन हारिया तुदे आपे खेल रचाए तुदे आप सवारिया दाता करता आप आप भोगण हारिया सब तेरा शब्द वरतै उपावन हारिया हों गुरमुख सदा सलाही गुर को वारिया सलोक महला तीजा हों मैं जल ते जल मोए भ्रम आए दूजै पाए पूरे सतगुर राख लिए अपने पन्ने पाए इहो जग जलता नदरी आया गुर कै शब्द सुपाए शब्द रते से सीतल पए नानक सच कमाए महला तीजा सफले हो सतगुर।

कुल उधारे अपना सोजन होवे परवान। गुरमुख मोए जीवन दे परवान है, मनमुख जन्म मराहे। नानक मोए ना आखिए जे गुर कै शब्द समाहे। पौड़ी हर पुरख निरंजन सेव, हर नाम त्याई है। सत संगत साधु लग, हर नाम समाई है। हर तेरी वड्डी कार मैं।

जे गुर समझाई है सलोक महला तीजा पूर्व लिखिया कमावना जे करता है आप लिखियास मोह ठगौली पाइन विसरिया गुण तास मत जानो जग जीवंदा दूजे पाए मुहयास जिन्नी गुरमुख नाम ना चेतेओ से बहन ना मिलनी पास दुख लागा बहुआत घना

वे सही चुक गया वे सास, नानक गुरमुखानू सुख अगला, जिन्ना अंतर नाम निवास, महला तीजा से सहन से सजना, जे गुरमुख मिल है सुपाई, सतगुर का पाना अन दिन कर है, से सच रहे समाई, दूजे पाए लगे सजन ना आखी है, जे अभमान कर है वेकार, मन मुख आप स्वार्थी, कार्ज ना सकह सवार, नानक पूर्व लिखिया कमावना, कोई ना मिटन हार, पौड़ी तुदे आपे जगते अपाए कै, आप खेल रचाया, त्रै गुण आप सिरजिया, माया मोह वधाया, विच हों मैं लेखा मंगी, फिर आवै जाया, जिन्ना हर आप कृपा करे, से गुर समझाया, बलिहारी गुरे अपने, सदा सदा कुमाया, सलोक महला तीजा।

आवै जग कमला फिरे गुरमुख नदरी आया तंदा करत्या निफल जन्म गवाया सुखदाता मन ना वसाया नानक नाम तिना को मिलया जिनको तुर लिख पाया महला तीजा घर ही मह अमृत भरपूर है मन मुखा साधना पाया ज्यों कस्तूरी मिर्ग ना जाने भ्रम दा भरम भुलाया अमृत तज बिक संग्रह करत आप खुआया गुरमुख विरले सोजी पई तिना अंदर ब्रह्म दिखाया तन मन शीतल होया

विरसा जन्म गवाया। अमृत एको शब्द है नानक गुरमुख पाया। पौड़ी सो हर पुरख अगम है कहो कित बिद पाइये। तिस रूप नारेख अदृष्ट कहो जन क्यों त्याइये। निरंकार निरंजन हर अगम क्या कह गुण गाइये। जिसे आप बुझाए आप सो हर मार्ग पाइये। गुर पूरै वेखा लिया गुर सेवा पाइये। श्लोक महला तीजा ज्यों तन कोलू पीड़िए। रतना पूरी दे जियो वन्ये चौखनिए। सच्चे संदड़े ने नानक मेल ना चुकई।

ज्यो मजी ठह कपड़े रंगे पी पाहे, नानक रंग ना उतरै ब्याह ना लगे के पौड़ी। हरे आप वरतै आप हरे आप बुलाए दा, हरे आपे सिष्ट सवार सिर तंदै लाए दा। इक ना भगती लाए इक आप खुआए दा, इक ना मार्ग पाए इक उजड़ पाए दा। जन नानक नाम त्याए गुरमुख गुण गाइंदा। श्लोक महला तीजा सतगुर की सेवा सफल है।

बंधन तोड़े मुक्त होए सच्चे रहे समाए। इस जग में नाम अलभ है गुरमुख वसै मन आए। नानक जो गुर सेव है अपना हों तिन बलिहार जाओ। महला तीजा मनमुख मन अजित है दूजे लगे जाए। तिसनु सुख सुपने नहीं दुखे दुख व्याए। कर कर पढ़ पढ़ पंडित थके सिद्ध समाध लगाए। एहो मन वस न आवे थके कर्म कमाए। भेख धारी भेख कर थके हट हट तीरथ नहाए। मन की सार ना जाननी हों मैं परम पलाए। गुर प्रसादी भव पया बड़ भाग वस्या मन आए। पै पय मन वस हुआ हों मैं शब्द जलाए। सच रते से निर्मले ज्योति ज्योत मलाए। सतगुर मिले ना पाया नानक सुख समाए। पौड़ी।

नानक नगरी बख्शले शब्दे मेल मलाहे महला तीजा। जो सतगुर ते मोह फिरे तिन्ना ठौर ना ठाउ, ज्यो छुट्टड़ घर घर फिरे दोह चारन बदनाउ। नानक गुरमुख बख्शी है जे सतगुर मेल मलाओ पौड़ी, जो सेवह सत मरार से पवजल तर गया। जो बोले हर हर नाऊ तिन जम छड गया, से दरगाह पैदे जाहे जिन्ना हर जप लया। हर सेवह से पुरख जिन्ना हर तुदमया, गुण गावा प्यारे नित गुरमुख भ्रम पहु गया। श्लोक महला तीजा। थाले विच तै वस्तु पयो हर भोजन अमृत सार, जित खादै मन तृप्ति है पाईऐ मोख द्वार। एहो भोजन अलभ है संतो लभै गुर विचार, ए मदावनी क्यों विचों कढ़ीऐ सदा रखीऐ उर धार। ए मदावनी सतगुरु पाई गुरसिखा लदी पाल, नानक जिस बुझाए सो बुझसी हर पाया गुरमुख काल। महला तीजा। जो तुर मेले से मिल रहे सतगुर स्यों चित लाए, आप विछोड़न से बिछड़े दूजे पाए खवाए। नानक बिन कर्मा क्या पाई है पूर्व लिखिया कमाई पौड़ी। बह सखियां जस गाव है गावन हारियां, हर नाम सलाहे हो नित हर को बलिहारिया। जिन्नी सुन मन्या हर नाम तिना हों वारिया, गुरमुखियां हर मेल मलावन हारिया। हों बल जावा दिन रात गुर देखन हारिया। श्लोक महला तीजा। बिन नाम है सब परम दे नित जग तोता सहसार, मनमुख कर्म कमावनी हों मैं अंध गुबार। गुरमुख अमृत पीवना नानक शब्द विचार। महला तीजा। सहजे जागे सहजे सोवे, गुरमुख अन्न देने उस्तत होवे। मनमुख भरमै सहसा होवे अंतर चिंता नींद ना सोवे। ज्ञानी जाग है सवह सुपाए, नानक नाम रत्या बल जाओ पौड़ी। से हर नाम त्याव है जो हर रत्या, हर एक त्याव है एक इको हर सत्या। हर इको वरतै एक इको उत्पत्या, जो हर नाम त्याव है तिन दर सट कत्या। गुरमती देव आप गुरमुख हर जपया। श्लोक महला तीजा। अंतर ज्ञान ना आयु जित किस सोजी पाई, ऋण डिठा क्या सलाही है अंधा अंध कमाई। नानक शब्द पछाणी है।

लाभ सदा खटिया नाम अपार विख विच अमृत प्रगटिया कर्म पिया मनहार नानक सच सलाही है धन सवार नहार पौड़ी जिन्ना अंदर कूड़ वरतै सच ना पावई जे को बोले सच कूड़ा जल जावई कूड़े आरी रजै कूड़ जो विष्टा काग खावे जिस हर होए कृपाल सो नाम त्यावई हर गुरमुख नाम अराध कूड़ पाप लह जावई सलोक महला तीजा सेखा चौ चकिया चौ आया एहो मन इकत घर आन एहड़ तेहड़ छड तू गुर का शब्द पछाण सतगुरे अगै तै पौ सब किश जाने।

लायु अंत दुख पहुताय आई अंदरों बाहरों अंधिया सुध न काई पाई पंडित तिनकी बरकती सब जगत खाए जो रत्ते हर नाय जिन गुर कै शब्द सलाहया हर स्यों रहे समाय पंडित दूजै पाए बरकत ना होवे।

पावड़ी हर सज्जन मेल प्यारी मिल पंथ दसाई जो हर दसे मेता किस हों बल जाई गुण सांझी तिन स्यों करी हर नाम त्याई हर सेवी प्यारा नित सेव हर सुख पाई बलिहारी सतगुर तिस जिन सोजी।

आई नानक गुरमुख मिलै वडियाईया जे आपे मेल मलाए पौड़ी हर रसना हर जस गावे हरी सुहावनी जो मन तन मुख हर बोले सा हर पावनी जो गुरमुख चखे साध सा त्रिपतावनी गुण गावे प्यारे नित गुण गाए गुणी समझावनी।

सिखाई। जन नानक नाम त्याया गुरमुख सुख पाई। सलोक महला तीजा बिन कर्म नाओ ना पाई है। पूरे कर्म पाया जाय नानक नदर करे जे अपनी। ता गुरमत मेल मलाए महला पहला। एक दज है एक दबी है एक ना कुत्ते खाए। एक पानी विच उसती है एक भी फिर हसन पाए। नानक एव ना जापई किथे जाए समाहे। पौड़ी तिनका खादा पैंदा माया सब पवित है। जो नाम हर राती तिनके घर मंदर महल सराई सब पवित है। जिनी गुरमुख सेवक सिख अभ्यागत जाए बरसाती। तिनके तुरे जीन खुरगीर सब पवित है। जिनी गुरमुख सिख साध संत चढ़ जाती। तिनके कर्म धर्म कार्य सब पवित है। जो बोल है हर हर राम नाम हर साती।

पिछै सुख नहीं, मर जम्मै वार वार, तृष्णा कदे ना बुझई, दुबदा हुए खुआर, मुह काले तिना निंदका।

आईंदे तिन दर्शन पिखा सुन कीर्तन हर गुण रवा हर जस मन लिखा हर नाम सलाही रंग सियों सब किल विख क्रिखा तन तन सुहावा सो शरीर थान है जिथे मेरा गुर धरे विखा। सलोक महला तीजा गुर बिन ज्ञान ना होवई।

काली कांडी एक उत्तम पदवी इस जोग माहे गुरमुख हर कीरत फल पाई है जिनको हर लिख पाहे नानक गुर प्रसादी अन दिन भगत हर उच्चर है हर भगती माहे समाहे पौड़ी हर हर मेल साध जन संगत मुख बोली हर हर भली बाण हर गुण गावा हर नित चवा गुरमती हर रंग सदा मान हर जप जप औखद खाद्या सब रोग गवाते दुखा कान जिन्ना सास ग्रास ना विसरै से हर जन पूरे सही जान जो गुरमुख हर आराध दे तिन चूकी जम की जगत कान सलोक महला तीजा रे जन उथारै तप्यो सुत्या गई विहाय सतगुर का शब्द सुनना जाग्यो अंतर ना उपजो चाओ शरीर जलो गुण बाहरा जो गुर कार ना कमाई जगत जलंदा डिठ मैं हम मैं दूजे पाए नानक गुर सरनाई उपरे सच मन शब्द त्याई।

ना हर मरे ना कदे दुख लागे, सदा सुहागण नार नानक हर प्रभ मेल लई, गुर कै हित प्यार पौड़ी, जिन्ना गुरु गोपे आपना ते नर गुरियारी, हर जियो तिनका दर्शन ना करो पापिष्ट हत्यारी, ओहे घर घर फिर है कसुद मन ज्यों तरखट नारी, वडभागी संगत मिले गुरमुख सवारी, हर मेलो हो सतगुरु दया कर।

जम्मण मरना मिट गया, काले का किसना बसाई, हर सेती मन रव रहया, सच्चे रहे आसमाई, नानक हो बलिहारी तिनको, जो चलन सतगुर पाए महला तीजा, बिन शब्द शुद्ध ना होवे, जे अनेक करे श्रृंगार, फिर की सार ना जाने, दूजे पाए प्यार, साक सुध साक लखणी, नानक नारी विच कुनार पौड़ी, हर हर अपनी दया कर, हर बोली बैणी, हर नाम त्याई हर उच्चरा, हर लाहा लैणी, जो जप दे हर हर दिन सरात, तिन हों कुरबैणी, जिन्ना सतगुर मेरा प्यारा आराध्या, तिन जन देखा नैणी, हों वारिया अपने गुरु को, जिन मेरा हर सज्जन मिलिया सैणी, सलोक महला चौथा, हर दासन स्यों प्रीत है, हर दासन को मित, हर दासन कै वस है, ज्यों जंती कै वस जंत, हर के दास हर त्याईंदे, कर प्रीतम स्यों नेव, कृपा कर कै सुनो प्रभ, सब जग मह वरसै मेह, जो हर दासन की उस्तत है, सा हर की वडियाई, हरे अपनी वडियाई भाम दी, जन का जयकार कराई, सो हर जन नाम त्याईंदा, हर हर जन एक समान, जन नानक हर का दास है, हर पैज रखो भगवान, महला चौथा, नानक प्रीत लाई तिन साचै, तिस बिन रहन ना जाई, सतगुर मिलै ता पूरा पाई, हर रस रसन रसाई पौड़ी, रैन दिन सप्रभात।

जाहि। नानक बख्श लए प्रभ साचा, जे गुर चरनी चित लाहे। पौड़ी संत भगत परवान, जो प्रभ पाया सेब चखण जंत। जिन्नी हर त्याया, अमृत नाम निदान भोजन खाया। संत जना की धूर मस्तक लाया, नानक पए पुनीत हर तीर्थ नाया। सलोक

नाम उपजे किसना भुख सब जाय नानक नामे रतिया नामो पल्ले पाए महला चौथा सतगुर पुरख जे मारिया प्रम प्रमया कर छोड़ गया उस पिछे वजे पकड़ी मुंह काला आगे पया उस अरल बरल मुंह निकले नित झगू सुतदा मोआ क्या होए किसे ही दह कीते जां तुर किरत उस दा एहो जेहा पया जिथे ओह जाए तिथे ओह झूठा कूड़ बोले किसे ना पावे वेखो भाई वड्याई हर संतो स्वामी अपने की जैसा कोई करे तैसा कोई पावे एहो ब्रह्म विचार होए दर साचे अगों दे जन नानक आख सुनावे पौड़ी गुर सच्चे बदा थे हो रखवाले गुर दित्ते पूर्ण होई आस गुर चरनी मन रत्ते गुर किरपाल बेअंत अवगुण सब हते गुरे अपनी किरपा धार अपने कर लिते नानक सद बलिहार जिस गुर के गुण इते सलोक महला पहला ता की रजाए लेख्या पाए अब क्या की जय पांडे।

तेन निज करवास है, जुग जुग सुबा हुई पौड़ी। तू करन कारण समरथ है करती, मैं तुझ बिन अवर ना कोई। तुदे आपे सिष्ट सिद्धिया, आपे फुन गोई। सब इको शब्द वर्तदा, जो करे सो होई। वडियाई गुरमुख दे प्रभ, हर पावे सोई। गुरमुख नानक अराध्या, सब आखो धन धन धन गुर सोई। शुद्ध राग सूरठ बाणी भगत कबीर जी की, घर पहला एक ओंकार। सतगुर प्रसाद बुत पूज पूज हिंदू मुए,

संसार अंध गहेरा चौदिस पसरियो है जम जेवरा रहाऊ कबत पड़े पड़ कबता मुए कपड़ किदा रह जाई जटा धार धार जोगी मुए तेरी गत इन्हें ना पाई दर्भ संच संच राजे मुए गडले कंचन भारी बेल पड़े पड़ पंडित मुए।

परत है, या तन की यह बड़ाई, काहे भैया फिर तो फूलिया फूलिया, जब दस मास उर्द मुख रहता, सो दिन कैसे भूलिया रहाओ, ज्यों मद माखी त्यों सठोर रस, जोर जोर तन किया, मरती बार लेहो लेहो करिए, भूत रहन क्यों दिया, देहरी लो बरी नार संग पई, आगे सजन सोहेला, मरखत लो सब लोग कटंब भयो।

झूठी माया आप बंधाया, ज्यों नरनी भ्रम सूआ। वेद प्राण सबै मत सुन कै करी कर्म की आसा, काल ग्रस्त सब लोग सियाने, उठ पंडित पै चले निरासा। मन रे सरयो ना एक कै काजा, भजियो ना।

जाई हमरा धर्म गया पौ भागा जब राम नाम चित लागा रहाऊ बाजीगर डंक बजाई सब

तुम राम न कर सपतारा, जग जीवन प्राण आधारा रहाउ। तेरे गलह तौक पग बेरी, तुम घर घर रमैया।

सो पंच सैल सुख माने, कबीर है सो धन पाया, हर भेदत आप मिटाया, क्या पढ़ी है क्या गुनिया, क्या वेद पुराना सुनिए, पढ़े सुने क्या होई, जो सहज ना मिले हो सोई, हर का नाम ना जप सगवारा, क्या सोच है बारंबारा, रहाओ अंधियारे दीपक चाहिए, एक बस्ते अगोचर लही है, बस्ते अगोचर पाई, घट दीपक रहे आसमाई, कह कबीर अब जानिया, जब जानिया तो मन मानिया, मन माने लोग ना पतीजे, ना पतीजे तो क्या कीजे, हृदय कपट मुख ज्ञानी, झूठे कहां बलो वस पानी, काया मांजस कौन गुना, जो घट पीतर है मलना, रहाओ लौकी अठ सठ तीरथ नाही,

मन पवन सुख बनिया, किस जोग प्राप्त गनिया, रहाउ गुर दिखलाई मोरी, जित मिर्ग पड़त है चोरी, मूंदलिए दरवाजे, बाजी अले अनहद बाजे, कुंभ कमल जल भरिया, जल मेटिया उभा करिया।

तहि अनहद शब्द भजंता ज्योति ज्योत समानी मैं गुर प्रसादी जानी रतन कमल कोठरी चमकार भी जुल तही मेरे नाही दूर निज आत्म रहया भरपूर जह अनहत सूर उजियारा तह

मिल पारस कंचन होया, मुख मन सारतन परोया, निज पाओ पया ब्रह्म पागा, गुर पूछे मन पति आगा, जल पीतर

नाही। अनल अगम जैसे लहर मैं उदत, जल केवल जल माही। माधवे क्या कहिए भ्रम ऐसा, जैसा मानिए हुए ना तैसा रहा। नरपत एक संघासन सोया, सुपने पया पेखारी। अच्छत राज बिसरत दुख पाया, सो गत पई हमारी। राज पोय अंग प्रसंग जैसे है, अब कछ मर्म जनाया। अनक कटक जैसे भूल परे, अब कहते कहन ना आया। सर्वे एक अनेक स्वामी, सब कट भोग वै सोई। कह रविदास हाथ पै नीरे, सहजे हुए सो होई। जो हम बांधे मोह फास, हम प्रेम बंधन तुम बाधे। अपने शूटन को जतन करो,

सब जगत व्यापियो भगत नहीं संतापा कह रविदास भगत एक बाडी अब एह का स्यों कही है जा कारण हम तुम आरादी सो दुख अजबू सही है दलाभ जन्म पुन फल पायो बिरथा जात अब बिक राजे इंदर समसर ग्रह आसन बिन हर भगत कहो के लेख ना विचारियो राजा राम को रस यह रस अनरस दीसर जाही रहाओ जान अजान पए हम बावर सोच असोच दिवस जाही इंद्री सबल निबल विवेक बुद्ध परमार्थ प्रवेश नहीं कहियत ज्ञान अचरियत अनकश समझना पर अपर माया कह रविदास उदास दास मत पर हर कोप करहो जी दया सुख सागर सुरतर चिंता मन काम तेन बस जाके चार पदार्थ अष्ट दशा सिद्ध नवनिध कर तल ताके हर हर हरना जपह रसना अवर सब त्याग वचन रचना रहाओ नाना ख्यान प्राण बेद बिद चौतीस अखर माही व्यास विचार कहो परमार्थ राम नाम सरनाही सहज समाद उपाद रहत फुन बड़े भाग लिव लागी कह रविदास प्रगास हृदय धर जन्म मरण पै भागी जो तुम गिरवर तो हम मोरा जो तुम चंद तो हम पये है चकोरा माधवे तुम ना तोरो तो हम नहीं तोर है तुम स्यो तोर कमन स्यो जो रह रहा जो तुम दीवरा तो हम बाती जो तुम तीरथ तो हम जाती साची प्रीत हम तुम स्यो जोरी तुम स्यो जोर अवर संग तो

वेदन उपज खरी पई वाकाय खद नाही हर का नाम अमृत जल निर्मल एहो औखद जग सारा गुर प्रसाद कह जन पीख।

राखै जा सोए, जह देखा तह रहया समाय, तुद बिन दूजी नाही जाय, जे को करे कीतै क्या होए, जिसनो बख्शे साचा सोए, हुण उठ चल।

तनासरी महला पहला नदर करे ता सिमरिया जाए आत्मा द्रवे रह लिवलाए आत्मा प्रात्मा एको करे अंतर की दुबदा अंतर मरे गुर प्रसादी पाया जाए हर स्यों चित लागे फिर का न खाई रहाओ सच सिमरिया हुए परगास ताते बिख्या।

काती कूड़ बोल मल खाए, ब्राह्मण नावे जिया काए, जोगी जुगत ना जाने अंध, तीने उजाड़े का बंद, सो जोगी जो जुगत पछाणे, गुर प्रसादी एको जाने, काजी सो जो उल्टी करे, गुर प्रसादी जीवत मरे, सो ब्राह्मण जो ब्रह्म विचारे, आप तरे सगले कुल तारे, दान संबंध सोई दिल तोवे, मुसलमान सोई मालक होवे, पढ़िया बूझे सो परवान, जिस सिर दरगाह का निशान, तनासरी महला पहला कर तीजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, काल नाही जोग नाही, नाही सत का टप, था नष्ट जग प्रित होए, डूबता इव जग, कल मह राम नाम सार, अखी तामी तह नाक पकड़ है, ठगण को संसार रहाओ, आंट सेती नाक पकड़ है, सूझते तिन लो, मगर पाचे कछ ना सूझे, एहो पदम अलो, खतरिया का धर्म छोड़िया, मलेस भाख्या गही, श्रेष्ठ सब एक वर्ण होई, धर्म की गत रही, अष्ट साज साज प्राण सोदह, करह वेद अभ्यास, बिन नाम हर के मुक्त नाही, कह नानक दास, तनासरी महला पहला आरती, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, गगन में थाल रव चंद दीपक बने, तारका मंडल जनक मोती, धूप मल आलो पवन चवरो करे, सगल बनराए फूलंत ज्योति, कैसी आरती होए, भाव खंडना तेरी आरती, अनहता शब्द वाजंत भेरी रहाओ, सहस तव नैन, नन नैन है तो एको, सहस मूरत नना एक तोही, सहस पद विमल नन एक, पद गंध बिन

सुख मानी अंतर सहज समाणी, एक अचरज जन देखो पाई, दुबदा मार हर मन वसाई, नाम अमोलक ना पाया जाय, गुर प्रसाद वसै मन आई, सब मह वसै प्रभ एको सोए, गुरमति घट प्रगट होए, सहजे जिन प्रभ जान पछाणिया, नानक नाम मिलै मन मानिया, तनासरी महला तीजा, हर नाम तन निर्मल अत अपारा, गुर कै शब्द परे भंडारा, नाम तन बिन होर सब बिख जान, माया मोहे जलै अभमान, गुरमुख हर रस चाखै कोई, किस सदा आनंद होए दिन राती।

बिन सतगुरु सब मुई बिल लाए, अन दिन दा जह शांत ना पाए। सतगुर मिले सब तृष्ण बुझाए, नानक नाम शांत सुख पाए। तनासरी महला तीजा, सदा धन अंतर नाम संभाले, जी जंत जिन्हें प्रतपाले।

हुई, शांत श्रृंगार रावी प्रभ सोई, हम मैं विच प्रभ कोई न पाए, मूलों भुला जन्म गवाई, गुरते शांत सहज सुख बाणी, सेवा साची नाम समाणी, शब्द मिले प्रीतम सदा ते आए, साच ना

पर जिब गोई मनमुख चोटा खाए अपनी पत खोई गुर सेवा ते जन निर्मल होए अंतर नाम वसै पत उत्तम होए रहाओ गुरमुख उबरे हर सरनाई राम नाम राते भगत दिरड़ाई भगत करे जन वडियाई पाए काच रते सुख सहज समाई।

पूर्क सत तृष्णा यज्ञ बुझाई, अंतर शांत सहज सुख पाए, गुर कै भाणै चलै ता आप जाए, साच महल पाए।

क्या पावा, तनासरी महला तीजा। मन मरे तात मर जाए, बिन मन बुए कैसे हर पाए। यो मन मरे दारू जाने कोई, मन शब्द मरे।

नानक गुरमुख नाम पछाणे तनासरी महला तीजा काका तन संचह मूर्ख गवार मनमुख भूले अंध गवार बिख्या कै तन सदा दुख होए ना साथ जाए ना प्राप्त होए साचा तन गुरमति पाए काचा तन हुनिया वै जाए रहाउ मनमुख भूले सब मरह गवार भव जल डूबे ना उरवार ना पार सतगुर भेटे पूरै भाग साच रखे अहनस बैराग चहो जुग मह अमृत सा।

लाए गुरमत साची साचा विचार आपे बख्शे दे विचार हर नाम अचरज प्रभ आप सुनाए कली काल विच गुरमुख पाए रहाओ हम मूरख मूरख मन माहे हम मैं विच सबकार कमाहे गुर प्रसादी हम मैं जाए आपे बख्शे लई मलाए भिख्या का तन बहुत अभमान अहंकार डूबे न पावे मान आप छोड़ सदा सुख होई गुरमत सालाही सच सोई आपे साजे करता सोए तिस बिन दूजा अवर ना कोए जिस सच लाए सोई लागे नानक नाम सदा सुख आगे रागत नासरी महला तीजा कर चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हम भीखक पे खारी तेरे तू निज पत है दाता ओ दयाल नाम देहो मंगत जन को सदा रहो रंग राता हम पले

किरपन को अब किस कृपा की जय हो दयाल दर्शन दे हो अपना ऐसी बख्श करी जय पणत नानक परम पट खुले गुर प्रसादी जानिया साची लिव लागी है पीतर सतगुर सिंह मन मानिया तनासरी महला चौथा घर पहला चौपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद जो हर सेव है संत भगत तिनके सब पाप निवारी।

उड़तारी हर हर हर औखद जग पूरा जप हर हर हो मैं मारी हर हर अगम अगाध बोध अपरंपर पुरख अपारी जन को कृपा करो जग जीवन जन नानक पैज सुवारी तनासरी महला चौथा हर के संत जना हर जप्यो तिनका दुख परम पौ भागी अपनी सेवा आप कराई गुरमत अंतर जागी हर कै नाम रत्ता बैरागी हर हर कथा सुनी मन पाई गुरमत हर

निक कीरे, तुम वड पुरख वडागी, तुम्हारे गात में तो कह ना सकह प्रभ, हम क्यों कर मिलह अपागी। हर प्रभ स्वामी कृपा तारो, हम हर हर सेवा लागी, नानक दासन दास करो प्रभ, हम हर कथा कथागी। तनासरी महला चौथा, हर का संत सतगुरु सतपुरखा, जो बोले हर हर बानी, जो जो कह सुने सो मुक्ता, हम तिस कह सद कुर्बानी, हर के संत सुनो जस कानी, हर हर कथा सुनो एक निमख पल, सब किल विख पाप लह जानी रहाव, ऐसा संत साध जिन पाया, ते वड पुरख वडानी, तिनकी तूर मंग है प्रभ स्वामी, हम हर लोच लुचानी, हर हर सफले हो बिरख प्रभ स्वामी, जिन जपे हो से त्रिपतानी, हर हर अमृत पी त्रिपता से, सब लाथी भूख पुखानी, जिनके वड्डे भाग वाडी विचे, तिन हर जपे हो जपानी, तिन हर संगत मेल प्रभ स्वामी, जन नानक दास दसानी। तनासरी महल

आपन पाली गुर सिख मीत चलो हो गुर चाली जो गुर कह सोई भल मानू हर हर कथा निराली रहाओ हर के संत सुनो जन पाई गुर सेवे हो बेग बेगाली।

हर जपना हर संत चले हर नाली जिन हर जपया से हर होए हर मिलया केल के लाली हर हर जपन जप लोच लुचानी हर कृपा कर बनवाली जन नानक संगत साध हर मेलो हम साध जना पगराली तनासरी महला चौथा हर हर बूंद भये हर स्वामी हम चात्रिक बिलल बिल लाती हर हर कृपा करहो प्रभ अपनी मुख देव हो हर निमखाती हर बिन रह ना सको एक राती ज्यो बिन अमलै अमली मर जाई है त्यों हर बिन हम मर जाती रहा तुम हर सरवर आते अगाह हम लह ना सक है अंत माती तू परे परे अपरंपर स्वामी मित जानो आपन गाती हर के संत जना हर जपेओ गुर रंग चलो लहराती हर हर भगत बनी अत सुबा हर जपेओ उत्तम पाती आपे ठाकुर आपे सेवक आप बनावे पाती नानक जन तुमरी सरनाई हर राखो लाज पगाती तनासरी महला चौथा कर युग का धर्म कहो तुम पाई के विछूट है हम छुटका की हर हर जप बेड़ी हर तुलहा हर जपे हो तरह तरा की हर जी लाज रखो हर जन की हर हर जपन जपावो अपना हम मांगी भगत एकाकी रहा हर के सेवक से हर प्यारे जिन जपियो हर बचना की लेखा चित्र गुप्त जो लिखिया सब छूटी जम की बाकी हर के संत जपियो मन हर हर लग संगत साध जना की दिनियर सूर तृष्णा अग्न बुझानी शिव चरयो चंद चंदा की तुम वड पुरख वाडे अगम अगोचर तुम आपे आप अपाकी जन नानक कहो प्रभ कृपा की जय कर दासन दास दसा की तनासरी महला चौथा कर पंजवा दुपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद उरतार बीचार मरार रमो रम मनमोहन नाम जपीने अदृष्ट अगोचर अपरंपर स्वामी गुरपुरे प्रगट कर दीने राम पारस चंदन हम काष्ट लोष हर संग हरि सतसंग भये हर कंचन चंदन कीने रहाओ नव से खट बोलह मुख आगर मेरा हर प्रभ इव नाथ कीने जन नानक हर हिरदय सद त्यावो इं हर प्रभ मेरा पीने तनासरी महला चौथा गुण कहो हर लहो कर सेवा सतगुर इव हर हर नाम त्याई हर दरगह पावह फिर जन्म ना आवह हर हर हर जोत समाई जप मन नाम हरी होहे सर्व सुखी।

गुर भगत हर दीनी तब हर स्यों प्रीत बन आई बहु चिंत वसारी हर नाम उर तारी नानक हर पये है सखाई तनासरी महला चौथा हर पढ़ हर लिख हर जप हर गाओ हर पौ जल पार उतारी मन बचन हृदय त्याए हर हुए संतुष्ट इव भण हर नाम मरारी मन जपिए हर जगदीश मिल संगत साधु मीत सदा आनंद होए दिन राती हर कीरत कर बनवारी रहाओ हर हर करी दृष्ट तब पयो मन उत्तम हर हर नाम जपियो गत पई हमारी जन नानक की पात राख मेरे स्वामी हर आए परयो है सन तुम्हारी तनासरी महला चौथा चौरासी सिद्ध बुद्ध तेतीस कोट मुन जन सब चाह हर जियो तेरो नाओ गुर प्रसाद को विरला पावे जिनको ललाट लिखिया तुर पाओ।

कर तीजै नानक हर सिमरन का है चाव तनासरी महला चौथा सेवक सिख पूजन सब आव है सब गाव है हर हर उत्तम बाणी गाव्या सुनिया तिनका हर थाए पावे जिन सतगुर की आज्ञा सत सत कर मानी।

हर कथा जिन जनहु जानी रहाओ आपे गुर चेला है आपे आपे हर प्रभु चोज बडानी जन नानक आप मलाए सोई हर मिलसी अवर सब त्याग ओहा हर पानी तनासरी महला चौथा इच्छा पूरक सर्व सुख दाता हर जाके वास है काम तीना सो ऐसा हर त्याये मेरे जियड़े ता सर्व सुख पावे मेरे मना जप मन सत नाम सदा सत नाम हलत पलत मुख उज्जल होई है नित त्याये हर पुरख निरंजना रहाओ जह हर सिमरन पया तह अपाद गत कीनी वड भागी हर जपना जन नानक को गुर एह मत दीनी जप हर पवजल करना।

प्यारी सब तुझे त्यावहि मेरे साह ज्यों भावै त्यों रख तू मेरे प्यारे सच नानक के पातशाह तनासरी महला पंजवा घर पहला चौपदी एक ओंकार सतगुर प्रसाद भव खंडन दुख पंजन स्वामी भगत वचल निरंकारी कोट पराध मिटे खिन भीतर।

तेरी तू अबनासी पुरख मरारी ज्यों पावै त्यों राखो स्वामी जन नानक सरन द्वारी तनासरी महला पंजवा दिन जल प्राण तजे है मीना जिन जल स्यों हेत बढ़ायो

मन गाय भयो परगास सदा सुख मन मह सतगुर पूरा पायो रहाओ गुण निदान रिद भीतर वसिया ता दुख भरम भौ भागा पई परा।

प्रीत माया मोह भूलो अवरहित हर चंदौरी बन हर पातरे एह तुहारो बीत रहाओ चंदन लेप होत देखो सुख गर्धभ पसम संगीत अमृत सांग

केले वेख दुख भागे गुर ज्ञान अंजन ने तर दीत साध संग इन दुख ते निकसेओ नानक एक परीत तनासरी महला पंजवां पानी पक्का पीसो संत आगे गुण गोविंद जस गाई सास सास मन नाम समारै

सदा सदा तुध त्याई रहाओ। तुमरी कृपा ते मोह मान छूटे, बिन सजाए परमाई। अंड रूप रवेओ सब मदे, जत कत पेखों जाई। तुम दयाल कृपाल कृपा निध, पतत पावन गोसाई। कोट सुख आनंद राज पाई, मुख ते निमुख बलाई। जाप ताप भगत सा पूरी, जो प्रभ कै मन पाई। नाम जपत कृष्णा सब बुझी है,

दी थी। ऐसी ठगौरी पाए पुलावे, मन सब कह लागे मीठी। माए बाप पूत हित प्राता, उन घर घर मेले ओ दुआ। किस ही वाद घाट किस ही पह, सगले लर लर मुआ। हम बलिहारी सतगुर अपनी, जिन ओह चलत दिखाया। गुजी पाहे जले संसारा, भगत ना व्यापै माया।

अल्प मात थोरी, तुम्हें आपन बिरद रखाव हो, तुम्हारी शरण तुम्हारी आशा, तुम ही सजन सोहेले, राखो राखन हार दयाला, नानक करके गोले।

निर्मोल का हर जस तिन पायो जिस किरपैन साध संग रंग प्रभ पेटे नानक सुख जन रैन तनासरी महा।

हार तनासरी महला पंजवा अब हर राखन हार चितारिया पतत पनीत किए खिन पीतर सगला रोग बदारिया रहाउ गोष्ट पई साध कह संगम काम क्रोध लोभ मा

एक मन विश्वास प्रभ धारिया चरण रीन बांछे नित नानक पुनः पुनः बलिहारिया तनासरी महला पंजवा मेरा लागु राम सिंह हेत सतगुर मेरा सदा सहाय दिन दुख

हार तेरी शरण पया हो जीवा तू सम्राट पुरख मेहरवान आठ पहर प्रभु को आराधी नानक सद कुर्बान राग तना श्री मां।

काल आन संयम किछ ना सूझै ए जतन काट कल काल रहाओ आद अंत दयाल पूरन तिस बिना नहीं कोय जन्म मरण निवार हर जप सिमर स्वामी सोय वेद सिमरत कथै शास्त्र भगत करह विचार मुक्त पाई साध संगत बिन सजाए अंदर।

पंजवा फिरत फिरत भेटे चल साधु पूरा गुर समझाया आन सगल बिद कामना आवे हर हर नाम ते आया।

रहाओ साध की शोभा आत्म चकीनी संत वडाई हर जस चीनी आनंद संतन कै भगत गोविंद सुख संतन कै बिनसी चिंद जह साध संतन होवह एकत्र तह हर जस गावह नाद कवित साध सभा मह आनंद विश्राम उन संग सो पाई जिस मस्तक करा।

करहें करावह स्वामी सा मसलत प्रवान रहाव पत परमेश्वर गत नारायण धन गोपाल गुण साखी चरण सरन नानक दास हर हर संती ए बिद जाति तनासरी महला पंजवा सगल मनोरथ प्रभ ते पाए कंठ लाए गुर राखे संसार सागर मह जलन ना दीने किने ना दुत्तर पाखे।

तिने ओट गही संत पल्ला तिन नाही रे जम संतावे साधु की संगना पायो रे परम निदान मिट्यो है अभमान एक निरंकार नानक मन लगना तनासरी महला पंजवा कर सतवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर एक सिमर एक सिमर एक सिमर प्यारी काल कलेश लोभ मोह महा भव जल तारी रहाओ सास सास निमख निमख दिन सरहन चितारी साध संग जपन संग मन निदान तारी चरण कमल नमचकार गुण गोविंद बिचारी साध जना की रेन नानक मंगल सुख सधारे तनासरी महला पंजवा घर अठवा दुपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद सिमरौ सिमर सिमर सुख पावो सास सास समाले एह लोक परलोक संग सहाय जत कत मोहे रखवाले।

हाव निरतन कौ तन अंदले कौ टिक मात दूध जैसे बाले सागर मैं बोहित पायो हर नानक करी कृपा कृपाले। तनासरी महला पंजवा पये कृपाल दयाल गोबिंदा अमृत हृदय सिंचाई नवनित रिद सिद्ध हर लाग रही जन पाई संतन को अंध सगल ही जाई ग्रह बाहर ठाकुर भगतन का।

कर आई, संत अनुग्रह पए मन निर्मल, नानक हर गुण गाई। तनासरी महला पंजवा, जाको हर रंग लागो इस युग में, सो कहियत है सूरा। आत्म जिनै सगल वस ताकै, जाका सतगुर पूरा। ठाकुर गाइय।

मन भरमा तब लग मुक्त ना कोई। कहो नानक दयाल स्वामी संत भगत जन सोई। तनासरी महला पंजवा नाम गुर दियो है अपने जां कै मस्तक करमा। नाम दृढ़ावै नाम जपावै ताका जुग मह धर्मा जन।

जिस जन कह पाले सोई पूरा साहा, नाम व्यवहारा नानक अधारा, नाम प्राप्त लाहा। तनासरी महला पंजवां, नेत्र पनीत भय दर्श पेखे, माता परों रवाल, रस रस गुण।

अंग मंगल रूप तुमरे वचन अनूप रसाल हृदय चरण शब्द सतगुरु को नानक बांधियो पाल। तनासरी महला पंजवा अपनी उकत खिलावै भोजन अपनी उकत खिलावै सर्व सुख भोग रस देवै।

सदा सलामत देवा। ईत ऊत जत कत तत तुम ही मिले नानक संत सेवा। तनासरी महला पंजवा। संत किरपाल दयाल दमोदर काम क्रोध बिख जारी। राजमाल जोबन तन जियरा इन ऊपर लै बारी। मन तन राम नाम हितकारी सुख सहज आनंद मंगल सहत भवनिध पार उतारी रहाओ। तन सो थान ताने ओए भवना

नानक आनंद पये दुख भागे सदा सदा हर जाप तनासरी महला पंजवा चतुर दिशा कीनो बल अपना सिर ऊपर कर धारियो कृपा कटाक अवलोकन कीनो दास का दुख बिदारियो हर जन राखे गुरु गोविंद कंठ लाए अवगुण सब मेटे दयाल पुरख

मनोरथ राज सुख रस सद खुशियां कीर्तन जप नाम जिसकै कर्म लिखिया तुर करतै नानक जन के पूर्ण काम। तनासरी महला पंजवा जन की कीनी पार ब्रह्म सार निंदक टिकन ना पावन मूले उड़ गए बेकार रहाउ। जह जह देखो तह तह स्वामी कोए ना पहुंचन हार जो जो करे अवग्या जन की होए गया तत्सार। करन हार रखवाला हुआ जाकांत न पारावार नानक दास रखे प्रभ अपने निंदक काडे मार। तनासरी महला पंजवां घर नौवां पड़ताल एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर चरण सरण गोबिंद दुख भंजना दास अपने को नाम देव हो दृष्ट प्रभ धारु हो कृपा कर तारु हो पुजा गह कूप ते काढ लेव हो रहाउ। काम क्रोध कर अंध माया के बंद अनक दोखा तन शाद पूरे प्रभ बिना आन ना राखन हारा नाम सिमराव हो सरन सूरे पतत उदारना जी जंत तारना वेद उचार नहीं अंत पायो गुण है सुख सागरा ब्रह्म रत्नागरा भगत वत्सल नानक गायो। तनासरी महला पंजवां हलत सुख पलत सुख नित सुख सिमरनो नाम गोबिंद का सदा लीजै मिटह कमाणी पाप चिराणी साध संगत मिल मुआ जीजै रहाउ। राज जोगन बिसरंत हर माया महा दुख एहो महात कह आस प्यास रमन हर कीर्तन एहो पदार्थ भागवंत लह सरल समरथ अकाथ अगोचरा पतत उदारन नाम तेरा अंतर जामी नानक के स्वामी सरभत पूर्ण ठाकुर मेरा। तनासरी महला पंजवां घर बारवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद बंदना हर बंदना गुण गावो गोपाल राय रहाउ। बड़े भाग भेटे गुरदेवा कोट पराद मिटे हर सेवा चरण कमल जाका मन रापै सोग अगन किस जन ना व्यापै सागर तरिया साधु संगे निरपो नाम जपो हर रंगे

नानक उदरे प्रभ सरनाई तनासरी महला पंजवा त्रिपत भई सच भोजन खाया मन तन रसना नाम ते आया जीवना हर जप साध संग रहाओ अनक प्रकारी बस्तर ओढ़ाए अन दिन कीर्तन हर गुण गाए हस्ती रथ अस असवारी हर का मार्ग हृदय निहारी मन तन अंतर चरण त्याया हर सुख निदान नानक दास पाया तनासरी महला पंजवा गुर के चरण जी का निस्तारा समुंद सागर जिन खिन मह तारा रहाउ कोई हुआ क्रम रात कोई तीर्थ नाया दासी हर का नाम ते आया बंधन काटन हार स्वामी जन नानक सिमरै अंतर जामी।

हर देवन हारा, चरण कमल स्यों लागो नेहो, नानक की बेनंती है। एक ओंकार सतगुर प्रसाद तनासरी महला नौवा, काहे रे बन खोजन जाई, सर्बनवासी सदा अलेपा, तो ही संग समाई रहाओ। ओह पमद ज्यों बास बस्त है, मुकर माहे जैसे शाई, तैसे ही हर बसे निरंतर, घट ही खोजो भाई। बाहर भीतरे को जानो, एहो गुर ज्ञान बताई, जन नानक बिन आपा चीनै, मिटै ना भ्रम की काई। तनासरी महला नौवा, साधो एहो जग भरम भलाना, राम नाम का सिमरन छोड़िया, माया हाथ बिकाना रहाओ। मात पिता भाई सुत बनता, तां कै रस लपटाना, जोबन धन प्रभता कै मद में, अहनस रह देवाना। दीन दयाल सदा दुख भंजन, तां स्यो मन ना लगाना, जन नानक कोटन मैं किन्हू, गुरमुख होए पछाना। तनासरी महला नौवा, तेह जोगी को जुगत ना जानो, लोभ मोह माया ममता फुन, जेह घट माहे पछानो रहाओ। पर निंदा उस्तत नह जाके, कंचन लोह समानो, हरख सोगते रह अतीता, जोगी ताहे बखानो। चंचल मन दह दिस को तावत, अचल जाए ठहरानो, कहो नानक एह बिद को जो नर, मुक्त ताहे तुम मानो। तनासरी महला नौवा, अब मैं कौन उपाऊ करूं, जेह बिद मन को संसा चूकै, पहु निध पार परो रहाओ। जन्म पाए कछ पलो ना कीनो, ताते अधिक डरो, मन बच क्रम हर गुण नहीं गाए, यह जी सोच धरो। गुरमत सुन कछ ज्ञान ना उपजियो, पास ज्यो उदर भरो, कहो नानक प्रभ बिरत पछानो, तब हो पतत तरो। तनासरी महला पहला, कर दूजा अष्टपदिया, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, गुर सागर रतनी परपूरे, अमृत संत चुगह नहीं दूरे, हर रस चोग चुगह प्रभ पावे, सर्वर मह हंस प्राण पत पावे। क्या बग बपड़ा छपड़ी नाए, कीचड़ डूबे मैल ना जाए रहाओ। रख रख चरण धरे विचारी, दुबदा छोड़ पए निरंकारी, मुक्त पदार्थ हर रस चाखे, आमन जान रहे गुर राखे। सर्वर हंसा छोड़ ना जाए, प्रेम भगत कर सहज समाए। सर्वर मह हंस हंस मह सागर, कथ कथा गुर बचनी आदर, सुन मंडल एक जोगी बैसे, नारना पुरख कहो को कैसे। त्रे भवन जोत रहे लिवलाई, सुर नर नाथ सच्चे सरनाई, आनंद मूल अनाथ आधारी, गुरमुख भगत सहज बीचारी, भगत वचल पै काटन हारे, हों मैं मार मिले भगत हारी। अनक जतन कर काल संताए, मरन लखाए मंडल मह आए, जन्म पदार्थ दुबदा खोवे, आप ना चीनस भ्रम भ्रम रोवे, कहतो पढ़तो सुनतो एक, तीर्ज धर्म तरनी तर टेक, जत सत संयम हृदय समाए, चौथे पद को जे मन पति आए, साचे निर्मल मैल ना लागे, गुर कै शब्द भरम पौ भागे, सूरत मूरत आद अनूप, नानक जाचै साच स्वरूप। तनासरी महला पहला, सहज मिले मिलिया परवान, ना तिस मरण ना आमन जान, ठाकुर मह दास दास मह सोई, जह देखा तह अवर ना कोई।
गुरमुख भगत सहज घर पाई बिन गुर भेटे मर आईय जाइय रहाउ सो गुर करो जे साच दरड़ावे कथ कथावे शब्द मलावे हर के लोग अवर नहीं कारा साचो ठाकुर साच प्यारा।

मिलै मलाई। आप दिखावे आपे देखे, हठ ना पतीजे ना बहु भेखे। कड़ भांडे जिने अमृत पाया, प्रेम भगत प्रभ मन पति आया। पड़ पड़ भूलह चोटा खाहे, बहुत सियाणप आवह जाहे। नाम जपै पहु भोजन खाए, गुरमुख सेवक रहे समाए। पूज सिला तीर्थ बन वासा, परमत डोलत भए।

साखी है, सतगुर की साखी अमृत भाखी। तित मन मानिया मेरा, कूच करह आवह बेखला दे। शब्द सच्चै गुर मेरा, आखण तोट ना भगत पंडारी। भरपुर रहे आसोई, नानक साच कह बेनंती। मन मांजै सच सोई, तनासरी महला पहला। जीवा तेरे नाए, मन आनंद है जियो। साचो साचा नाओ, गुण गोविंद है जियो। गुर ज्ञान अपारा।

लेख है आपे सुरत बुझाय नानक साहेब अगम अगोचर जीवा सच्ची नाई तुम सारे अवर ना कोए आया जायसी जियो हुक्मी होए नबेड़ परम चुकाए सी जियो गुर परम चुकाए अकथ कहाए सच मह साच समाना आप अपाए आप समाए हुक्मी हुक्म पछाणा सच्ची वड्याई गुर ते पाई तू मन अंत सखाई नानक साहिब अवर ना दूजा नाम तेरे वड्याई तू सच्चा सिरजनहार अलख सिरंदिया जियो एक साहिब दोए राह वाद वधंदिया जियो दोए राह चलाए हुक्म सबाए जन्म मुआ संसारा नाम बिना नाही को बेली बिख लादी सिर भारा हुक्मी आया हुक्म ना बूझे हुक्म सवारण हारा नानक साहिब शब्द सियापे साचा सिर जनहारा भगत सोह है दरबार शब्द सुहाया जियो बोल है अमृत बाण रसन रसाया जियो रसन रसाए नाम तसाए गुर कै शब्द विकाणे पारस परसे पारस होए जा तेरे मन भाणे अमरा पद पाया आप गवाया बिरला ज्ञान विचारी नानक भगत सोहन दर साचे साचे के वापारी भूख प्या सोआत क्यों दर जाए सा जियो सतगुर पूछो जाए नाम त्याए सा जियो सच नाम त्याई साच चवाई गुरमुख साच पछाणा दीना नाथ दयाल निरंजन।

तरना जो जन भाव भगत कश जाने ताको अचरज काहू ज्यो जल जल मह पैस नानक सह त्यों ढुर मिलो जलाहू हर के लोगा मैं तो मत का पूरा जो तन कांसी तजह कबीरा रमैया कहाने होरा रहाऊ कहत कबीर सुनो रे लोई परम ना भूलो कोई क्या कांसी क्या ऊखर मगहर राम हृदय जो होई इंद्र लोक शिव लोक कह जैबू पूछे तप कर बहुर ऐबू क्या मांगो किस थिर नाही राम नाम रख मन माही रहाउ शोभा राज बिभै बढ़ियाई अंत न काहू संग सहाय पुत्र कलत्तर लक्ष्मी माया इनते कहो कमने सुख।

हमरे मन धन राम को नामा, राम सिमर राम सिमर राम सिमर पाई, राम नाम सिमरन बिन बूढ़ ते अदकाई रहाउ, बनता सुत देह गृह संपत सुखदाई, इन मैं कछ नाही तेरु काल अब दे आई, अजा मल गज गन का पतत कर्म कीने, तेहु पुत्र पार परे राम नाम लीने, सूकर कूकर जोन प्रमे तऊ लाज ना आई, राम नाम छाड अमृत काहे बिख खाई, ताज परम कर्म बिदन खेद राम नाम ले ही, गुर प्रसाद जन कबीर राम कर सने, तनासरी बाणी भगत नाम देव जी की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, गहरी करके नीम खुदाई ऊपर मंडप छाई, मार कंडे ते को अधकाई, जिन त्रेण तार मूंड बलाई, हमरो करता राम स्नेही, काहे रे नर गर्भ करत हो, बिन सजाए झूठी देही रहाओ, मेरी मेरी कैरो करते दुर्योधन से पाई, बारह योजन शत्र चले था देही गिरजन खाई, सर्ब सोइन की लंका होती रावण से अधकाई, कहां पयो दर बांधे हाथी, खिन मैं पई पराई, दुर्बासा से उकर

दास बैरागन मोहे बस कीनी, पंचों का मिट नामो सत्तर दोहे परे अमृत सार, बिख को मार कढावो पाछे बहुर ना आवन पावो, अमृत बाणी घटते उचरो आत्म को समझावो रहाओ, बजर कुठार मोहे है शीना कर मिन्नत लग पावो, संतन के हम उल्टे सेवक भगतन ते डर पावो, ए संसार ते तब ही छूटो जो माया नह लपटावो, माया नाम गर्भ जोन का तेह तज दर्शन पावो, इत कर भगत करह जो जन तिन भव सगल चुकाइए, कहत नाम देव बाहर क्या भरम हो, एह संजम हर पाइए, मारवाड़ जैसे नीर बालहा बेल बालहा करहला, जो करंक निसनाद बालहा।

आउ ज्यो धरनी को इंद्र बालहा कुसम बास जैसे पवरला ज्यो कोकिल को अंब बालहा त्यों मेरा मन रामैया चकवी को जैसे सूर बालहा मान सरोवर हंसुला ज्यो तरनी को कंत बालहा त्यों मेरा मन रामैया पार्क को जैसे खीर बालहा चात्रक मुख जैसे जल तरा मछली को जैसे नीर बालहा त्यों मेरा मन रामैया साधक सिद्ध सगल मुन चाहे बिरले काहू डीठला सगल पवन तेरो नाम बालहा त्यों नामे मन बीठला पहल पुरिये पुंडरक वना तांचे हंसा सगले जना कृष्णा ते जानू हर हर नचंती नाचना पहल पुरसा बिरा अथोन पुरसा दमरा असगा अस उसगा हर का बागरा नाचै पिंडी महसागरा रहाऊ।

पतत पावन माधव बिरध तेरा, धन ते वै मुन जन जिन ध्यायो हर प्रभ मेरा, मेरे माथे लागी ले तूर गोविंद चरणन की, सुर नर मुन जन तिन्हू ते दूर रहाओ, दीन का दयाल माधो गर्भ परहारी, चरण सरन नामा बल तिहारी, तनासरी भगत रविदास जी की। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, हम सर दीन दयाल ना तुम सर, अब पतियार क्या कीजै बचनी तोर, मोर मन माने जन को पूर्ण दीजै, हौ बल बल जाऊ रमैया कारने, कारण कमने अबोल रहाओ, बहुत जन्म बिछरे थे माधव, यो जन्म तुम्हारे लेखे, कह रविदास आस लग जीवो, चिर भयो दर्शन देखे, चित सिमरन करो नैन अवलोकनो, श्रवण बाणी सुजस पूर राखो, मन सो मधुकर करो चरण हृदय धरो, हरसन अमृत राम नाम पाखो, मेरी प्रीत गोबिंद सिंह जिन घटै, मैं तो मूल महंगी लई जी सटै रहाओ, साध संगत बिना भाव नहीं उपजै, भाव बिन भगत नहीं होए तेरी, कह रविदास एक बेनती हर सिंह, पैज राखो राजा राम मेरी, नाम तेरो आरती मजन मरारी, हर के नाम बिन झूठे सगल

रत्न लगाई पयो उजियारो पवन सगलारे नाम तेरो तागा नाम फूल माला पार अठारहा सगल जूठारे तेरो किया तुझे क्या अर्पों नाम तेरा तुही चवर टोलहारे दस अठा अठ सठे चारे खानी यह बर्तन है सगल।

कर्मरी रहाव शंकर मस्तक बस्ता सुरसरी स्नान रे कुल जन मधे मिलियो सार्ग पान रे कर्म कर कलंक मुफीत सरी विश्व का दीपक स्वामी ताचे रे स्वार्थी पंखी राय गरुड़ ताचे बांधवा कर्म कार अरण पिंगलारी अनक पात कहरता त्रे पवन नाथरी तीर्थ तीर्थ भ्रमता लह ना पाररी कर्म कर कपाल मुफीत सरी अमृत ससी तेन लक्ष्मी कल्पतर शिखर समागर नदी के नाथं कर्म कार्य खार मुफीत सरी गादी ले लंका गाड़ उपाड़ी ले रावण बाण सालब साल आण तो खीले हरी कर्म कर कछोटी मुफीत सरी पूर्व लो कृत कर्म ना मिटैरी कर गेहन ताचे मोहे जापी अले राम चे नाम बदत त्रिलोचन राम जी श्री सैन धूप दीप कृत साज आरती वार ले जाओ कमलापति मंगला हर मंगला नित मंगल राजा राम राय को रहाओ उत्तम दियरा निर्मल बाती तुही निरंजन कमला पाती।

जैत श्री मोहल्ला चौथा। हीरा लाल अमोलक है पारी, बिन गाहक मीका काखा। रतन गाहक गुर साधु देखियो, तब रतन बकानो लाखा। मेरा मन गुप्त हीर हर राखा, दीन दयाल मलायो गुर साधु। गुर मिले हीर पराखा रहाओ, मनमुख कोठी अज्ञान अंधेरा। तिन घर रतन ना लाखा, ते उजड़ भरम मोए गावारी। माया पुआंग बिख चाखा, हर हर साध मेलो जन नीके।

जिहवा क्या गुण आख बखान है। तुम वड अगम वड पुरखा, जन नानक हर कृपा धारी, पाखान डुपत हर राखा। जैत श्री महला चौथा, हम बारिक कछु न जान है गत मेत, तेरे मूर्ख मुग्ध एना हर कृपा धार।

गुर साधु मिल साधु कपट खला ना रहाउ गुर खिन खिन प्रीत लगाव हो मेरे ही अरे मेरे प्रीतम नाम पराना बिन नावे मर जाइए मेरे ठाकुर जो अमली अमल लुभाना जिन मन प्रीत लगी हर केरी तिन तुर भाग पुराना तिन हम चरण सरे वह खिन खिन जिन हर मीठ लगाना हर हर कृपा धारी मेरे ठाकुर जन बिछरिया चिरी मलाना तन तन सतगुर जिन नाम दिरडाया जन नानक तिस कुरबाना जैत श्री महला चौथा सतगुर साजन पुरख वड पाया हर रसक रसक फल लाघबा माया पुयंग ग्रस्यो है प्राणी गुरबचनी बिस हर काढ़बा मेरा मन राम नाम रस लाघबा हर किए पतर पवित्र मिल साध गुर हर नाम हर रस चाखबा रहाउ तन तन बड़ भाग मिलो गुर साधु मिल साधु लिव उन मन लाघबा तृष्णा अगन बुझी शांत पाई हर निर्मल निर्मल गुण गायबा तिनके भाग खीन तुर पाए जिन सतगुर दर्शना पाएबा ते दूजे पाए पवे गर्भ जोनी सब बिरथा जन्म तिन जाएबा हर देहो बिमल मत गुर साध पग सेव है हम हर मीठ लगाएबा जन नानक रेण साध पग मांगे हर हुए दयाल दुआएबा जैत श्री महला चौथा जिन हर हृदय नाम ना बसेऊ तिन मात की जय हर

साकत बंद भय है माया, बिख संच है लाएज कीड़ा, हर कै अर्थ खर्च नह साक है, जम काल सह सिर पीड़ा, जिन हर अर्थ शरीर लगाया गुर साधु, बहु श्रद्धा लाए मुख धूड़ा, हलत पलत हर सोभा पाव है, हर रंग लगा मन गूड़ा, हर हर मेल मेल जन साधु, हम साध जना का कीड़ा, जन नानक प्रीत लगी पग साध, गुर मिल साधु पाखान हरिओ मन मूड़ा। जैत श्री महला चौथा कर दूजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, हर हर सिमरोह अगम अपारा, जिस सिमरत दुख मिटै हमारा, हर हर सतगुर पुरख।

हर हर अमृत बचन सुनावहु, गुर मिले प्रगट होई राम, मधुसूदन हर माधु प्राणा, मेरा

हर हर हर हर भगत दृढ़ावहु हर हर नाम उमा हाराम हर हर नाम दयाल त्याह हर कह रंग सदा गुण गाह हर हर हर जस घूमर पावहु

गुर मिलिया हर ओ महाराम कर कीरत जस अगम अथाह खिन खिन राम नाम गावाह मोको तार कृपा मिलिया गुरदाती हर नानक भगत ओ महाराम जैत श्री महला चौथा रस रस राम रसाल सलाह मन राम नाम पीना लैलाह खिन खिन भगत करह दिन राती गुरमत भगत महाराम हर हर गुण गोविंद जपाहा मन तन जीत शब्द लैलाहा गुरमत पंच दूत वास आवह मन तन हर ओ महाराम नाम रतन हर नाम।

कथा मिल सत संगत संग गुराहा पूंजी नाम गुरमुख वेसाहा हर हर कृपा धार मद सूदन मिल

तोल अत पहारी गुरमत जप उमाहा राम सब कर्म धर्म हर नाम जपाहा किल विख महल पाप तुवाहा दीन दयाल हो जन ऊपर देहो नानक नाम उमाहा राम जय श्री महला पंजवा घर तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद कोई जाने कवन इहां जग मीत जिस होए कृपाल सोई बिद बूजै ताकी निर्मल रीत रहाउ मात पिता बनता सुत बंदप इष्ट मीत अर भाई

सब महियो वर्ण ना दिसै चिन्ह ना लखियै सुहागन सांत बजहियो सर्व निवासी घट घट वासी लेप नहीं अलपहियो नानक कहत सुनो रे लोगा संत रसन को बसहियो जय श्री महला पंजवा धीरों सुन धीरों प्रभ को रहाओ जी प्राण मन तन सब अर्पो नीरो पेख प्रभ को नीरो बेशमार बेअंत बड दाता मन गिहीरो पेख प्रभ को जो चाहो सोई सोई पावो आसा मनसा पूरो जप प्रभ को गुर प्रसाद नानक मन वसिया दुख ना कबहू चूरों बुझ प्रभ को जय श्री महला पंजवा लड़िंदड़ा साजन मेरा कर कर मंगल गावो नीके।

तो सगल मोहे मोहियो तो शरण परयो गुर भाग कर कृपा टहल हर लायो तो जम छोड़ी मोरी लाग तरयो सागर पावक को जो संत भेटे वड भाग जन नानक सर्व सुख पाई मोरो हर चरणी चित लाग जय श्री महला पंजवा मन मह सतगुर ध्यान धरा दृढ़ो ज्ञान मंत्र हर नामा प्रभ जियो मया करा रहाओ काल जाल अर महा जंजाला छुटके जमह डरा आयो दुख हरन शरण करुणा पत गहयो चरण आसरा नाव रूप भयो साध संग भव निद पार परा अपयो पियो गत थियो परमा कहो नानक अजर जरा जय श्री महला पंजवा जा कहो पय गोविंद सहाई सूख सहज अना

जिन रस रस हर गुण गाई, जय श्री महला पंजवां। गोविंद जीवन प्राण धन रूप, अज्ञान मोह मगन महाप्राणी, अंधियारे मह दीप रहाओ, सफल दर्शन तुमरा प्रभ प्रीतम, चरण कमल अनूप, अनक बार करो ते बंदन।

या रस मह मगन होत कृपाति महाविख्याति तूर आयु शरण दीन दुख भंजन चितवं कमरी ओर अपै पद दान सिमरन स्वामी को रब नानक बंधन छोर जय श्री महला पंजवा चातरक चितवत बरसत मेह कृपा सिंध करुणा प्रभ धारु हर प्रेम भगत को नेह रहाउ अनक सुख।

दह दिस को उठताया घट ही पीतर बसै निरंजन ताको मर्म ना पाया नाहिन गुण नाहिन काश जप तप कौन कर्म अब कीजै नानक हार परयो सरनागत अपै दान प्रभ दीजै जैत श्री महल।

को जोगी खोज तहारे पायो नाहे तेह पारा सो स्वामी तुम निकट पछानो रूप रेख ते न्यारा पावन नाम जगत में हर को कबहू नाहे संभारा नानक सरन परयो जग बंदन राखो हो बिरद तुहारा जैत श्री महला पंजवा संत घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद सलोक दर्शन प्यासी दिन सरात चितवन दिन नीत खोल कपट गुर मेलिया नानक हर संग मीत संत सुन यार हमारे सज्जन एक करो बेनंतिया किस मोहन लाल प्यारे हो फिरो खोजंतिया किस दस प्यारे सिर धरी उतारे एक पूरी दर्शन दीजै नैन हमारे प्रिय रंग रंगारे।

पूरा पाया सगली तिखा बुझंतिया यार वे प्रयह बे सखियां मुंह कही ना जेहिया यार वे हिक डू हिक चाड़े हों किस चिते हिया हिक डू हिक चाड़े अनक प्यारे नित कर दे भोग बलासा तिना देख मन चाओ उठंदा हौ कद पाई गुण तासा जिन्नी मैंडा लाल रजाया हौ तिस आग्या मन देहिया नानक कह सुन बिनो सुहागण मूं दस दिखा पेर के हिया यार वे पेरे आपन पाणा किस निशी छंदा यार वे तैरावया लालन मूं दस दसंदा लालन तै पाया आप गवाया जै तन भाग मथाने बाहां पकड़ ठाकुर हौ किद्दी गुण अवगुण ना पछाणे गुण हार तै पाया रंग लाल बनाया तिस हब्बो किस सुहंदा जन नानक तन सुहागण साई जिस संग पता।

महामंगल रहस किया, फिर दयाल साधना वरंगिया, वड भाग पाया गुर मिलाया, साध कै सत संगिया, आसा मनसा सगल पूरी, त्रय अंक अंक मलाई, बिनवंत नानक सुख सखेंदी, सा मैं गुर मिल पाई, जय श्री महा

असंख अवगण खते फेरे नित प्रत सद भूलिया मोह मगन बिकराल माया तो प्रसादी कू।

आठ पहर कर जोड़, सो प्रभ त्याई है, त्याए सो प्रभ सदा अपना, मन है चिंदिया पाई है, तज मान मोह विकार दूजा, एक स्यों निवलाई है, अर्प मन तन प्रभु आगे, आप सगल मिटाई है, बिनवंत नानक धार कृपा, साच नाम समाई है, सलोक रे मन का कौ त्याई है, सब बिद जा कै हाथ, राम नाम तन संची है, नानक निभ है साथ, संत साथी अड़ा प्रभ एक, दूसर नाहे कोए, थान थरंतर आप, जल थल पूर सोए, जल थल मैयल पूर रहया, सर्वदाता प्रभ धनी, गोपाल गोविंद अंत नाही, बे अंत गुणता के क्या गनी, पज सरन स्वामी सुखगामी, तिस बिना अन नाहे कोए, बिनवंत

कुमान बूढ़े मरण चीत ना आवे, पुत्र मित्र व्यवहार बनता एह करत बिहावे। उज दिवस आए लिखे माए, दुख धर्म दूत है जिथेया, किरत कर्म ना मिटै नानक, हर नाम धन नहीं खटिया, उदम करह अनेक हर नाम ना गावही, भरम है जोन असंख मर जन्म है आवही, पशु पंखी सैल तरवर गणक कशु ना आवे, बीज बोवस भोग भोग है किया अपना पावे, रतन जन्म हर अंत जुए प्रभु आप ना पावही, बिनवंत नानक परम है परमाए, खिन एक टिकन ना पावही, जोबन गया बेतीत जर मल बैठिया, कर कंप है सिर डोल नैन ना डीठिया, नह नैन दीसै बिन भजन ईसै, छोड़ माया चालिया कहया ना मन है सिर खाक छन है, जिन संग मन तन जालिया, श्री राम रंग अपार पूर्ण नह निमख मन मह वूठिया, बिनवंत नानक कोट कागर बिन सबार ना झूठिया, चरण कमल सरण आए नानक आया, दुत्तर भै संसार प्रभ आप तराया, मिल साध संगे भजे श्री तार, कर अंग प्रभ जी तारिया, हर मान लिए नाम दिए अवर कछ ना बिचारिया, गुण निधान अपार ठाकुर मन लोड़ींदा पाया, बिनवंत नानक सदा तृप्ते हर नाम भोजन खाया, गुण निधान अपार ठाकुर मन लोड़ींदा पाया, बिनवंत नानक सदा तृप्ते हर नाम भोजन खाया। जैत श्री महला पंजवां, वार सलोका नाल एक ओंकार सतगुरु प्रसाद, सलोक आदि पूर्ण मध्य पूर्ण अंत पूर्ण परमेश्वर है, सिमरंत संत सर्वत्र रमण, नानक अगनाशन जगदीश्वर है, देखन सुनन सनामन मन मह दृढ़िया साच, पूर रहे हो सर्वतर मैं, नानक हर रंग राच पौड़ी, हर एक निरंजन गाय।

आप अथापदा तिस बिन नहीं कोई, खंड ब्रह्मांड पाताल दीप रविया सब लोई, जिस आप बुझाए सो बुझसी निर्मल जन सोई, सलोक रचंत जी रचना मात गर्भ अस्थापनं, सास सास सिमरंत नानक महा अगन ना बनासनं, मुख तले पैरे उपरे बसंदो को हथड़े थाए, नानक सो तनी क्यों वसारे हो उदर है जिस दै नाए, पौड़ी रक्त बिंद कर निम्या अगन उदर मजार, उर्द मुख कुचील बिकल नरक घोर गुबार, हर सिमरत तू ना जल है मन तन उरतार, बिकम थानो जिन रखिया इस तिल ना विसार, प्रभ बिसरत सुख कदे नाही जस है जन्म हार, सलोक मन इच्छा दान करन सर्वत्र आसा पूर्ण है, खंडन कल कलिश है प्रभ सिमर नानक नह दूर नह, हब रंग मान है जिस संग ऐस्यो लाई है ने हो, सो सहो बिंद ना विसरो नानक जिन सुंदर रचिया दे हो, पौड़ी जियो प्राण तन तन दिया दीने रस भोग, ग्रह मंदर रथ आस दिए रच भले संजोग, सुत बनता साजन सेवक दिए प्रभ देवन जोग, हर सिमरत तन मन हरिया लह जाहि वियोग, साध संग हर गुण रमहु बिनसे सब रोग, सलोक कुटंब जतन करन माया अनेक उदम है,

लोक बसंत स्वर्ग लोक है, जितते पृथ्वी नव खंडन है, विसरंत हर गोपाल है, नानक ते प्राणी उद्यान भरमण है, कौतिक कोड तमाशिया चेतना आस नाउ, नानक कोड़ी नरक बराबरे, उजड़ सोई थाउ पौड़ी, महाभयान उद्यान नगर कर मानिया।

0: काल गुर
1: गुर पूर्ण नारायण है गुर दयाल समर्थ गुर गुर नानक पतत उदाहरण है पवजल बिखम असगाह गुर बोहित है तारियम नानक पूर करम सतगुर चरणी लगिया पौड़ी तन तन गुर देव जिस संग हर जपे गुर किरपाल जब भई ता अवगुण सब छपे पार ब्रह्म गुरदेव नीचो उच थपे काट सिलक दुख माया कर लीने अप दसे गुण गाए बेअंत रसना हर जसे सलोक दृष्टंत एको सुनियंत एको वर्तंत एको नरहर है नाम दान जा चंत नानक दयाल पुरख कृपा करह हिक सेवी हिक सम्मला हर इकस पह अरदास नाम वखर धन संचिया

कई है तिन मस्तक भाग मंदेरा विवेक बुद्ध सतगुर ते पाई गुर ज्ञान गुरु प्रभ केरा जन नानक नाम गुरु ते पाया तुर

आदि संतन अवर न काहू जानी बेपरवाह सदा रंग हर कै जाको पाख स्वामी रहाउ ऊच समाना ठाकुर तेरो अवर न काहू तानी ऐसो अमर मिलियो भगतन को।

उस जन्मा नानक तिस बलिहारी टोडी महला पंजवा कर दूजा चौपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद तायो रे मन दह दिस तायो माया मगन स्वाद लोभ मोहयो इन प्रभ आप पलायो रहाव हर कथा हर जस साध संगत सियो एक मोहत ना एहु मन लायो बिगसेओ पेख रंग कसुंभ को पर ग्रह जोहन जायो चरण कमल सियो पाओ ना कीनो नह सत पुरख मनायो तावत कहो तावह बहु भांति ज्यो तेली बल्द परमायो नाम दान इशनान ना कियो एक निमख ना कीरत गायो नाना झूठ लाए मन तो खियो नह बूझियो अपनायो पर उपकार न कबहू किए नहीं सतगुर सेवत आयो पंच दूत रच संगत गोष्ट मतवारो मद मायो करो बेनती साध संगत हर भगत वश्चल सुन आयो नानक भाग परयो हर पाछे राख लाज अपनायो टोडी महला पंजवां मनुख बिन बूझे बिरता आया अनक साज शिंगार बहु करता ज्यो मृतक ओढ़ाया रहाओ ताए ताए कृपन सरम कीनो

प्रभ को किस हृदय नाम वसाया, साध संगत कै पाछे परयो जन नानक हर रस पाया। टोडी महला पंजवां कृपा निद बसो हृदय हर नीत, तैसी बुद्ध करहो परगासा लागे प्रभ संग प्रीत रहाउ। दास तुम्हारे की पावो धूरा मस्तक ले ले लावो, महापतत ते होत पनीता हर कीर्तन गुण गावो। आज्ञा तुमरी मीठी लागो कियो तुहारो पावो, जो तू देहे तही एहो तृप्तै आन न कतहु तावो, सब ही निकट जानो प्रभ स्वामी।

काल अनेक भोग रस सगल तरवर की श्याम ताए ताए बहु विध कौ तावै सगल निरारत काम बिन गोविंद अवर।

पंजवां सतगुरे आयो शरण तुहारी मिले सूख नाम हर सोबा चिंता लाहे हमारी रहाओ अवर

सेव हर के चरण रसायन जन्म मरण दोहू ते छूट है पवजल जगत तरायण खोजत खोजत

था थाट्यो खात खर्चत किसन खुटत नाही राम रतन धन खाट्यो पसमा भूत हो आखिन भीतर अपना किया पाया आगम निगम कह जन नानक सब देखै लोक सबाया टोडी महला पंजवां किरपन तन मन किल विख भरे साध संग भजन कर स्वामी ताकन को एक हरे रहाओ अनक शिदर बोहित के छुटकत थाम ना जाही करे जिसका बोहित तिस अरादे।

नानक किछ नाही, प्रभ राखो सरन परे। टोडी महला पंजवां, हर के चरण कमल मन त्याऊ। काड कुठार पित बात हंता, औखद हर को नाऊ रहाऊ। तीने ताप निवारण हारा,

सरन परे दुख पंजन जा का बड परताप टोडी महला पंजवा स्वामी सरन परयो दरबारी कोट अपराध खंडन के दाते तुझ बिन कौन उधारे रहाउ खोजत खोजत बहु परकारी सर्व अर्थ बिचारे साध संग परम गत पाइए माया रच बंद हारे चरण कमल संग प्रीत मन लागी सुर जन मिले प्यारे नानक अंध करे हर जप जप सगले रोग निवारे टोडी महला पंजवा घर तीजा चौपदी।

आपन राम न चीनो खिनुआ, जो पराई सो अपनी मनुआ, नाम संगी सो मन ना बसायो, छोड़ जाहे वाहु चित लायो, सो संचयो चित भूखत

सब किस तिसके ग्रह मह आया, टोडी महला पंजवा घर चौथा दुपदे, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, रूढ़ो मन हर

रे महाराज रो गात बाहू स्यो लुबड़ो ने भागड़ो पाहे संजोयो रे सुन मन सीख साधु जन सगलो थारे सगले परास्त मिट्यो रे जाको लहणो महाराज री गाठड़ियो जन नानक गर्भास ना पौड़ियो रे टोडी महला पंजवा घर पंजवा दुपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद ऐसो गुण मेरो प्रभ जी कीन पंच दुख अर अंग रोग एह तन ते सगल दूर कीन रहाउ बंधन तोर छोर बिख्याते गुर को शब्द मेरे ही अरे दीन रूप अनरूप मोरो कछ ना बिचार्यो प्रेम गहयो मोहे हर रंग पीन पेखियो लालन पाठ बीच खोए अनद चिता हरखे पतीन तिस ही को ग्रहो सोई प्रभ नानक

धर्म जप एही राम नाम निर्मल है रीत रहाउ प्राण आधार जीवन धन मोरै देखन को दर्शन प्रभ नीत बात घाट तोसा संग मोरै मन अपने को मैं हर सखा कीत संत प्रसाद भये मन निर्मल कर कृपा अपने कर लीत सिमर सिमर नानक सुख पाया आद जुगाद भगतन के मीत टोडी महला पंजवा प्रभ जी मिल मेरे प्राण बिसर नहीं निमख ही रेते अपने भगत को पूर्ण दान रहाओ खोबो परम राख मेरे प्रीतम अंतर जामी सुगड़ सुजान कोट राज नाम धन मेरे अमृत दृष्ट तारुह प्रभ मान आठ पहर रसना गुण गावे जस पूर अगावे।

सदा हजूर, जो तुमरा जस गावह करते, से जन कभो ना मरते चूर। तंद बंद बिन से माया के, साधु संगत मिटे बिसूर। सुख संपत भोग इस जी के, बिन हर नानक जाने कूर।

रंजन करते मन तन ते सब किल विखनास पूर्ण पार ब्रह्म सुख दाते अबनासी बिमल जा को जास संत प्रसाद मेरे पूर मनोरथ कर कृपा भेटे गुण तास शांत सहज सुख माने उपजेव कोट सूर नानक प्रगास टोडी महला पंजवा हर हर पतत पावन जी प्राण मान सुख दाता अंतर जामी मन को पावन रहाओ सुंदर सुगड़ चतुर सब बेता रिददास निवास भगत गुण गावन निर्मल रूप अनूप स्वामी कर्म भूम बीजन सो खावन विस्मन विस्म पै

बल जावन टोडी महला पंजवा माई माया छल त्रिण की अगन मेघ की छाया गोविंद भजन बिन हर का जल रहाओ छोड़ सियानप बहु चतुराई दोए कर जोड़ साध मग चल सिमर स्वामी अंतर जामी मनुख दे का एहो उत्तम फल वेद बखियान करत साधु जन भागहीन समझत नहीं खल प्रेम भगत राचे जन नानक हर सिमरन दहन भय मल।

कोट फला दर्शन गुर दीठे रहाओ, गुण गावत अच्युत अवनासी, काम क्रोध बिनसे मद टीठे, अस्थिर भये साच रंग राते, जन्म मरण बहुर नहीं पीठे, बिन हर भजन रंग रस जेते, संत दयाल जाने सब झूठे, नाम रतन पायो जन नानक, नाम बिहून चले सब मूठे, टोडी महला पंजवां, साध संग हर हर नाम चितारा, सहज आनंद हुए दिन राती, अंकुर भलो हमारा रहाओ, गुरपुरा भेट्यो वड भागी, जाको अंत न पारा वारा, कर गह काढ़ लियो जन अपना, बिख सागर संसारा, जन्म मरण काटे गुर बचनी, बहुड़ना संकट द्वारा, नानक शरण गही स्वामी की, पुनः पुनः नमस्कारा, टोडी महला पंजवा, माई मेरे मन को सुख, कोट आनंद राज सुख भुगवे, हर सिमरत बिनसै सब दुख रहाओ, कोट जन्म के किल विख नास है, सिमरत पावन तन मन सुख, देख स्वरूप पूर्ण भई आसा, दर्शन भेटत उतरी भुख, चार पदार्थ अष्ट महासिद्ध, काम तेन पार जात हर हर रुख, नानक शरण गही सुख सागर, जन्म मरण फिर गर्भ ना दुख, टोडी महला पंजवा, हर हर चरण हृदय उरतारी, सिमर स्वामी सतगुर अपना, कार्य सफल हमारे रहाओ, पुन दान पूजा परमेश्वर, हर कीरत तत बिचारी, गुण गावत अतुल सुख पाया, ठाकुर अगम अपारी, जो जन पार ब्रह्म अपने कीने, तिनका बहुर कछ ना बिचारी, नाम रतन सुन जप जप जीवा, हर नानक कंठ मजारी, टोडी महला नौवां, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, कहो कहां अपनी अदमाई।

ही कब हूँ होत जो संग सहाई मगन रहे हो माया मैं निस दिन छुट्टी ना मन की काई कह नानक अब नाही अंत गत बिन हर की सरनाई टोडी बाणी भगतां की एक ओंकार सतगुर प्रसाद कोई बोले निर्वा कोई बोले दूर जल की माछली चरे खजूर काए रे बकवाद लायो जिन हर पायो तिन्ह छपायो रहाओ पंडित होए कै बेद बखाने मूर्ख नाम देव रामह जाने कौन को कलंक रहो राम नाम लेत ही पतत पवित भये राम कहत ही रहाओ राम संग नाम देव जन को प्रतज्ञा आई एकादशी बरत रह काहे को तीर्थ जाई भणत नाम देव सो कृत समत भये गुरमत राम कह को ना बैकुंठ गए तीन संदे खेल आछै रहाओ कुंभार के घर हांडी आछै राजा के कर सांडी गो बामन के कर रांडी आछै रांडी सांडी हांडी गो बाणिये के कर हींग आछै पैसर मातै सींग गो देवल मदे लीग आसै लीग सीग हीग गो तेली कै कर तेल आछै।

राग बैराड़ी महला चौथा कर पहला दुख दे एक ओंकार सतगुरु प्रसाद सुन मन अकथ कथा हर नाम रिद्ध बुद्ध सिद्ध सुख पावह भज गुरमत हर राम राम रहाओ नाना ख्यान प्राण जासे उत्तम खट दर्शन गावह राम शंकर करोड़ ते तीस त्यायो नहीं जान्यो हर मरमाम सुर नार गण गंधर्व जस गावह सब गावत जेत उपाम नानक कृपा करी हर जिनको ते संत भले हर राम बैराड़ी महला चौथा मन मेल संत जना जस गायो हर हर रतन रतन हर नीको गुर सत गुर दान दिवायो रहाओ इस जन को मन तन सब देव जिन हर हर नाम सुनायो तन माया संपैत इस देव जिन हर मीत मलायो खिन किंचित कृपा करी जगदीशर तब हर हर हर जस त्यायो जन नानक को हर पेठे स्वामी दुख हम मैं रोग गुआयो बैराड़ी महला चौथा हर जन राम नाम गुण गावे जे कोई निंद करे हर जन की अपना गुण ना गवावे रहाओ जो

हिंस तारा कोटक तंत्र के पाप सब खोवे हर पव जल पार उतारा रहाउ काया नगर बस्त हर स्वामी हर निर्भव निर्वैर निरंकारा हर निकट बसत कस नदर ना आवे हर लादा गुर विचारा हर आपे साहु सराफ रतन हीरा हर आप की आपा सारा नानक जिस कृपा करे सो हर नाम विहाजे सो साहु सच्चा बनजारा बैराड़ी महला चौथा जप मान हर निरंजन निरंकारा सदा सदा हर त्याय सुखदाता जाका अंत न पारा वारा रहाउ अगन कुंट मह उर्द लिव लागा हर राख उदर मंजारा सो ऐसा हर सेव हो मेरे मन हर अंत शिडावन हारा जा कै हृदय बसिया मेरा हर हर तिस जन को करहो नमस्कारा हर कृपा ते पाइय हर जप नानक नाम आधारा बैराड़ी महला चौथा जप मन हर हर नाम नित त्याई

सा व्रत पूजा जित हर स्यो प्रीत लगाए, बिन हर प्रीत होर प्रीत सब झूठी, एक खिन मैं

प्रसाद यक अर्ज गुप्तम पेश तो दरगोस पुन करतार हक्का कबीर करीम तू बेऐब परवदगार दुनिया मुकामे फानी तहकीक दिल दानी मम सर मुए अजराइल गिरफ तह दिल हेच ना दानी रहाउ जन पिसर पदर बिरादरा कसनेस दस्तंगीर आखर बेअप्तम कस ना दारद चू स्वद तकबीर सब रोज गस्तम दर हवा कर देम बदी खयाल गाहे नाने की कार करदम मम ईचनी अहवाल बद बखत हम चोब खील गाफिल बे नजर बेबाक नानक बुगोयद जन तुरा तेरे चाकरा पाखाक तलंग महला पहला कर दूजा।

कर कासा दर्शन की भूख, मैं दर मांगो नीता नीत, तौ दर्शन की करो समाए, मैं दर मांगत भीख्या पाए। रहाऊ केसर कुसुम मृग मैं हरना, सर्ब शरीरी चढ़ना, चंदन भगता ज्योत अनेही, सर्वे परमल करना, के पट भांडा कह ना कोई, ऐसा भगत वर्ण मह होई, तेरे नाम निवे रहे लिव लाई, नानक तिन दर पीछिया पाई। तलंग महला पहला कर तीजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, एह तन माया पाया प्यारी, लीतड़ा लभ रंगाई, मेरे कंपना पावे चोलड़ा प्यारी, क्यों धन सीजै।

पाप की जंज लह काबल हो ताया, जोरी मंगै दान वे लालो, शर्म धर्म दोहे शप खलोए, कूड़ फिरै परदान वे लालो, काजियां बामणा की गल थकी।

नानक कर्म प्राप्त होई, जिन जपया तिस को बलिहार, तिस कै संग तरै संसार, कहो नानक प्रभ लोचा पूर। संत

नाराविया सा पछोरे तानी हाथ पछोड़ै सिर धुनै जब रहण विहानी पछो तावा ना मिलै जब चूकैगी सारी तां फिर प्यारा रावी है जब आवेगी वारी कंतली।

आपे हार एक रंग है आपे बहु रंगी जो तिस पावे नानका साई गल चंगी तलंग महला नौवा काफी एक ओंकार सतगुर प्रसाद चेतना है तू चेत लै निस दिन मैं प्राणी छिन छिन औध बेहात है फूटे घट ज्यो पानी रहाओ हर गुण काहे ना गावहि मूर्ख अज्ञाना झूठे लालच लाग कै नह मरन पछाना अजहू कछ बिगरियो नहीं जो प्रभ गुण गावै कहो नानक ते भजन ते निर्भय पद पावै तलंग महला नौवा जाग ले हो रे मना जाग ले कहां गाफल सोया जो तन उपजिया संग ही सो पी संग ना होया रहाउ मात पिता सुत बंद जन हित जा स्यो कीना जियो छूट्यो जब देते डार अगन मैं दीना जीवत लो व्यवहार है जग कौ तुम जानो नानक हर गुण गाए लै सब सुफन समानो तलंग महला नौवा हर जा

संपत रथ धन राज सिउ अतनेहो लगायो काल पास जब गल परी सब भयो परायो जान बूझ कै बावरे तैं काज बिगारियो।

तलंग बाणी भगतां की कबीर जी एक ओंकार सतगुर प्रसाद वेद कतेब इफतरा पाई दिल का फिकर ना जाय टुक दम करारी जो करहो हाजिर हजूर खुदाई बंदे खोज दिल हर रोज ना फिर परेशानी माए ये जो दुनिया सिहर मेला दस्तगीरी ना ही रहाओ दरोग पड़ पड़ खुशी हुए बेखबर बाद बकाए हक सच खालक खलक मियानी स्याम मूरत नाए असमान मियानी लिहंग दरिया गुसल कर

नाम जपहु तब मथिय इन बिद अमृत पावहु। मन संपट जित सत सर नावन पावन पाती तृप्त करे। पूजा प्राण सेवक जे सेवे इन बिद साहि।

नानक नाम संभाल तू बदा छुट है जित सुई महला पहला जप तप का बंद बेड़ला।

साचा खसम हमारा सूही महला पहला जिनकों भांडै भाऊ तिना सवारसी सूखी करै पसाऊ दुख वसारसी सहसा मूले नाही सर पर तारसी तिना मिलिया गुरे आए जिनको लिखिया अमृत हर का नाउ देवै दिखिया चल है सतगुर भाई पवह ना भीखिया जा को महल हजूर दूजे निवै किस दर दरवाणी नाही मूले पुछ तिस छुट्टै तां कै बोल साहिब नदर जिस कले आने आप जिस नाही दूजा मतै कोई ताई उसारे साज जाने सब सोए नाओ नानक बख्शीस नदरी कर्म होए सूही महला पहला भांडा हच्छा सोए जो तिस भावसी भांडा आत्मलीन तोता हच्छा ना होए सी गुरु द्वारे होए सोजी पाए सी एत द्वारे तोए हच्छा होए सी मैले हच्छे का विचार आप वरताए सी मत को जाने जाए अग्गे पाए सी जे कर्म कमाए तेहा हुए सी अमृत हर का नाउ आप वरताए सी चलिया पत स्यों जन्म सवार वाजा वाए सी मानस क्या विचारा तेहो लोक सुना।

मूंड मडाए जोग न सिंगी वाई है अंजन माहे निरंजन रही है जोग जोगत इव पाई है गली जोग ना हुई एक दृष्ट कर सम सर जान।

जोगना देश दसंतर भवे जोगना तीर्थ नाई है अंजन माहे निरंजन रही है जोग जुगत इव पाई है सतगुर भेट है ता सहसा टूट है तावत वर्ज रहाई है निचार चरै सहज धुन लागे कर ही परचा पाई है अंजन माहे निरंजन रही है जोग जुगत इव पाई है नानक जीवत आमर रही है ऐसा जोग कमाई है वाजे बाज हो सिंगी वाजे तो निर्भउ पद पाई है अंजन माहे निरंजन रही है जोग जुगत तो पाई है सूही महला पहला कौन तराजी कवन तुला तेरा कवन सराप बुला।

हर हर करह नित कपट कमावह, हृदय शुद्ध ना हुई अन दिन कर्म करह बहुतेरे, सुपने सुख ना हुई ज्ञानी गुर बिन भगत ना होई, कोरे रंग कदे ना चढ़े जे लोचे सब कोई रहाव, जप तप संयम वर्त करे पूजा मनमुख रोग ना जाई, अंतर रोग महा अभमाना दूजे पाए।

गुण नाम दृढ़ाई, हम हर प्रभ प्यारा ढूंढ टुंडाई, सत संगत मिल हर रस पाई, तुर मस्तक लेख लिखे हर पाई, गुरु नानक तुठा मेले हर पाई, सूही महला चौथा, हर कृपा करे मन हर रंग लाई, गुरमुख हर हर नाम समाई, हर रंग राता मन रंग माणी, सदा आनंद रहे दिन राती, पूरे गुर कै शब्द समाने रहाओ, हर रंग को लोचे सब कोई, गुरमुख रंग चलूला होय, मनमुख मुग्ध नर कोरा होय, जेसो लोचे रंग ना होय कोई, नदर करे ता सतगुर पावे, नानक हर रस हर रंग समावे, सूही महला चौथा, जिहवा हर रस रही अगाई, गुरमुख पीवे सहज समाई, हर रस जन चाखो हो जे पाई, तो कत अंत साध लुभाई रहाओ, गुरमत रस राखो उरतार, हर रस राते रंग मरार, मनमुख हर रस चाखिया ना जाई, हौमे करे बहुती मिले सजाई, नदर करे ता हर रस पावे, नानक हर रस

नीच जात हर जपतिया उत्तम पदवी पाई। पुछो बिदर दासी सुतै किसन उतरिया घर जिस जाई। हर की अकथ कथा सुनो जन पाई, जित सहसा दुख भूख सब लह जाय रहाउ। रविदास चमार पुस्तक करे हर कीरत निमख एक गाय। अतत जात उत्तम भया चार वर्ण पए पागे आए। नाम दे प्रीत लगी हर सेती लोक शीपा कह बलाय। खतरी ब्राह्मण पेठ दे छोडे हर नाम दे लिया मुख लाय। जितने भगत हर सेवका मुख अठ सत तीरथ तिन तिलक कढ़ाय। जन नानक तिन को अन दिन परसे जे कृपा करे हर राय। सूही महला चौथा तिनी अंतर हर अराध्या। जिनको तुर लिखिया लिखत लिलारा तिनकी बखीली कोई क्या करे। जिनका अंग करे मेरा हर करतारा हर हर त्याए मन मेरे मन त्याए हर। जन्म जन्म के सब दुख निवारण हारा रहाउ। तुर भगत जना को बख्शिया हर अमृत भगत भंडारा। मूर्ख हो ऐसो उनकी रीस करे तिस हलत पलत।

इशारा जिस घर विरती सोई जाने जगत गुरु नानक पूछ करो बिचारा चहो पीढ़ी आद जगाद बखीली किने ना पायो हर सेवक पाए निस्तारा सूही महला चौथा जिथे हर आराधी है तिथे हर मित सहाई गुर कृपा ते हर मन वसै होरत बिद लया न जाई हर तन संचियै पाई जे हलत पलत हर होए सखाई रहाओ सत संगती संग हर तन खटियै होरत है होरत उपाए हर तन कितै ना पाई हर रतन का वापारिया हर रतन तन विहाजे कच्चे के वापारिये वाक हर तन लया ना जाई हर तन रतन जवे।

अहमान जो बिन प्रतीति कपटी कूड़ी कूड़ी अखी मीट दे उनका उत्तर जाएगा झूठ गमान। जेता जियो पिंड सब तेरा तू अंतर जामी पुरख भगवान। दासन दास कह

स्वामी मैं तुदे आगे अरदास मैं होर थाओ नाही जिस पै करूं बेनंती मेरा दुख सुख तुझ ही पास विचे धरती विचे पानी विच काष्ट अगन तरीजै बकरी सिंह इक तै थाए राखे मन हर जप भ्रम पौ दूर कीजै हर की वडियाई देखो संतो हर निमाणिया मान दिवाए ज्यों धरती चरण तले ते ऊपर आवै त्यों नानक साध जना जगत्यान सब पैरी पाए सूही महला चौथा तू करता सब किसे आपे जाने है क्या तुद पह आख सुनाई है बुरा भला तुद सब किस सूझै जेहा को करे तेहा को पाईऐ मेरे साहिब तू अंतर की बिद जाने है बुरा भला तुद सब किस सूझै तुद भावै तिवें बला वह रहाओ सब मोह माया शरीर हर किया विच देही मनुख भगत कराई एक ना सतगुर मेल सुख देव है एक मनमुख धंद पिटाई सब को तेरा तू सबना का मेरे करते तुद सबना सिर लिखिया लेख जे ही तू नदर करह तेहा को हुवै बिन नदरी नाही को भेख तेरी वडियाई तू है जान है सब तुदनो नित त्याई

जिनके अंतर वस्या मेरा हर हर तिनके सब रूप गवाई ते मुक्त भये जिन हर नाम त्याया तिन पवित परम पद पाई मेरे राम हर जन अरोग भये गुरबचनी जिन्ना जपया मेरा हर हर तिनके हम मैं रोग गए रहाउ ब्रह्मा विष्णु महादेव त्रै गुण रोगी विच हम मैं कार कमाई जिनकी ये तिसह ना चेतह बपड़ी हर गुरमुख सूजी पाई हम मैं रोग सब जगत ब्यापिया तिनको जन्म मरण दुख पारी गुर प्रसादी को विरला छूटे तिस जन को हों बलिहारी जिन शिष्ट साजी

ज्यो हर पावै त्यो रखिए मेरे हर जियो सब को तेरे वस असा जोर नाही जे किछ कर हम साक है।

खुद श्रेष्ठ सब साजी, कोई सेवा करियो जे किछ कीता हुआ। इकना सतगुर मेल तू बुझावे, एक मनमुख करह से रोवै।

मालत हुई। कहो नानक मेरी परम गत हुई, सूही महला पंजवा कीता लोड़ है सो प्रभ होई। तुझ बिन दूजा नाही कोई, जो जन सेवे तिस पूर्ण काज, दास अपने की राखो लाज। तेरी शरण पूर्ण दयाला, तुझ बिन कवन करे प्रतपाला। रहाउ जल थल महियल रहया भरपूर, निकट वसै नाही प्रभ दूर। लोक पतियारे कछु ना पाइए, साच लगे ता हमें जाइए। जिसनो लाए लए सो लागे, ज्ञान रतन अंतर तिस जागे। दुर्मत जाए परम पद पाए, गुर प्रसादी नाम ते आए। दोए कर जोड़ करो अरदास, तुद भावे ता आणहि रास। कर कृपा अपनी भगती लाई, जन नानक प्रभु सदा त्याई। सूही महला पंजवां, तन सुहागण जो

आवे सा सुहागणी अंक समावे गर्भ गहेली महल ना पावे फिर पछतावे जब रहण बिहावे कर्महीन मन।

ला पंजवा गृहवास गुर की ना हो घर की नार दस दासी कर दीनी पतार सगल समगरी मैं घर की जोड़ी आस प्यासी फिर को लोड़ी कवन कहां गुणकंत प्यारी सुगड़ स्वरूप दयाल मरारी रहाउ सत शिंगार पहु अंजन पाया अमृत नाम तंबोल मुख खाया कंगन बस्त्र गहने बने सुहावे तन सब सुख पावे जा फिर घर आवे गुण कामन कर कंत रिजाया वस कर लीना गुर भरम चुकाया सब ते ऊंचा मंदर मेरा सब

जन नानक पिर तन मिल सुख पाया सूही महला पंजवा उमके ओहियो मिलन प्रभ ताई खोजत चरयो देखो प्रिय जाई सुनत संदेसरो प्रिय ग्रह सेज बछाई प्रम प्रम आयो तो नदर ना पाई किन बेदही अरो तीरै निमानो मिल साजन हौ तुझ कुर्बानो रहाओ एका सेज विशी तन कंता।

सी बहुत दिन लागी, देश दसंतर मैं सगली झागी, खिन रहन ना पावूं बिन पग पागी, वे कृपाल प्रभ मिलह सुभागी, पयो कृपाल सतसंग मलाया, बूझी तपत करह फिर पाया, सगल शिंगार हुन मुझे सुहाया, कहो नानक गुर परम चकाया, जह देखा तह पिर है पाई।

आता, मन नहीं प्रीत कह मुख राता, कहो नानक प्रभ बिनो सुनीजै, कुचल कठोर कामी मुक्त की जय, दर्शन देखे की वडियाई, तुम सुख दाते पुरख सुभाई, रहाऊ दूजा सूही महला पंजवां, बुरे काम को ऊठ खलोया, नाम की बेला पै पै सोया, अवसर अपना बूझे ना याना, माया मोह रंग लपटाना रहाऊ, लोभ लहर को बिगस फूल।

देखते अंधे छोड़ जाहे झूठे सब तंदे रहाओ। कहो नानक प्रभ बख्श करी जय कर कृपा मुहे साध संग दी जय तो किस पाई जो।

देह मनुख अभमानी स्वाद बाद ईरख मद माया इन संग लाग रतन जन्म गवाया दुख भंजन जग जीवन हर राया सगल त्याग नानक सरनाया सूही महला पंजवा पेखत चाखत कहियत अंधा सुनियत सुनिय नाही निकट वस्त कौ जाने दूरे पापी पाप कमाही सो किस कार जित छुटह परानी हर हर नाम जप अमृत बानी।

पंजवां जीवत मरै बुझै प्रभ सोई तिस जन कर्म प्राप्त होए सुन साजन यों दुत्तर तरिया मिल साधु हर नाम उच्चरिय रहाउ एक बिना दूजा नहीं जानै घट घट अंतर पार ब्रह्म पछानै जो किछ करै सोई भल मानै आद अंत की कीमत जानै कहो नानक तिस जन बलिहारी जां कै हिरदै वसै मरारी सूही महला पंजवां गुर परमेश्वर करनै हार सगल सिष्ट कौ दे आधार गुर के चरण कमल मन त्याए दुख दर्द इस तन ते जाए रहाउ भव जल डूबत सतगुर काढ़ै जन्म जन्म का टूटा गांडै गुर की सेवा करो दिन रात सुख सहज मन आवै शांत सतगुर की रेन वडभागी पावै नानक गुर कौ सद बल जावै सूही महला पंजवां गुर अपने ऊपर बल जाइए आठ पैर हर हर जस गा

किल बिख जाही कर कृपा प्रभ दीन दयाला नानक मांगे संतर वाला सुई महला पंजवा दर्शन।

साजन सुत बंधप पाई, जत कत पीखो हर संग सहाय, जत मेरी पत मेरी धन हर नाम, सूख सहज आनंद विश्राम रहाव, पार ब्रह्म जप पहर सलाह, कोट आवद तिस बेदत नाही, हर चरण सरन गर कोट हमारे, काल कंटक जम तिस ना बदारे, नानक दास सदा बलिहारी, सेवक संत राजा राम मरारी, सूही महला पंजवां, गुण गोपाल प्रभ के नित गाहा, आनंद बनोद मंगल

मन तूर बछाह जन्म जन्म के किल विखलाह मन तन प्राण जियो अरपाह हर सिमर सिमर मान मोह कटाह दीन दयाल करहु उत्साह नानक दास हर सरन समाह सुई महला पंजवा बैकुंठ नगर जहां संत वासा प्रभु चरण कमल रिद माहि निवासा सुन मन तन तुझ सुख दिखलावू हर अनक बिंजन तुझ भोग पुंचावू रहाऊ अमृत नाम पुंच मन माही आचर्ज साध ताके बरनी ना जाही लोभ मुआ तृष्णा बुझ थाकी पार ब्रह्म की शरण जन ताकी जन्म जन्म के भय मोह निवारी नानक दास प्रभ कृपा तहारी सूही महला पंजवा अनक बींग दास के पर हरिया कर कृपा प्रभ अपना करिया तुम्हें छडाए लियो जन अपना उर्ज परियो जाल जग सुपना रहाओ पर्वत दुख महा बिकराला किन मैं दूर किए दयाला सोग रोग विपत अत भारी दूर पई जप नाम मरारी दृष्ट धार लीनो लड़ लाए हर चरण गहे नानक सरनाए सूही महला पंजवा दीन छडाए दुनी जो लाए दुही सराई खुनामी कहाई ज्योत सुभावै सो परवान अपनी कुदरत आपे जान रहा सच्चा धर्म पुन भला कराए दीन कै तुसै दुनी ना जाए सर्ब निरंतर को जागै जित जित लाया तित तित को लागै अगम अगोचर सच साहिब मेरा नानक बोलै बुलाया तेरा सुई महला पंजवा प्रातः काल हर नाम उचारी ईत ऊत की ओट सवारी सदा सदा जपिए हर नाम पूर्ण होवह मन के काम रहाव प्रभ अविनाशी रैन दिन गाऊ जीवत मरत निश्चल पावह थाऊ सो साहु सेव जित तोत ना आवै खात खर्चत सुख आनंद विहावै

तेरा जन की भूख तेरा नाम आहार तू दाता प्रभ देवनहार राम रमत संतन सुख माना नानक देवनहार सुजाना सुई महला पंजवा बहती जात कदे दृष्ट ना धारत मिथ्या मोह बंद है नित पारच माधवे भज दिन नित रहनी जन्म पदार्थ जीत हर सरनी रहाओ करत विकार दो कर चारत राम रतन रिद तिल नहीं धारत परन पोखण संग औद बेहानी जय जगदीश की गत नहीं जानी सरन समराते अगोचर स्वामी।

सिमर रतनागर सिमर सिमर जीवा नारायण दुख रोग सोग सब बिन से गुरपूरे मिल पाप तजायन रहाउ जीवन पदवी हर का नाउ मन तन निर्मल साच सुआउ आठ पहर पार ब्रह्म त्याई है पूर्व लिखित होए ता पाई है।

दास हर सेती राते राम रसायण अन दिन माते बाहां पकर प्रभ आपे काढे जन्म जन्म के टूटे गांडे उधार स्वामी प्रभ कृपा तारी नानक दास हर सरन द्वारी सूही महला पंजवा संत प्रसाद निश्चल घर पाया सर्ब सुख फिर नहीं डोलाया गुरु ते आए हर चरण मन चीने ताते करता असथर कीने रहाउ गुण गावत अचुत अबनासी ताते काटी जम की पासी।

महला पंजवा दर्शन कौ लोचै सब कोई पूरे भाग प्राप्त होई रहाउ श्याम सुंदर तज नींद क्यों आई महामोहनी दूता लाई प्रेम बशोहा करत कसाई निर्दय जंत तिस दया ना पाई अनक जन्म बीतियन परवाई घर वास ना देवै दुत्तर माई दिन रैन अपना किया पाई किस दोष ना दीजै किरत पवाई सुन साजन संत जन पाई चरण सरन नानक गत पाई राग सूही महला पंजवा घर चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद पली सुहावी छापरी जा मह गुन गाय कित ही कामना धौल हर जित हर बिसराय रहाओ अनद गरीबी साध संग जित प्रभ चेते आए जल जाओ एहो बडपना माया लपटाई पीसन पीस ओढ़ कामरी सुख मन संतोख आए ऐसो राज ना कितै काज जित नह तृपताई नगन फिरत रंग एक कै ओहो शोभा पाई पाठ पटंबर बिरथिया जेह रच लोभाई सब किस तुमरै हाथ प्रभ आप करे कराई सास सास सिमरत रहा नानक दान पाई सूही महला पंजवा हर का संत प्राण धन तिसका पनेहारा भाई मीत सुत सगल ते जी हूं ते प्यारा रहाउ केसा का कर बीजना संत चौर टलावो शीस निहारो चरण तल धूर मुख लावो मिष्ट बचन बेनती करो दीन की न्याई ताज अवमान सरनी परो हर गुण निद पाई।

को सुखी ताके पाछे जाऊं छोड़ जाहे जो सगल कौ फिर लपटाऊं करहो कृपा करनापति तेरे हर गुण गाओ नानक की प्रभ बेनती साध संग समाऊं राग सूही महला पंजवा घर पंजवा पड़ताल एक ओंकार सतगुर प्रसाद प्रीत प्रीत गुरिया।

आया, पुरुषै आया, कृपा आया, ज्यो पावै त्यो राखु स्वामी, मार्ग गुरह पठाया रहाऊ, महा दुत्तर माया, जैसे पवन चलाया, सुन सुन ही डराया, करो धर्म राया, गृह अंध कुपाया, पावक सगराया, गही ओट सधाया, नानक हर त्याया, अब मैं पूरा पाया, राग सूही महला पंजवा कर छेवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद।

तेरा पार ब्रह्म तेरिया चरना कहो बलिहारा राग सूही महला पंजवा कर सतवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद तेरा पाना तू है मनाई

करते का निमक सिमरत जित छूटै संतो सागर पार उतरी है। जे को बचन कमावै संतन का सो गुर प्रसादी तरियै रहाओ। कोट तीरथ मज्जन इशनाना इस कल मह मैल परी

जल थल मही अल सोई रहाव। कोट अपराधी संत संग उदर है, जम ता कै नेड़ ना आवे। जन्म जन्म का बिछड़िया हुवे, तिन हर स्यों आन मिलावे। माया मोह परम पहु काटे, संत सरण जो आवे। जेहा मनोरथ कर आराधी, सो संतन ते पावे। जन की महिमा केतक बरनऊ,

प्रवासा तुमरा जप नाम तुम्हारा उदरे रहाओ। अंधकूप ते काड लिए तुम आप भये कृपाला। सार संभाल सर्ब सुख दिए आप करे प्रतपाला। अपनी नदर करे परमेश्वर बंधन काट छड़ाई। अपनी भगत प्रभ आप करा।

नानक दया करी सुख दाता टिटिया सतगुर पूरा सूही महला पंजवा जब कसना सीओ तब क्या करता कमन कर्म कर आया।

चरण धूड़ तेरे जन की होवा, तेरे दर्शन कौ बल जाई, अमृत बचन हृदय उर धारी, तौ कृपा ते संग पाई, अंतर की गत तुद पह सारी, तुद जेवड़े अवर ना कोई, जिसनो लाए लह सो लागै,

स्वामी जिनका जन्म मरण दुख नासा तेरी बख्शना मेटे कोई सतगुर का दिलासा नाम ते आयन सुख फल पायन आठ पहर आराध है तेरी शरण तेरे परवास है पांच दुष्ट लै साध है ज्ञान ध्यान किस कर्म न।

राग सूही अष्टपदियां महला पहला कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद सब अवगुण मैं गुण नहीं कोई क्यों कर कंत मलावा होई ना मैं रूप ना बंके नैना ना कुल ढंग ना मीठे बैना रहाओ सहज शिंगार कामन कर आवे ता सुहागण जा कंत पावे ना किस रूप ना रेखिया काई अंत ना साहिब सिमरिया जाई।

अब निद पाई अनक जन्म बिछरत दुख पाया कर गै ले हो प्रीतम प्रबराया भणत नानक सहो है पी होसी जय पावे प्यारा तैरै वेसी सूही महला पहला कर नौवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद कच्चा रंग कसुंभ का थोड़ड़िया दिन चार जी हो विण नावै भ्रम भुलिया।

सच्चे की लिव उबरै बक्षे बक्षण हार जियो अनको की जय मितड़ा खाक रल मर जाए जियो बहु रंग देख पुलाया

ना पाल जियो खिंचो तान विगुची है बुरा भला दुए नाल जियो बिन शब्द है पैर त्या सब जो ही जम काल जियो जिन कर कारण तारिया।

दसै मूर्ख मन समझाए आखों के तड़ा गुरमुख हर गुण गाए रंग रंगे तड़ा नित नित हृदय संभाल प्रीतम अपना जे चलै गुण नाल नाही दुख संतापना मनमुख भरम भुलाना ना तिस रंग है मरसी होए वडाणा मन तन भंग है गुर की कार कमाए लाहा घर आणिया गुरबाणी निर्वाण शब्द पछाणिया एक नानक की अरदास जे तुद भाव सी मैं दीजै नाम निवास हर गुण गाव सी सूही महला पहला ज्यों आरण लोहा पाए भन कढ़ाई है त्यों साकत जोनी पाए भवै पवाई है बिन बूझे सब दुख दुख कमावना हों मैं आवै जाए भरम भुलावना रहाओ तू गुरमुख रखण हार हर नाम ते आई है मेलह तुझ रजाए शब्द कमाई है

देही होवग खाक पमन उड़ाई है। एहो कित्तै घर औताक महल ना पाई है। देहो दीवी अंध कोर कब महाई है। गर्भ मुसै घर चोर किस रुआई है। गुरमुख चोर ना लाग हर नाम जगाई है। शब्द निवारी आग जोत दी पाई है। लाल रतन हर नाम गुरसुरत बुझाई है। सदा रह निह काम जे गुरमत पाई है। रात देह हर नाम मन वसाई है। नानक मेल मलाए जे तुद पाई है। सूही महला पहला मनो ना नाम वसार अहन सत्याई है। जो राखै कृपा धार तिवै सुख पाई है। मैं अंदले हर नाम लखती टोहनी रहो साहिब की टेक नामो है मोहनी रहाओ। जह देखो तह नाल गुर देखालिया अंतर बाहर पाल शब्द निहालिया। सेवी सतगुर पाए नाम निरंजना तुद पावै तिवै रजाए परम पौ भंजना जन्मत ही।

गुरमुख गावे गुरमुख बूजे गुरमुख शब्द बिचारी जियो पिंड सब गुरते उपजे गुरमुख कारज सुवारी मनमुख अंधा अंध कमावे बिख खटे संसारी माया मोहे सदा दुख पाए बिन गुर अत प्यारी सोई सेवक जे सतगुर सेवे चालै सतगुर पाई साचा शब्द सिफत है साची।

साचा, साचा शब्द सुनाई। गुरमुख काले गुरमुख खटे, गुरमुख नाम जपाए। सदा अलिपत साचे रंग राता, गुर कै सहज सुपाई। मनमुख सद ही कूड़ो बोले, बिख बीजै बिख खाए। जमकाल बादा तृष्णा दादा, बिन गुर कवन छिडाए। सच्चा तीरथ जित सत सर नावन, गुरमुख आप बुझाई। अठ सठ तीरथ गुर शब्द दिखाए, तित नातै मल जाए। सच्चा शब्द सच्चा है निर्मल, ना मल लगे ना लाए। सच्ची सिफत सच्ची सलाह, पूरे गुर ते पाए। तन मन सब किश हर तिस केरा, दुरमत

तृष्णा यज्ञ बुझाए, गुर कै शब्द राता सहजी माता सहजी रहे आसमाय। हर का नाम सत कर जाने, गुर कै

अलख न लख आ जाई मन मुख मुग्ध बूझै नाही बाहर पालन जाई सतगुर सेवे सदा सुख पाए सतगुर अलख दिता लिखाई काया अंदर रतन पदार्थ भगत परे भंडारा इस काया अंदर नौ खंड पृथ्वी हाट पट्टन बाजारा इस काया अंदर नाम नौ निद पाईए गुर कै शब्द विचारा काया अंदर तोल तलावे आपे तोलन हारा इहो मन रतन जवाहर मानक तिसका मोल अफारा मोल कित ही नाम पाईए नाही नाम पाईए गुर बिचारा गुरमुख होवै सो काया खोजै होर सब भरम भलाई जिसनो दे सोई जन पावै होर क्या को करे चतुराई काया अंदर भाउ भाउ वसै गुर प्रसादी पाई काया अंदर ब्रह्मा विष्णु महेशा सब ओपत जित संसारा सच्चै अपना खेल रचाया आवा गौण पासारा पूरे सतगुर आप दिखाया।

जो मर खाक थी, वाह मेरे साहिबा वाह, गुरमुख सदा सलाही है, सच्चा वे परवाह रहाओ, दुनिया केरी दोस्ती, मनमुख दज मरन, जमपुर बद्दे मारी है, वेला ना लाहन, गुरमुख जन्म सकार था, सच्चा शब्द लगन, आत्म राम परगासिया, सहजे सुख रहन, गुर का शब्द वसारिया, दूजे भाए रचन, तिसना भूख ना उतरे, अन दिन जलत फिरन, दुष्टा नाल दोस्ती, नाल संता वैर करन, आप डुबे कुटंब स्यों, सगले कुल डोबन, निंदा भली किसे की नाही, मनमुख मुग्द करन, मुह काले तिन निंदका, नरके घोर पवन, ए मन जैसा सेवह तैसा होवह, तेहे कर्म कमाए, आप बीज आपे ही खावना, कहना किशु ना जाए, महापुरखा का बोलना, हुए कितए पर थाए, कोई अमृत भरे भरपूर है, ऊना तिल ना तमाए, गुणकारी गुण संग्रह, अवरा अपदेसेन, सेवड भागी जे ऊना मिल रहे, अन दिन नाम लेन, देसी रिजक संवाहे, जिन उपाई मेधनी, एको है दातार सच्चा आप तनी, सो सच तेरे नाल है, गुरमुख नदर निहाल, आपे बख्शे मेल लए, सो प्रभ सदा संभाल, मन मैला सच निर्मला, क्यों कर मिलया जाए, प्रभ मेले ता मिल रहे, हम मैं शब्द जलाए, सो

मिलन जो सतगुर सेवन अंतर नव निध नाम है खान खर्चन ना निखुटे हर गुण सहज रवन ना ओए जन्म है ना मर है ना ओए दुख सहन गुर राखे से उभरे हर सिउ केल करन सज्जन मिले ना विछड़ है जे अन दिन मिले रहन इस जग मह विरले जानी है नानक सच लहन सूही महला तीजा हर जी सूखम अगम है कित बिद मिलिया जाय गुर कै शब्द भ्रम कटी है अचिंत वसै मन आय गुरमुख हर हर नाम जपन हौ तिन कै बलिहार नै मन हर गुण सदा रवन रहाउ गुर सरवर मान सरोवर है वडभागी पुरख लहन सेवक गुरमुख खोजिया से हंसले नाम लहन नाम त्याइन रंग सिउ गुरमुख नाम लगन तुर पूर्व होऐ लिखिया गुर भाणा मन लेन वडभागी घर खोजिया पाया नाम निदान गुरपूरै वे खालिया प्रभ आत्म राम पछान सबना का प्रभ एक है दूजा अवर ना कोए गुर प्रसादी मन वसै तित घट प्रगट होए सब अंतर जामी ब्रह्म है ब्रह्म वसै सब थाए मंदा किसनो आखिए शब्द वेखो हो लिवलाए बुरा भला तिचर आखदा जिचर है दोहो माहे गुरमुख एको बुझिया एक समाहे समाए सेवा सा प्रभ भावसी जो प्रभ पाए थाए जन नानक हर अरादिया गुर चरणी चित लाए राग सूही अष्टपदिया।

पीता तुझह अराधि, दुख पी तुझह त्याई। जे भुख दे ता इत ही राजा, दुख विच सूख मनाई। तन मन काट काट सब अर्पी, विच

धरी चरना कल सब धरती फिर मत पाई जे पास बहाल है ता तुझे अरादी जे मार कड है पी त्याई जे लोक सलाहे ता तेरी उपमा जे निंदै ता छोड़ ना जाई जे तुद वल रहै ता कोई केहो आखो तुद विसरे है मर जाई वार वार जाई गुरु ऊपर पै पैरी संत मनाई नानक विचारा भया दीवाना हर तौ दर्शन कै ताई चखड़ झांगी मीहो वरसै पी गुर देखण जाई समुंद सागर हुआ बहु खारा गुरसिख लंग गुर पह जाई ज्यो प्राणी जल बिन है मरता त्यो सिख गुर बिन मर जाई ज्यो धरती सोभ करे जल बरसै त्यो सिख गुर मिल बिगसाई सेवक का हुए सेवक वरता कर कर बिनहु बुलाई नानक की बेनंती हर पह गुर मिल गुर सुख पाई तू आपे गुर चेला है आपे गुर विच दे तुझह त्याई जो तुद सेव है सो तू है हो वह तुद सेवक पैज रखाई भंडार भरे भगती हर तेरे जिस भावे तिस देवाई जिस तू देहे सोई जन पाई होर निफल सब चतुराई सिमर सिमर सिमर गुर अपना सोया मन जागाई एक दान मंगै नानक बेचारा हर दासन दास कराई जे गुर झिड़के ता मीठा लागै जे बख्शे ता गुर वडियाई गुरमुख बोल है सो थाए पाए मनमुख किस थाए ना पाई पाला ककर वर्फ वरसै।

गुर सिख गुर देखन जाई सब दिन सरैन देखो गुर अपना विच अखी गुर पैर तराई अनेक अपाव करी गुर कारण गुर भावै सो थाए पाई रैन दिनस गुर चरण अरादी दया करहो मेरे साई नानक का जियो पिंड गुरु है गुर मिल तृप्ति अघाई नानक का प्रभ पूर रहो है जात का तत गुसाई राग सूही महला चौथा।

सुतियां गुर सलाहिया उठदियां पी गुर अलाव। कोई ऐसा गुरमुख जे मिले हौ ताके धुआं पाव। कोई ऐसा सज्जन लोड़ लहो मैं प्रीतम दे मलाए। सतगुर मिलिया हर पाया मिलिया सहज सुपाए। सतगुर सागर गुण नाम का मैं तिस देखन का चाऊ। हौं तिस बिन घड़ी ना जीवं बिन देखे मर जाऊं। ज्यों मछली बिन पानी है रह ना कितै उपाए। त्यों हर बिन संत ना जीवई बिन हर ना मैं मर जाए। मैं सतगुर सेती पिरहड़ी

गुर तुठा देव माए, मैं धर सच्चे नाम की, हर नाम रहा लिव लाए। गुर ज्ञान पदार्थ नाम है, हर नामो दे दृढ़ाए। जिस प्राप्त सोल है, गुर चरणी लागे आए। अका

प्रसाद मिथन मोह अगन शोक सागर कर कृपा उधर हर नागर चरण कमल सरनाए नारायण दीना नाथ भगत परायण रहाओ अनाथा नाथ भगत पै मेटन साध संग जम दूत ना भेटन।

आद मध अंत प्रभ सोई, नानक तिस बिन अवर ना कोई। राग सूही महला पंजवां, अष्टपदियां घर नौवां, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जिन जिठिया मन रहसी है, क्यों पाई है तिन संग जियो। संत सज्जन मन मित्र से, लाइन प्रभ स्यो रंग जियो। तिन स्यो प्रीत ना टुटे, कबहु ना होए भंग जियो। पार ब्रह्म प्रभ कर दया, गुण गावा तेरे नित जियो। आए मिलो संत सज्जना, नाम

मन बुठा निरंकार जियो तां का अंत न पाईऐ ऊंचा अगम अपार जियो जिस प्रभ अपना विसरै सो मर जम्मै लख वार जियो साच नेहो तिन प्रीतमा जिन मन बुठा आप जियो गुण सांझी तिन संग बसे आठ पहर प्रभ जाप जियो रंग रते परमेश्वरै बिनसे सगल संताप जियो तू करता तू करनहार तू है एक अनेक जियो तू समरथ तू सर्वमय तू है बुद्ध विवेक जियो नानक नाम सदा जपी भगत जना की टेक जियो राग सूही महला पंजवां अष्टपदियां घर दसवां काफी।

मोहे बाद अहंकार सर पर रुन्निया, सुख न पायन मूल नाम विशुन्निया, मेरी मेरी तार बंधन बंधिया, नरक सुर्ग अवतार माया तंदिया, सोदत सोदत सोद तत बिचारिया, नाम बिना सुख नाही सर पर हारिया, आवह जाहि अनेक मर मर जन्मते, बिन बूझे सब वाद जोनी भरमते, जिनको भय दयाल तिन साधु संग भया, अमृत हर का नाम तिनी जनी जप लया, खोज है कोट असंख बहुत अनंत के, जिस बजाए आप नेड़ा तिस हे, विसरना ही दातार अपना नाम देह, गुण गावा दिन रात नानक चाओ एह, राग सूही महला पहला कुचजी, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, मन कुचजी अम्मावन डोसड़े, हों क्यों सहो रावण जाऊं जियो, एक दू एक चढ़ंदियां कौन जाने मेरा नाऊं जियो, जिन्नी सखी सहो रावया ते अंबी छावड़ी एह जियो, से गुण मानना आमनी हों कै जी दोस त्रेऊं जियो, क्या गुण तेरे विथरा हों क्या क्या किन्ना तेरा नाऊं जियो, इकत टोल ना अंबड़ा हों सद कुरबान तेरे जाऊं जियो, सोइना रूपा रंगला मोती तै माणिक जियो, से वस्तु सह दितियां मैं तिन स्यों लाया चित जियो, मंदर मिट्टी संदड़े पत्थर की तेरा आस जियो, हों एनी टोली भुलियस तिस कंत ना बैठी पास जियो, अंबर कुंजा कुरलियां बाग बिहठे आए जियो, सात अन चली सोहरे क्या मुंह देसी अग्गे जाए जियो, सुती सुती चाल किया भुली वाकड़ी आस जियो, तै सह नालो मुतियस दुखा कू त्रियास जियो, तुद गुण मैं सब अवगणा एक नानक की अरदास जियो, सब राती सुहागनी मैं दुहागन काई रात जियो, सूही महला पहला सुचजी जा तू ता मैं सब को, तू साहिब मेरी रास जियो, तुदे अंतर हों सुख वसा तू अंतर साबास जियो, भाणे तखत वडाइया भाणे भीख उदास जियो, भाणे थल सिर सर्व है कमल फुले आकास जियो, भाणे भवजल लंघी है भाणे मंझ परियास जियो।

जियो, सोई दस उपदेसड़ा, मेरा मन अंत ना काहू जाए जियो। एहो मन तै कूडे वसा, मैं मार्ग देहो बताए।

प्रसाद हम कर साजने आए साचे मेल मलाए सहज मलाए हर मन पाए पंच मिले सुख पाया साई वस्त प्राप्त होई जिस सेती मन लाया अन दिन मेल भया मन मानिया कर मंदर सोहाई पंच शब्द तुन अनहद वाजी।

सुहाया कार्य शब्द सुवारी ज्ञान महारस नेत्री अंजन त्रिभवन रूप दिखाया सखी मिलो रस मंगल गावो हम घर साजन आया मन तन अमृत भिन्ना अंतर प्रेम रतन्ना अंतर रतन पदार्थ मेरे परम तत् विचारू जंत भेख तू सफले उदाता सिर सिर देवन हारू तू जान ज्ञानी अंतर जामी आपे कारण कीना सुनो सखी मन मोहन मोहिया तन मन अमृत तीना आत्म राम संसारा साचा खेल तुम्हारा सच खेल तुम्हारा अगम अपारा तुद बिन कौन बुझाए सिद्ध साधक सियाने केते तुझ बिन कवन कहाए काल बिकाल पये देवानी मन राखिया गुर ठाई नानक अवगण शब्द जलाए गुण संगम प्रभ पाए राग सूही महला पहला कर तीजा।

गुण रवै मन भावै सोई साहिब सो सलाही है जिन कारण किया मैल लागी मन मैल है किने अमृत पिया माथे अमृत पिया इहो मन दिया गुर पह मोल कराया आपनड़ा प्रभ सहज पछाता जा मन साचै लाया जिस

प्रीतम सिंह मन मानिया हर सेती राता साहिब रंग राता सच की बाता जिन बिंब का कोट उसारिया पंच भू नायको आप सरंदा जिन सच का पिंड सवारिया हम अवगुण यारे तू सुन प्यारे तुद भावे सच सोई आवन जाना ना थी है साची मत हुई अंजन तैसा अंजी है जैसा पिर भावे समझै सूझै जानी जे आप जनावे आप जानावे मार्ग पावे आपे मनुआ लेवे कर्म सकर्म कराए आपे कीमत कौन अपेवे तंत मंत पाखंड ना जाना राम हृदय मन मानिया अंजन नाम तिसै ते सूझै गुर शब्दी सच जानिया साजन होने अपने क्यों पर कर जाही साजन राते सच के संगे मन माही साजन करह रलिया कर्म धर्म सबाया अठ तट तीर्थ पुन पूजा नाम साचा पहाया आप साजे थाप वेख तिसै भाणा पाया साजन रंग रंगी लड़े रंग लाल बनाया अंधा आगू जे थी क्यों पाधर जाने आप मुस्से मत होशी है क्यों राह पछाने क्यों राह जावे महल पावे अंध की मत अंधली बिन नाम हर के कसना सूझे अंध बूढ़ो तंधली दिन रात चानन चाओ उपजे शब्द गुर का मन वसै कर जोड़ गुर पह कर बेनंती राह पादर गुर दसै मन परदेसी जे थी सब देश पराया किस पै खोलो गंठड़ी दुखी भर आया जगत सबाया।

ना गुर शब्द सुनाया मन परदेसी जेती है सब देश पराया गुर महली घर अपने सो भरपुर लीना सेवक सेवा तां करे सच शब्द पतीना शब्दे पतीजे अंक पीजे सो महल महला अंतरे आप करता करे सोई प्रभ आप अंत निरंतरे गुर शब्द मेला तां सुहेला पा जंत अनहद बीना।

सुनहो जन भाई सुख सुह लड़ा हर त्यावो सुन हर गुण पीने सहज सुपाय गुरमत सहजे नाम त्याय जिनको तुर लिखिया तिन गुर मिलिया तिन जन्म मरण पौ भागा अंदरों दुरमत दूजी खोई सो जन हर लिव लागा जिनको कृपा कीनी मेरा स्वामी तिने अन दिन हर गुण गाए सुन मन पीने सहज सुपाय जुग मह राम नाम निस्तारा गुर ते उपजै शब्द विचारा गुर शब्द विचारा राम नाम प्यारा जिस कृपा करे सो पाए।

त्रिपट अगाही, हर गुण गाए सदा त्रिपतासी, फिर भूख न लागे आई, दह दिस पूज होए हर जन की, जो हर हर नाम त्याई, नान

गर्भ ना जूनी वासा ज्योति ज्योत मलाई सत समाई सच नाए परगासा जिन्नी सच जाता से सच्चे होए अन दिन सच त्याएन नानक सच नाम जिन हिरदय वसिया ना विछड़ दुख पाएन सच्ची बाणी सच्चे गुण गाव है तित कर सुहला होई राम निर्मल गुण साचे तन मन साचा विच साचा पुरख प्रभ सोई राम सब सच वरतै सचो बोले जो सच करै सो होई जह देखा तह सच पसरिया अवर ना दूजा कोई सच्चे उपजै सच समावै मर जन्मै दूजा होई नानक सब किछे आपे करता आप करावै सोई सच्चे भगत सो है दरबारी सचो सच वखाणे राम घट अंतरे साची बाणी साचो आप पछाणे राम आप पछाण है ता सच जान है साचे सोजी होई सच्चा शब्द सच्ची है सुभा साचे ही सुख होई साच रते भगत एक रंगी दूजा रंग ना कोई नानक जिस को मस्तक लिखिया तिस सच प्राप्त होई सूही महला तीजा जुग चारे तन जे भवै बिन सतगुर सुहाग ना होई राम निश्चल राज सदा हर केरा तिस बिन अवर ना कोई राम तिस बिन अवर ना कोई सदा सच सोई।

हर पाया, बिन हर नावे मुक्त ना होई। नानक कामण कंते रावे, मन माने सुख होई। सतगुर सेव धन बालड़िए, हर वर पावे है सोई राम। सदा होवे है सुहागणी, फिर मैला वेस ना होई राम। फिर मैला वेस ना होई, गुरमुख बूझे कोई। हम मैं मार पछाणिया, करनी कार कमावे, शब्द समावे अंतर एको जानिया। गुरमुख प्रभ रावे दिन राती अपना, साची सुभा हुई। नानक कामन पिर रावे अपना, रव रहे आ प्रभ सोई। गुर की कार करे धन बालड़िए, हर वर दे मलाए राम। हर कै रंग रती है कामन, मिल प्रीतम सुख पाए राम। मिल प्रीतम सुख पाए, सच समाए सच वरतै सब थाई। सच्चा शिंगार करे दिन राती, कामन सच समाई। हर सुख दाता

तब आप मलाई राम गुरमती घट चानन होआ प्रभ रव रहिया सब थाई राम प्रभ रव रहिया सब थाई मन वसाई पूर्व लिखिया पाया सेज सुखाली मेरे प्रभ पाणी सच सिंगार बनाया कामन निर्मल हमै मल खोई गुरमत सच समाई नानक आप मलाई करते नाम नवै निध पाई।

शब्द रवहु, अनदिन शब्द बजाए राम, अनहद शब्द बजाए हर जियो भारे आए, हर गुण गावह नारी, अनदिन भगत करह गुर आग्या, सा धन कंत प्यारी, गुर का शब्द वस्या घट अंतर, से जन शब्द सुहाई, नानक तिन घर सद ही सोहला, हर कर किरपा घर आई, भगता मन आनंद भया, हर नाम रहे लिवलाए राम, गुरमुखे मन निर्मल हुआ, निर्मल हर

हर मन तनु गुरमुख भीजै, राम नाम प्यारे राम, राम नाम प्यारे सब कुल उधारे, राम नाम मुख बाणी आवन जान रहे सुख पाया, कर अनहद सुरत सुमाणी, हर हर एको पाया हर प्रभ,

प्रभ अत ऊचा क्यों कर मिलिया जाए राम। गुर मेली बहु कृपा तारी हर कै शब्द सुपाए राम। मिल शब्द सुपाए आप गवाए रंग स्यों रलिया माणी। सेज सुखाली जा प्रभ पाया हर हर नाम सुमाणी। नानक सुहागन सावड भागी

इकना मन आधारू राम, इकना मन आधारू सिरजनहारू, वडभागी गुर पाया, घट घट हर प्रभ एको स्वामी, गुरमुख अलख लखाया, सहजे आनंद हुआ मन मानिया, नानक ब्रह्म बिचारू, घट घटे सबना।

हम पापी मुक्त कराया राम, पापी मुक्त कराए आप गुआए, निज कर पाया वासा, विवेक बुद्धि सुख रहन विहानी, गुरमत नाम परगासा, हर हर आनंद पया दिन राती।

तेज गुर शब्द सुखाली ज्ञान तत् कर भोगो अन दिन सुख माणी नित रलिया नानक तुर संजोगो सत संतोख कर पाओ कुड़म कुड़म आई।

परम गत पाई, पंच मिले सुहाया, गया क्रोध ममता तन नाथी, पाखंड भरम गवाया, हौ मैं पीर गई सुख पाया, अरोगत भये शरीरा, गुर प्रसादी ब्रह्म पछाता, नानक गुणी गहीरा, मनमुख विछड़ी दूर, महल ना पाए बल गई बलराम जियो, अंतर ममता कूर, कूड़ विहाजे कूड़ लई बलराम जियो, कूड़ कपट कमावे महा दुख पावे, विन सतगुर मग ना पाया, उज्जड़ पंथ भ्रमे गावारी, खिन खिन धक्के खाया, आपे दया करे प्रभदाता, सतगुर पुरख मलाई, जन्म जन्म के विछड़े जन मेले, नानक सहज सुभाए, आया लगन गणाए, हिरदय धन ओमाहिया बलराम जियो, पंडित पांदे आन, पत्ती बह वाचाइया बलराम जियो, पत्ती वाचाई

प्रवृत्ति कर्म दृढ़ाया बलराम जियो, वाणी ब्रह्मा वेद धर्म दृढ़ हो, पाप तजाया बलराम जियो, धर्म दृढ़ हो हर नाम त्याव हो, सिमरत नाम दृढ़ाया सतगुर गुरु पूरा आराध हो, सब किल विख पाप गुआया, सहज आनंद हुआ बड़ भागी,

स्वामी सर्व रहया पर पूरे अंतर बाहर हर प्रभ एको मिल हर जन मंगल गाए जन नानक दूजी लाव चलाई।

संत जना हर मेल हर पाया, बड़ भागिया बलराम जीओ, निर्मल हर पाया हर गुण गाया, मुख बोली हर बाणी, संत जना बड़ भागी पाया, हर कथिया अकथ कहानी, हृदय हर हर हर धुन उपजी, हर जपिए मस्तक भाग जियो, जन नानक बोले तीजी लावे, हर उपजे मन बैराग जियो, हर चौथड़ी लाम मन सहज भया, हर पाया बलराम जियो, गुरमुख मिलिया सुपाए, हर मन तन मीठा लाया बलराम जियो, हर मीठा लाया मेरे प्रभ पाया, अन दिन हर लिव लाई, मन चिंदिया।

हर पाया प्रभ अविनाशी एक ओंकार सतगुरु प्रसाद राग सूई संत महला चौथा कर दूजा गुरमुख हर गुण गाए हृदय रसन रसाए हर रसन रसाए मेरे प्रभ पाए मिलिया सहज सुपाए अन दिन भोग भोगे सुख सोवे शब्द रह लिवलाए वड्डे भाग गुरपूरा पाईए अन दिन नाम त्याए सहजे सहज मिलिया जग जीवन नानक सुन समाए संगत संत मलाए हर सर निर्मल नाए निर्मल जल नाए मैल गवाए भये पवित शरीरा दुर्मत मैल गई भ्रम भागा हम मैं बिनठी पीरा नदर प्रभु सत संगत पाई निज कर होआ वासा हर मंगल रस रसन रसाई नानक नाम परगासा अंतर रतन बीचारी गुरमुख नाम प्यारी हर नाम प्यारी शब्द निसतारी अज्ञान अंधेर गवाया ज्ञान प्रचंड बलिया घट चानन कर मंदर सोहाया तन मन अर्प शिंगार बनाई हर प्रभ साचे पाया जो प्रभ कह सोई पर कीजै नानक अंक समाया हर प्रभ काज रचाया गुरमुख व्याहण आया गुरमुख हर पाया।

आहु संत जन हो गुण गाव है गोविंद के रे राम गुरमुख मिल रही है कर वाज है शब्द कनेरे राम शब्द कनेरे हर प्रभ तेरे तू करता सब थाई ऐनस जपी सदा सालाही साच शब्द लिवलाई अन दिन सहज रह रंग राता राम नाम रिद पूजा नानक गुरमुख एक पछाणे अवर ना जाने दूजा सब मह रव रहया सो प्रभ अंतर जामी राम गुर शब्द रवे रव रहया सो प्रभ मेरा स्वामी राम प्रभ मेरा स्वामी अंतर जामी कट कट रवया सोई गुरमत सच पाई सहज समाई तिस बिन अवर ना कोई सहजे गुण गावां जे प्रभ पावां आपे लय मलाए नानक सो प्रभ शब्दे जापै अहनस नाम त्याए एहो जगो दुत्तर मनमुख पार न पाई राम अंतरे हउमै ममता काम क्रोध चतुराई राम अंतर चतुराई थाए ना पाई बिरथा जन्म गवाया जम मग दुख पावे चूटा खावे अंत गया पछताया बिन नावे को बेली नाही पुत कटंब सुत पाई

राम सतगुर पाए चलो जीवतियां इव मरिए राम जीवतियां मरिए भौजल तरिए गुरमुख नाम समावे पूरा पुरख पाया बड़ भागी सच नाम लिव लावे मत परगास भई मन मानिया राम नाम वडियाई नानक प्रभ पाया शब्द मलाया।

हत गुलाला शब्द चीन गुर मीठा मिथ्या मोहे मगनसी रहया झूठ संग लपटाना नानक दीन सरन किरपा निद राख लाज भगताना सुन बावरे सेव ठाकुर नाथ पुराणा सुन बावरे जो आया तिस जाना निश्चल हब वैसी सुन परदेसी संत संग मिल रही है हर पाइये भागी सुन बैरागी चरण प्रभु गह रही है एहो मन दीजै संक ना कीजै गुरमुख ताज बहु माणा नानक दीन भग

गर्भ गवानू निश्चल हब जाना मिथ्या माना संत प्रभु हुए दासा जीवत मरिया भौजल तरिय जे थीवै कर्म लिखे आसा गुर से बीजै अमृत पीजै जिस लाभ है सहज त्यानू नानक सरन पया हर।

प्रवत्याया जिन प्रवत्याया तिन सुख पाया वडभागी दर्शन पाई है थियो नमाणा सब कुरबाणा सगला आप मिटाई है ओह धन भाग सुदा जिन प्रभ लद्दा हम तिस पह आप विचाया नानक दीन सरन सुख सागर राख लाज अपनाया सूही महला पंजवा हर चरण कमल की टेक सतगुरु दित्ती तुस कै बलराम जीओ हर अमृत भरे भंडार सब किश है घर तिस कै बलराम जीओ बाबुल मेरा वड समरथा करन कारण प्रभहारा जिस सिमरत दुख कोई न लागे भौजल पार उतारा आद जगाद भगतन का राखा उस्तत कर कर जीवा नानक ना

आस तुम्हारी सफल दर्श भेटिया गुरपूरा नानक सद बलिहारी संभलिया सच थान मान महत सच पाया बलराम जियो सतगुर मिलिया दयाल गुण अविनाशी गाया बलराम जियो गुण गोविंद गाओ नित नित

दुख नासे रहस उपजै मन घणा मन तन निर्मल देख दर्शन नाम प्रभ का मुख भणा होए रेण साधु प्रभ आराधु अपने प्रभ पावा बिनवंत नानक दया धारहु सदा हर गुण गावा गुर मिल सागर तरिया हर चरण जपत निस तरिया हर चरण त्याए सब फल पाए मिटे आमन जाना पाए भगत सुपाए हर जप अपने प्रभ पावा जप एक अलख अपार पूर्ण तिस बिना नहीं कोई बिनवंत नानक गुर परम खोया जत देखा तत सोई पतत पावन हर नामा पूर्ण संत जना के कामा गुर संत पाया प्रभ त्याया सगल इच्छा पुनिया हों ताप बिन से सदा सरसे प्रभ मिले चिरी वछुनिया मन शांत आई वजी वधाई मनहु कदे ना विसरै बिनवंत नानक सतगुर दरडाया सदा भज जगदीसरै राग सूई संत महला पंजवां घर तीजा।

तुम गौहर अत गहर गंभीरा, तुम पेर हम बहुरिया राम। तुम वड्डे वड्डे वड ऊचे, हौ इतनी कलहरिया राम। हौ किस नाही एको तू है, आपे आप सुजाना। अमृत दृष्ट निमख प्रभ जीवा, सर्ब रंग रस माना। चरण सरनी दासह दासी, मन मौलै तन हरिया। नानक ठाकुर सर्ब समाना, आपन पावन करिया। तुझ ऊपर मेरा है माना, तू है मेरा ताना राम। सुरत मत चतुराई तेरी, तू जनाई जाना राम। सोई जाने सोई पछाने, जाको नदर सरम दे। मन मुख भूली बहुती राही, हाथी माया फंदे। ठाकुर पाणी सा गुणवंती, तिन्ही

वन्या तू पर्वत मेरा ओला राम हौ बल जाई लाख लाख लाख बरिया जिन भ्रम परदा खोला राम मिटे अंधारे तजे बिकारी ठाकुर सिउ मन माना प्रभ जी पानी पई निकाणी सफल जन्म परवाना पई अमोली पारा तोली मुकत जुगत दर खुला कहो नानक हौ निरपो हुई सो प्रभ मेरा ओला। सूही महला पंजवा साजन पुरख सतगुर मेरा पूरा तिस बिने अवर न जाना राम मात पिता भाई सुत बंदप जी प्राण मन पाना राम जियो पिंड सब तिसका दिया सर्ब गुणा पर पूरे अंतर जामी सो प्रभ मेरा सर्ब रहे पर पूरे ताकी सरन सर्ब सुख पाए हुए सर्ब कल्याण सदा सदा प्रभ कौ बलिहारे नानक सद कुर्बाना ऐसा गुर वड भागी पाईए जित मिले प्रभ जापै राम जन्म जन्म के किलविख उतर है हर संत धूड़ी नित नापै राम हर धूड़ी नाइय प्रभु त्याई है बहुड़ जोन ना आई है गुर चरनी लागे भ्रम पौ भागे मन चिंदिया फल पाई है हर गुण नित गाए नाम त्याई।

हर गुण निधि हर संतन कै वासे आए राम। संत चरण गुर सेवा लागी तिन्नी परम पद पाए राम। परम पद पाया आप मटाया हर पूरन कृपा तारी। सफल जन्म हुआ पौ भागा हर भेटिया एक मरारी। जिसका साथ नहीं मेल लिया ज्योति ज्योत समाया। नानक नाम निरंजन जपिया मिल सतगुर सुख पाया। गाओ मंगलो नित हर जनो पुन्नी इच्छ सबाई राम। रंग रत्ते अपने स्वामी सेती मरै न आवै जाई राम। अविनाशी पाया नाम त्याया सगल मनोरथ पाई। शांत सहज आनंद कनेरे गुर चरणी मन लाए। पूर रहया घट घट अविनाशी थान थनंतर साई। कहो नानक कार्य सगले पूरे गुर चरणी।

वाजे पार ब्रह्म मन बूठा राम गुरमुखे सच करनी सारी बिनसे भ्रम भय झूठा राम अनहद बाणी गुरमुख बखाणी जस सुन सुन मन तन हरिया सर्व सुखा तिस ही बन आए जो प्रभ अपना करिया कर्म है नवनिध भरे भंडारा।

जिन तारिया सूही महला पंजवा भै सागरु भै सागर तरिया हर हर नाम त्याए राम बोह थड़ा हर चरण अरादे मिल सतगुर पार लंघाए राम गुर शब्दी तरिय बहुड़ ना मरिय चूकै आवन जाना जो किश करै सोई भल मानो ता मन सहज समाना दुख ना भूख ना रोग ना व्यापै सुख सागर सरनी पाए हर सिमर सिमर नानक रंग राता मन की चिंत मटाए संत जना हर मंत्र दृढ़ाया हर साजन वसगत कीने राम आपनड़ा मन आगै धरिया सरबस ठाकुर दीने राम कर अपनी दासी मिति उदासी हर मंदर थित पाई अणद बनोद सिमरहु प्रभ साचा विछड़ कबहू ना जाई सावड़ भागन सदा सुहागन राम नाम गुण चीने कहो नानक रवह रंग राते प्रेम महारस पीने अनद बनोद भये नित सखिए मंगल सदा हमारे राम आपनड़ै प्रभ आप शिंगारी शोभावंती नारे राम सहज सुभाए भये कृपाला गुण अवगुण ना बीचारिया कंठ लगाए लिए जन अपने राम नाम उर धारिया मान मोह मद सगल व्यापी कर कृपा आप निवारी कहो नानक पै सागर तरिया पूरन काज हमारी गुण गोपाल गाव हो नित सखी हो सगल मनोरथ पाए राम सफल जन्म हुआ मिल साधु एक अंकार त्याए राम जप एक प्रभु अनेक रविया सर्व मंडल छाया ब्रह्मो पसारा ब्रह्म पसरिया सब ब्रह्म दृष्टि आया जल थल महियल पूर पूरन तिस बिना नहीं जाए पेख दर्शन नानक बिगसे आप लय मलाए सूही महला पंजवा अब चल नगर गोविंद गुरु का नाम जपत सुख पाया राम मन इच्छे से ही फल पाए करते आप वसाया राम करते आप वसाया सर्व सुख पाया पुत भाई सिख बिगासे गुण गावे है पूर्ण परमेश्वर कारज आया रासे प्रभ आप स्वामी आपे रखा आप पिता आप माया कहो नानक सतगुर बलिहारी जिन एहो थान सोहाया कर मंदर हट नाले सोहे जिस विच नाम निवासी राम संत भगत हर नाम अरादह कटिया जम की फासी राम काटी जम फासी प्रभ अवनासी हर हर नाम त्याए सगल समग्री पूरन होई मन इच्छे फल पाए संत सज्जन सुख मान है रलिया दुख दर्द भ्रम नासी शब्द सवारी सतगुर पूरे नानक सद बल जासी दात खसम की पूरी होई नित नित चढ़े सवाई राम पार ब्रह्म खसमाना किया जिस दी वड्डी वड्याई राम आद जगाद भगतन का राखा सो प्रभ भया दयाला जी जंत सब सुखी वसाए प्रभ आपे कर प्रित पाला दह दिस पूर रहया जस स्वामी कीमत कहन ना जाई कहो नानक सतगुर बलिहारी जिन अब चल नीम रखाई ज्ञान ध्यान पूर्ण परमेश्वर हर हर कथा नित सुनिए राम अनहद चोज भगत पाव पंजन अनहद वाजे तुनिए राम अनहद चुनकारे तत बीचारे संत गोष्ट नित होवे हर नाम अराद है मैल सब काट है किलविक सगले खोवे तह जन्म ना मरना आवन जाना बहुड़ ना पाईए जुनी है नानक गुर परमेश्वर पाया जिस पर

काल सुहावा विच अमृत जल छाया राम अमृत जल छाया पूर्ण साज कराया सगल मनोरथ पूरे जय जयकार पया जागे अंतर लाथे सगल विसूरे पूर्ण पुरखा चुत अबनासी जस वेद पराणी गाया अपना बिरद रखिया परमेश्वर नानक नाम त्याया नवनिध सिद्ध रिद दीने करते तोट न आवै काई राम खात खर्चत बिलशत सुख पाया करते की दात सवाई राम दात सवाई न खुट न जाई अंतर जामी पाया कोट बिगन सगले उठ नाठे।

त्यागनी हठ सत तीरथ पुन क्रिया महानिर्मल चारा पतत पावन बिरद स्वामी नानक शब्द अधारा।

ज्ञान की जय। बिसर नाही एक खिनो गुण गोपाल उचर रसना, सदा गाय अन दिनो जिस प्रीत लागी नाम सेती, मन तन अमृत पीजै दिनवंत नानक इच्छ पुन्नी, पेख दर्शन जीजै राग सूही महला पंजवा, शंत एक ओंकार सतगुर प्रसाद मिट।

पूर्ण भगवान अवगण को नाच तारी पतत पावन हर बिरद सदाए एक तिल नहीं पन्ने काली कट कट वासी सर्ब नवासी नेरा ही ते नेरा नानक दास सदा सरनागत हर अमृत सज्जन मेरा हौ बिस्म भई जी हर दर्शन देख अपारा मेरा सुंदर स्वामी जी हौ चरण कमल पग शारा प्रभ पेखत जीवा ठंडी थीवा तिस जे बड़े अमर ना कोई आदि अंत मद प्रभ रविया जल कल मही अल सोई चरण कमल जप सागर तरिया पव जल

प्राण आधार, गुर सतगुर कहे आजी साचा अगम बीचारु, मिल साधु दीना ता नाम लीना, जन्म मरण दुख नाथे, सहज सुख आनंद कनेरे, हम मैं बिनठी गाठे, सब कै मद सब हूं ते बाहर, राग दुख ते न्यारू, नानक दास गोविंद सरनाई, हर प्रीतम मने सधारू, मैं खोजत खोजत जी, हर निश्चल सो कर पाया, सब आत्रो डिथे जी हो, ता चरण कमल चित लाया, प्रभ अवनासी हों तिसकी दासी, मरे न आवे जाए, धर्म अर्थ काम सब पूरन, मन चिंदी इच्छ पुजाए, श्रुत सिमरत गुण गावह करते, सिद्ध साधक मुन जन त्याया, नानक सरन कृपा निज स्वामी, वडभागी हर हर गाया, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, वार सूही की सलोका नाल महला तीजा, सलोक महला तीजा, सूह वेश दुहागणी, पर फिर रावण

फिर मैं झूठ सब बिन सजाए, ज्यो टिकै ना बिरख की शाम। गुरमुख लालो लाल है, ज्यो रंग मजीठ सचड़ाओ। उल्टी सकत सिवै घर आई, मन वस्या हर अमृत नाम। नानक बलिहारी गुरे अपने, जित मिले

लाल हुआ रसना रती गुण सार, सदा सुहागण शब्द मन पै पाई करे सिंगार। नानक करमी महल पाया फिर राखिया उरतार महला तीजा, मुंदे सूहा पर हर हो लाल करहो शिंगार। आवण जाना विसर गुर शब्दी विचार, मुंद सहावी सोहनी जिस कर सहज पतार। नानक सा धन रा

0: हुआ नानक सो सलाहिया जिन कारण किया पौड़ी सच ध्यान से सच्चे
1: गुर शब्द विचारी
0: हम मैं बाहर मन निर्मला हर नाम उरतारी कोठे मंडप वाड़िया लग पए गावारी जिन किए तिसह ना जाननी मन मुख गोबारी जिस बजाए सो बुझसी सच्चिया
1: क्या जंत विचारी।
0: श्लोक महला तीजा कामन तो शिंगार कर जा पहला कंत मनाए मत से जय कंत ना आवई इवें बिरथा जाए कामन फिर मन

तीरथी मन खोटे तन चोर, एक भाव लथी नातिया दोए भा चढ़ियस होर। बाहर धूती तूमड़ी अंदर विसन कोर, साध भले अन्नातिया चोर से चोरा चोर पौड़ी। आपे हुक्म चलाएंदा जग धंदे लाया, एक आपे ही आप लायन गुरते सुख पाया। दह दिस इहो मन धामदा गुर ठाक रहाया, नावै नू सब लोच दी गुरमती पाया। तुर लिखिया मेट न सकी है जो हर लिख पाया।

सच्चै आपी एक दूजै भाई खुआयन होमै विच व्यापी यो मानस जन्म दलंब सा मनमुख संतापी जिस आप बुझाए सो बुझसी जिस सतगुर थापे सब जग खेल।

आस अज्ञान मटंत वेद पाठ संसार की कार पढ़ पढ़ पंडित करह विचार बिन बूझे सब होए खुआर नानक गुरमुख उतर

ना जपहु कमन मत लागी, मर जाए बे कहो क्या करो अपागे रहाओ। दुख सुख करके कटंब जीवाया, मरती बार इकसर दुख पाया। कंठ गहनु तब करन पुकारा, कह कबीर आगे ते ना सम्हारा। सूही कबीर जी थर हर कंपै बाला जियो, ना जानो क्या करसी पियो। रैन गई मत दिन पी जाई।

कुवार कन्या जैसे करत शिंगारा, क्यों रलिया मान बाज पतारा। काग उडावत भुजा पिरानी, कह कबीर ए कथा सिरानी। सूही कबीर जियो हमल सरानो लेखा देना, आए कठन दूत जम लेना। क्या तै खटिया कहां गवाया, चलो सताप दीवान बुलाया। चल दरहाल दीवान बुलाया, हर फरमान दरगाह का आया। रहाओ करो अरदास गाम किश बाकी, लेओ नबेर आज की राती। किस पी खर्च तुम्हारा सारो, सुबह निवाज सराय गजारो। साध संग जाको हर रंग लागा, तन तन सो जन पुरख सुभागा। ईत ऊत जन सदा सुहेले, जन्म पदार्थ जीत अमोले। जागत सोया जन्म गवाया, माल धन जोरिया भया पराया। कहो कबीर तेई नर भूले।

देवहु जब लग घट मह सासा जे घट जाए ता भाउ ना जासी हर के चरण निवासा जिस को शब्द बसावे अंतर चूकै तिसह प्यासा हुक्मै बूझै चौपड़ खेलै मन जिन ताले पासा जो जन जान भजह अवगत कहो तिनका कछु ना नासा कहो कबीर ते जन कबहु ना हारह ताल जो जानह पासा सूही ललित कबीर जियो एक कोट पंच सिकदा।

सह की सार सुहागण जाने, तज अभमान सुख रलिया मान, तन मन दे न अंतर राख, अवरा देख न सुने अपाख, सो कत जाने पीर पराई, जान कै अंतर दर्द ना पाई, राहाउ दुखी दुहागण दोए पाख हीनी, जिन नाहा निरंतर

आया, बहुत प्यास जवाब ना पाया। कहर वदास सरन प्रभ तेरी, ज्यों जान हो त्यों कर गत मेरी। सूही जो दिन आवह सो दिन जाही, करना कूच रहन फिर नाही। संग चलत है हम भी चलना, दूर गवन सिर ऊपर मरना। क्या तू सोया जाग आना, तै जीवन जग सच कर जाना। रहाओ जिन जियो दिया, सो रिजक अंबरावे। सब घट भीतर हाट चलावे।

ललत बेड़ा बंद ना सक्यो बंधन की वेला पर सरवर जब उछले तब तरन दुहेला हाथ ना लाए कुसुम्बड़े जल जासी ढोला।

मूर्ख कहन ना जाई, तेरे गुण गावां दे बुझाई, जैसे सच मैं रहूं रजाई रहाउ, जो किछ होआ सब किछ तुझते, तेरी सब असनाई, तेरा अंत ना जाना मेरे साहिब, मैं अंधले क्या चतराई, क्या हो कथी कथे कथ देखा, मैं अकथ ना कथना जा

कहाउ अगम अगोचर अलख अपारा चिंता करहु हमारी जल थल मही अल भरपुर लीना घट घट जोत तुम्हारी सिख मत सब बुद्ध तुम्हारी मंदर छावा तेरे तुझ बिन अवर ना जाना मेरे साहिबा गुण गावा नित तेरे जी जंत सब सरन तुम्हारी सर्ब चिंत तुद पासी

अलख अपेव रहाव, माया मोहतर कटी नार, पूंडी कामन कामन यार, राज रूप झूठा दिन चार, नाम मिले चानन अंधियार,

दया पथ दाता, क्या एहे जंत विचारी, मुक्त बंद सब तुझ ते होए, ऐसा आख बखाणी, गुरमुख हो ऐसो मुक्त कही है, मनमुख बंद विचारी, सो जन मुक्त जिस एक लिव लागी, सदा रह हर नाले, तिनकी गहन गत कही ना जाई, सच्चे आप सुवारी, परम पलाने से मनमुख कही है, ना उरवार ना पारी, जिसनो नदर करे सोई जन पाई, गुर का शब्द संभाली, हर जन माया माहे निस्तारी, नानक भाग हुए जिस मस्तक, काल है मार बदारी, बलावन महला तीजा, अतुल क्यों तो लिया जाए, दूजा हुए ता सोजी पाए, तिस ते दूजा नाही कोए, तिस दी कीमत किको होए, गुर प्रसाद वस्से मन आए, ताको जाने दुबदा जाए, रहाओ आप सराप कसवट्टी लाए, आपे परखे आप चलाए, आपे तोले पूरा होए, आपे जाने एको सोए, माया का रूप सब तिसते होए, जिसनो मेले सो निर्मल होए, जिसनो लाए लगे तिसे आए, सब सच दिखाले ता सच समाए, आपे लिव धात है आपे, आप बुझाए आपे जापे, आपे सतगुर शब्द है आपे, नानक आख सुनाए आपे, बलावल महला तीजा, साहिब ते सेवक सेव साहिब ते, क्या को कह बहाना, ऐसा एक तेरा खेल बनिया है, सब मह एक समाना, सतगुर परचै हर नाम समाना, जिस कर्म हो ऐसो सतगुर पाई, अन दिन लागे सहज ध्याना रहाओ, क्या कोई तेरी सेवा करे, क्या को करे अभमाना, जब अपनी जोत खिंच है तू स्वामी, तब कोई करो दिखा विखियाना, आपे गुर चेला है आपे, आपे गुणी नदाना, ज्यो आप चलाए तिमें कोई चाले, ज्यो हर भावे भगवाना।

कर कृपा मोहि मार्ग पावहु, साध संगत कै अंचल लाभहु। क्यों तरिय बिख्या संसार, सतगुरु बोहित पावे पार। रहाउ पवन चलारे माया दे, हर के भगत सदा थिर से। हरख सोग ते रह निरारा, सिर ऊपर आप गुरु रखवारा। पाया वेड़ माया सर्ब पोयंगा, हम मैं पचे दीपक देख पतंगा। सगले सिंगार करे नहीं पावे, जा हुए कृपाल ता गुरु मलावे। हों फिरो उदासी मैं एक रतन दसाया, निर्मूलक हीरा मिले ना उपाया। हर का मंदिर तिस महलाल, गुर खोलिया पर्दा देख भई निहाल। जिन चाख्या तिस आया साद, ज्यों गूंगा मन मह बिस्माद। आनंद रूप सब नदरी आया, जन नानक हर गुण आख समाया। बलावल महला पंजवा, सर्ब कल्याण किए गुरुदेव। सेवक अपनी लायो सेव, बिघन ना लागे जप अलख अपेव। तरत पनीत भई गुण गाए, दुर्त गया हर नाम त्याए। रहाउ सबनी थाई रव्या आप, आद जगाद जाका वड प्रताप। गुर प्रसाद ना हुए संताप, गुर के चरण लगे मन मीठे। निर्विघ्न हुए सब थाई बूठे, सब सुख पाए सतगुरु तूठे। पार ब्रह्म प्रभ भय रखवाली, जितै कितै दिसह नाली। नानक दास खसम प्रतपाली, बलावल महला पंजवा। सुख निधान प्रीतम प्रभ मेरे, अगणत गुण।

कै संग सदा प्रभ बसे। प्रभ का नाम मन तन आधार, विसरत नाम होवत तन शार। प्रभ चित आए पूर्ण सब काज, हर विसरत सब का मोहताज। चरण कमल संग लागी प्रीत, बिसर गई सब दुर्मत रीत। मन तन अंतर हर हर मंत, नानक भगतन कै घर सदा आनंद। राग बलावल

इन संग सुख ना पाया, धन धन हर साध जन सखिए, नानक जिन्नी नाम ते आया, जाए बसो वड भागनी सखिए, संता संग समाइए, तह दुख ना भूख ना रोग ब्यापै, चरण कमल लिव लाइए, तह जन्म ना मरन ना आवन जाना, निश्चल सरनी पाइए, प्रेम बिछोहो ना मोह ब्यापै, नानक हर एक तिहाइ, दृष्ट धार मन बेदया प्यारे, रतड़े सहज सुपाए, सेज सुहावी संग मिल प्रीतम, आनंद मंगल गुण गाए, सखी सहेली राम रंग राती, मन तन इच पजाए, नानक अचरज अचरज स्यों मिलिया,

आप ही जुगता, नानक के प्रभ सद ही मुक्ता। बलावल महला पंजवा, आप उपावन आप सधरना, आप करावन दोष न लेना, आपन बचन आप ही करना, आपन विभव आप ही जरना, रहाउ आप ही मस्त आप ही बोलना, आप ही अशालना जाई चलना, आप ही गुप्त आप प्रगटना, आप ही घट घट आप अलिपना, आपे अवगत आप संगरचना। कहो नानक प्रभ के सब जचना, बलाव महला पंजवा, भूले मार्ग जिन्हें बताया, ऐसा गुर वड भागी पाया, सिमर मना राम नाम चितारी, बस रहे हृदय गुर चरण प्यारी। रहाउ काम क्रोध लोभ मोह मन लीना, बंधन काट मुक्त गुर कीना, दुख सुख करत जन्म फुन मुआ, चरण कमल गुर आश्रम दिया, अग्न सागर बूढ़त संसारा, नानक बाहां पकड़ सतगुर निस्तारा। बलावल महला पंजवा, तन मन तन अर्पौ सब अपना, कमन सो मत जित हर हर जपना, कर आसा आयो प्रभ मांगन, तुम पेखत सोबा मेरे आंगन। रहाउ अनक जुगत कर बहुत बिचारों, साध संग इस मन है उदारो, मत बुद्ध सुत नाही चतराई, ता मिलिए जा लई मलाई, नैन संतोखे प्रभ दर्शन पाया। कहो नानक सफल सो आया, बलावल महला पंजवा, मात पिता सुत साथ न माया, साध संग सब दुख मिटाया।

बहु तपत व्यापिया शीतल पए हर हर जस जापिया कोट जतन संतोख ना पाया मन त्रिपताना

तुम ही जानो अपनी पूजा, आप हो कछु ना होवत पाई, जिस प्रभ देवै सो नाम पाई। कहो नानक जो जन प्रभ पाया, गुण नान प्रभ तिन ही पाया। बिलावल महला पंजवां, मात गर्भ मह हाथ दे राखिया, हर रस छोड़ बिख्या फल चाखिया। पज गोविंद सब छोड़ जंजाल, जब जम आए संघारे मूड़े, तब तन बिन सजाए बेहाल रहाव। तन मन धन अपना कर थापिया, करन हार एक निमख ना जापिया। महा मोह अंध कूप परिया, पार ब्रह्म माया पटल बिसरिया। वड्डे भाग प्रभ कीर्तन गाया, संत संग नानक प्रभ पाया। बिलावल महला पंजवां, मात पिता सुत बंधप पाई, नानक होवा पार ब्रह्म सहाई। सुख सहज आनंद घने, गुरपूरा पूरी जाकी बाणी। अनक गुणा जाके जाहे ना गणे रहाव। सगल सरंजाम करे प्रभ आपी, भय मनोरथ सो प्रभ जापी। अर्थ धर्म काम मोख का दाता, पूरी भई सिमर सिमर बेधाता। साध संग नानक रंग माणिया, कर आया पूरे गुरे आणिया। बिलावल महला पंजवां, सर्व निधान पूर्ण गुरदेव रहाव। हर हर नाम जपत नर जीवे, मर खवार साक्त नर थीवे। राम नाम होआ रखवारा, चख मारो साकत बेचारा। निंदा कर कर पचह कनेरे, मृतक फास गले सिर पैरी। कहो नानक जपह जन नाम, ताके निकट न आवे जाम। राग बुलावल महला पंजवां, कर चौथा दुपदी। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, कवन संजोग मिलो प्रभ अपने। पल पल निमख सदा हर जपने, चरण कमल प्रभ के नित ध्यावो। कमन सो मत जित प्रीतम पावो रहाओ। ऐसी कृपा करो प्रभ मेरे, हर नानक बिसर ना काहू बेरे। बिलावल महला पंजवां, चरण कमल प्रभ हृदय त्याय। रोग गए सगले सुख पाए, गुर दुख काटे अधीनो दान। सफल जन्म जीवन परवान रहाव। अकथ कथा अमृत प्रभ बाणी, कहो नानक जप जीवे ज्ञानी। बिलावल महला पंजवां, शांत पाई गुर सतगुर पूरे। सुख उपजे बाजे अनहद तूरे रहाव। ताप पाप संताप बनासे, हर सिमरत किल विख सब नासे। आनंद करहु मिल सुंदर नारी, गुर नानक मेरी पैज सुवारी। बिलावल महला पंजवां, ममता मोह त्रोह मद माता। बंधन बांधिया अत बिकराल, दिन दिन सिजत बकार करत औद। फाही फाथा जम कै जाल, तेरी शरण प्रभ दीन दयाला। महा बिखम सागर अत भारी, उधरहु साधु संगर वाला रहाव। प्रभ सुखदाते समरथ स्वामी, जियो पिंड सब तुमरा माल। भ्रम के बंधन काटहु परमेश्वर, नानक के प्रभ सदा कृपाल। बिलावल महला पंजवां, सगल आनंद किया परमेश्वर। अपना बिरद सम्हारिया, साध जना हुए कृपाला। बिगसे सब परवारिया, कारज सतगुर आप सुवारिया। वड्डी आर जा हर गोबिंद की, सुख मंगल कल्याण बिचारिया रहाव। वण तिण त्रे भवन हरिया होए, सगले जी साधारिया। मन इच्छे नानक फल पाए, पूर्ण इच्छ पुजारिया। बिलावल महला पंजवां, जिस ऊपर होवत दयाल। हर सिमरत काटै सो काल रहाव। साध संग भजियै गोपाल, गुण गावत टूटै जम जाल। आपे सतगुर आपे प्रतपाल,
नानक जाचै साधरवाल बलावल महला पंजवां मन मैं सिंचहो हर हर नाम अन दिन कीर्तन हर गुण गाम ऐसी प्रीत करो मन मेरे आठ पैर प्रभ जानो नेरे रहाओ कहो नानक जाके निर्मल भाग हर चरणी ताका मन लाग बलावल महला पंजवां रोग गया प्रभ आप गवाया नींद पई सुख सहज घर आया रहाओ राज राज भोजन खावो मेरे भाई अमृत नाम रिद माही त्याई नानक गुरपुरे सरनाई जिने अपने नाम की पैज रखाई बलावल महला पंजवां सतगुर कर दीने अस्थिर कर बार रहाओ जो जो निंद करे इन ग्रहण की तिसे आगे ही मारे करतार नानक दास तां की सरनाई जां को शब्द अखंड अपार बलावल महला पंजवां ताप संताप सगले गए बिनसे ते रोग पार ब्रह्म तू बख्शिया संतन रस भोग रहाओ सर्व सुखा तेरी मंडली तेरा मन तन अरोग गुण गावो नित राम के एह अवखद जोग आए बसो घर देश मह एह भले संजोग नानक प्रभ सो प्रसन्न पहे लह गए बियोग बलावल महला पंजवां काहू संग ना चाल ही माया जंजाल ऊट सधारे शतरपथ संतन कै ख्याल रहाओ अहम बुद्ध को बिनसना एह तुर की ताल बहु जोनी जन्मह मरह बिख्या बिकराल सत बचन साधु कह नित जपह गोपाल सिमर सिमर नानक तरी हर के रंग लाल बलावल महला पंजवां सहज समाद आनंद सुख पूरे गुरदीन सदा सहाई संग प्रभ अमृत गुण चीन रहाओ जय जय कार जगतर मह लोचह सब जिया सो प्रसन्न पए सत गुर प्रभु कछ बिघन ना थिया जां का अंग दयाल प्रभ तां के सब दास सदा सदा वडियाईया नानक गुरपास राग बलावल महला पंजवां घर पंजवां चौपदी एक ओंकार सतगुर प्रसाद मृत मंडल जग साजिया ज्यों बालू घर बार बिन सतबार ना लाग गई ज्यों कागद बूंदार सुन मेरी मनसा मने माहे सत देख बीचार सिद्ध साधक गिरही जोगी ताज गए घर बार रहाओ जैसा सुपना रैन का तैसा संसार दृष्ट मान सब बिनसी है क्या लग है गावार कहां सुपाई मीत है देख नैन पसार एक चाले एक चाल सह सब अपनी वार जिन पूरा सतगुर सेविया से अस्थिर हर द्वार जन नानक हर का दास है राख पैज मरार बलावल महला पंजवां लोकन कियां वडियाईयां बैसंतर पागों ज्यों मिले प्यारा अपना ते बोल करागो जो प्रभ जियो दयाल हुए तो भगती लागो लपट रहे मन बासना गुर मिल एह त्यागो रहाओ करो बेनती अत घणी एहो जियो हमागो अर्थ आन सब वारिया प्रिय निमक सुहागो पंच संग गुरते छुटे दुख अर रागो हृदय परगास प्रगट भया निसबासर जागो सरल सुहागन आया जिस मस्तक भागो कहो नानक तिन पाया तन मन सीत लागो बलावल महला पंजवां लाल रंग तिस को लगा जिसके वड भागा मैला कदे ना होवई नह लागे दागा प्रभ पाया सुख दाईया मिलिया सुख पाई
सहज समाना पीतरे।

गुर अमर कराया, सो जाने जिन चाखिया हर नाम अमोला। कीमत कही ना जाइए क्या कह मुख बोला, सफल दर्श तेरा पार ब्रह्म गुण निध तेरी बाणी। पावो तूर तेरे दास की नानक कुरबाणी। बलावल महला पंजवा, राख हो अपनी सरन प्रभ मोहे कृपा तारी। सेवा कछु ना जानू नीच मूरखारी, मान करो तुदे उपरे मेरे प्रीतम प्यारे। हम अपराधी सद भूलते तुम बख्शन हारी। रहाओ हम अवगन करह असंख नीत तुम निर्गुण दातारे। दासी संगत प्रभु त्याग हे कर्म हमारी। तुम देव हो सब किश दया तार हम अकिरत किनारे। लाग परे तेरे दान स्यों नह चित खसमारे। तुझ ते बाहर किश नहीं भव काटन हारे। कहो नानक सरन दयाल गुर देहो मुग्ध उदहारे। बलावल महला पंजवा, दोष न काहू दीजिए प्रभ अपना त्याई। जित सेवे सुख होए कना मन सोई गाइय। कहिए काए प्यारे तुझ बिना तुम दयाल स्वामी। सब अवगुण हमा रहाओ ज्यों तुम राख हो त्यों रहा। अवर नहीं चारा नी धरिया धर तेरिया एक नाम आधारा। जो तुम करहो सोई भला मन लेता मुक्ता। सगल समगरी तेरिया सब तेरी जुगता। चरण पखारों कर सेवा जे ठाकुर पावे। हो कृपाल दयाल प्रभ नानक गुण गावे। बलावल महला पंजवा, मृत हसै श्री उपरे पशुआ नहीं बुझे। बाद साध अहंकार में मरना नहीं सूझे। सतगुर से वो अपना काहे फिर हो अपागे। देख कसुम्बा रंगुला काहे भूल लागे। रहाओ कर कर पाप दर्द किया वर्तन कहताई। माटी स्यो माटी रली नांगा उठ जाई। जा कह किए श्रम करे ते बैर बरोधी। अंतकाल भज जाहेंगे काहे जलो क्रोधी। दास रेन सोई हुआ जिस मस्तक कर्मा। कहो नानक बंधन छुटे सतगुर की सरना। बलावल महला पंजवा, पिंगल पर्वत पार परे खल चतुर्भ कीता। अंधले त्रे पवन सूजिया गुर पेट पनीता। महमा साधु संग की सुनो मेरे मीता। मैल खोई कोट अग हरे निर्मल पे कीता। रहाओ ऐसी भगत गोविंद की पीत हस्ती जीता। जो जो कीनो अपनो तिस अपै दान दीता। सिंह बलाई होए गयो त्रिण मेर दखीता। श्रम करते दम आड़ को ते गनी तनीता।

तुम मिलहु दयाल निस्बासर मन आनंद होत चितवत कृपाल रहाओ जगत उदारन साध प्रभ इन लागो पाल मोको दीजै दान प्रभु संतन पागराल उकत सियान कछ नहीं नाही कछ काल परम पै राखो मोह ते काट हो जमजाल बिनो करो करना पते पिता प्रतपाल गुण गावो तेरे साध संग नानक सुख साल बलावल महला पंजवा कीता लोड़ है सो कर है तुझ बिन कछ नाही प्रताप तुम्हारा देख कै जमदूत छड जाय तुमरी कृपा ते छूती है बिनसै अहमेव सर्व कला समर्थ प्रभ पूरे गुरुदेव रहाओ खोजत खोजत खोजया नामै बिनकूर जीवन सुख सब साध संग प्रभ मनसा पूर जित जित लाभ हो तित तित लग है सियानप सब जाली जात कात तुम परपूर हो मेरे दीन दयाली सब किश तुम ते मांगना वड भागी पाए नानक की अरदास प्रभ जीवा गुण गाए बलावल महला पंजवा साध संगत कै बास बै कल मल सब नसना प्रभ से ती रंग रातिया ताते गर्भ ना ग्रसना नाम कहत गोबिंद का सूची पई रसना मन तन निर्मल हुई है गुर का जप जपना रहा हर रस चाखत त्रापिया मन रस लै हसना बुद्ध प्रगास प्रगट पई उल्ट कमल बिगसना शीतल शांत संतोख होए सब बूझी तृष्णा दह दिस धावत मिट गए निर्मल थान बसना राखन हारे राखिया पई भ्रम पसना नाम निधान नानक सुखी एक साध दर्शना बलावल महला पंजवा पानी पखा पीस दास कै तब होहे निहाल राज मिलक सिकदारियां अग्नि मह जाल संत जना का शोहरा इस चरणी लाग माया तारी शत्रपत तिन छोड़ो त्याग रहाओ संतन का दाना रूखा सो सर्ब निदान ग्रह साकत शक्ति ही प्रकार ते बिखू समान भगत जना का लूघरा ओड नग्न ना होई साकत सिर पाओ रेशमी पहरत पत खोई साकत सिओ मुख जोरे है अद विचो टूटे हर जन की सेवा जो करे इत उत छूटे सब किश तुम ही ते होवा आप बनत बनाई दर्शन भेटत साधका नानक गुण गाई बलावल महला पंजवा सर्वनी सुनो हर हर हरे ठाकुर जस गावो संत चरण कर सीस तर हर नाम त्यावो कर कृपा दयाल प्रभ एह निध सिद्ध पावो संत जना की रेणुका लै माथे लावो रहाओ नीच ते नीच अत नीच होए कर बिनो बलावो पाव मनोवा आप त्याग संत संग समावो सास सास नह विसरे अनकत है ना तावो सफल दर्शन गुर पेटिया मान मोह मटावो सत संतोख दया धर्म सिंगार बनावो सफल सुहागन नानका अपने प्रभ पावो बलावल महला पंजवा अटल बचन साधु जना सब मैं प्रगटाया जिस जन होवा साध संग तिस भेटै हर राया एह प्रतीत गोविंद की जप हर सुख पाया अनक बाता सब कर रहे गुर घर लै आया रहाओ सरन परे की राखता नाही सहसाया कर्म भूम हर नाम बोए अवसर दुलभाया अंतर जामी आप प्रभ सब करे कराया पतत पनीत घने करे ठाकुर बिरदाया मत भूलो मनुख जन माया परमाया नानक तिस पत राख सी जो प्रभ पहराया।
ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਮਾਟੀ ਤੇ ਜਿਨ ਸਾਜਿਆ ਕਰ ਦੁਰਲਭ ਦੇ, ਅਨਕ ਸਿਧਰ ਮਨ ਮੈਂ ਢੱਕੇ ਨਿਰਮਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ। ਕਿਉ ਬਿਸਰੈ ਪ੍ਰਭ ਮਨੈ ਤੇ ਜਿਸ ਕੇ ਗੁਣ ਇਹ, ਪ੍ਰਭ ਤਜ ਰਚੇ ਜੇ ਆਨ ਸਿਉ ਸੋ ਰਲੀਐ ਖੇ ਰਹਾਉ। ਸਿਮਰਹੋ ਸਿਮਰਹੋ ਸਾਸ ਸਾਸ ਮਤ ਬਿਲਮ ਕਰੇ, ਛੋੜ ਪਰਪੰਚ ਪ੍ਰਭ ਸਿਉ ਰਚੋ ਤਜ ਕੂੜੇ ਨੇ। ਜਿਨ ਅਨਕ ਏਕ ਬਹੁ ਰੰਗ ਕੀਏ ਹੈ ਹੋਸੀਏ, ਕਰ ਸੇਵਾ ਤਿਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰ ਤੇ ਮਤ ਲੇ। ਉੱਚੇ ਤੇ ਉੱਚਾ ਵੱਡਾ ਸਭ ਸੰਗ ਬਰਨੇ, ਦਾਸ ਦਾਸ ਕੋ ਦਾਸਰਾ ਨਾਨਕ ਕਰ ਲੇ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਏਕ ਟੇਕ ਗੋਵਿੰਦ ਕੀ ਤਿਆਗੀ ਅਨਿਆਸ, ਸਭ ਉਪਰ ਸਮਰੱਥ ਪ੍ਰਭ ਪੂਰਨ ਗੁਣਤਾਸ। ਜਨ ਕਾ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਹੈ ਪ੍ਰਭ ਸਰਣੀ ਪਾਹੇ,

सास सास सुमारे करनहार जो कर रहे आ साई वड्याई गुर पूरे अपदेसिया सुख खसमर जाई चिंत अंदेसा गणत ताज जन हुक्म पछाता नह बिन सह नह छोड़ जाए नानक रंग राता बिलावल महला पंजवा महा तप्त ते भई शांत परसत पाप नाठी अंड कूप मैं गलत थे काढे दे हाथे ओए हमारे साजना हम उनकी रेन जिन भेटत होवत सुखी जी दान देन रहाओ परा पूर्व ला लिखिया मिलिया अब आए बस्त संग हर साधक

ना जापै हर हर हर हर जापिए अंतर लिव लाई के लिवक उतर है सुध हुए साधु सरनाई सुनत जपत हर नाम जस ताकी दूर बुलाई महामंत्र नानक कथ है हर के गुण गाई बुलावल महला पंजवा पै ते उपजै भगत प्रभ अंतर होए शांत नाम जपत गोविंद का बिनसै भ्रम भ्रांत गुरपुरा जिस पेटिया ताकै सुख प्रवेश मन की मत त्यागी है सुनिए उपदेश रहाउ सिमरत सिमरत सिमरिए सो पुरख दातार मन ते कबहु ना विसरै सो पुरख अपार चरण कमल स्यों रंग लगा अचरज गुरदेव जाको कृपा करो प्रभ ताको लाभ सेव निद निदान अमृत पिया मन तन आनंद नानक कबहु ना विसरै प्रभ परमानंद बुलावल महला पंजवा कृष्ण बुझी ममता गई नाथे भय भरमा थित पाई आनंद भया गुर कीने धर्मा गुरपुरा आराध्या बिनसी मेरी पीर तन मन सब शीतल भया पाया सुख बीर रहाउ सोमत हर जप जागया देखिया बिस्माद पी अमृत त्रिपतासिया ताका अचरज स्वाद आप मुक्त संगी तरे कुल कटंब उदारे सफल सेवा गुरुदेव की निर्मल दरबारी नीच अनाथ अजान में निर्गुण गुणहीन नानक को कृपा पई दास अपना कीन बलावल महला पंजवा हर भगता का आसरा अन नाही ठाऊ तान दे बाण परवार तन प्रभ तेरा नाऊ कर कृपा प्रभ अपनी अपने दास रख लिए निंदक निंदा कर पके जमकाल ग्रसिए रहाव संता एक त्यावना दूसर को नाहे एक से आगे बेनती रव्या सब थाई कथा परातन इओ सुनी भगतन की बानी सगल दुष्ट खंड खंड किए जान लिए मानी सत बचन नानक कह प्रगट सब माही प्रभ के सेवक सरन प्रभ तिनको भओ नाही बुलावल महला पंजवा बंधन काटै सो प्रभु जा कह कल हाथ अवर कर्म नहीं छूटी है राखो हर नाथ तौ शरणागत माधवे पूर्ण दयाल छूट जाए संसार ते राखै गोपाल रहाओ आसा परम बकार मोह इन मह लोभाना झूठ समग्री मन वसी पार ब्रह्म ना जाना परम ज्योत पूर्ण पुरख सब

पंजवा खोजत खोजत मैं फिरा खोजो बन थान अशल अशेद अभेद प्रभ ऐसे भगवान कब देखो प्रभ अपना आत्म कै रंग जागण ते सुपना भला बसिए प्रभ संग रहा वर्ण आश्रम शास्त्र सुनो दर्शन की प्यास रूप ना रेख ना पंच तत् ठाकुर अविनाश ओह स्वरूप संतन कह विरले जोगीसर कर कृपा जा कहो मिले तन तन ते ईश्वर सो अंतर सो बाहरे बिनसे तह परमा नानक तिस प्रभ भेटिया जाके पूर्ण कर्मा बलावल महला पंजवा जी जंत सो प्रसन्न भय देख प्रभ परताप करज उतारिया सतगुरु करिया हरियाप खात खर्चत निबहत रह गुर शब्द अखूट पूर्ण भई समग्री कबहू नहीं टूट रहा साध संग आराधना हर निद अपार धर्म अर्थ अर काम मूख देते नहीं बार भगत आराध है एक रंग गोविंद गोपाल राम नाम धन संचया जा का नहीं सुमार शरण परे प्रभ तेरिया प्रभ की वड्याई नानक अंत ना पाई है बेअंत गुसाई बलावल महला पंजवा सिमर सिमर पूरन प्रभु

जिस सिमरत सुख पाई है बिनसै बेयोग नानक प्रभ शरणागति करन कारण जोग राग बलावल महला पंजवां दुपदे घर पंजवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद अवर उपाव सब त्यागिया दारू नाम लया।

प्रभ राखता भगतन की यान। जो जो चितव है साध जन सो लेता मान रहाओ। शरण परे चरनार बिन जन प्रभ के प्राण। सहज सुपाए नानक मिले ज्योति ज्योत समान। बलावल महला पंजवां चरण कमल का आसरा दीनो प्रभ आप। प्रभ शरणागत जन परे ता का सद प्रताप। राखनहार अपार प्रभ ताकी निर्मल सेव। राम राज राम दासपुर कीने गुरदेव रहाओ। सदा सदा हर त्याई किस बिघन ना लागे। नानक नाम सलाही है भय दुश्मन भागे। बलावल महला पंजवां मन तन प्रभ आराधी है मिल साध समागे। उचरत गुण गोपाल जस दूर ते जम भागे। राम नाम जो जन जपे अन दिन सद जागे। तंत मंत नह जो हुई तित चाख ना लागे रहाओ। काम क्रोध मद मान मोह बिनसे अनरागे। आनंद मगन रस राम रंग नानक सरनागे। बलावल महला पंजवां जी जुगत वस प्रभु कै जो कह सो करना। पये प्रसन्न गोपाल राय पहु किश नहीं करना। दुख ना लागे कदे तुद पार ब्रह्म चितारे। जम कंकर नेड़ ना आवे गुर सिख प्यारे रहाओ। कर्म कारण समरथ है तिस बिन नहीं होर। नानक प्रभ शरणागति साचा मन जोर। बलावल महला पंजवां सिमर सिमर प्रभ अपना नाठा दुख ठाओ। विश्राम पाए मिल साध संग तांते बहुड़ ना ताओ। बलिहारी गुरे अपने चरणन बल जाओ। आनंद सुख मंगल बने देखत गुण गाओ रहाओ। कथा कीर्तन राग नाद धुन एहो बनियो सुवाओ। नानक प्रभ सो प्रसन्न पए बांचत फल पाओ। बलावल महला पंजवां दास तेरे की बेनती हिद कर परगास। तुमरी कृपा ते पार ब्रह्म दुखन को नास। चरण कमल का आसरा प्रभ पुरख गुणतास। कीर्तन नाम सिमरत रहो जब लग घट सास रहाओ। मात पिता बंदब तू है तू सर्ब निवास। नानक प्रभ शरणागति जाको निर्मल जास। बलावल महला पंजवां सर्ब सिद्ध हर गाई है सब भला मनाव है। साध साध मुख ते कह सुन दास मलाव है। सुख सहज कल्याण रस पूरे गुर कीन। जी सगल दयाल पए हर हर नाम चीन रहाओ। पूर रहे ओ सर्बतर मैं प्रभ गुणी गहीर। नानक भगत आनंद मैं पेख प्रभ की तीर। बलावल महला पंजवां अरदास सुनी दातार प्रभ होए कृपाल। राख लिया अपना सेव को मुख निंदक शार। तुझे ना जो है को मीत जन तू गुर का दास। पार ब्रह्म तू राखिया दे अपने हाथ रहाओ। जीयन का दाता एक है बिया नहीं होर। नानक की बेनंतिया मैं तेरा जोर। बलावल महला पंजवां मीत हमारे साजना राखे गोविंद। निंदक मृतक होए गए तुम हो निचिंद रहाओ। सगल मनोरथ प्रभ किए भेटे गुरुदेव। जय जय कार जगत में सफल जाकी सेव। ऊंच अपार अगंत हर सब जी जिस हाथ। नानक प्रभ शरणागति जात कत मेरे साथ।
ਬਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਗੁਰਪੂਰਾ ਆਰਾਧਿਆ ਹੋਏ ਕਿਰਪਾਲ ਮਾਰਗ ਸੰਤ ਬਤਾਇਆ ਟੂਟੇ ਜਮ ਜਾਲ ਦੁੱਖ ਭੂਖ ਸੰਸਾ ਮਿਟਿਆ ਗਾਵਤ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ ਸਹਿਜ ਸੁਖ ਆਨੰਦ ਰਸ ਪੂਰਨ ਸਭ ਕਾਮ ਰਹਾਉ ਜਲਨ ਬੁਝੀ ਸੀਤਲ ਭਏ ਰਾਖੇ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾਗਤੀ ਜਾਂ ਕਾ ਵੱਡ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਤਰਤ ਸੁਹਾਵੀ ਸਫਲ ਥਾਨ ਪੂਰਨ ਭਏ ਕਾਮ ਭਉ ਨਾਥਾ ਭ੍ਰਮ ਮਿਟ ਗਇਆ ਰਵਿਆ ਨਿਤ ਰਾਮ ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੈ ਸੰਗ ਬਸਤ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਬਿਸਰਾਮ ਸਾਈ ਘੜੀ ਸੁਲੱਖਣੀ ਸਿਮਰਤ ਹਰ ਨਾਮ ਰਹਾਉ ਪ੍ਰਗਟ ਭਏ ਸੰਸਾਰ ਮਹਿ ਫਿਰਤੇ ਪਹਿਨਾਮ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਸਰਨਾਗਤੀ ਘਟ ਘਟ ਸਭ ਜਾਨ ਬਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਰੋਗ ਮਟਾਇਆ ਆਪ ਪ੍ਰਭ ਉਪਜਿਆ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤ ਵੱਡ ਪ੍ਰਤਾਪ ਅਚਰਜ ਰੂਪ ਹਰ ਕੀਨੀ ਦਾਤ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਰਾਖਿਆ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਹਮ ਤਿਸ ਕੀ ਸਰਨਾਗਤੀ ਜੋ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਰਹਾਉ ਬਿਰਥੀ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋ ਗਈ ਜਨ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਨਾਨਕ ਜੋਰ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ ਪੂਰਨ ਗੁਣ ਤਾਸ ਬਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਮਰ ਮਰ ਜਨਮੇ ਜਿਨ ਬਿਸਰਿਆ ਜੀਵਨ ਕਾ ਦਾਤਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜਨ ਸੇਵਿਆ ਅਨ ਦਿਨ ਰੰਗ ਰਾਤਾ ਸ਼ਾਂਤ ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਘਨਾ ਪੂਰਨ ਭਈ ਆਸ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਹਰ ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਿਮਰਤ ਗੁਣਤਾਸ ਰਹਾਉ ਸੁਣ ਸੁਆਮੀ ਅਰਦਾਸ ਜਨ

पार ब्रह्म शरणाई चौगिर्द हमारे रामकार दुख लगे ना पाई सतगुर पूरा पीटिया जिन बणत बनाई राम नाम औखद दिया एका लिवलाई रहाओ राख लिए तिन रखन हार सब ब्याद मटाई कहो नानक कृपा पई प्रभ पये सहाई बलावल महला पंजवां अपने बाल के आप रखियन पार

ताप रोग मटाए जिवालियन जा कावड परताप दोख हमारे बख्शियन अपनी कल तारी मन बाचत फल दितियन नानक बलिहारी। राग बलावल महला पंजवां चौपदे दो पदे कर शिवां

दाती मिल संगत हर गुण गाए रसना अगह अगह गुण राती नैन दर्श रंग लाए हो कृपाल दीन दुख भंजन।

बार दंडौत बंदना अनक बार जाओ बारे रहाओ उठत बैठत सोवत जागत एहु मन तुझह चितारे सुख दुख इस मन की बिरथा तुझ ही आगे सारे तू मेरी ओट बाल बुद्ध धन तुम ही तुम्हें मेरे परवार है जो तुम करहो सोई पल हमरे देख नानक सुख चरनारे बलावल महला पंजवा सुनियत प्रभ तो सगल उदारन मोह मगन पतत संग प्राणी ऐसे मन है बसारन रहाउ संच बिख्याले ग्राह जकीनी अमृत मन ते डारन काम क्रोध लोभ रत

उन पूर रही दिनस अर रात रहाओ, कर कृपा अपने प्रभ कीने, नाम अपने की कीनी दात। आठ पहर गुण गावत प्रभ के, काम क्रोध इस तन पे जात। तृप्त अगाए पेख प्रभ दर्शन, अमृत हर रस भोजन खात। चरण सरन नानक प्रभ तेरी, कर कृपा संत संग मलात। बलावल महला पंजवा, राख लिए अपने जन आप। कर कृपा हर हर नाम दीनो, बिनस गए सब सोग संताप। रहाव गुण गोविंद गाव हो सब हर जन, राग रतन रसना आलाप। कोट जन्म की तृष्णा निवरी, राम रसायन आत्म त्राप। चरण गहे शरण सुख दाती,

पर अपारा, एक बस तीरन एक संपूर्ण, एक है प्राण आधारा, निर्मल निर्मल सूचा सूचो सूचा सूच।

बिन हर काम न आवत ही जा स्यो राच माच तुम लागी ओह मोहनी महावत हे रहाओ कनक कामनी सेज सोहनी छोड़ खिनह मैं जावत हे उर्ज रहियो इंद्री रस प्रेरियो बिकैठ गौरी खावत हे त्रिण को मंदर साज सुवारियो पावक तलै जरावत हे ऐसे गढ़ मह ऐठ हठीलो फूल फूल क्या पावत हे पंच दूत मूंड पर ठाटे केस गहे फेरावत हे दृष्ट न आवह अंध अज्ञानी

सिद्ध मुन इंदरा बेअंत ठाकुर तेरी गत नहीं पाई। क्या कथिय किस कथन ना जाई, जह जह देखा तह रह समाई रहाओ। जह महाभयान दुख जम सुनिए, तह मेरे प्रभ तू है सहाई। शरण परयो हर चरण गहे प्रभ, गुरु नानक को बूझ बुझाई। बलावल महला पंजवां, अगम रूप अबनासी करता, पतत पवित एक निमुख जपाई है। अचरज सुनियो प्राप्त भेट ले, संत चरण चरण मन लाई है। कित विधि है कित संयम पाई है, कहो सुरजन कित जुगती त्याई है रहाओ। जो मानुख मानुख की सेवा, ओह तिसकी लई लई फुन जाई है। नानक शरण शरण सुख सागर, मोहे टेक तेरो एक नाई है। बलावल महला पंजवां, संत शरण संत टहल करी, धंद बंद अर सगल जंजारू। अवर काज ते छूट परी रहाऊ, सुख सहज अर कनो अनंदा। गुर ते पायो नाम हरी, ऐसो हर रस बन ना साको। गुर पूरे मेरी उल्ट तरी, पेखियो मोहन सब कै संगे। ऊन ना काहू सगल भरी, पूर्ण पूर रहियो कृपा नित। कहो नानक मेरी पूरी परी। बुलावल महला पंजवां, मन क्या कहता हों क्या कहता। जान परवीन ठाकुर प्रभ मेरे, तिस आगे क्या कहता रहाऊ। अनबोले को तू ही पछान है, जो जीन मह होता। रे मन काए कहां लो डह कहें, जो पेखत ही संग सुनता। ऐसो जान भये मन आनंद, आन ना बियो करता। कहो नानक गुर

सुनो तुम भाई, जो कालर भीत गिरी है रहाओ, जो देखै शिदर तो निंदक उमा है, भलो देख दुख भरी है, आठ पहर चितवै नहीं पहुंचै, बुरा चितवत चितवत मरी है, निंदक प्रभु पलाया काल नेरह आया, हर जन स्यों बाद उठरी है, नानक का राखा आप प्रभु स्वामी, क्या मानस बपरे करी है, बलावल महला पंजवा, ऐसे काहे भूल परे, करह करावह मूकर पावह, पेखत सुनत सदा संग हरे रहाओ, काच बिहाजन कंचन छाडन, बैरी संग हेत साजन त्याग खरे, होवन कौरा अनहोवन मीठा, बिखिया मह लपटाए जरे, अंधकूप मह परे ओ प्राणी, परम गबार मोह बंद परे, कहो नानक प्रभ होत दयारा, गुर भेटै काढै बाहां परे, बलावल महला पंजवां, मन तन रसना हर चीना, पए आनंदा मिटे अंदेसे, सर्ब सुख मोको गुर दीना रहाओ, ज्ञानपते सब पई से।

प्रसाद हर नाम लीना, कहो नानक ठाकुर परोसै, कहूं ना मान्यो मन छीना, बलावल महला पंजवा, गुरपूरै मेरी राख लई, अमृत नाम हृदय मैं दीनो, जन्म जन्म की मैल गई रहाओ, निवरे दूत दुष्ट बैराई, गुरपूरे का जपया जाप, कहा करे कोई बेचारा, प्रभ मेरे का बड़ परताप, सिमर सिमर सिमर सुख पाया, चरण कमल रख मन माही।

नाम जरा मरा कछु दुख न व्यापै आज्ञा दरगाह पूर्ण काम रहाउ आप त्याग परियै नित सरनी गुर ते पाईऐ एहो निदान जन्म मरण की कटियै फासी साची दर

या सगल जहान मिलावन महला पंजवा मन तन अंतर प्रभ आही हर गुण गावत परपकार नेतर तिस रसना का मूल किछ नाही रहाउ कुल समूह उदरे खिन पीतर जन्म जन्म की मल लाही सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना अनद सेती बिखिया बन गाही चरण प्रभु के बोहित पाए भव सागर पार पराही संत सेवक भगत हर ताके नानक मन लागा है ताही।

पंजवां अच्युत पूजा जोग गोपाल मन तन अर्प रखो हर आगै सर्व जिया का है प्रतपाल रहाउ सरल सम्राथ अकाथ सुख दाता कृपा सिंध बड़ो दयाल कंठ लाए राख है अपने को तिसनो लगे ना ताती बाल दामोदर दयाल स्वामी सर्वस संत जना धन माल नानक जाचक दर्श प्रभ मांगे संत जना की मिले रवाल बलावल महला पंजवा सिमरत नाम कोट जतन पए साध संग मिल हर गुण गाए जम दूतन को त्रास अहे रहाओ जेते पुनः चरण से कीने मन तन प्रभ के चरण गहे आवन जान परम पौ नाठा जन्म जन्म के किल विख दहे निरपौ होए भजो जगदीसै इहो पदार्थ बड़ भाग लहे कर कृपा पूर्ण प्रभ दाते निर्मल जस नानक दास कहे बलावल महला पंजवा सुलही के नारायण राख सुलही का हाथ कहीं न पहुंचे सुलही हुए मुआ ना पाक रहाउ काड कुठार कसम सिर काटिया इनमें हुए गया है खाक मंदा चितवत चितवत पचिया जिन रचिया तिन दीना ताक पुत्र मीत तन किशु ना रहो सो छोड़ गया सब पाई साक कहो नानक तिस प्रभ बलिहारी जिन जन का कीनो पूर्ण वाक बलावल महला पंजवा पूरे गुर की पूरी सेवा आपे आप वरतै स्वामी कार्ज रास किया गुरुदेव रहाउ आद मद

हस्त प्रभ दीनी जगत उधार नव खंड प्रताप दुख बिन से सुख अंद प्रवेशा त्रिशन बुझी मन तन सच त्राप नाथ को नाथ सरन समर्था सगल श्रेष्ठ को माई बाप भगत वचल पै पंजन स्वामी गुण गावत नानक अलाप बलावल महला पंजवा जिसते उपजिया तह पछान पार ब्रह्म परमेश्वर ध्याया कुशल खेम हुए कल्याण रहाउ गुरपुरा पेट्यो बड़ भागी अंतर जामी सुगड़ सुजान हाथ दे राखे करे अपने बड़ समरथ नमाणिया को मान ब्रह्म पै बिन सगए खिन पीतर अंधकार प्रगटे चानान सास सास अराधै नानक सदा सदा जाइए कुर्बान बलावल महला पंजवा दुवै थाम रखे गुर सूरे हलत पलत पार ब्रह्म सवारी कार्य हुए सगले पूरे रहाओ हर हर नाम जपत सुख सहजे मज्जन होवत साधु धूरे आवन जान रहे थित पाई जन्म मरण के मिटे बिसूरे भ्रम पै तरे छुटे पै जम के घट घट एक रहया परपूरे नानक सरण परयो दुख भंजन अंतर बाहर पेख हजूरे बलावल महला पंजवा दर्शन देखत दुख नस्ते कभो न हो वो दृष्ट अगोचर जी कै संग बसे रहाओ प्रीतम प्राण आधार स्वामी पूर रहे प्रभ अंतर जामी क्या गुण तेरे सार समारी सास सास प्रभ तुझे

अनक प्रकार भोजन नित खाते मुख दंता कस खीन खया मेरी मेरी कर कर मूठो पाप करत नह परी दया महाविकार घोर दुख सागर तिस मह प्राणी गलत पया सरन परे

सुख सहज आनंद कनेरे नानक जीवै हर गुण है बखान। मलावल महला पंजवा पार ब्रह्म प्रभ भये कृपाल। कार्य सगल सवारे सतगुर जप जप साधु भये निहाल रहाओ। अंगीकार किया प्रभ अपने दुखी सगले भये रवाल। कंठ लाए राखे जन अपने उधर लिए लाए अपने पाल। सही सलामत मिल घर आए।

विश्वंबर पूर्ण सुखदाता सगल समगरी पोखण भरन थान थनंतर सर्व निरंतर बल बल जाई हर के चरण जी जुगत वस मेरे स्वामी सर्व सिद्ध तुम कारण करन आद जगाद प्रभ रखदा आया हर सिमरत नानक नहीं दरन राग बलावल महला पंजवां दुपदी घर अठवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद मैं नाही प्रभ सब किछ तेरा एक है निर्गुण उग है सरगुण केल करत बिच स्वामी मेरा रहाव नगर मैं आप बाहर खुने आपन

जन चर रज मुख माथे लागी हासा पूर्ण अनंत तरंगा जन पार ब्रह्म जाकी निर्मल महिमा जन के चरण तीर्थ कोट गंगा जन की धूर कियो मज्जन नानक जन्म जन्म के हरे कलंगा बिलावल महला पंजवां ज्यों भावै त्यों मोहे प्रतपाल पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुर हम बारक तुम पिता कृपाल रहाओ मोहे निर्गुण गुण नाहीं कोई पहुँच ना।

जानू हाल तन मन शीतल होए हमारू नानक प्रभ जीओ नदर निहाल बिलावल महला पंजवा राख सदा प्रभ अपने साथ तू हमरो प्रीतम मन मोहन तुझ बिन जीवन सगल अकाथ रहाओ रंक तेराओ करत खिन पीतर प्रभ मेरो अनाथ को नाथ जलत अगन मह जन आप उधारी कर अपने दे राखे हाथ शीतल सुख पायो मन तृप्ते हर सिमरत श्रम सगले लाथ निद निधान नानक हर सेवा अवर से

0: अब मेरे
1: पूरब प्रीत गोबिंद विचार हो रहा।
0: पतस पावन प्रभ बिरद तुम्हारो हमरे दुख हृदय मत तारो। जीवन प्राण हर धन सुख तुम ही हो मैं पटल कृपा कर जा रहो। जल बिहून मीन कत जीवन दूध बिना रहन कत बारू। जन नानक प्यास

फुसल पया गुरपूरै पूरी सब राखी पार ब्रह्म प्रभ कीनी मया रहाउ मन तन रव रहया हर प्रीतम दुख दर्द सगला मिट गया शांत सहज आनंद गुण गाए दूत दुष्ट सब हुए खया गुण अवगुण प्रभ कछ ना बिचारियो कर कृपा अपना कर लया अतुल बढ़ाई अचुत अबनासी नानक उचरै हर की जया बलाव महला पंजवां बिन पै भगती तरन कैसी करहु अनग्रहु पतत उदारन राख स्वामी आप परोसे रहाओ सिमरन नहीं आवत फिरत मद मावत बिख्या राता स्वान जैसी औध बिहावत अधिक महावत पाप कमावत बुढ़े ऐसी सरन दुख भंजन पुरख निरंजन साधु संगत रमन जैसे केशव कलेश नास अग खंडन नानक जीवत दर्श दिसे राग बलावल महला पंजवां।

जब ते शरण तुम्हारी आए तब ते दुख गए रहाओ। ताजे अभिमान अर चिंत बरानी साध है शरण पाए। जप जप नाम तुम्हारो प्रीतम तन ते रोग खए। महामुग्ध अजान अज्ञानी राखे तार दए। कहो नानक गुर पूरा पीट्यो आवन जान रहे। बलाव महला पंजवां जीवो नाम सुनी। जो सो प्रसन्न पए गुर पूरे तब

हावै हार कजर बस्त्र आभरण कीने उडीनी उडीनी उडीनी कब करिया वैरी रहाउ सरन सुहागन चरण सीस धर लाल।

मिटावहु तव कर ही लालन पावहु तब रस मंगल गुण गावहु आनंद रूप त्यावहु नानक द्वारे आयो तव मैं लालन पायो री मोहन रूप दिखावे अब मोहे नींद सुहावे।

रखन पावत ही राच्यो नाथ ही सहाई संतना अब चरण गहे रहाउ। आहे मन अवर ना पावे चरनावे चरनावे उलझियो आलम करंद कमल जियो अन रस नहीं चाहे एक हर लाहे अन ते टूटी है रिख ते छूटी है मन हर रस कूटी है।

द्रौपदी एक ओंकार सतगुर प्रसाद दुख हरता हर नाम पछानो अजा मल गण का जेह सिमरत मुक्त भये जी जानो रहाओ गज की त्रास मिटी सिन्हु मह जब ही राम बखानो नारद कहत सुनत ध्रु बारक भजन माहे लपटानो अचल अमर निरभय पद पायो जगत जाहे हैरानो नानक कहत भगत रस कहार निकट ताहे तुम मानो।

तेहे नर जन्म अकारथ खोया, यह राखो मन माही रहाउ। तीर्थ करे व्रत फुन राखे, नह मनुआ बस जाको। निःफल धर्म ताहे तुम मानु, साच कहत मह जाको। जैसे पाहन जल मह राखे हो, भिदे नाही ते पानी। तैसे ही तुम ताहे पछानु हूँ।

नर गरुआ जो प्रभु के गुण गावे बलावल अष्टपदिया महला पहला कर दसवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद निकट वसै देखै सब सोई गुरमुख विरला बूझै कोई बिन भै पय भगत न होई शब्द रते सदा सुख होई ऐसा ज्ञान पदार्थ नाम गुरमुख पावस रस रस मान रहाउ ज्ञान ज्ञान कथै सब कोई कथ कथ बाद करे दुख होई कथ कहने ते रह न कोई बिन रस राते मुक्त न होई ज्ञान ध्यान सब गुर ते होई साची रहत साचा मन सोई मनमुख कथनी है पर रहत न होई नाम भूले थाओ न कोई मन माया बंदेओ सर जाल घट घट व्याप रहो बिख नाल जो आंजै सो दिसै काल कारज सीधो हृदय संभाल सो ज्ञानी जिन शब्द लिव लाई मनमुख होमै पत गवाई आपे करतै भगत कराई गुरमुख आपे दे वडे आई रैन अंधारी निर्मल जोत नाम बिना झूठे कुचल कशोत वेद पकारै भगत सरोत सुन सुन मन वेखै जोत शास्त्र सिमरत नाम दृढ़ामं गुरमुख शांत उत्तम करामं मनमुख जोनी दुख सहामं

को दूजा देख कहों पावे मन सोए। नानक कह अवर नहीं कोई, बलावल महला पहला। मन का कहया मनसा करे, इहो मन पुन पाप उच्चरे। माया मद माते त्रिपत ना आवे, त्रिपत मुकत मन साचा पावे। तन तन कलत सब देख अभमाना।

आप न बूझै लोक बुझावै मन का अंधा अंध कमावै दर कर महल ठौर कैसे पावै हर जियो सेविया अंतर जामी घट घट अंतर जिसकी जोत समानी किस नाल क्या चलै पहनामी साचा नाम साचा शब्द जानै आपै आप मिलै चूकै अभमानै।

सुन गुर बचन मन तीर लगैया, मन की बिरथा मन ही जाने, अवर के जाने को पीर परैया। राम गुर मोहन मोहे मन लैया, हम आकल बिकल पई गुर देखे, हम लोट पोट होए पैया रहाओ। हम निरखत फिरों सब देश दसंतर, मैं प्रव देखन को बहुत मन चैया। मन तन काट देऊं गुर आगै, जिन हर प्रभ मार्ग पंथ दिखैया। कोई आन संदेशा दे प्रभ केरा, हृदय अंतर मन तन मीठ लगैया। मस्तक काट देऊं चरना तल, जो हर प्रभ मेले मेल मलैया। चल चल सखी हम प्रभ प्रबुद्ध है, गुण कामन कर हर प्रभ लहिया। भगत वच्छल ओआ को नाम कहियत है, शरण प्रभु तिस पाछे पैया। थिमा शिंगार करे प्रभ खुशियां, मन दीपक गुर ज्ञान बलैया। रस रस भोग करे प्रभ मेरा, हम तिस आगे जियो कट कट पैया। हर हर हार कंठ है बनिया, मन मोती चूर वड गहन गहनैया। हर हर शरदा सेज वछाई, प्रभ छोड़ ना सकै बहुत मन पैया। कह प्रभ अवर अवर किश कीजै, सब बाद शिंगार फोकट फोकटैया। कियो शिंगार मिलन कै ताई, प्रभ लियो सुहागन थूक मुख पैया।

नानक हर गुर शरण समैया बलावल महला चौथा मैं मन तन प्रेम अगम ठाकुर का खिन खिन शरदा मन बहुत उठैया गुर देखे शरदा मन पूरी ज्यो चात्रक प्रियो प्रियो बूंद मुख पैया मिल मिन सखी हर कथा सुनैया सतगुर दया करे प्रभ मेले मैं तिसे आगे सिर कट कट पैया रहाउ रोम रोम मन तन एक बेदन मैं प्रभ देखे बिन नींद ना पैया वैदिक नाटक देख पुलानी मैं हृदय मन तन प्रेम पीर लगैया हौ खिन पल रह ना सको बिन प्रीतम ज्यों बिन अमले अमली मर गैया जिनको प्यास हुए प्रभ केरी तिन अवर ना पावे बिन हर को दुइया कोई आन आन मेरा प्रभु मलावे हौ तिस विटहो बल बल घुम गैया अनेक जन्म के विछड़े जन मेले जा सत सत सत गुर सरन पवैया सेज एक एको प्रभ ठाकुर महल ना पावे मन मुख परमैया गुर गुर करत सरन जे आवे प्रभ आए मिले खिन ढील ना पैया कर कर किरिया चार वधाए मन पाखंड कर्म कपट लो भैया बेसवा कह कर बेटा जन्मया पिता ताहे क्या नाम सदैया पूर्व जन्म भगत कर आए गुर हर हर हर हर भगत जमैया भगत भगत करते हर पाया जा हर हर हर हर नाम समैया प्रभ आन आन मेहंदी पसाई आपे कोल कोल अंग लैया जिनको ठाकुर कृपा तारी बाहां पकर नानक कड लैया राग बलावल महला पंजवां अष्टपदी घर बारवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद उपमा जात ना कही मेरे प्रभ की उपमा जात ना कही ताजे आन सरन गही रहाओ प्रभ चरण कमल आपार हौ जाऊ सद बलिहार मन प्रीत लागी ताहे ताजे आन कतह ना जाहे हर नाम रसना कहन मल पाप कल मल दहन चढ़ नाव संत उदार पै तरे सागर पार मन डोर प्रेम प्रीत ए संत निर्मल रीत तज गए पाप विकार हर मिले प्रभ निरंकार प्रभ पेखिए बिस्माद चख अनद पूर्ण साद नह डोलिए इत ऊत प्रभ बसे हर हर चीत तिन नाहे नरक निवास नित सिमर प्रभ गुणतास ते जम ना पेख नैन सुन मोहे अनहत बैन हर सरन सूर गोपाल प्रभ भगत वस दयाल हर निगम लह ना पेव नित करह मुन जन सेव दुख दीन दर्द निवार जा की महा बिखड़ी कार ता की मित न जाने कोए जल थल मही अल सोए कर बंदना लख बार थक परियो प्रभ दरबार प्रभ करहो साधु तूर नानक मन सापूर बलाव महला पंजवां प्रभ जन्म मरण निवार हार परियो द्वार गह चरण साधु संग मन मिष्ट हर हर रंग कर दया ले हो नर लाए नानका नाम त्याई

ज्यो महा खुदयारथ भोग ज्यो बात पूतै हेत हर सिमर नानक नेत ज्यो दीप पतन पतंग ज्यो चोर हित न संग मैगल है कामै बंद ज्यो ग्रस्त बिखरी।

गोविंद भजना रंग रसना बखाने नाम नानक दर्शन दान गुण गाए सुन लिख दे सो सर्ब फल हर ले कुल समूह करत उदार संसार उतरस पार हर चरण बोहित ताहे मिल साध संग जस गाहे हर पैज रखे मरार हर नानक सरन द्वार बलावन महला पहला थिती घर दसवां जत एक ओंकार सतगुर प्रसाद एकम एकंकार नराला अमर अजोनी जात ना जाला अगम अगोचर रूप ना रेखिया खोजत खोजत घट घट देखे।

गुर कै शब्द महल घर दिसै रहाउ, दूजे भाए लगे पछताणे, जम दरबांदे आवण जाने, क्या लै आवह क्या ले जाहे, सिर जमकाल से चोटां खाहे, बिन गुर शब्द ना छूटस कोए, पाखंड कीनै मुक्त ना होए, आपे सच किया कर जोड़, अंडज फोड़ जोड़ विछोड़, तरत आकाश किए बैसन कौ थाऊ, रात दिनंत किए पौ पाऊ।

कीमत पाए रहया भरपूर, किस नेड़े किस आखां दूर, चौथ अपाए चारे बेदा, खानी चारे बाणी भेदा, अष्ट दशा

मुख शरीर सात समुंद भरे निर्मल नीर मज्जन सील सच हृदय विचार गुर कै शब्द पावे सब पार मन साचा मुख साचो पाए सच निशाने ठाक न पाए अष्टमी अष्ट सिद्ध बुद्ध साधे सच निह केवल कर्म अरादे पौन पानी अग्नि बिसराओ तही निरंजन साचो नाओ किसमें मनुआ रहया लिबलाय प्रणवत नानक काल न खाय नाओ नौमी नवे नाथ नव खंडा घट घट नाथ।

आत्म चीनै पखंड राच तत् नहीं बीनै निर्मल निराहार ने केवल सूचे साचे ना लागे मल जह देखो तह एको एका हुर जी अपाए वेको वेका हलोहार किए फल जाए रस कस खाए साध गवाए कूड़ै लालच लपटै लपटाए छूटै गुरमुख साच कमाए द्वादश मुद्रा मन अवतूता ऐन सजागह कभै ना सूता जागत जाग

बिन सबनासा फूटे खपर दुबदा मनसा ममता जालते रह उदासा प्रणवत नानक हमता के दासा। बलावल मोहल्ला तीजा वार सत कर दसवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद आदित्वार आद पुरख है सोई आपे वरतै अवर ना कोई।

आख आख रही सब लिवलाई, जिस देवै तिस पल्लै पाई, अगमे अगोचर लखिया न जाई, गुर कै शब्द हर रहया सुमाई, मंगल माया मोह उपाया, आपे सिर सिर तंदै लाया, आप बजाए सोई बूझै, गुर कै शब्द दर कर सूझै, प्रेम भगत करे लिवलाए, हौ मैं ममता शब्द जलाई, बुधवार आपे बुध सार, गुरमुख करनी शब्द विचार, नाम रते मन निर्मल होए, हर गुण

द्वार प्रभ रहे आसमाई, आप उपाय सब कीमत पाई, गुरमुख हो ऐसो करे विचार, सच संयम करनी है कार, वर्त नेम नेता प्रत पूजा।

बार दिन सरहण तिमें संसार आवागौन किया करतार निश्चल साच रहया काल तार नानक गुरमुख बूझै को शब्द विचार बिलावल महला तीजा आद पुरखे आपे श्रेष्ठ साजे जी जंत माया मोहे पाजे दूजे पाए पर पंच लागे आवह जावह मरह अपागे सतगुर भेटे सो जी पाए पर पंच चूकै सच समाए जाकै।

काई, परमे फूला आवे जाय। सतगुर सेवै सो जन बूझै, हउमै मारे तां दर सूझै।

बाई थिती वार सब आवह जाहि गुज शब्द निश्चल सदा सच समाहि थिती वार ता जां सच राती बिन नावे सब परमह काची मन मुख मरह मर बिगति जाहे एक ना चेतह दूजे लुवाहे अचेत पिंडी अज्ञान अंधार बिन शब्द क्यों पाए पार आप उपाय उपावन हार आपे की तोन गुर विचार बहुते पेख करह पेख तारी पाव पाव ब्रह्म है काची सारी एथ सुख न आगे होए मन मुख मुए अपना जन्म खोए।

मुग्ध गुवार। नानक गुरमुख बूजै सूजी पाए, इकत नाम सदा रहे आसमाय। बलावल महला पहला शंत दखणी, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मुंदन वेले

डार धरी हर लिवलाई राम लिवलाए हर सिंह रही गोयल सहज शब्द शिंगारिया कर जोड़ गुर पह कर बेनंती मिलो साच प्यारिया तन पाए भगती देख प्रीतम काम क्रोध निवारिया नानक।

मन सुख सुमान राम गुरु तुठे हर प्रभ पाया रंग रलिया माना राम वड भागिया सोहागनी हर मस्तक माना राम हर प्रभ हर सुहाग है।

नित हर हर जापै राम। मेरे हर प्रभ भावै सो करै, हर रंग हर रापै राम। जन नानक सहज मलाया, हर रस हर त्रापै राम। मानस जन्म हर पाईऐ, हर रावण वीरा राम। गुरमुख मिल सोहागणी, रंग होए कनेरा राम। जिन मानस जन्म ना पाया, तिन भाग मंदेरा राम। हर हर हर हर राख प्रभ, नानक जन तेरा राम। गुर हर प्रभ अगम दृढ़ाया, मन तन रंग पीना राम। भगत वछल

राम सफल जन्म हर पाया नानक प्रभ की नाराम बलावल महला चौथा सलोक हर प्रभ सज्जन लोड़ लहो मन वसै वडभाग गुर पूरै वेखा लिया नानक।

आया हर हर लिव लागे राम अंतर कमल पर गासिया गुर ज्ञानी जागे राम जन नानक हर प्रभ पाया पूरे वड भागे राम हर प्रभ हर मन पाया हर नाम वधाई राम गुर पूरे प्रभ पाया हर हर लिव लाई राम अज्ञान अंधेरा कटिया जोत प्रगटियाई राम जन नानक नाम आधार है हर नाम समाई राम तन हर प्रभ प्यारे राविया जा हर प्रभ भाई राम अखी प्रेम कसाईया ज्यो बिलक मसाई राम गुर पूरे हर मेलिया हर रस अघाई राम जन नानक नाम बिगसिया हर हर लिव लाई राम हम मूर्ख मुग्ध मलाया हर कृपा तारी राम तन तन गुरु साबास है जिन हों मैं मारी राम जिन वड भागियां वड भाग है हर हर उर

अविनाशी वर सुनिया मन उपजया चाया राम मन प्रीत लागे वड्डे भागे कब मिलिए पूर्ण पति सहजे समाइये गोविंद पाइये देहो सखिए मोहे मते दिन रहन थाडी करो सेवा प्रभ कमन जुगती पाया बिनवंत नानक करो कृपा लहु मोहे लड़ लाया भया समाहड़ा हर रतन वसाहा राम खोजी खोज लद्दा हर संतन पाहा राम मिले संत प्यारे दया धारे कथ है अकथ बिचारू एक चित एक मन त्याए स्वामी लाए प्रीत प्यारू कर जोड़ प्रभ तह कर बेनंती मिले हर जस लाहा बिनवंत नानक दास तेरा मेरा प्रभ अगम अथाह।

आत्म पसारा करनहारा प्रभ बिना नहीं जानिए आप करता आप भुगता आप कारण किया बिनवंत नानक।

सगला बानहरा हर हरा स्वामी सुखागामी आनंद मंगल रस घना नवल नवतन नाह बाला कवन रसना गुण।

जियो सुख सागर प्रभ भेटिया नानक सुखी होत एहो जियो संत सुख सागर प्रभ पाई जब होवे पागो राम मानन मान वंजाई है हर चरनी लागो राम छोड़ सियान पचातुरी दुर्मत बुद्ध त्यागो राम नानक पवो सरनाई राम राय फिर हुए सुहागो राम सो प्रभ तज कत लागी है जिस बिन मर जाइए राम लाज ना आवे ज्ञान मती दुर्जन बिरमाइए राम पतत पावन प्रभ त्याग करे कहो कत ठहराइए राम नानक भगत पाओ कर दयाल की जीवन पद पाइए राम श्री गोपाल ना उचरह बल गईये दोहचारन रसना राम प्रभ भगत बछल न सेवही काया काक ग्रसना राम भ्रम मोही दुख ना जानही कोट जोनी बसना राम नानक बिन हर अवर जे चाहना बिस्ता क्रिम पसमा राम लाए बिरो भगवंत संगे होए मिल बैरागण राम चंदन चीर सुगंध रसा हौ मैं बिख त्यागण राम ईत ऊत नह डोलिया हर सेवा जागण राम नानक जिन प्रभ पाया अपना सा अटल सुहागण राम बलावल महला पंजवा हर खोज हो वडभागी हो मिल साधु संगे राम गुण गोविंद

तेरे कह सको प्रभ अंतर जामी राम सिमर सिमर नारायण भय पार ग्रामी राम गुण गावत गोविंद के सब इच्छ पजामी राम नानक उदरे जप हरे सबहू का स्वामी राम रास तिन्हड़े अपने।

कथा हरि उत्तम हर प्रभु गावया करनाद बलावल राग अपदेश गुरु सुन मन्निया तुर मस्तक पूरा भाग सब दिन सरहन गुण उच्चरै हर हर हर उर लिव लाग सब तन मन हरिया होया मन खिड़िया हरिया बाग अज्ञान अंधेरा मिट गया गुर चानन ज्ञान चराग जन नानक जीवै देख हर एक निमख घड़ी मुख लाग महला तीजा बलावल तब ही कीजिय जब मुख होवै नाम राग नाद शब्द सोहणे जान लागै सहज ध्यान राग नाद छोड़ हर सेवी ता दरगाह पाई मान नानक गुरमुख ब्रह्म बिचारी चूकै मन अभमान पौड़ी तू हर प्रभ आप अगम है सब तुदे पाया तू आपे आप वरतदा सब जगत सबाया तुदे आपे ताड़ी लाई है आपे गुण गाया हर त्यावो हो भगत हो दिन सरात अंत लए छड़ाया जिन सेवया तिन सुख पाया हर नाम समाया सलोक महला तीजा दूजे पाए बलावल ना होवे मन मुख ताए ना पाए पाखंड भगत ना होवे पार ब्रह्म ना पाया जाए मन हठ कर्म कमावणी थाए ना कोई पाए नानक गुरमुख आप बिचारी है बिचो आप गवाए आपे आप पार ब्रह्म है पार ब्रह्म वस्या मन आए जम्मन मरना कटिया ज्योति जोत मलाई महला तीजा बलावल करे हो तुम प्यारे हो एक सस्यों लिबलाई जन्म मरण दुख कटिया सच्चे रह समाई सदा बलावल आनंद है जे चल है सतगुर पाई।

आप सो भगता का मित हर सब कोई हर कै वस भगता कै आनंद घर हर भगता का मेली सरबत सौ नसल जन टंग धार हर सबना का है खसम सो भगत जन चित कर तुझे अपड़ कोई ना सकै सब चख चख पवे झाड़ सलोक महला तीजा ब्रह्म बिंद है ते ब्राह्मणा जे चल सत गुर पाई।

इस जुग में है विरले ब्राह्मण, ब्रह्म बिंद है चेतलाय। नानक जिन को नदर करे हर सच्चा, से नाम रहे लिवलाय। महला तीजा, सतगुर की सेवना कीतिया, शब्द न लगो पाओ हम मैं रोग कमावना। हत दीर्घ बहु सुआउ, मन हट कर्म कमावनी, फिर जोनी पाए। गुरमुख जन्म सफल है, जिसनो आपे लए मलाए। नानक नदरी नदर करे, ता नाम धन पल्ले पाए। पौड़ी सब वडियाइयां हर नाम विच, हर गुरमुख त्याई। जे वस्त मंगी है साई पाई है, जे नाम चित लाई है। गोहज गल जी की कीचै सतगुरु पास, ता सर्ब सुख पाई है। गुरपुरा हर उपदेश दे, सब भुख लह जाई है। जिस पूर्व हो ऐ लिखिया, सो हर गुण गाई है। सलोक महला तीजा, सतगुर ते खाली को नहीं। मेरा प्रभ मेल मलाई, सतगुर का दर्शन सफल है। जेहा को इच्छे तेहा फल पाई। गुर का शब्द अमृत है, सब तृष्णा भुख गवाई। हर रस पी संतोख हुआ, सच वस्या मन आई। सच त्याए अमरा पद पाया, अनहद शब्द बजाई। सचो दह दिस पसरिया, गुर कै सहज सुभाई। नानक जिने अंदर सच है, से जन छपहना किसे देश पाई। महला तीजा, गुर सेवा ते हर पाई है। जा कहो नजर करे, मानस ते देवते भए। सच्ची भगत जिस दे, हौं मैं मार मलायन। गुर कै शब्द सुचे, नानक सहजे मिल रहे। नाम वडियाई दे पौड़ी, गुर सतगुर विच नावे की वड्डी वडियाई। हर करतै आप वधाई, सेवक सिख सब वेख वेख जीवन। उन्ना अंदर हिरदै पाई, निंदक दुष्ट वडियाई वेख ना सकन। उन्ना पराया भला ना सुखाई, क्या होवै किसे ही की झख मारी। जा सच्चे स्यों बन आई, जे गल करते पावै, सा नित नित चढ़ै सवाई। सब झख झख

फित की है सच भगत वडियाई सच साहेब सच्चा न्याओ है सिर निंदक शाई जन नानक सच अरादिया गुरमुख सुख पाई। श्लोक महला तीजा पूरे भाग सतगुर पाई जे हर प्रभ बख्श करे उपावा सिर उपाऊ है नाम प्राप्त होए।

कडिए हर हर कृपाल हुआ भगत जना उपर हरे अपनी कृपा कर हरे आप रख लिए। श्लोक महला तीजा। अंदर कपट सदा दुख है मनमुख ध्यान न लागे दुख विच कार कमावनी दुख वरतै दुख आगे करमी सत गुर भेटी है ता सच नाम लिव लागे नानक सहजे सुख होए अंदरों भ्रम भौ भागै। महला तीजा। गुरमुख सदा हर रंग है हर का नाउ मन पाया गुरमुख वेखण बोलना नाम जपत सुख पाया नानक गुरमुख ज्ञान परगासिया तिमर अज्ञान अंधेर चुकाया। महला तीजा। मनमुख मैले मरह गवार गुरमुख निर्मल हर राखिया उरतार भनत नानक सुनो जन पाई सतगुर सेवे हो हउमै मल जाई अंदर संसा दुख व्यापे सिर तंदा नित मार दूजे पाए सूते कबहु ना जाग है माया मोह प्यार। नाम ना चित है शब्द ना विचार है इह मनमुख का विचार हर नाम ना पाया बिरथा जन्म गवाया नानक जम मार करे खुआर पौड़ी जिसनो हर भगत सच बख्शियन सो सच्चा साहु तिसकी महताजी लोक कढ़दा होर तहट ना वथ ना विसाहु भगत जना को सन्मुख होवै सो हर रास लए वेमुख।

आप तरिया कुल उदरे धन जने दी माया सदा सहज सुख मन वसिया सच्चे स्यों लिवलाया ब्रह्मा विष्णु महादेव त्रै गुण भुले हमें मोह वधाया पंडित पढ़ पढ़ मुनी भुले दूजे पाए चित लाया जोगी जंगम सन्यासी भुले विण गुर तत न पाया मनमुख दुखिए सदा ब्रह्म भुले तिन्नी बिरथा जन्म गवाया नानक नाम रते सही जन समधे जे आपे बख्श मलाया महला तीजा नानक सो सलाही है जिस वस सब किश होए।

हुए कहना किशु ना जाए। नानक तिनका आख्या आप सुने, जे लयन पन्ने पाए महला तीजा। काल मार मनसा मनह समाणी, अंतर निर्मल नाउ। अन दिन जागे कदे ना सोए, सहजे अमृत पियाउ। मीठा बोले अमृत बाणी, अन दिन हर गुण गाउ। निज कर वासा सदा सुंदे, नानक तिन मिलिया सुख पाउ। पौड़ी हर तन रतन जवेहरी, सो गुर हर धन हर पासों देवाया। जे किसै किहो दिस आवे, ता कोई किहो मंग लए। अकै कोई किहो देवाए, इहो हर धन जोर कीतै किसै नाल ना जाए बंडाया। जिसनो सतगुर नाल हर शरदा लाए, तिस हर धन की वंड हाथ आवे। जिसनो करतै तुर लिख पाया, इस हर धन का कोई शरीक नाही। किसै कै खत नाही, किसै कै सीव बन्ने रोल नाही। जे को हर धन की बखीली करे, तिसका मुंह

आरे सतगुर सुख विखालिया सच्चा शब्द बिचार नानक अवर ना सुजई हर बिन बख्शन हार महला तीजा हम माया मोहनी दूजे लगे जाए ना ए मारी ना मरे ना ए हट बकाए गुर कै शब्द पर जालिए ता ए विचों जाए तन मन होवे उजला नाम वसे मन आए नानक माया का मारन शब्द है गुरमुख पाया जाई पौड़ी सतगुर की वड़ियाई सतगुर दित्ती तुरहों हुक्म।

नारायण का अन्न। पांच चोर तिना घर मोहन हम मैं अंदर सन्न। साकत मुठे दुर्मति हर रस ना जानन। जिन्नी अमृत भरम लुटाया बिख स्यों रचहर चन्न। दुष्टा सीती पिरहड़ी जन स्यों वाद करन। नानक साकत नरक मह जम बदे दुख सहन। पै किरत कमाम दे जिव राख है तिवै रहन। महला तीजा जिन्नी सतगुर सेविया ताणन ताने तिस। सास ग्रास सदा मन वसै जम जोहे न सकै तिस। हिरदय हर हर नाम रस कबला सेवक तिस। हर दासां का दास हुए परम पदार्थ तिस। नानक मन तन जिस प्रभ वसै हम सद कुर्बान है तिस। जिनको पूर्व लिखिया रस संत जना स्यो तिस। पौड़ी जो बोले पूरा सतगुरु सो परमेश्वर सुनिया। सोई वर्तिया जगत मह कट कट मुख भणिया। बहुत वड्याईया साहिब है नह जाही गणिया। सच सहज आनंद सतगुरु पास सच्ची गुरमणिया। नानक संत सवारे पार ब्रह्म सच्चे ज्यों बनिया।

आनंद वडभागी हर पाया पूरन परमानंद जन नानक नाम सलाहया बहुड़ ना मन तन भंग पौड़ी कोई निंदक होवे सतगुरु का फिर शरण गुर आवे पिछले गुनाह सतगुर बख्श लई।

तनवंता हर निर्तन मने ताकी कशु ना कानी रे राजा प्रजा सम कर मारे ऐसो काल बडानी रे हर के सेवक जो हर पाए तिनकी कथा नरारी रे आवह ना जाहे ना कबहू मरते पार ब्रह्म संगारी रे पुत्र

आप न बौरा राम कियो बौरा, सतगुर जार गयो भ्रम मोरा। मैं बिगड़े अपनी मत खोई, मेरे परम भूलो मत कोई। सो बौरा जो आप ना पछाने, आप पछाने ता एक जाने। अबह ना माता सो कबो ना माता, कह कबीर राम रंग राता। बलावल ग्रह तज बन खंड जाइए, चुन खाइए कंदा। अजो बिकार ना छोड़ई, पापी मन मंदा। क्यों छूटो कैसे तरो, भवजन निद भारी। राख राख मेरे बीठला, जन सरन तुम्हारी रहाओ। बिखै बिखै की बासना, तजी न जाई। अनक जतन कर राखी है, फिर लपटाई। जरा जीवन जो बन गया,

एक भयो सात सूत इन मुंडिये खोए इह मुंडिया क्यों ना मोयो सर्व सुखा का एक हर स्वामी सो गुर नाम दयो संत प्रहलाद की पैज जिन राखी हरनाखस नख बिदरियो घर के देव पितर की छोड़ी गुर को शब्द लयो कहत कबीर सगल पाप खंडन संतहां लै उदरियो बलावल को हर समान नहीं राजा एह भूपत सब दिवस चार के झूठे करत दिवाजा रहाओ तेरो जन हुए सोए कत डोले तीन भवन पर साजा हाथ पसार सके को जन को बोल सके ना अंदाजा चेत अचेत मूड मन मेरे बाजे अनहद बाजा कह कबीर संसा भ्रम चूको त्रू प्रहलाद नवाजा बलावल राख ले हो हम ते बिगरी सील धर्म जप भगत ना कीनी हौ अभमान टेढ़ पगरी रहाओ अमर जान संची एह काया एह मिथ्या काची गगरी जिन्हें नवाज साज हम किए तिसे बसार अवर लगरी संदक तोहे साध नहीं कही ओ सरन परे तुमरी पगरी कह कबीर एह बिनती सुनियो हो मत कल हो जम की खबरी बलावल धर्मां दे ठाडे दरबार तुझ बिन सुरत करे को मेरी दर्शन दीजे खोल कवार रहाओ तुम तन तनी उदार त्यागी सरवनन सुनियत सुजस तुम।

अवल चरण कमल जा हृदय बस है सो जन क्यों डोले देव मानव सब सुख नौ निदता कै सहज सहज जस बोले देव रहाव तब एह मत जो सब मह पी।

वर्ण अवर्ण रंक नहीं ईश्वर बिमल बास जानिए जग सोए रहाव ब्राह्मण बैस सूद अर क्षत्री डोम चंडार मलेश मन सोए हुए पुनीत भगवंत भजन ते आप तार तारे कुल दोए धन सो गाओ धन सो ठाओ धन पुनीत कतंब सब लोए जिन पिया सार रस तजे आन रस होए रस मगन डारे बिख खोए पंडित सूर सतर पत राजा भगत बराबर और ना कोए जैसे परैन पात्र।

गोसाई जो बिन हर आस अवर काहू की कीजै सा निःफल आस सब बिरथी जाई रहाउ जो दिसै माया मोह कटंब सब मत तिसकी आस लग जन्म गवाई इनकै किस हाथ नहीं कहां करह एह बपड़े इनका वाहया काश ना वसाई मेरे मन आस कर हर प्रीतम अपने की जो तुझ तारै तेरा कटंब सब छड़ाई जे किस आस अवर करह परमित्री मत तू जानह तेरा कितै काम आई ए आस परमित्री भाव दूजा है खिनमह झूठ बिनस सब जाई।

केश किसी कै हाथ नाही मेरे स्वामी, ऐसी मेरे सतगुर बूझ बुझाई। जन नानक की आस तू जान है, हर दर्शन देख हर दर्शन तृप्ताई। गोंड महला चौथा। ऐसा हर सेवी है नित त्याई है, जोखिन में किलविक सब करे बनासा। जे हर त्याग अवर की आस कीजै, तां हर निफल सब काल गवासा। मेरे मन हर सेवे हो सुख दाता स्वामी, जिस सेवे है सब भुख लहासा। मेरे मन हर ऊपर की जय परवासा, जह जाइए तह नाल मेरा स्वामी। हर अपनी पैज रखे जन दासा रहाओ, जे अपनी बिरथा कहो अवरा पह, तां आगे अपनी बिरथा बहो बहुत कढासा। अपनी बिरथा कहो हर अपने स्वामी पह, जो तुमरे दुख तत्काल कटासा। सो ऐसा प्रभ छोड़ अपनी

जो हर जन नीच जात सेवकान गोंड महला चौथा हर अंतर जामी सब तह वरत जिहा हर कराए तिहा को करइए सो ऐसा हर सेव सदा मन मेरे जो तुदनो सब दू रख लइए मेरे मन हर जप हर नित पड़इए हर बिन को मार जवाल ना साके ता मेरे मन कायत कड़इए रहाउ हर परपंच किया सब करता विच आपे अपनी जोत तरइए हर एक को बोले हर एक बुलावे गुर पूरे हर एक दिखइए हर अंतर नाले बाहर नाले कहो तिस पासो मन क्या चोरइए निह कपट सेवा कीजे हर केरी ता मेरे मन सर्ब सुख पइए जिस दे वस सब किश सो सब दू वड्डा सो मेरे मन सदा धिआइए जन नानक सो हर नाल है तेरे हर सदा धिआए तू तुद ले छडइए गोंड महला चौथा।

ताबीर। मिल मिल सखी गुण कहो मेरे प्रभ के, ले सतगुर की मत तीर। जन नानक की हर आस पुजावहो, हर दर्शन शांत शरीर। शका एक राग गोंड महला पंजवा, चौपदे कर पहला, एक ओ

आदि सब करता सब भुगता रहाओ। सुनतो करता पेखत करता अदृष्टो करता दृष्टो करता ओपत करता परलो करता व्यापत करता लिपतो करता भक्तो करता बूजत करता आवत करता जात पी करता निर्गुण करता सरगुण करता गुरुपद साध नानक समदृष्टा गोंड महला पंजवा। फाक्यो मीन कपक की न्याई तू उर्ज रहो संपाए ले पग धार है सास लेख लै तो उदर है हर गुण गाए ले मन समझ छोड़ आवाए ले अपने रह।

तिहाई, काटे अवकट जात कतह सहाय रहाउ। रंक राहु जाके एक समान, कीत हस्त सगल पुराण। बियो पूछना मसलत तरे, जो किस करे सो आपे करे। जा कायंत न जान सकोए, आपे आप निरंजन सोई। आप अकार आप निरंकार, काट काट काट सब काट आधार। नाम रंग भगत भय लाल, जस करते संत सदा निहाल। नाम रंग जन रहे अघाए, नानक तिन जन लागे पाए। गोंड महला पंजवां, जां कै संग इहो मन निर्मल। जां कै संग हर हर सिमरन, जां कै संग किल बिखो।

रास से संतन हर के मेरे मीत केवल नाम गाय जाके नीत रहाउ जाके मंत्र हर हर मन वसै जाके उपदेश परम पौ नसै जाके कीर्त निर्मल सार जाकी रेन बांछै संसार कोट पतत जाके संग उधार एक निरंकार जाके नाम आधार सर्व जिया का जाने पेओ कृपा निदान निरंजन देव पार ब्रह्म जब पये कृपाल तब पेटे गुर साध दयाल दिन रैन नानक नाम ते आए सुख सहज आनंद हर नाय गोंड महला पंजवा गुर की मूर्त मन मह ध्यान गुर के शब्द मंत्र मन मान गुर के चरण हृदय लै धारो गुर पार ब्रह्म सदा नमस्कार मत को परम भुले संसार गुर बिन कोई न उतरस पार रहाओ भूले को गुर मार्ग पाया अवर त्याग हर भगती लाया जन्म मरण की त्रास मिटाई गुर पूरे की बेअंत वडाई गुर प्रसाद ऊर्द कमल विगास अंधकार मह भया प्रगास जिनकी आसो गुर ते जानिया गुर कृपा ते मुग्ध मन मानिया।

गुर के सेवक की पूरन काल, गुर के सेवक को दुख ना व्यापे, गुर का सेवक दह दिस जापे, गुर की महिमा कथन न जाए, पार ब्रह्म गुर रहे आसमाय। कहो नानक जाके पूरे पाग, गुर चरणीता का मन लाग, गोंड महला पंजवा। गुर मेरी पूजा गुर गोबिंद, गुर मेरा पार ब्रह्म गुर भगवंत, गुर मेरा देव अलख अपेव, सर्ब पूज चरण गुर सेव। गुर बिन अवर नाही मैं थाऊ, अन बिन जपो गुरु गुर नाऊ रहाओ। गुर मेरा ज्ञान गुर हृदय ध्यान, गुर गोपाल पुरख भगवान, गुर की शरण रहो कर जोर, गुरु बिना मैं नाही होर। गुर बोहित तारे भव पार, गुर सेवा जमते छुटकार, अंधकार मह गुर मंत्र उजारा, गुर कै संग सगल निस्तारा, गुर पूरा पाई है वड भागी,

नानक दास गोंड महला पंजवां उनको खसम कीनी ठाक हारी दास संग ते मार बदारी गोविंद भगत का महल ना पाया राम जना मिल मंगल गाया सगल सृष्ट के पंच सिकदार राम भगत के पानी हार रहाओ जगत पास्ते लेते दान गोविंद भगत को करहे सलाम लूट ले साकत पत खोवे सात जना पग मल मल धोवे पंच पूत जने एक माई उत्पुज खेल कर जगत व्याय तीन गुणा कै संग रच रसी इनको छोड़ ऊपर जन बसे कर कृपा जन लिए छड़ाई जिसके सेत न रखे हटाई कहो नानक भगत प्रभ सार बिन भगती सब होए खुआर गोंड महला पंजवां कल कलेश मिटे हर नाई दुख बिन से सुख की नो ठाओ जप जप अमृत नाम अगाई संत प्रसाद सगल फल पाई राम जपत जन पार परी जन्म जन्म के पाप हरे रहाओ गुर के चरण हृदय उर तारी अग्न सागर ते उतरे पारी जन्म मरण सब मिटी उपाद प्रभ स्यों लागी सहज समाद थान थनंतरे को स्वामी सगल कटा का अंतर जामी।

गोंड महला पंजवा संत का लिया तर्त बदारो संत का निंदक आकाश ते टारो संत को राखो अपने जी नाल संत उदारो तत खिण ताल सोई संत जे पावे राम संत गोविंद कै कै काम रहाओ संत कै ऊपर दे प्रभ हाथ संत कै संग बसै दिन रात सास सास संत है प्रतपाल संत का दुखी राज ते टाल संत की निंदा करो ना कोए जो निंदा तिसका पतन होए जिस कौ राख सिर जनहार चख मारो सगल संसार प्रभ अपने का पया बसास जियो पिंड सब तिसकी रास नानक कौ उपजी प्रतीत मनमुख हार गुरमुख सद जीत गोंड महला पंजवा नाम निरंजन नीर नारायण रसना सिमरत पाप बलायण रहाओ नारायण सब माहि निवास नारायण कट कट परगास नारायण कहते नरक ना जाहे नारायण सेव सगल फल पाहे नारायण मन माहि आधार नारायण बोहित संसार नारायण कहत जम भाग पलायन नारायण दंत पानी दायन नारायण सद सद बख्शे।

नारायण साध संग नारायण बारंबार नारायण गायन वस्त अगोचर गुर मिल लही नारायण ओट नानक दास गई गोंड महला पंजवा जा कौ राख राखन हार तिसका अंग करे निरंकार रहाउ मात गर्भ मह अग्न ना जो है काम क्रोध लोभ मोह ना पोह है साध संग जपै निरंकार

जाए, जो जो गर्भ करे सो जाए, गरीब दास की प्रभु शरणाए, जो जो शरण पया हर राय, सो दास रखिया अपने कंठ लाई, जे को बहुत करे अहंकार, ओह खिन महरो ताखा कूनाल, है पी साचा होवनहार, सदा सदा जाई बलिहार, अपने दास रखे कृपा तार, नानक के प्रभ प्राण आधार, गोंड महला पंजवां।

वाला, ना इस दुख नहीं जम जाला, ना एहो बिन सह ना एहो जाए, आद जगादी रहया समाए, ना इस उसन नहीं इस सीत, ना इस दुश्मन ना इस मीत, ना इस हरख नहीं इस सोग, सब किस इसका एहो करने जोग, ना इस बाप नहीं इस माया, एहो अपरंपर होता आया, पाप पुन का इस लेप न लागे, घट घट अंतर सद ही जागे, तीन गुणा एक सकत उपाया, महामाया ता की है छाया, अछल अछेद अभेद दयाल, दीन दयाल सदा कृपाल, ता की गत मित कछु ना पाए, नानक ता कै बल बल जाए, गोंड महला पंजवां, संतन कै बलिहार जाओ, संतन कै संग राम गुण गाओ, संत प्रसाद किल विख सब गए, संत सरन वड भागी पए, राम जपत कछ बिघना व्यापै, गुर प्रसाद अपना प्रभ जापै रहाओ, पार ब्रह्म जब हुए दयाल, साधु जन की करै रवाल, काम क्रोध

लागे, चरण कमल जन का आधार, गुण गोविंद रौ सच वापार, दास जना की मनसा पूर, नानक सुख पावे जन तूर, राग गोंड अष्टपदियां महा।

अमराव पतियाई दुष्ट अहंकारी मार पचाई निंदक कै मुख कीनो रोग जय जय कार करे सब लोग संतन कै मन महा आनंद संत जप है गुरुदेव भगवंत संगत के मुख उजल पए सगल थान निंदक के गए सास सास जन सदा सलाहे पार ब्रह्म गुर बे परवाहे सगल पै मिटे जाकी सरन निंदक मार पाए सब धरन।

निंदक अहंकारी जान पाल मान है निंदक वेकारी। गुर कै सिख सत गुरु ते आया जान उबरे निंदक नरक पाया। सुन साजन मेरे मीत प्यारे सत बचन वरत है हर द्वारी। जैसा करे सो तैसा पाई अभमानी की जाड़ सर पर जाए। ने धरया सत गुर धर तेरी कर कृपा रख हो जन केरी। कहो नानक तिस गुर बलिहारी जा कै सिमरन पै जसवारी। राग गोंड बाणी भगतां की कबीर जी घर पहला। एक ओंकार सतगुर प्रसाद संत मिलै किस सुनिए कहिए। मिलै असंत मस्त कर रही है बाबा बोलना क्या कहिए। जैसे राम नाम रव रही है रहाओ संतन स्यों बोले उपकारी। मूर्ख स्यों बोले झक मारी बोलत बोलत बढ़े बेकारा। बिन बोले क्या करहे बिचारा कहो कबीर शूशा घट बोले। भरिया हुए सो कबहू ना डोले गोंड। नरु मरे नर काम न आवे पशु मरे दस काज सुआरे। अपने कर्म की गत मैं क्या जानो मैं क्या जानो बाबा रे रहाओ। हाड़ जले जैसे लकड़ी का तूला केस जले जैसे घास का पूला। कहो कबीर तब ही नर जागे जम का डंड मूंड में लागे। गोंड आकाश गगन पाताल गगन है चहो दिस गगन रहाए ले। आनंद मूल सदा पुरखोत्तम कट बिन सह गगन ना जाए ले। मोहे बैराग भयो एहो जियो आए कहां गयो रहाओ। पंच तत् मिल काया कीनी तत् कहां ते कीन रे। कर्म बद तुम जियो कहत हो कर्म है किन जियो दीन रे। हर मह तन है तन मह हर है सर्व निरंतर सोए रे। कह कबीर राम नाम ना छोड़ो सहजे होए सो होए रे। राग गोंड बाणी कबीर जियो की घर दूजा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद पूजा बांध पिला कर डार्यो। हस्ती क्रोप मूंड मह मार्यो हस्त भाग कै चीसा मारे। या मूर्त कै हौ बलिहारे आहे मेरे ठाकुर तुमरा जोर। काजी बकबो हस्ती तोर रहाओ। रे महावत तुझ डारो काट इसे तराव हो काल हो साट। हस्त न तोरे तरै ध्यान वाके हृदय बसे भगवान। क्या अपराध संत है कीना बांध पोट कुंचर कौ दीना। कुंचर पोट लै लै नमस्कार बूझी नहीं काजी अंधियार। तीन बार पतिया भर लीना मन कठोर अजहू ना पतीना। कह कबीर हमरा गोविंद चौथे पद में है जन की जिंद। गोंड ना एहु मानस ना एहु देव ना एहु जति कहा वैसे ओ। ना एहु जोगी ना अवतूता ना इस माए ना काहू पूता। या मंदर में कौन बसाई ता का अंत न को उपाई रहाओ। ना एहु गिरही ना ओदासी ना एहु राज ना भीख मगासी। ना इस पिंड न रख तू राती ना एहु ब्राह्मण ना एहु खाती। ना एहु तपा कहावै सेख ना एहु जीवै ना मरता देख। इस मरते को जे को रोवै जो रोवै सोई पत खोवै। गुर प्रसाद में डगरो पाया जीवन मरन दो मिटवाया। कहो कबीर एहो राम की अंश जस कागद पर मिटै ना मंस। गोंड टूटे तागे न खुट्टी पान द्वार ऊपर चिलका वह कान। कूच बिचारे पुए फाल
या मुंडिया सिर चढ़बो काल, एहो मुंडिया सगलो द्रब खोई, आवत जात नाक सर होई, रहाओ तुरी नार की छोड़ी बाता, राम नाम वाका मन राता, लड़की लड़कन खैबो नाही, मुंडिया अन दिन तापे जाहि, एक दोए मंदर एक दोए बाट, हमको साथर उनको खाट, मूंड पलोस कमर बद पोथी, हमको चाबन उनको रोटी, मुंडिया मुंडिया हुए एक, ए मुंडिया बूडत की टेक, सुन अंधली लोई बे पीर, इन मुंडियन भज सरन कबीर, गोंड खसम मरे तो नार ना रोवे, उस रखवारा औरो होवे, रखवारी का हुए बनास, आगे नरक इहा भोग बलास, एक सुहागन जगत प्यारी, सगले जी जंत की नारी, रहाओ सुहागन गल सो है हार, संत को बिख बिगसे संसार, कर शिंगार बह पखियारी, संत की ठिठकी फिरे बेचारी, संत भाग ओ पाछे परे, गुर प्रसादी मारू डरे, साकत की ओह पिंड परायण, हमको दृष्ट परे त्रिख डायण, हम तिस काबो जानिया पेव, जब हुए कृपाल मिले गुरुदेव, कहो कबीर अब बाहर परी, संसार कै अंचल लरी, गोंड ग्रह सुबा जा करे नाही, आवत पहिया खुदे जाए, वाकै अंतर नहीं संतोख, बिन सुहागन लागे दोख, धन सुहागन महापवीत, तपे तपीसर डोले चीत, रहाओ सुहागन किरपन की पूती, सेवक ताज जगत स्यों सूती, साधु कै ठाडी दरबार, सरन तेरी मोको निस्तार, सुहागन है अत सुंदरी, पग ने वर सनक सुनहरी, जौ लग प्राण तउ लग संगे, नाहे ता चली बेग उठ नंगे, सुहागन भवन त्रै लिया, दस अठ प्राण तीर्थ रस किया, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर बेदे, बड़े भूपत राजे है शेदे, सुहागन उरवार ना पार, पांच नारद कै संग बिदवार, पांच नारद के मिटवे फूटे, कहो कबीर गुर कृपा छूटे, गोंड जैसे मंदर मह बलहर ना ठहरे, नाम बिना कैसे पार उतरे, कुंभ बिना जल ना टीकावे, साधु बिन ऐसे अवगत जावे, जारो तिसे जो राम ना चेते, तन मन रमत रह मह खेते, रहाऊ जैसे हलहर बिना जिमी नहीं बोइए, सूत बिना कैसे मणि परोइए, कुंडी बिन क्या गंथ चढ़ाइए, साधु बिन तैसे अवगत जाइए, जैसे मात पिता बिन बाल न होई, बिंब बिना कैसे कपरे तोई, कोर बिना कैसे असवार, साधु बिन नाही दरबार, जैसे बाजे बिन नहीं लीजे फेरी, खसम दोहागन ताज ओहेरी, कह कबीर एक कर करना, गुरमुख होए बहुर नहीं मरना, गोंड कूटन सोए जो मन को कूटे, मन कूटे तो जमते छूटे, कुट कुट मन कसवटी लावे, सो कूटन मुक्त बहु पावे, कूटन किसे कहो संसार, सगल बोलन के माहे विचार, रहाऊ नाचन सोए जो मन स्यो नाचे, झूठ ना पतिए परचे साचे, इस मन आगे पूरे ताल, इस नाचन के मन रखवाल, बजारी सो जो बजारह सोदे, पांच पलीत है कौ पर बोधे, नौ नायक की भगत पछाने, सो बाजारी हम गुरमाने, तस्कर सोए जे तात न करे, इंद्री कै जतन नाम उच्चरे, कहो कबीर हम ऐसे लखन, धन गुरुदेव अत रूप विचखन, गोंड धन गोपाल धन गुरुदेव, धन अनाद भूखे कवल टहकेव, धन ओए संत जिन ऐसी जानी, तिनको मिलबो सारंग पानी,
ਆਦ ਪੁਰਖ ਤੇ ਹੋਏ ਅਨਾਦ, ਜਪੀਐ ਨਾਮ ਅੰਨ ਕੈ ਸਾਧ ਰਹਾਉ, ਜਪੀਐ ਨਾਮ ਜਪੀਐ ਅੰਨ, ਅੰਬੈ ਕੈ ਸੰਗ ਨੀਕਾ ਵੰਨ, ਅੰਨੈ ਬਾਹਰ ਜੋ ਨਰ ਹੋਵੈ, ਤੀਨ ਭਵਨ ਮਹਿ ਆਪਣੀ ਖੋਹੈ, ਛੋਡਹਿ ਅੰਨ ਕਰਹਿ ਪਾਖੰਡ, ਨਾ ਸੁਹਾਗਨ ਨਾ ਓਹੇ ਰੰਡ, ਜਗ ਮਹਿ ਬਖਤੇ ਦੂਧਾ ਧਾਰੀ, ਗੁਪਤੀ ਖਾਵਹਿ ਬਟਕਾ ਸਾਰੀ, ਅੰਨੈ ਬਿਨਾ ਨਾ ਹੋਏ ਸੁਕਾਲ, ਤਜੈ ਅੰਨ ਨਾ ਮਿਲੈ ਗੋਪਾਲ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਹਮ ਐਸੇ ਜਾਣਿਆ, ਧਨ ਅਨਾਦ ਠਾਕੁਰ ਮਨ ਮਾਨਿਆ, ਰਾਗ ਗੋਂਡ ਬਾਣੀ ਨਾਮ ਦੇਉ ਜੀ ਕੀ ਘਰ ਪਹਿਲਾ, ਇਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਅਸਮੇਦ ਜਗਨੇ ਤੁਲਾ ਪੁਰਖ ਦਾਨੇ, ਪਰਾਗ ਇਸ਼ਨਾਨੇ ਤਉ ਨਾ ਪੁੱਜਹਿ ਹਰ ਕੀਰਤ ਨਾਮਾ, ਆਪਣੇ ਰਾਮ ਹੈ ਭਾਜਰੇ ਮਨ ਆਲਸੀਆ ਰਹਾਉ, ਗਯਾ ਪਿੰਡ ਭਰਤਾ ਬਨਾਰਸ ਅਸ ਬਸਤਾ, ਮੁਖ ਬੇਦ ਚਤਰ ਪੜਤਾ ਸਗਲ ਧਰਮ ਅਸ਼ਤਾ, ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ, ਖੱਟ ਕਰਮ ਸਹਿਤ ਰਹਿਤਾ, ਸੇਵਾ ਸਖਤ ਸੰਵਾਦੰ ਮਨ ਛੋੜ ਛੋੜ ਸਗਲ ਭੇਦੰ, ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਗੋਬਿੰਦੰ ਭਜ ਨਾਮਾ ਤਰਸ ਭਾਵ ਸਿੰਧੰ, ਗੋਂਡ ਨਾਦ ਭ੍ਰਮੇ ਜੈਸੇ ਮਿਰਗਾਏ, ਪ੍ਰਾਣ ਤਜੇ ਵਾਕੋ ਧਿਆਨ ਨਾ ਜਾਏ, ਐਸੇ ਰਾਮਾ ਐਸੇ ਹੀਰੋ, ਰਾਮ ਛੋੜ ਚਿਤ ਅੰਤ ਨਾ ਫੇਰੋ ਰਹਾਉ, ਜਿਉ ਮੀਨਾ ਹੀਰੈ ਪਸੁਆਰਾ, ਸੋਨਾ ਗੜ ਤੇ ਹੀਰੈ ਸੁਨਾਰਾ, ਜਿਉ ਬਿਖਈ ਹੀਰੈ ਪਰਨਾਰੀ, ਕੌਡਾ ਡਾਰ ਤੇ ਹੀਰੈ ਜੁਆਰੀ।

पे न जानो बाप बीतला बाहां दे रहाउ नर ते सुर होए जात निमख मैं सतगुर बुद्ध सिखलाई नर ते उपज सुर्ग को जीत्यो सो अवखद मैं पाई जहां जहां तू नारद टेके नैक टकावो मोहे तेरे नाम अविलंब बहुत जाने उदरे नामे की निज मत ए गोंड मोहे लागती ताला बेली बछरे बिन गाय अकेली पानिया बिन मीन तलफ है ऐसे राम नामा बिन बापरो नामा रहाउ जैसे गाय का बादशाह सूतला थन चोखता माखन कूटला नाम देहो नारायण पाया गुर भेटत अलख लखाया जैसे बिखै हित पर नारी ऐसे नामे प्रीत मरारी जैसे तापते निर्मल कामा तैसे राम नामा बिन बापरो नामा राग गोंड बाणी नाम देओ जियो की कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर हर करत मिटे सब परमा हर को नाम लै उत्तम धर्मा हर हर करत जात कुल हरी सो हर अंदले की लाकरी हरे नमस्ते हरे नमः हर हर करत नहीं दुख जमह रहाउ हर हर नाक्ष हरे प्राण अजय मलकियो बैकुंठ थान सुआ पढ़ावत गनका तरी सो हर नैनो की पूतरी हर हर करत पूतना तरी बाल घातनी कपटह भरी सिमरन द्रोपत सुत उदरी गौतम सती सिला निस्तरी केसी कंस मथन जिन किया जी दान काली कौ दिया प्रणवै नाम ऐसो हरी जास जपत पै अपदा टरी गोंड पैरों भूत सीतला तावै हर बाहन उहशार उड़ावै हौ तौ एक रमैया लै हो आन देव बदलावन दै हो रहाउ शिव शिव करते जो नर त्यावै बर्द चढ़े डौरू डमकावै महामाई की पूजा करै नर सह नार हुए अवतरै तू कहियत ही आद पुहानी मुक्त की बरिया कहां छपानी।

सुख होई, जो इच्छ हो सोई फल पावहु, फिर दुख न व्यापै कोई रहाऊ। काचे भांडे साज नवाजी, अंतर जोत समाई, जैसा लिखत लिखिया धुर करतै, हम तैसी किरत कमाई। मन तन थाप किया सब अपना, एहो आवन जाना, जिन दिया सो चेतना आवै, मोहे अंध लपटाना। जिन किया सोई प्रभ जाने, हर का महल अपारा।

ऊपर आवहु, ऐसी सेव कमावहु, आपस ते ऊपर सब जानहु, तौ दरगाह सुख पावहु। संत हो ऐसी कथो कहानी, सुर पवित्र नर देव पवित्रा, खिन बोलो हो गुरमुख बाणी रहाव। परपंच छोड़ सहज कर बैसो, झूठा कहो ना कोई, सतगुर मिलो नवे निद पावहो, इन बिद तत बिलोई। परम चकावहो गुरमुख लिव लावहो, आत्म चीनो पाई, निकट कर जानहो सदा प्रभ हाजिर,

ये विद है मन जोगनी मोह सोग रोग लोग ना व्यापै तह हर हर हर रस भोगनी रहाउ सुर्ग पवित्रा मित पवित्रा पयाल पवित्र अलोगनी आज्ञाकारी सदा सुख पुंचै जत कत पेखो हर गुनी नह सिर शक्ति जल नहीं पवना तह अकार नहीं मेदनी सतगुर जोग का तहां निवासा जह अवगत नाथ अगम तनी तन मन हर का तन सब हर का हर के गुण हो क्या गनी कहो नानक हम तुम गुर खोई है अम्बे अम्ब मलोगनी रामकली महला पंजवा त्रै गुण रहत रह निरारी साधक सिद्ध ना जाने रतन कोठड़ी अमृत संपूर्ण सतगुर कै खजाने अचरज किश कहन ना जाई बस्त अगोचर भाई रहाओ मोल नाही कछ करने जोगा क्या को कह सुनावे कथन कहन को

भरपूर भंडारा ऐसा रस अमृत मन चाखिया तृप्त रहे आगाई कहो नानक मेरी आसा पूरी सतगुर की सरनाई। राम कली महला पंजवां अंगीकार किया प्रभ अपने बैरी सगले साधे जिन बैरी है इह जग लूटिया ते बैरी लै बहांदे सतगुर परमेश्वर मेरा अनक राज भोग रस माणी नाउ जपी परवासा तेरा रहाओ चीत न आवस दूजी बातां सिर उपर रखवारा बेपरवाह रहत है स्वामी एक नाम कह आधारा पूर्ण होए मिलियो सुखदाई ऊन न काई बातां तत सार परम पद पाया छोड़ ना कतहू जाता बरना साकों जैसा तू है साचे अलाखे अपारा अतुल अथाह अडोल स्वामी नानक खसम हमारा। राम कली महला पंजवां तू दाना तू अब चल तू ही तू जात मेरी पाती तू अडोल कदे डोलह नाही।

गहीरा तुम पूर्ण पूर रहे संपूर्ण हम पी संग अगाए मिलत मिलत मिलत मिल रहया।

जिहवा तोने अगाजा निरत करे कर मनुआ नाचे आणी कुंगर साजा राम को निरतकारी पेख पेखन हार दयाला जेता साज सिंगारी रहाउ अखार मंडली तरन सबाई ऊपर गगन चंदोवा पवन विचोला करत अकेला जल ते ओपत होआ पांच तत कर पुतरा कीना किरत मलावा होआ चांद सूरज दोए जरे चरागा चौहों कुंट पीतर राखे दास पातो पांच संगीता एक है पीतर साथे पिन पिन हुए भाव दिखावे सबहु नरारी पाखे कर कर निरत हो दिन राती कट कट वाजे तूरा एक नचाव है एक पवाव है एक आई जाए होए तूरा कहो नानक सो बहुर ना नाचे जिस गुर भेटे पूरा राम कली महला पंजवा ओ अंकार एक धुन एक है एक है राग अलापै।

कब ही एक शब्द बंद पाले नार दी नर हर जान हदूरे पुंगर खड़क त्याग विसूरे सहज आनंद दिखावे पावे एहो नित कारी जन्म ना आवे जे को अपने ठाकुर भावे कोट मद एहो कीर्तन गावे साध संगत की

कोई बादशाह पिसत कोई सुरगिंदु। कहो नानक जिन हुक्म पछाता, प्रभ साहिब का तिन भेद जाता। राम कली महला पंजवा, पवन मह पवन समाया, ज्योति मह ज्योत रल जाया। माटी माटी हुई एक, रोव नहारे की कवन टेक। कौन मुआ रे कौन मुआ, ब्रह्म ज्ञानी मिल करो बीचारा। एहो तौ चलत भया रहाउ, अगली किश खबर न पाई। रोव नहार पे उठ सदाई, परम मोह के बांधे बंद। सुपन भया पखलाए अंध, एहो तौ रचन रचिया।

जानन हारे कहो बल जाओ। कहो नानक गुर परम चकाया, ना कोई मरे ना आवे जाया।

देव अमृत नाम दियो मुख देव सगली चिंता आपन वारी किस गुर को हों सद बलिहारी काज हमारे पूरे सतगुर बाजे अनहद तूरे सतगुर रहाओ महिमा जा की गहर गंभीर

प्यारी। जो किस करे सो मन मेरे मीठा, ता एहो अचरज नैन डीठा। अब मोहि जानी रे मेरी गई बलाई, बुझ गई तृष्ण नवारी ममता। गुर पूरे लियो समझाए रहाओ, कर कृपा राखियो गुर सरना।

जाग हर हर जाप जपला गुर कृपा ते हृदय वासै पौ जल पार परला रहाओ नाम निदान त्याए मन अटल तां छूटह माया के पटल गुर का शब्द अमृत रस पियो तां तेरा होए निर्मल जियो सोदत सोदत सोद बीचारा बिन हर भगत नहीं छुटकारा सो हर भजन साध कै संग मन तन रापै हर कै रंग छोड़ सियाणप बहु चतराई मन बिन हर नावे जाए ना काई दया तारी गोविंद गुसाई हर हर नानक टेक टकाई राम कली महला पंजवां।

जिस हृदय वसाई नानक ते जने उत्तम पाई राम कली महला पंजवा गौ कर पकरी ना आई हाथ प्रीत करी चाली नहीं साथ कहो नानक जो त्याग दई तब ओह चरणी आए पई सुन संतो हो निर्मल विचार राम नाम बिन गत नहीं काई गुर पूरा भेटत उदार रहाओ जब उसको कोई देवे मान तब आपस ऊपर रखे गमान जब उसको कोई मन पर हरे तब ओह सेवक सेवा करे।

भुखार है, इस संग राचे सो कशु ना लह, इस त्याग सत संगत करे, वड भागी नानक ओ तरे। राम कली महला पंजवा, आत्म राम सर्ब मह पेख, पूर्ण पूर रहया प्रभ।

कास संग रचै जिस नहीं बुझावै सो कित बिद बुझै जानन हार रहया प्रभ जान ओत पोत भगतन संगान बिगस बिगस।

लया, बूढ़त दुख मह काड लया। सुन सुन उपजियो मन मह चाऊ, आठ पहर हर के गुण गाओ। गावत गावत

पूर्ण परमेश्वर हर ना चेत्यो मन माही रहाओ। अमृत कौरा बिखिया मीठी साकत की बिद नैनो दीठी।

कबह न उस्तत करे निरपहो निरंकार दातार तिस स्यों प्रीत न करे गवार सब साहा सिर साचा साह वे मोहताज पूरा पातशाह मोह मगन लपटयो भ्रम गृह नानक तरिया तेरी मेहर राम कली महला पंजवां।

योग खोजो संत हो हर ब्रह्म ज्ञानी बिस्मन बिस्म पये बिस्मादा परम गत पाव है हर सिमर प्राणी रहाव गण में देखो सगल विचार नाम बिना को सके ना तार सगल अपाव ना चाले संग पवजल तरिय प्रभ कै रंग देही धोए न उतरे मैल हो मैं व्यापै दुबदा फैल हर हर औखद।

दुख अंधेरा मन ते जाए, दुर्मत बिन सह राचे हर नाए, चरण कमल स्यों लागी प्रीत, गुरपूरे की निर्मल रीत, पौ भागा निरपौ मन बसै, अमृत नाम रसना नित जपै, कोट जन्म के काटे पाहे, पाया लाभ सच्चा धन लाहे, टूट ना आवे अखुट भंडार, नानक भगत सोहै।

का पोता, हर भगता हवालै होता, मेरे राम को भंडार, खात खर्च कछ तोट ना आवै, अंत नहीं हर

दुष्ट करत तह हरक ना सोग ना जन्म ना मरत कर कृपा जिस आप दिवाया साध संग तिन हर धन पाया दयाल पुरख ना

जाऊं। शंकरा नहीं जानह पेव खोज तहारे देव, देवियां नहीं जानह मर्म सब ऊपर अलख पार ब्रह्म। अपने रंग करता केल आप बिछोड़ै आपे मेल, एक परमे एक भगती लाए।

मत सार जित हर सिमरीजै कर कृपा जिस आपे दीजै सुख सहज आनंद हर नाउ नानक जपिया गुरु।

नानक पाया एहो निदान। हरे हर निर्मल नाम जो जपै तिसकी गत होए, नानक कर्म प्राप्त होए। राम कली महला पंजवा, दलाब दे सवार जाही ना दरगाह हार। हलत पलत तुद होए वडियाई, अंत की बेला लय छडाई। राम के गुण गाओ हलत पलत होए दोहे सुहेले, अचरज पुरख त्याओ रहाओ। उठत बैठत हर जाप बिन सह सगल संताप, बैरी सब हो वह मीत निर्मल तेरा हो वह चीत। सब ते उत्तम एहो कर्म सगल धर्म मह श्रेष्ठ धर्म, हर सिमरन तेरा हुए उदार जन्म जन्म का उतरे पार। पूरन तेरी होवे आस जम की कटिया तेरी पास, गुर का उपदेश सुनीजै।

तिसका सब कोए, तिसह अराध सदा सुख होए। काहे भ्रम भ्रम है बेगानी, नाम बिना किस काम ना आवे। मेरा मेरा कर बहुत पछताने रहाउ, जो जो करे सोई मान ले हो। बिन माने रल हो वह खेह, किसका पाणा।

जिस चेत आए बिन सह दुखा, हलत पलत तेरा पूजल मुखा, कौन कौन उधरे गुण गाए, गणन ना जाए कीम ना पाए, बूढ़त लोह साध संग करे, नानक जिसह प्राप्त करे, राम कली महला पंजवां, मन माहे जाप भगवंत, गुरपुरे इहो दीनो मंत, मिटे सगल पै त्रास, पूर्ण होई आस, सफल सेवा गुरदेवा, कीमत किछ कहन ना जाई, साचे सच अलख।

जै, अपने सेवक को दर्शन दीजै। नानक जापी जप जाप, सब ते ऊच जाका प्रताप। राम कले महला पंजवां, बिरथा परवासा लोक। ठाकुर प्रभ तेरी टेक, अवर छूटी सब आस। अचिंत ठाकुर भेटे गुणतास। एको नाम त्याए मन मेरे, कार्य तेरा होवे पूरा। हर हर हर गुण गाए मन मेरे, रहाओ तुम ही कारण करन। चरण कमल हर सरन, मन तन हर ओही त्याया। आनंद हर रूप दिखाया, तिस ही की ओट सदीव। जाके कीने है जीव, सिमरत हर करत निदान। राखन हार निदान, सर्व की रेण हवीजै। आप मटाए मलीजै, आनंदेन त्याय नाम। सफल ना

ओ नमो भगवंत गुसाई खाल करव रहया सर्ब ठाई रहाउ जगन्नाथ जग जीवन माधो पौ भंजन रिदमाहे अराध।

पूर्वला कर्म बन आया, हर के गुण नित रसना गाया, हर के संत सदा परवान, संत जना मस्तक निशान, दास की रेण पाए जे कोए, नानक तिसकी परम गत होए, राम कली महला पंजवां, दर्शन को जाइए कुर्बान, चरण कमल हृदय तर ध्यान, तूर संतन की मस्तक लाए, जन्म जन्म की दुर्मत मल जाए, जिस भेट मिटे अभमान, पार ब्रह्म सब नदरी आवे, कर कृपा पूर्ण भगवान रहाओ, गुर की कीर्त जपिए हर नाओ, गुर की भगत सदा गुण गाओ, गुर की सुरत निकट कर जान, गुर का शब्द सत कर मान, गुर बचनी समसर सुख दुख, कदे न व्यापे तृष्णा भूख, मन संतोख शब्द गुर राजे, जप गोविंद पढ़दे सब काजे, गुर परमेश्वर गुर गोविंद, गुरदाता दयाल बख्शिंद, गुर चरणी जा का मन लागा, नानक दास तिस पूर्ण भागा, राम कली महला पंजवां, इस परवासै बिच रह भवन, मूड मुगद तेरा संगी कवन, राम संगी तिस गत नहीं जान, पंच बटवारे से मीत कर मान, सो कर सेव जित उदरह मीत, गुण गोविंद रवियह दिन राती, साध संग कर मन की प्रीत रहाओ, जन्म बिहानो अहंकार अरवाद, तृप्त न आवे बिखिया साध, परमत परमत महा दुख पाया, तरी न जाई दुत्तर माया, काम न आवे सो कार कमावे, आप बीज आपे ही खावे, राखन को दूसर नहीं कोए, तो निस तरह जो कृपा होए, पतत पुनीत प्रभ तेरो नाम, अपने दास को की जय दान, कर कृपा प्रभ गत कर मेरी, शरण गही नानक प्रभ तेरी, राम कली महला पंजवां, एह लोके सुख पाया, नहीं भेटत धर्म राया, हर दरगाह सो बावंत, हुन गर्भ नाही बसा।

चित लागा, तन तन संयोग सुभागा, संत की धूर लागी मेरे माथे, तिल विख दुख सगले मेरे लाथे, साध की सच टहल कमानी, तब होए मन शुद्ध प्राणी, जन का सफल दर्श डी।

हाथी मछली का जाला टूटा, सूखे काष्ट हरे चलूल, ऊंचे थल फूले कमल अनूप, अग्नि नवारी सतगुरु देव, सेव के अपनी लायो सेव, किरत कणा का करे उदार, प्रभ मेरा है सदा दयार, संत जना का सदा सहाई, चरण कमल नानक सरनाई, राम कली महला पंजवां, पंच सिंह राखे प्रभ मार, दस बिगियाड़ी लई निवार, तीन अवर्त की चूकी केर, साध संग चूके पै फेर, सिमर सिमर जीवा गोविंद, कर कृपा राख्यो दास अपना, सदा सदा साचा बख्शिंद, रहाउ दाज गए त्रिण पाप समेर, जप जप नाम पूजे प्रभ पैर, अंध रूप प्रग

चिंत जाल काल चक्कर पेल, हर चरण कमल सरनाए मना, राम नाम जप संग सहाई, गुरमुख पावह साच तना रहाउ, ऊणे काज न होवत पूरे, काम क्रोध मद सद ही चूरे, करे बिकार जियरे कै ताई, गाफल संग न तसुआ जाई, तरत तो हो अनक छल जानै,

पार ब्रह्म जब पये दयाल यह मन हुआ सादरवाल हस्त कमल लड़ लीनो लाए नानक।

संग सो पव जल तरे अमृत पीवो हो साध प्यारे मुख उज्जल साचै दरबारे आनंद करहो तज सगल बिकार नानक हर जप उतरहु पार राम कली महला पंजवा ईंधन ते बैसंतर भागै माटी को जल दह दिस त्यागै ऊपर चरण तले आकाश घट मह सिंध कियो परगास ऐसा समरथ हर जियो आप निमख न बिसरै जी भगतन कै।

गर्भ जोन मह किरत पया पुरब कमाणी छोडह नाही जमदूत ग्रास्यो महा भया बोलै झूठ कमावै अवरा कृष्ण ना बूझै बहुत हया असाध रोग उपजया संत दुखन देह बनासी महा खया जिन्ह नवाजे तिन्ही साजे आपे कीने संत जया नानक दास कंठ लाए राखे कर कृपा पार ब्रह्म मया राम कली महला पंजवा ऐसा पूरा गुरदेव सहाई जाका सिमरन बिरथा न जाई रहाओ दर्शन पेखत हुए निहाल जाकी तू

बिन सह अभमान एक तिहाई है साध कै संग पाप बनासे नाम कै रंग गुर परमेश्वर सगल निवास घट घट रव रहा गुणतास दर्श दे तारो प्रभ्यास नित नानक चितवे सच अरदास राग राम कली महला पंजवा कर दूजा दुपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद गाव राम के गुण गीत नाम जपत परम सुख पाईए आवागौन मिटै मेरे मीत रहाओ गुण गावत होवत परगास चरण कमल मह होए निवास संत संगत मह होए उदार नानक भवजन उतरस पार राम कली महला पंजवा गुरपूरा मेरा गुरपूरा राम नाम जप सदा सुहेले सगल मनासे रोग कूरा रहाओ एक अरातो साचा सोए जा की सरन सदा सुख होए नींद सुहेली नाम की लागी भूख हर सिमरत बिन से सब दुख सहज आनंद करहो मेरे भाई गुरपूरै सब चिंत मटा।

चलन थलन भसुद गगन एक एकंकार रहाओ हरन तरन पुन पुनः करन नह गिरह निरंहारं गंभीर तीर नाम हीर ऊच मूच अपारं तरन केल गुण अमोल नानक बलिहारं राम कली महला पंजवा रूप रंग सगंध भोग त्याग चले माया शले कनक कामनी रहाओ भंडार दर्भ अर्भ खर्भ।

सुख संत भावनी एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग राम कली महला नौवां ए पदे रे मन ओट ले हो हर नामा जा कै सिमरन दुरमत नासै पावह पद निर्बाना रहाउ बड़ भागी ते जन कौ जानहु जो हर के गुण गावै जन्म जन्म के पाप खोए कै हुन बैकुंठ सदावै अजामल कौ अंत काल में नारायण सुध आई जां गत को जोगी सर्वांशत सो गत शिन मह पाई नाहिन गुण नाहिन कश विद्या धर्म कौन गज कीना नानक बिरदरा।

जाते दुर्मत सगल बनासे राम भगत मन पीजे रहाऊ। मन माया मह उर्ज रहियो है बूझे नह कछ ज्ञाना। कौन नाम जग जा कै सिमरै पावे पद निर्वाणा। पई दयाल कृपाल संत जानू

इस बासुर में निमक एक उर धार है, जम को त्रास मिटे नानक तेहे अपनो जन्म सवार है। राम कली महला नवा प्राणी नारायण सुदले, छिन छिन औध घट है निसबासुर, बिरथा जात है दे रहाओ। तरनापो बिखिन स्यो खोयो, बालपन अज्ञाना बिरद भयो, अजहु नहीं समझे कौन कुमत उरजाना। मानस जन्म दियो जेह ठाकुर, सो तै क्यों बिसरायो, मुक्त होत नर जा कै सिमरै।

नानक कहत चेत चिंता मन हुए है अंत सहाई। राम कली मोहल्ला पहला अष्टपदिया एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सोई चंद चढ़े से तारे सोई दिन यर तपत रहै सा धरती सो पौन चुलारे। जुग जी खेले थाम कैसे जीवन तलब निवार। हुए परवाना करे तिंगाना कल लखन विचार रहाऊ। कितै देश ना आया सुनिए तीर्थ।

सीपै तप कर तप न होई जे को नाओ लहे बदनाम कल के लखन ए जिस सकदारी तिसह खुआरी चाकर के हे डरना जा सिकदार पवै जंजीरी ता चाकर हथों।

बेड़ी काजी कृष्णा हुआ बाणी ब्रह्मा वेद अथर्वण करनी कीरत लहया पातविण पूजा सतविण संयम जतविण काहे जनेऊ नाव हो तो वो तिलक चढ़ाव हो सोचविण सोच ना होई कल परवान कते बखराण पोथी पंडित रहे पुराण नानक नाव पया रहमान कर करता तू एको जान नानक नाम मिले वडियाई एदू उपर कर्म नहीं जे घर हुंदे मंगण जाइए फिर ओ लामा मिले तही राम कली महला पहला जग प्रबोध है मड़ी बंधावह आसन त्याग काहे सच पावह ममता मोह कामन हितकारी ना अवतूती ना संसारी जोगी बैस रहो दुबदा दुख भागै घर कर मांगत लाज ना लागै रहाउ गावह गीत ना चीनह आप क्यों लागी निवरै प्रताप गुर कै शब्द रचै मन पाए भिख्या सहज विचारी खाए पसम चढ़ाए करह पाखंड माया मोहे सह जमदंड फूटे खापर भीख न पाए बंधन बांधिया आवे जाए बिंद न रख है जति कहावह माई मांगत त्रै लुभावह निर्दया नहीं जोत उजाला बूढ़त बूढ़े सर्ब जंजाला।

कैसे उतर सपारी, मुंदरा फटक बनाई कान, मुक्त नहीं विद्या विज्ञान, जेवा इंद्री साध लुभाना, पशु पये नहीं मिटे निशाना, त्रिभिद लोगा त्रिभिद जोगा, शब्द विचार है चूक ससोगा, उजल साच सो शब्द होए, जोगी जुगत विचारे सोए, तुझ पह नौ नित तू करने जोग, थाप उथापे करे सो होग, जात सत संयम सच सुचीत, नानक जोगी त्रे पवन मीत, राम कली महला पहला, खट मट देही मन बैरागी, सुरत शब्द धुन अंतर जागी, वाजै अनहद मेरा मन नीना, गुरबचनी सच नाम पतीना, प्राणी राम भगत सुख पाईऐ, गुरमुख हर हर मीठा लागै, हर हर नाम समाईऐ रहाउ, माया मोह विवर्ज समाए, सतगुर भेटै मेल मलाए, नाम रतन निर्मोल कहीरा, तित राता मेरा मन पीरा, हौ मैं ममता रोग न लागै, राम भगत जम का पौ भागै, जम जंदार न लागै मोहे, निर्मल नाम हृदय हर सोहे, शब्द विचार भय निरंकारी, गुरमत जागे दुरमत परहारी, अन दिन जाग रहे लिवलाई, जीवन मुकत गत अंतर पाई, अलिपत गुफा मह रह निरारी, तस कर पंचो शब्द संघारी।

तत्परुता जग सूता मारे आवे जाए, बिन गुर शब्द ना सोजी पाए। अनहद शब्द बजे दिन राती, अवगत की गात गुरमुख जाती। तौ जानी जा शब्द पछानी, एको रव रहिया निर्बानी। सुन समाद सहज मन राता।

सब सारथ मुक्त प्राण जप हर किरतारथ वाचै वाद ना बेद विचारै आप डुबै क्यों पितरा तारै कट कट ब्रह्म चीनै जन कोए सतगुर मिलै तां सोझी होए गणत गणियै सहसा दुख जीयै गुर की शरण पवै सुख थीयै कार्य अपराध शरण हम आया गुर हर भेटे पुरब कमाया गुर शरण ना आईयै ब्रह्म ना पाईयै भरम भलाईयै जन्म मर आईयै जमदर बहंत हो मरे बेकार ना हृदय नाम ना शब्द आचार एक पांदे पंडित मिस्र कहाव है दुखदा राते महल ना पाव है जिस गुर प्रसादी नाम आधार कोट मध्य को जन आपार एक बुरा भला सच एक बूझ ज्ञानी सतगुर की टेक गुरमुख।

राम कली महला पहला हठ निग्रह कर काया सीजै वर्त तपन कर मन नहीं पीजै राम नाम सर अवर ना पूजै गुरसेव मना हर जन संग कीजै।

गुण भिखिया जन्म मरीजै, राम नाम बिन दुख सहीजै, चारस पवन संघासन पीजै, न्योली कर्म खट कर्म करीजै, राम नाम बिन बिरथा सास लीजै, अंतर पंच अगन क्यों तीरज तीजै, अंतर चोर क्यों साध लीजै, गुरमुख होए काया गढ़ लीजै, अंतर मैल तीर्थ परमीजै।

दुंदर पास तरीजै तुरकी सेवा राम रुवीजै नानक नाम मिलै कृपा प्रभु की जय राम कली महला पहला अंतर उत्पुज अवर न कोई जो कही है सो प्रभ ते होई जुगहा जुगंतर साहिब सच सोई उत्पत पर लहो अवर न कोई ऐसा मेरा ठाकुर गहर गंभीर जिन जपया तिन्ही सुख पाया हर कै नाम ना लगे जम तीर रहाउ नाम रतन हीरा निर्मोल साचा साहिब अमर अतोल जेवा सूची साचा बोल घर दर साचा नाही रोल एक बन मह बैस है डूंगर अस्थान नाम बसार पच है अभमान नाम बिना क्या ज्ञान त्यान गुरमुख पाव है दरगह मान हठ अहंकार करे नहीं पावे पाठ पढ़े ले लोक सुनावे तीरथ परमस ब्याद ना जावे नाम बिना कैसे सुख पावे जतन करे बिंद किवे ना रहाई मनुआ डोले नरके पाई जमपुर बहादुर है सजाई बिन नामे जियो जल बल जाई सिद्ध साधक केते मुन देवा हठ निग्रह ना तृप्तावह पेवा शब्द विचार गह गुर सेवा मन तन निर्मल अभमान अभेवा कर्म मिले पावे सच नाउ तुम शरण लागत रहो स्वभाव तुम ते उपजेओ भगति पाओ जप जप गुरमुख हर नाउ हऊ मैं गर्भ जाई मन पीने झूठ ना पावस पाखंड कीने बिन गुर शब्द नहीं घर बार नानक गुरमुख तत बीचार राम कली महला पहला ज्यों आया त्यों जावह बौरे ज्यों जन्मे त्यों मरन भया ज्यों रस भोग किए तेता दुख लागै नाम विसार भवजल पया तन तन देखत गर्भ गया कनक कामनी स्यों हेत वधाई हे की नाम वसार है परम गया रहाउ जत सत संयम सील ना राखिया प्रेत पिंजर मह काष्ट भया पुन दान इशनान ना संयम साध संगत बिन बात जया लालच लागै नाम बसारियो आवत जावत जन्म गया जां जम धाई केस गह मारै सुरत नहीं मुख काल गया अहनस निंदा तात पराई हृदय नाम ना सर्ब दया बिन गुर शब्द न गत पत पावह राम नाम बिन नरक गया खिन मैं वेस करह नटुआ ज्यो मोह पाप मह गलत गया हित उत माया देख पसारी मोह माया कै मगन भया करह विकार वथार कनेरे सुरत शब्द बिन भरम पया हम मैं रोग महा दुख लागा गुरमत लेव हो रोग गया सुख संपत को आवत देखै साकत मन अभमान पया जिसका एहो तन तन सो फिर लेवै अंतर सहसा दुख पया अंतकाल किस साथ ना चालै जो दिसै सब तिसह मया आद पुरख अपरंपर सो प्रभ हर नाम हृदय लै पार पया मुए को रोवह किसे सुनावह पै सागर असराल पया देख कटंब माया ग्रह मंदर साकत जंजाल पराल पया।

दृष्ट समय सर अनहत शब्द रंगीना सात बंद कुपीन भरपुर लीना जेवा रंग रसीना मिलै गुर साचे जिन रच राचे किरत विचार पतीना एक मह सर्ब सर्ब मह एका एह सतगुर देख दिखाई जिन किए खंड मंडल ब्रह्मंडा सो प्रभ लखन ना जाई दीपक ते दीपक परगासिया त्रिपवन जोत दिखाई सच्चे तखत सच महली बैठे निरभउ ताड़ी लाई मोहे गया बैरागी जोगी कट कट कुंगरी वाई नानक सरन प्रभु की छूटे सतगुर सच सिखाई राम कली महला पहला आओ हठ हस्त मड़ी कर छाया तरन गगन कल तारी गुरमुख केती शब्द उधारी संत हो रहाओ ममता मार हो मैं सुख है तेरे पवन जोत तुम्हारी मनसा मार मन मह राख है सतगुर शब्द विचारी सिंही सुरत अनाह दवाजै कट कट जोत तुम्हारी परपंच बेन तही मन राखिया ब्रह्म अग्न परजारी पंच तत् मिल अहनस दीपक निर्मल ज्योति अपारी राव सस लोके इहो तन किंगरी वाजै शब्द निरारी शिव नगरी मह आसन औदू अलख अगम अपारी काया नगरी इहो मन राजा पंच वसह विचारी शब्द रवै आसन घर राजा अदल करे गुणकारी काल बकाल कहे कह बपरी

जोग जुगत एव पाए नदरी आवंदा सब किस बिनसै हर सेती चित लाए सतगुर नाल तेरी भावनी लागै ता एह सोझी पाए एहो जोग ना होवै जोगी जे कतंब छोड़ पर भवन करहै ग्रह शरीर मह हर हर नाम गुर प्रसादी अपना हर प्रभ लह एहो जगत मिट्टी का पुतला जोगी इसमें रोग वड्डा तृष्णा माया अनेक जतन भेख करे जोगी रोग ना जाए गवाया हर का नाम औखद है जोगी जिसनो मन वसाई गुरमुख होवै सोई बूझै जोग जुगत सो पाए जोगै का मार्ग बिखम है जोगी जिसनो नदर करे सो पाए अंतर बाहर एको वेखै विचों भरम चुकाए बिन बजाई।

सच समाई काया नगरी शब्दे खोजै नाम नमंग निद पाई मनसा मार मन सहज समाना बिन रसना उस्तत कराई लोइन देख रहे बिस्मादी केता अधिष्ट लगाई अधिष्ट सदा रह निरालम ज्योति ज्योत मलाई हौ गुर सलाही सदा अपना।

आई भय भंजन अत पाप निखंजन मेरा प्रभ अंत सखाई सब किसे आपे आप वरतै नानक नाम वडे आई राम कली महला तीजा हम कुचल कचील अत अभमानी मिल शब्दे मैल उतारी संत हो गुरमुख नाम निसतारी सच्चा नाम वस्या घट अंतर करतै आप सवारी रहाउ पारस परसे फिर पारस होए हर जीव अपनी कृपा तारी एक भेख करह फिर है अभमानी इन जुए बाजी हारी एक अन दिन भगत करह दिन राती राम नाम उरत हारी अन दिन राते सहजे माते सहजे हों मैं मारी पै बिन भगत न होई कब ही पै पाए भगत सवारी माया मोह शब्द जलाया ज्ञान तत बीचारी आपे आप कराए करता आपे बख्श पंडारी तिस क्या गुणा का अंत ना पाया हों गावा शब्द बीचारी हर जियो जपी हर जियो सालाही विच्चो आप निवारी नाम पदार्थ गुरते पाया अखुट सच्चे पंडारी अपनिया भगतानो आपे तुठा अपनी कृपा कर कल तारी तिन साचे नाम की सदा भुख लागी गावन शब्द विचारी जियो पिंड सब किश है तिसका आखन बिखम बीचारी शब्द लगे से जन निस्तरे भौजल पार उतारी बिन हर साचे को पार ना पावे बूझे को विचारी जो तुर लिखिया सोई पाया मिल हर शब्द सुवारी काया कंचन शब्दे राती साचे नाई प्यारी काया अमृत रही परपूरे पाईए शब्द विचारी जो प्रभ खोज है से ही पाव है और फूट मुए अहंकारी बादी बिन सह सेवक सेव है गुर कै हेत प्यारी सो जोगी तत ज्ञान विचारी हम मैं तृष्णा मारी

अहंकारी जिच्चर्यंतर सास तिच्चर सेवा कीचे जाए मिलिए राम रारी। अन दिन जागत रह दिन राति अपने प्रिय प्रीत प्यारी। तन मन वारी वार कमाई अपने गुर विटों बलिहारी। माया मोह बिनस जाएगा उबरे शब्द विचारी। आप जगाए से जागे गुर कै शब्द विचारी। नानक से मुए जे नाम ना चेत है भगत जीवे विचारी। राम कली महला तीजा नाम खजाना गुरते पाया। कृपत रहे आघाई संत हो गुरमुख मुक्त गत पाई। एक नाम वस्या घट अंतर।

जो किस करना सो कर रहे आ, अवर ना करना जाई। आपे साजे सिरट अपाए, सिर सिर तंदे लाई। तिसह सरेवो तां सुख पावहु, सतगुर मेल मलाई। अपना आप उपाई, लख ना लखना जाई। आपे मार्ज वाले आपे, तिसनो तिल ना तमाई। एक दाते एक मंगते कीते, आपे

करया, सगल जोन मह तू सिर धरया, अब तू सीज पावे नहीं सीजै, कार्य सवरै मन प्रभ त्याइजै, इहां उहां एकै ओही, जत कत देखिए तत तत तोही, तिस सेवत मन

कर मारे गुर बोहित वडभागी मिलिया नानक दास संग पाथर तरिया राम कली महला पंजवा काहू बिहावै रंग रस रूप काहू बिहावै माए बाप पूत काहू बिहावै राज मिलख वापारा संत बिहावै हर नाम अधारा रचना साच बनी सबका एक तनी रहाउ काहू बिहावै वेद अर बाद काहू बिहावै रसना साद काहू बिहावै लपट संग नारी संत रचे केवल नाम मरारी काहू बिहावै खेलत जुआ काहू

0: काहू बिहावै जोग तप पूजा,
1: काहू रोग सोग परमीजा,
0: काहू पवन धार जात बिहाए, संत बिहावै कीर्तन गाए, काहू बिहावै दिन रहन चालत, काहू बिहावै सो पिड़ मालत, काहू बिहावै बाल पढ़ावत, संत बिहावै हर जस गावत, काहू बिहावै नट नाटक निरते, काहू बिहावै जिया एह हिरते, काहू बिहावै राज मह डरते, संत बिहावै हर जस करते, काहू बिहावै मता मसूरत, काहू बिहावै सेवा जरूरत, काहू बिहावै सोदत जी।

लोभी का धन प्राण आधार त्यों हर जन हर हर नाम प्यार किरसानी ज्यों राखै रखवाला मात पिता दया ज्यों बाला प्रीतम देख प्रीतम मिल जाए त्यों हर जन राखै कंठ लाए ज्यों अंधले पेखत होए आनंद गूंगा भक्त गावे बहु छंद पिंगल पर्वत परते पार हर कै नाम सगल उदार ज्यों पावक संग सीत को नास ऐसे प्रासत संत संग बनास ज्यों साबुन का परिउजल होत नाम जपत सब भ्रम पहु खोत ज्यों चकवी सूरज की आस ज्यों चात्रक बूंद की प्यास ज्यों क्रंक नाद करन समाने त्यों हर नाम हर जन मनह सुखाने।

कोट जाने ऊपर नानक वन्य वारना राम कली महला पंजवा अष्टपदी एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद दर्शन भेटत पाप सब नाश है।

अंधेर बंजाई, करण कारण समरथ स्वामी, नानक तिस सरनाई, बंधन तोड़ चरण कमल दिरडाई, एक शब्द लिवलाई, अंधकूप बिख्या ते काढ़ियो,

आप संभाले आप लिए लड़ लाई साच धर्म का बेड़ा बांधिया भवजन पार पवाई बेशमार बेअंत स्वामी नानक बल बल जाई अकाल मूरत अजूनी संभव कल अंध

जन्म मरण की टेक, मुख उज्जल सदा सुखी, नानक सिमरत एक, मन तन राता राम प्यारी, हर प्रेम भगत बन आई संतो।

पी होसी। सब जिन्या का सुखदाई संतो, आप बेअंत अंत नहीं पाइए। पूर रहया सब ठाई संतो, मीत साजन माल जोगन सुत। हर नानक बाप मेरी माई संतो, राम कली महला पंजवां। मन बच क्रम राम नाम चितारी, घूमन घेर महा अत बिखड़ी। गुरमुख नानक पार उतारी रहाओ, अंतर सूखा बाहर सूखा। हर जप मलन भये दुसटारी, जिसते लागे तिन्ह निवारी। प्रभ जीओ अपनी कृपा तारी, उदरे संत परे हर सरनी। पच बिन से महा अहंकारी, साधु संगत एहो फल पाया। एक केवल नाम आधारी, ना कोई सूर ना कोई हीना। सब प्रगति जोत तुम्हारी, तुम समर्थ अकथ अगोचर। रविया एक मरारी, कीमत कौन करे तेरी करते। प्रभ अंत न पारा वारी, नाम दान नानक वडियाई। तेरिया संत जना रे नारी, राम कली महला।

सतगुर ता पाया सहज सेती मन वजिया वाधाइया राग रतन परवार परिया शब्द गावण आईया शब्दों तांगावो हरि केरा मन जिन्नी वसाया कह नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाली।

आनंद सदा गुरते किरपा करे प्यारिया कर किरपा किल विख कटे ज्ञान अंजन सारिया।

विचारिया। एक भरम भूले फिर दह दिस, एक नाम लाग सुआरिया। गुर प्रसादी मन भया निर्मल, जिन्ना पाणा पावे। कह नानक जिस देह प्यारे, सोई जन पावे। आवहु संत प्यारे हो, अकथ की करह कहानी। करह कहानी कथ केरी, कित द्वारे पाई है। तन मन तन सब सौंप गुर को, हुक्म मन्ने है पाई है। हुक्म मन्ने हो गुरु केरा, गाव हो सच्ची बाणी। कह नानक सुनो संत हो, कथे हो अकथ कहानी।

ने अमृत खोज दे सो अमृत गुर ते पाया पाया अमृत गुर कृपा कीनी सच्चा मन वसाया जी जंत सब तुद उपाय एक वेख परसन आया लभ लोभ अहंकार चूका सतगुरु भला पाया।

जिन्नी गुरमुख हर हर त्याया, कर्मी सहज नाय उपजै, विन सहजै सहसा न जाय, न जाय सहसा कितै संयम, रहे कर्म कमाई, सहसै जीव मलीन है, कित संयम धोता जाय, मन तो वो शब्द लागो, हर सिंह रहो चित लाई, कह नानक गुर प्रसादी सहज उपजै, इहो सहसा इव जाय, जियो मैले बाहरो निर्मल, बाहरो निर्मल जियो ता मैले, तिन्नी जन्म जू है हारिया, ए तिसना वड्डा रोग लगा।

जन्म जुए हारिया जियो निर्मल बाहरो निर्मल बाहरो ता निर्मल जियो निर्मल सतगुर ते करनी कमाणी कूड़ की सोए पहुंचे नाई मनसा सच समाणी जन्म रतन जिन

सेती सनमुख होवै, होवै ता सनमुख सिख कोई, जियों रह गुर नाले, गुर के चरण हिरदय त्याए, अंतर आत्मै सुमाले, आप छड सदा रह परनै, गुर बिन अवर न जाने कोई, कह नानक सुनो संतो, सो सिख सनमुख होए, जे को गुरु ते गे मुख होवे, बिन सत

वरदाता जे अग्न मह आहार पहुंचावी उसनो केहो पोहे ना सकी जिसनो अपनी लिव लावे अपनी लिव आपे लाई गुरमुख सदा सुमहली है कह नानके वरदाता सो क्यों मनो विसारी है जैसी अग्न उधर मह तैसी बाहर माया माया अग्न सब इको जे ही करतै खेल रचाया जा तिस भाणा ता जम्मिया परवार भला पाया लिव छुड़की लगी तृष्णा माया अमर वरताया ए माया जित हर विसरै मोह उपजै भाओ दूजा लाया कह नानक गुर प्रसादी जिन्ना लिव लागी तिनी विचे माया पाया हर आप अमुल कह मुल ना पाया जाए मुल ना पाया जाए किसे विटहु रहे लोक बिललाए ऐसा सतगुर जे मिले तिसनों सिर सौंपिए विचों आप जाई।

मन वणजारा, हर रास मेरी मन वणजारा, सतगुरु तेरा आस जानी, हर हर रित जपे हो जियो, लाहा खटे हो दिहाड़ी, एहो धन तिना मिलिया जिन्हों

प्यास न जाए, प्यास न जाए हूत किते, जिचर हर रस पल्ले न पाए, हर रस पाए पल्ले पीए हर रस, बहुड़ना तृष्णा लागे आए, एहो हर रस करमी पाईए, सतगुर मिले जिसे आए, कह नानक होर अनरस सब विसरे, जा हर वसे मन आए, ए शरीरा मेरिया हर तुम मह जोत रखी, ता तू जग मह आया, हर जोत रखी तुद विच, ता तू जग मह आया, हर आपे माता आपे पिता, जिन जियो उपाय जगत दिखाया, गुर प्रसादी बुझिया, ता चलत हुआ चलत नदरी आया, कह नानक सृष्ट का मूल रखिया, जोत राखी ता तू जग मह आया, मन चाहो पया प्रभ आगम सुनिया, हर मंगल गाओ सखी ग्रह मंदर बनिया, हर गाओ मंगल नित सखिए, सोग दुख ना व्यापे, गुर चरण लागे दिन सभागे, अपना फिर जापे, अनहत बाणी गुर शब्द जानी, हर नाम हर रस भोगो।

तुद कर्मक माया, ते कर्मक माया तुद शरीरा, जां तू जग मह आया, जिन हर तेरा रचन रचिया, सो हर मन ना वसाया, गुर प्रसादी हर मन वसिया, पूर्व लिखिया पाया, कह नानक एहो शरीर परवान हुआ, जिन सतगुर स्यों चित लाया, ए नेत्र हो मेरे हो, हर तुम मह जोत धरी, हर बिन अवर न देखो कोई, हर बिन अवर न देखो कोई, नदरी हर ने हालिया, एहो इस संसार तुम देख दे, एहो हर का रूप है, हर रूप नदरी आया, गुर प्रसादी बुझिया, जा वेखा हर एक है, हर बिन अवर ना कोई, कह नानक एह नेत्र अंध से, सतगुर मिले दिव दृष्ट हो।

बाणी। जित सुनी मन तन हरिया हुआ, रस ना रस समाणी, सच अलख वडाणी, ताकी गत कही ना जाए। कह नानक अमृत नाम सुनो, पवित्र हो वो साचा सुनने नो पठाए। हर जियो गुफा अंदर रख के, वाजा पवन बजाया बजाया वाजा पवन, नौ द्वारे प्रगट किए, दसवां गुप्त रखाया। गुरुद्वारे लाए पावनी, एक ना दसवां द्वार दिखाया। तह अनेक रूप नाओ नव निध, तिसदा अंत ना जाई पाया। कह नानक हर प्यारे, जियो गुफा अंदर रख के, वाजा पवन बजाया। इहो साचा सोहिला साचै कर गावहु, गावो ता सोहिला कर साचै। जिथे सदा सच त्यावे, सचो त्यावे जा तुद पावे, गुरमुख जिना बजावे। इहो सच सबना का खसम है।

भये सरसे पूरे गुरते जानी। सुनते पनीत कहते पवित सतगुर रहे आप पूरे विद्वंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे। राम कली सत एक ओंकार सतगुर प्रसाद जगदाता सोए भगत वसल त्यो लोए जियो गुर शब्द समावे अवर ना जाने कोई जियो अवरो ना जाने शब्द गुर कै एक नाम त्यावहे प्रसाद नानक गुरु अंगद परम पदवी पावहे आया हकारा चलन वारा हर राम नाम समाया जग अमर अटल अतोल ठाकुर भगत ते हर पाया हर पाणा गुर पाया गुर जावे हर प्रभ पास जियो सतगुर करे हर पै बेनती मेरी पैज रखो अरदास जियो पैज राखो हर जनह केरी हर देहो नाम निरंजनो अंत चल दिया हुए बेली जमदूत काल निखंजनो सतगुरु की बेनती पाई हर प्रभ सुनी अरदास जियो हर धार कृपा सतगुरु मिलाया तन तन कह साबास जियो मेरे सिख सुनो पुत भाई हो मेरा हर भाणा आओ मैं पास जियो हर भाणा गुर पाया मेरा हर प्रभ करे साबास जियो भगत सतगुर पुरख सोई जिस हर प्रभ पाणा पावै आनंद अनहद वजह वाजे हर आप गल मिलावै तुसी पुत भाई परिवार मेरा मन वेखो कर निरजास जियो तुर लिखिया परवाणा फिरै नाही गुर जाए हर प्रभ पास जियो सतगुर पाणे अपने बह परिवार सदाया मत मैं पिछे कोई रोसी सो मैं मूल ना पाया मित पैजै मित बिगसै जिस मित की पैज पावे तुसी विचार देखो पुत भाई हर सतगुरु पैदावे सतगुरु प्रतख हुंदे बहराज आप टकाया सब सिख बंधक पुत भाई

केशो गोपाल पंडित सद्यो हो, हर हर कथा पढ़े पुराण जियो, हर कथा पढ़िए हर नाम सुनिए, बेबाण हर रंग गुर भावे, पिंड पत्तल किरिया दीवा, फुल हर सर पावे, हर पाया सतगुर बोलिया, हर मिलिया पुरख सुजान जियो, रामदास सोडी तिलक दिया, गुर शब्द सच निशान जियो, सतगुर पुरख जे बोलिया, गुरसिखा मन लई रजाए जियो, मोहरी पुत सनमुख होया, रामदास पैरी पाए जियो, सब पवै पैरी सतगुरु केरी, जिथे गुरु आप रखिया, कोई कर बखीली निवै नाही, फिर सतगुरु आन निवाया, हर गुरह भाणा दी वडियाई, तुर लिखिया लेख रजाए जियो, कह सुंदर सुनो संतो, सब जगत पैरी पाए जियो, राम कली महला पंजवां शंत, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, साजनड़ा मेरा साजनड़ा, निकट खलोयड़ा मेरा साजनड़ा, जानियड़ा हर जानियड़ा, नैन अलोयड़ा हर जानियड़ा, नैन अलोया कट कट सोया, हत अमृत प्रिय गूड़ा, नाल होंदा लह ना सकंदा, सुआओ ना जाने मूड़ा, माया मद माता होची बाता, मिलन ना जाई परम तड़ा, कहो नानक गुरबिन नाही सूजै, हर साजन सब कै निकट खड़ा, गोविंदा मेरे गोविंदा।

स्वामी सुगड़ सुजान। सुगड़ सुजाना सद परधाना, अमृत हर का नामा, चाक अगाणी सारंग पाणे, जिनके भाग मथाना। तिन ही पाया तिन्ह ते आया, सगल तिसे का माणु, कहो नानक थिर तक निवासी, सच तिसे जी बाणु। मंगला हर मंगला, मेरे प्रभ कह सुनिए मंगला, सोहिलड़ा प्रभ सोहिलड़ा, अनहद तुनिए सोहिलड़ा, अनहद वाजे शब्द अगाजे, नित नित जिसे वधाई, सो प्रभ त्याई है सब किश पाई है, मरे ना आवे जाई, चूकी प्यासा पूर्ण आसा, गुरमुख मिल निर्गुण।

है कोई साजन संत जन नानक प्रभ मेलन हार बिन मिल बे शांत ना उपजे तिल पल रहन ना जाए हर साधह शरनागति नानक आस पुजाई संत रोत शरद अडंबरू असू कत के हर प्यास जियो खोजंती दर्शन फिरत तब मिली है गुणतास जियो बिन कंत प्यारे नह सूख सारे हार कंगन त्रिक बना सुंदर सुजान चतुर बेती सास बिन जैसे तना ईत उत दह दिस अलोकन मन मिलन की प्रभ प्यास जियो बिनवंत नानक तार कृपा।

नानक प्रभ पूरन मिले, दुतिया बिनसी प्रांत साध पठाए आप हर, हम तुम ते नाही दूर, नानक भ्रम पै मिट गए, रमन राम भरपूर शंत, रुत सिसियर सीतल हर प्रगटे मंगर पोह जियो, जलन बुझी दर्श पाया बिनसे माया त्रोह जियो, सब काम पूरे मिल हजूरे, हर चरण सेवक सेवया, हार डोर शिंगार सब रस, गुण गाओ अलख अपेवया, पाओ भगत गोविंद बांछत, जमना साकै जोहे जियो, बिनवंत नानक प्रभ आप मेली, तहना प्रेम बशोह जियो। सलोक हर तन पाया सुहागनी, दौलत नाही कीत, संत संजोगी नानका, ग्रह प्रगटे प्रभ मीत, नाद विनोद आनंद कोट, प्रिय प्रीतम संग बने, मन बांछत फल पाया, हर नानक नाम भने संत, हिम कर रुत मन भावती, माघ फगण गुणवंत जियो, सखी सहेली गाओ मंगलो, ग्रह आए हर कंत जियो, ग्रह लाल आए मन त्याए, सेज सुंदर सोहिया, वन त्रिण त्रे पवन भये हरिया, देख दर्शन मोहिया, मिले स्वामी इच्छ पुन्नी, मन जपया निर्मल मंत जियो, बिनवंत नानक नित करो रलिया, हर मिले श्री तारकंत जियो। सलोक संत सहाई जी के, पवजल तारन हार, सब ते उचे जानिए, नानक नाम प्यार, जिन जानिया से तरे, से सूरे से बीर, नानक तिन बलिहार न, हर जप उतरे तीर, संत चरण बराजत सब उपरे, मिटिया सगल कलेश जियो, आवन जावन दुख हरे, हर भगत किया प्रवेश जियो, हर रंग राते सहज माते, तिल ना मन ते बिसरे, तज आप सरनी परे चरनी, सर्व गुण जगदीसरे, गोविंद गुण निद श्री रंग स्वामी, आदि कौ आदेश जियो, बिनवंत नानक मया तारहो, जुग जुगो एक वेश जियो। राम कली महा

वेद निर्मय ओंकार शब्द उधरे ओंकार गुरमुख तरे ओन में अखर सुनो विचार ओन में अखर त्रे पवन सार सुन पांडे क्या लिखो जंजाला लिख राम नाम गुरमुख गोपाला रहाउ सत्सै सब जग सहज उपाया तीन पवन एक ज्योति गुरमुख वस्त प्राप्त होवे चुन लै माणक मोती समझै सूझै पढ़ पढ़ बूझै अंत निरंतर साचा गुरमुख देखै सात संभाले बिन साचे जग काचा तद्दै धर्म धरे धर्मापुर गुणकारी मन पीरा तद्दै धूल पड़ै मुख मस्तक कंचन भय मनूरा तन धरनी तर आप अजोनी तोल बोल सच पूरा करते की मित करता जाने कह जाने गुरसूरा ज्ञान गवाया दूजा पाया गर्भ गले बिख खाया गुर रस गीत बाद नहीं पावे सुनिए गहर गंभीर गवाया गुर सच कहया अमृत लहया मन तन साच

अमृत पीजय रहन नहीं संसारे राजे राय रंक नहीं रहना आए जाए जुग चारे रहन कहन ते रह न कोई किस पह करो बेनंती एक शब्द राम नाम निरोधर गुरुदेव पतमती लाज मरंती मर गई घूंघट खोल चली सास दीवानी बावरी सिर ते संकटली प्रेम बलाई रली स्यो मन मह शब्द आनंद लाल रती लाली पई गुरमुख पई निचिंद लाहा।

कर हुए आथ देख निवै जिस दोए आथ हुए ता मुग्ध सियाना भगत बिहूना जग बौराना सब मह वरतै इको सोए जिसनो कृपा करे तिस प्रगट होए।

अगमय गोचर कीमत नहीं पाए, ता मिलिय जा लय मलाय। गुणवंती गुण सारे नीत, नानक गुरमत मिलिय नीत। काम क्रोध काया कौ गल, ज्यों कंचन सुहागा ढाल। कस कसवटी सह सो ताओ, नदर सराफ बन्नी सचड़ाओ। जगत पशु अहंकाल कसाई, तर कर तै करनी कर पाई। जिन कीती तिन कीमत पाई, होर क्या कहिए किस कहन ना जाई। खोजत खोजत अमृत पिया, खिमा गही मन सतगुर दिया। खरा खरा आखै सब कोए, खरा रतन जुग चारे होए। खात पी अंत मुए नहीं जानिया, हिन मह मुए जा शब्द पछानिया। अस्थर चीत मरन मन मानिया, गुर किरपा ते नाम पछानिया। गगन गंभीर गगन अंतर वास, गुण गावै सुख सहज निवास। गया न आवै आए न जाय, गुर प्रसाद रह लिवलाय। गगन अगम अनाथ अजोनी, अस्थिर चीत समाद सुगोनी। हर नाम चेत फिर पवह ना जूनी, गुरमत सार होर नाम बिहूनी। घर दर फिर थाकी बहु तेरे, जात असंख अंत नहीं मेरे। केते मात पिता सुत धिया, केते गुर चेले फुन हुआ। काचे गुरते मुक्त ना हुआ, केती नार वर एक संभाल। गुरमुख मरण जीवन प्रभ नाल, दह दिस ढूंढ कर मह पाया। मेल भया सतगुरु मलाया, गुरमुख गावै गुरमुख बोलै। गुरमुख तोल तलावै तोलै, गुरमुख आवै जाए न संग। पर हर मैल जलाए कलंक, गुरमुख नाद वेद विचार। गुरमुख मज्जन चज आचार, गुरमुख शब्द अमृत है सार। नानक गुरमुख पावै पार, चंचल चीत न रही ठाई। चोरी मिर्ग अंगूरी खाए, चरण कमल उर तारे चीत। चिर जीवन चेतन नित नीत, चिंतत ही दिसै सब कोए। चेतह एक तही सुख होए, चित वसै राचै हर नाय। मुक्त भया पत स्यों घर जाए, सीजै दे खुलै एक गंड। छिया नित देखो जग हंड, धूप शाम जे सम कर जान। बंधन काट मुक्त घर आण, छाया शूशी जगत भुलाना।

जागत जाग रहा तुद पावा, जा तू मेलहै ता तुझै सुमावा। जय जय कार जपो जगदीश, गुरमत मिलिया बीस अकीस। चख बोलन क्या जग स्यों वाद, झूर मरै देखै परमाद। जन्म मुए नहीं जीवन आसा, आए चले पय आस मरासा। चुर चुर चख माटी रल जा।

लगै, गुर का कहया अंक समावै, निर्मल सूचे साचो पावै, गुर सागर रतनी नहीं तोट, लाल पदार्थ साची अखोट, गुर कहया साकार कमाव हो, गुर की करनी काहे ताव हो, नानक गुरमत साच समाव हो, टूटे नेहो के बोलह सही, टूटे बाहां दुहू दिस गही, टूट परीत गई बुर बोल, दुर्मत परहर छाडी ढोल, टूटे गंठ पड़ै विचार, गुर शब्दी घर कारज सार, लाहा साच न आवे टोटा, त्रे पवन ठाकुर प्रीतम मोटा, ठाको मनुआ राखो ठाई, ठहक मुई अब गुण पछताई, ठाकुर एक सबाई नार, बहुते वेश करे कूड़ियार, पर घर जाती ठाक रहाई, महल बलाई ठाक न पाई, शब्द सवारी साच प्यारी, साई सुहागन ठाकुर तारी, डोलत डोलत हे सखी, फाटे चीर सिंगार, दाहपन तन सुख नहीं, बिन डर बिन ठी डार, डरप मुई घर आपण, दीठी कंत सुजान, दर राख्या गुर आपण, निरपौ नाम बखान, डूंगर वास तिखा कनी, जब देखा नहीं दूर, तिखा नवारी शब्द मन, अमृत पिया भरपूर, देह देह आखै सब कोई, जय पावै तै दे, गुरु द्वारै देवसी, तिखा नवारै सोय, टंडोलत टूंडत हौ फिरी, तह तह पवन करार, पारे तहते तह पए, हौले निकसे पार, अमर अजाची हर मिले, तिनकै हौ बल जाऊ, तिनकी धूड़ अकुली है, संगत मेल मलाऊ, मन दिया गुर आपने, पाया निर्मल नाव, जिन नाम दिया तिस सेवसा, तिस बलिहारे जाओ, जो असारे सो ताहसी, तिस बिन अवर ना कोई, गुर प्रसादी तिस सम्मला, ता तन दुख ना होए, ना को मेरा किस गही, ना को हुआ ना होगा, आवन जानव गुची है, दुबदा व्यापै रोग, नाम मिहुने आदमी, कल्लर कंद ग्रंत, बिन नामै क्यों छूटी है।

भीड बानी बिन साचे क्यों छूटी है हर गुण कर्म मानी आप छाए छूटी है वड़ा आप धनी गुर प्रसादी छूटी है कृपा आप करे अपने हाथ वडाइया जय भावे तैं दे थर थर कंपै जी अड़ा थान विहूना होई।

हार मोए माया किसे ना साथ हंस चले उठ डुम्मण माया भूली आथ मन झूठा जम जोहया अवगुण चले नाल मन मह मन उल्टो मरे जे गुण होवे नाल मेरी मेरी कर मोए विणनावे दुख पाल गढ़ मंदिर महला कहां ज्यों बाजी दी बाण नानक सच्चे नाम।

अपना तन मन आगै देव। अस्त्र करता तू धनी तिस ही की मैं ओट। गुण की मारी हो मुई शब्द रत्न।

कार कमावह सिर धणी लाहा पल्ले पाए लब लोभ बुरे आईया छोड़े मनो विसार गढ़ दोही पातशाह की कदे ना आवे हार चाकर कहिए खसम का सौहे उत्तर दे वजहो गवाए अपना तख्त ना बैसह से प्रीतम हाथ वडे आईया जय भावे तैं दे आप करे किसे आखिए अवर ना कोई करे बीजो सूजे को नहीं बह दलीचा पाए नरक नवारन नरह नर साचो साच नाय वण तृण ढूंढत फिर रही मन मह करो बीचार लाल रतन बहु मान की सतगुर हाथ भंडार उत्तम होवा प्रभ मिले एक मन एक पाए नानक प्रीतम रस मिले लाहा ले परथाए रचना राच जिन रची जिन सिरिया आकार गुरमुख बे अंत त्याई है अंत ना पारावार हड़ाड़े रूड़ा हर जियो सोई तिस बिन राजा अवर ना कोई हड़ाड़े गारड़ तुम सुनो हर वस्ते मन माहि गुर प्रसादी हर पाई है मत को परम पलाहि सो साहो साचा जिस हर धन रास गुरमुख पूरा तिस साबास रूड़ी बाणी हर पाया गुर शब्दी विचार आप गया दुख कटिया हर वर पाया नार सोयना रूपा संची है धन का चा बिखसार साहो सदाए संच धन दुबदा हुए खुआर सचियारी सच संचिया।

साचो ठाकुर मन वसै हौं बलिहारी तिस माया ममता मोहनी जिन कीती सो जान बिख्या अमृत एक है बूझै पुरख सुजान खिमा विहूणे खप गए हूहन लख असंख गणत न आवै क्यों गणी खप खप मोए बिसंख खसम पछाणै अपना खूलै बंद न पाई शब्द महली खरा तू खिमा सच सुख पाए खर्च खरा तन ध्यान तू आपे वसह शरीर मन तन मुख जापै सदा गुण अंतर मन धीर हौ मैं खपै खपाए सी बीजो वथ विकार जंत उपाय विच पायन करता अलग अपार सृष्टि प्यो न जाने कोए सृष्टा करै सुनिश्चो होए संपै को ईश्वर त्याई संपै पुरब लिखे की पाई है संपै कारण चाकर चोर संपै साथ न चालै होर बिन साचे नहीं दरगाह मान हर रस पीवै छुटै निधान हेरत हेरत हे सखी होए रही हैरान हौ हौ करती मैं मुई शब्द रवै मन ज्ञान हार डोर कंकन घणे कर था की शिंगार मिल प्रीतम सुख पाया सगल गुणा गलहार नानक गुरमुख पाई है हर स्यों प्रीत प्यार हर बिन किन सुख पाया देखो हो मन बीचार हर पढ़ना हर बुझना हर स्यों रखो हो प्यार हर जपिए हर त्याई है हर का नाम आधार लेख न मिटई हे सखी जो लिखिया करतार आपे कारण जिन किया कर किरपा पग धार करते हथ वडियाईया बूझो हो गुर बीचार लिखिया फेर न सकी है ज्यों भावी त्यों सार नदर तेरी सुख पाया नानक शब्द विचार मनमुख।

विचार जे पुरख नदर ना आवे तिसका क्या कर कहया जाय बलिहारी गुरे अपने जिन हिरदय दिता दिखाए पांदा पढ़िया आखी विद्या विचरै सहज सुभाए विद्या सुधै तत लहै राम नाम लिवलाए मनमुख विद्या बिकरदा बिख खटै बिख खाए मूर्ख शब्द ना चीनई सूझ बूझ नह काए पांदा गुरमुख आखी चाटड़िया मत दे नाम संभालो नाम संग्रहो लाहा जग महली सच्ची पट्टी सच मन पढ़िए शब्द सो सार नानक सो पढ़िया सो पंडित बीना जिस राम नाम गलहार राम कली महला पहला सिद्ध गोष्ट एक ओंकार सतगुर प्रसाद सिद्ध सभा कर आसन बैठे संत सभा जयकारू तिस आगै रह रास हमारी साचा अपर अपारू मस्तक काट तरी तिस आगै तन मन आगै देउ नानक संत मिले सच पाई सहज पाई जस लेउ क्या भवी है सच सूचा होए साच शब्द बिन मुक्त ना कोए रहाओ कौन तुम्हें क्या नाओ तुम्हारा कौन मार्ग कौन सुआओ साच कहो अरदास हमारी हौ संत जना बल जाओ कह बैस हो कह रही है बाले कह आवो कह जाओ नानक बोले सुन बैरागी क्या तुम्हारा राहु घट घट बैस निरंतर रही है चल है सतगुर भाई सहजे आई हुक्म सदाई नानक सदा रजाई आसन बैसन फिर नारायण ऐसी गुरमत पाई गुरमुख बूझै आप पछाण सच्चे सच समाई दुनिया सागर दुत्तर कहिया क्यों कर पाइये पारू चरपट बोले औदू नानक देहो सच्चा बीचारू आपे आखै आपे समझै तिस क्या उत्तर दीजै साच कहो तुम पार गरामी तुझ क्या बैसन दीजै जैसे जल मह कमल नरालम मुर्गाई नैसाणी सुरत शब्द भव सागर तरियै नानक नाम बखाणी रह एकांत एको मन वसिया आसा माही निरासू अगम अगोचर देख दिखाए नानक ताका दासू सुन स्वामी अरदास हमारी।

निर्मल क्यों कर अंधियारा, यो तत बिचारै सो गुरु हमारा। दुर्मत बादा सरपन खादा, मनमुख खोया गुरमुख लादा। सतगुर मिले अंधेरा जाई, नानक हों मैं मेट समाई। सुन निरंतर दीजै बंद, उड़े ना हंसा पड़े ना कंध। सहज गुफा कर जाने साचा, नानक साचे पावे साचा। किस कारण ग्रह तज्यो उदासी, किस कारण एहो भेख निवासी। किस वखर के तुम बन जारे, क्यों कर साथ लंघावो हो पारी। गुरमुख खोजत भये उदासी, दर्शन कै ताई भेख निवासी। साच वखर के हम बन जारी, नानक गुरमुख उतर सपारी। चित बिद पुरखा जन्म बटाया, काहे को तुझ एहो मन लाया। कित बिद आसा मनसा खाई, कित बिद जोत निरंतर पाई। बिन दंता क्यों खाई सार, नानक साचा करो बीचार। सतगुर कै जन्मे गवन मटाया, अनहत राते एहो मन लाया। मनसाया सा शब्द जलाई, गुरमुख जोत निरंतर पाई। त्रै गुण मेटे खाइए सार, नानक तारे तारन हार। आद को कवन बिचार कथियले, सुन कहां घर वासो। ज्ञान की मुंदरा कवन कथियले, घट घट कवन निवासो। काल का ठींगा क्यों जलाइयले, क्यों निरभउ घर जाइए। सहज संतोख का आसन जाने, क्यों छेदे बैराइए। गुर कै शब्द हउमै बिख मारै, ता निज कर होवै वासो। जिन रच रचिया तिस शब्द पछाणै, नानक ताका दासो। कहां ते आवै कहां एहो जावै, कहां एहो रहै समाई। एस शब्द को जो अर्थावै, तिस गुर तिल ना समाई। क्यों तत्तै अवगतै पावै, गुरमुख लगै प्यारू। आपे सुरता

वह गत मित शब्दे पाई आद कौ विस्माद विचार कथियले सुन निरंतर वास लिया अकलपत मुंदरा गुरु ज्ञान विचारियले घट घट साचा सर्ब जिया गुरु बचनी अवगत समाई है।

जी जुगत सच जाने सोई आप मेट निरालम होवै अंतर साच जोगी कहिए सोई अवगत हो निर्मायल उपजे निर्गुण ते सरगुण थिया सतगुर परचै परम पद पाईऐ साचै शब्द समाए लिया एक एको सच एका जाणै हौ मैं दूजा दूर किया सो जोगी गुर शब्द पछाणै अंतर कमल प्रगास थिया जीवत मरै ता सब किश सूजै अंतर

एक माया झूठे आवह ठवर ना पावह, दूजे आवागौण भया आवागौण मिटै गुर शब्दी, आपे परखै बख

नानक साचर ते सुख जान, गुरमुख साचे का भउ पावे, गुरमुख बाणी अखाड़ कढ़ावे, गुरमुख निर्मल हर गुण गावे, गुरमुख पवित्र परम पद पावे, गुरमुख रोम रोम हर त्यावे, नानक गुरमुख साच समावे, गुरमुख परचै वेद बीचारी, गुरमुख परचै करियै तारी, गुरमुख परचै सो शब्द ज्ञानी, गुरमुख परचै अंतर विद जानी, गुरमुख पाईऐ अलाखे अपार, नानक गुरमुख मुक्त द्वार, गुरमुख अकथ कथै बीचार, गुरमुख निबहै सब परवार, गुरमुख जपिए अंतर प्यार, गुरमुख पाईए शब्द अचार, शब्द भेद जाने जानाई, नानक हम मैं जाल समाई, गुरमुख धरती साचे साजी, तिसमें है उपत खपत सो बाजी, गुर कै शब्द रपै रंग लाई, साच रतो पत स्यो घर जाय, साच शब्द बिन पत नहीं पावे, नानक बिन नावे क्यों साच समावे, गुरमुख अष्ट सिद्धि सब बुद्धि, गुरमुख भवजल तरिय सच सुधि, गुरमुख सारे अपसर विद जाने, गुरमुख पर विरत नर विरत पछाने, गुरमुख तारी पार उतारी, नानक गुरमुख शब्द निसतारी, नामे राते हम मैं जाए, नाम रते सच रही समाई, नाम रते जोग जुगत बीचार, नाम रते पावह मूख द्वार, नाम रते त्रि भवन सोजी होए, नानक नाम रते सदा सुख होए, नाम रते सिद्ध गोष्ट होए, नाम रते सदा तप होए, नाम रते सच करनी सार, नाम रते गुण ज्ञान विचार, बिन नावे बोले सब विकार, नानक

नानक सोई पुरख विधाता सुनो सुन कह सब कोई अनहत सुन कहां ते होई अनहत सुन रते से कैसे जिस ते उपजे तिस ही जैसे कोई जन्म ना मरह ना आवह जाहि नानक गुरमुख मन समझाहि नौ सरस भार दसवै पूरे तह अनहत सुन बजावह तूरे साचै राचे देख हजूरे घट घट साच रहिया पर पूरे गुप्ती बाणी प्रगट होए नानक परख लए सच सोए सहज भाए मिलिए सुख होवे गुरमुख जागै नींद ना सोवे सुन शब्द अपरंपर तारै कहते मुक्त शब्द निस्तारै गुर की दीखिया से सच राते नानक आप गुआए मिलन नहीं प्रांते कबुद्ध चुआवे सो के तठाए क्यों तत न बूझे चोटा खाए जम दर बाते कोई न राखे बिन शब्द नाही पत साखे क्यों कर बूझे पावे पार नानक मन मुख ना बुझे गवार कबुद्ध मिटे गुर शब्द बीचार सतगुर भेटे मुख द्वार तत ना चीने मन मुख जल जाए दुरमत विछड़ चोटा खाए माने हुक्म सबे गुण ज्ञान नानक दरगाह पावे मान साच वखर धन पल्ले होए आप तरह तारे पी सोए सहज रत्ता बूझे पत होए ता की कीमत करे ना कोई जह देखा तह रहे आसमाए नानक पार परे सच पाए सो शब्द का कहा वास कथियले जित तरिया भवजल संसारो त्रै सत अंगुल वाई कही है तिस कहो कवन अधारो बोले खेले अस्थिर होवे क्यों कर अलख लखाए सुन स्वामी सच नानक प्रणवे अपनी मन समझाए गुरमुख शब्दे सच लिव लागे कर नदरी मेल मलाए आपे दाना आपे बीना पूरे भाग समाए सो शब्द को निरंतर वास अलखं जह देखा तह सोई पवन का वासा सुन निवासा अकाल कला धर सोई नदर करे शब्द घट मह वसै विचो भरम गवाए तन मन निर्मल निर्मल बाणी नामो मन वसाय शब्द गुरु भव सागर तरिए इत उत एको जाने जेहन वर्ण नहीं छाया माया नानक शब्द पछाणे त्रै सत अंगुल वाई औदू सुन सच आहारू गुरमुख बोले तत बिरोले चीने अलख अपारू त्रै गुण मेटे शब्द वसाई ता मन चूके अहंकारू

आत्म सुख धारी सच आराध्या गुरमुख तर तारी नानक बूझै को विचारी इहो मन मैगल कहां बसियले कहां बसै इहो पवना कहां बसै सो शब्द औदू ताको चूकै मन का पवना नदर करे ता सतगुर मेले ता निज करवासा इहो मन पाए आपै आप खाए ता निर्मल होवै धावत वर्ज रहाए क्यों मूल पछाणै आत्म जाणै क्यों सस कर सूर समावै गुरमुख होमै विचों खोवै तव नानक सहज समावै इहो मन निश्चल हिरदै बसियली गुरमुख मूल पछाण रह नाभ पवन घर आसन बैसै गुरमुख खोजत तत लह सो शब्द निरंतर निज घर आसै त्रे भवन जोत सो शब्द लह।

सच सफाकै सच रपै रंग कबहू ना जावै जां एहो हिरदा देह ना होती तो मन कैठै रहता नाभ कमल अस्थंभ ना होतो ता पवन कमन घर सहता रूप ना हो तो रेख ना काई ता शब्द कहां लिवलाई रक्त बिंद की मड़ी ना होती मित कीमत नहीं पाई वर्ण भेख असरूप ना जापी क्यों कर जापस साचा नानक नाम रते बैरागी इब तब साचो साचा हिरदा दे ना होती ओदू तौ मन सुन रह बैरागी नाभ कमल असथंभ ना होतो ता निज कर बस तौ पवन अनरागी रूप ना रेखिया जात ना होती तौ अकुल लीन रहतो शब्द सोसार गौन गगन जब तब है ना होतो त्रे पवन ज्योत आपे निरंकार वर्ण भेख असरूप सो एको एको शब्द वडाणी साच बिना सूचा को नाही नानक अकथ कहानी कित कित बिद जाग उपजै पुरखा कित कित दुख बिन सजाई हउमै विच जग उपजै पुरखा नाम विसरै दुख पाई गुरमुख होवै सो ज्ञान तत बीचारै हउमै शब्द जलाई तन मन निर्मल निर्मल बाणी साचै रहै समाई नामे नाम रहै बैरागी साच रखिया उर धारी नानक बिन नावै जोग कदे ना होवै देखो हृदय बीचारी गुरमुख साच शब्द बीचारै कोई गुरमुख सच बाणी प्रगट होई गुरमुख मन भीजै बिरला बूझै कोई गुरमुख निज घर वासा होई गुरमुख जोगी जुगत पछाणै गुरमुख नानक एको जाणै बिन सतगुर सेवे जोग ना होई बिन सतगुर भेटे मुक्त ना कोई बिन सतगुर भेटे नाम पाया ना जाई बिन सतगुर भेटे महा दुख पाई बिन सतगुर भेटे महा गर्भ गोबार नानक बिन गुर मुआ जन्म हार गुरमुख मन जीता हउमै मार गुरमुख साच रखिया उर धार गुरमुख जग जीता जम काल मार बिदार गुरमुख दरगाह ना आवै हार गुरमुख मेल मलाए सो जाणै नानक गुरमुख शब्द पछाणै शब्द काल बेड़ा सुन तू औदू बिन नावै जोग ना होई नामे राते अन दिन माते नामै ते सुख होई नामै ही ते सब प्रगट होवै नामे सोजी पाई।

सहसा गया बलाय, ना किश बीजे ना उगवै, जो बख्शे सो खाय। अम्ब है सेती अम्ब रलिया, बहुड़ ना निकसिया जाय। नानक गुरु

कोई, राम कसौटी सो सहै जो मर जीवा होए। महला तीजा, क्यों कर इहो मन मारिए, क्यों कर मृतक होए। कहया शब्द ना मानी, हऊ मैं छड्डै ना कोई, गुर प्रसादी हऊ मैं छुट्टै जीवन मुक्त सो होए। नानक जिसनो बख्शे तिस मिलै, तिस बिघन ना लागै कोई। महला तीजा, जीवत मरना सब को कहै, जीवन मुक्त क्यों होए। भय का संयम जे करे दारू भाउ लाए, अन दिन गुण गावै सुख सहजे, बिख भउ जल नाम तरे। नानक गुरमुख पाईऐ जा को नदर करी पौड़ी।

ना बूझ बिचारा, सब किस तेरा खेल है, सच सिरजन हारा, जिस भावै तिस बख्श लै, सच शब्द समाई। श्लोक महला तीजा, मन का झूठा झूठ कमावै, माया नू फिरै तपा सदावै, परमे भूला सब तीर्थ गह, ओह तपा कैसे परम गत लह, गुर प्रसादी को सच कमावै, नानक सो तपा मूख अंतर पावै। महला तीजा, सो तपा जे इहो तप काले, सतगुर नो मिलै शब्द संभाले, सतगुर की सेवा इहो तप परवान, नानक सो तपा दरगह पावै मान। पौड़ी, रात दिन स उपायन, संसार की वर्तन, गुरमति घट चानना, अनेर बनासन, हुक्मे ही सब साजियन, रबिया सब वन त्रिण, सब किसे आपे आप है, गुरमुख सदा हर भन, शब्दे ही सोजी पई, सच्चै आप बुझाई। श्लोक महला तीजा, अभ्यागत ए नाया खियन, जिनके चित में परम किस दै दितै नानका, तेहो जेहा धर्म अपै निरंजन परम पद, ताका भूखा होए तिसका भोजन नानका, विरला पाए कोई। महला तीजा, अभ्यागत एह ना आखियन, जे पर कर भोजन करेन, उदरै कारण अपने बहले भेख करेन, अभ्यागत से नानका, जे आत्म गौण करेन, पाल लहन सहो अपना, निज कार रहन करेन। पौड़ी, अंबर धरत विछोड़ियन, विच सच्चा असराव, घर दर सबो सच है, जिस विच सच्चा नाव, सब सच्चा हुक्म वर्तदा, गुरमुख सच समाव, सच्चा आप तखत सच्चा, वह सच्चा करे नियाव, सब सचो सच वर्तदा, गुरमुख अलख लखाई।

ज्यों बैसंतर धात शुद्ध होए त्यों हर का भउ दुरमत मैल गुआई। नानक तेजन सोहणी जो रते हर रंग लाए महला तीजा। राम कली राम मन वसिया तां बने आशिंगार। गुर कै शब्द कमल बिगसिया तां सौंपिया भगत भंडार।

विचार सतगुर मिले तन आम दड़ाई सब किल विख कटन हार नाम जपे नामो अरादी तिस जन को करहो सब नमस्कार मल कूड़ी नाम उतारियन जप नाम हुआ सच्यार जन नानक जिस दे एह चलत है सो जीवो देवन हार पौड़ी तुद जेवन दाता नाही किस आख सुनाई है गुर प्रसादी पाए जिथों हो मैं जाइए रस कस सादा बाहरा सच्ची वड्याई है जिसनों

काटे अंतर अमृत रखियोन गुरमुख किसै प्याई। श्लोक महला तीजा। बाबाणियां कहानियां पुत सपुत करेन, जे सतगुरु भावै सो मन लैन से ही कर्म करेन। जाए पुछो सिमरत शास्त्र ब्यास सुख नारद, बचन सब सृष्ट करेन। सच्चै लाए सच लगे सदा सच समालेन, नानक आए से परवान पहे जे सगले कुल तारेन। महला तीजा। गुरु जिना का अंधला सिख पी अंधे कर्म करेन, वे भाणे चलन अपने नित झूठो झूठ बोलेन। कूड़ कसत कमाम दे पर निंदा सदा करेन, कोई आप डुबे पर निंदका सगले कुल डुबेन। नानक जित ओए लाए तित लगे, ओए बपड़े क्या करेन। पौड़ी सब नदरी अंदर रखदा, जेती सिष्ट सब कीती एक कूड़ को सत लायन। मनमुख वे गूती गुरमुख सदा ते आई है अंदर हर प्रीति। जिनको पोतै पुन है इन वात सपीति, नानक नाम ते आई है सच सिफत सुनाई। श्लोक महला पहला। सती पाप कर सत कमाही, गुर दीखिया घर देवन जाहि। स्त्री पुरखै खटिया भाव, भावै आवो भावै जाओ। शास्त वेद न माने कोई, आपो आपै पूजा होए। काजी होए कै बह न्याई, फेरे तस्बी करे खुदाई। बड्डी लै कै हक गवाए, जे को पुछै ता पढ़ सुनाई। तुरक मंत्र कन हृदय समाहि, लोक महावह चाड़ी खाहि। चौका दे कै सुचा होए, ऐसा हिंदू वेखो कोई। जोगी गिरही जटा बेपूत, आगै पाछै रोवह पूत। जोग न पाया जुगत गवाई, कित कारण सिर शाही पाई।

सो जाए सियाने, होर पकड़ हिंदू मुसलमान सबना का दर लेखा होए, करनी बाजो तरे ना कोई सचो सच बखाने कोई, नानक अगे पुछ ना होए पौड़ी, हर का मंदर आखिए काया कोटगढ़, अंदर लाल जवेरी गुरमुख हर नाम पढ़, हर का मंदर शरीर अत सोहना हर हर नाम देड़, मनमुख आप खुआयन माया मोह नित काड़, सबना साहिब एक है पूरे भाग पाया जाई। श्लोक महला पहला, ना सत दुखिया ना सत सुखिया, ना सत पानी जंत फिरह, ना सत मूंड मडाई केसी, ना सत पढ़िया देश फिरह, ना सत रुखी बिरखी पत्थर, आप तशाव है दुख सह, ना सत हस्ती बदे संगल, ना सत गाई काहू चरह, जिस हथ सिद्ध देवै जे सोई, जिसनों दे तिसे आए मिले।

सो औ तूती जो तू पै आप पिखिया भोजन करे संताप औ हट पटन मह भीख्या करे सो औ तूती शिवपुर चढ़े बोले गोरख सत स्वरूप परम तंत मह रेख नारूप महला पहला सो उदासी जे पाले उदास अर्ध उर्ध करे निरंजन वास चंद सूरज की पाए गंड जिस उदासी का पड़े ना कंद बोले गोपी चंद सत स्वरूप परम तंत मह रेख न रूप महला पहला सो पाखंडी जे काया पखाले काया की अगन ब्रह्म पर जाले सुपने बिंद न दे झरना तिस पाखंडी जरा न मरना बोले चरपट सत स्वरूप परम तंत मह रेख न रूप महला पहला सो बैरागी जे उल्टे ब्रह्म गगन मंडल मह रूपै थम अहनस अंतर रह ध्यान ते बैरागी सत समान।

आई पौड़ी। हर मंदिर सोई आखी है जिथों हर जाता, मानस दे गुर बचनी पाया सब आत्म राम पछाता। बाहर मूल ना खोजी है कर माहे बधाता, मनमुख हर मंदिर की सार ना

मूर्ख के क्या लक्षण है, क्या मूर्ख का करना। मूर्ख ओह जे मुग्ध है अहंकारे मरना, एत कमाणे सदा दुख, दुख ही मह रहना। अत प्यारा पवे खुहु केहु संयम करना, गुरमुख होए सो करे विचार ओस अलिप्तो रहना। हर नाम जपे आप उधरे, ओस पिछे डुब दे पी करना। नानक जो तिस पावे सो करे, जो दे सो सहना। महला पहला, नानक आखे रे मना, सुनिए सिख सही लेखा रब मगेसिया। बैठा कड वही तलबा पौसन आकिया, बाकी जिना रही अजराइल फरिश्ता। हुसी आए तई आवन जान ना सुजई, पीड़ी गली फही कूड़न खुटे नानका। ओड़क सच रही पौड़ी हर का सब शरीर है, हर रब रहया सब आपे। हर की कीमत ना पवे, किस कहन ना जापे। गुर प्रसादी सलाही है, हर भगती रापे। सब मन तन हरिया होया, अहंकार गुआपे।

मत लागे भीड़, रोवह राजे कन पड़ाए, कर कर मांग है भीख्या जाए, रोवह किरपन संचह धन जाए, पंडित रोवह ज्ञान गवाए, बाली रोवह नाहे पतार, नानक दुखिया सब संसार, मन्ने नाओ सोई जन जाए, औरी कर्म ना लेख लाए, महला दूजा जप तप सब किश मन्ने है, अवर कारा सब बाद, नानक मन्या मन्नी है, बुझिए गुर प्रसाद पौड़ी, काया हंस तुर मेल करतै लिख पाया, सब मैं गुप्त वर्तदा गुरमुख प्रगटाया, गुण गावे गुण उच्चरै गुण माहि सुमाया, सच्ची बाणी सच है सच मेल मलाया, सब किछ आपे आप है आपे दे वडियाई, सलोक महला दूजा, नानक अंधा होए कै रतना।

दूजै भाए बोलै, दूजै भाए सदा दुख है, नित नीर वरोलै, गुरमुख नाम त्याई है, मत तत कढोलै, अंतर परगास घट चानना।

नानक चिंता मत करो, चिंता तिस ही है महला पहला। नानक एहो जियो मछली चीवर तृष्णा काल, मनुआ अंध ना चेतई पड़े अचिंता जाल। नानक चेत अचेत है चिंता बद्दा जाए, नदर करे जे अपनी ताय आपे लए मलाए। पौड़ी से जन साचे सदा सदा, जिन्नी हर रस पीता। गुरमुख सच्चा मन वसै सच सौदा कीता, सब किश घर ही माहे है वडभागी लीता। अंतर तृष्णा मर गई हर गुण गावीता, आपे मेल मलायन आपे दे बुझाई। श्लोक महला पहला, वेल पुंजाया कत बनाया, कट कुट कर खुंभ चढ़ाया। लोहा वड्डे दर्जी पाड़ी, सुई धागा सीवै, इउं पत पाटी सिफती सीपै। नानक जीवत जीवै।

सच्चो पाई है कूड़े कूड़ा माना। नानक तिनको सतगुरु मिलिया जिन्ना तुरे पया परवाना। महला पहला साहिब मेरा उजला जे को चित करे नानक सोई सेवी है सदा सदा जो दे। नानक सोई सेवी है जित सेवे दुख जाए अवगुण वंजन गुण रवह मन सुख वसै आए। पौड़ी आपे आप वरतदा आप ताड़ी लायन आपे ही उपदेशदा। गुरमुख पतियायन एक आपे उजड़ पायन एक भगती लायन। जिस आप बुझाए सो बुझसी आपे ना लायन। नानक नाम ते आई है सच्ची वड्याई शुद्ध। राम कली की वार महला पंजवां। एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्लोक महला पंजवां। जैसा

कोई ऐसा सज्जन लोड़ लहो जो मेले प्रीतम मोहे गुर पूरा मेलाया जत देखा तत सोए जन नानक सो प्रभ सेविया तिस जेवड़ अवर ना कोई पौड़ी देवन हार दतार कित मुख सलाहिया जिस रखै कृपा तार रिजक समाहिया कोई ना किस ही वस सबना एक तार पाले बालक वांग दे कै आप कर करदा आनंद बनोद किशु ना जानिए सर्ब धार समरथ हो तिस कुरबाणीए गाइए रात दिनंत गावन जोगिया जो गुर की पैरी पाहे तिन्नी हर रस भोगिया सलोक महला पंजवां भीड़ो मोक लाई कीतियन सब रखे कटंबे नाल कारज आप सवारियन सो प्रभ सदा संभाल प्रभ मात पिता कंठ लाईंदा लहुड़े बालक पाल दयाल हुए सब जी जंतर हर नानक नदर निहाल महला पंजवां बिन तुद होर जे मंगना सिर दुखा कै दुख देह नाम संतोखिया उतरै मन की भुख गुरवण तिन हरिया कीतिया नानक क्या मनुख पौड़ी।

मनो ना विसरे, कड़ी ना मोत चसा तिस बिन ना सरे, अंतर बाहर संग क्या को लुक करे, जिस पात रखे आप सो पवजल तरे, भगत ज्ञानी तपा जिस कृपा करे, सो पूरा प्रदान जिसनो बल तरे, जिसे जराए आप सोई अजर जरे, तिस ही मिलिया सच मंत्र गुरमन तरे, सलोक महला पंजवा, धन सुराग सुरंगड़ी अलापत सब तिख जाय, धन सो जंत सुहावड़ी जो गुरमुख जप दे नाउ, जिन्नी एक मन एक अरादिया तिन सद बलिहारे जाउ, तिन की धूड़ हम बाछ दे करमी पल्ले पाए, जो रते रंग गोविंद कै हों तिन बलिहारे जाउ, आखा बिरथा जी की हर सज्जन में लोहराय, गुरपूरे में लाया जन्म मरण दुख जाय, जन नानक पाया अगम रूप अनत ना काहू जाय, महला पंजवा, तन सो वेला कड़ी तन, तन मूर्त पल सार, तन सो दिन संजोगड़ा जित डिठा गुर दरसार, मन किया इच्छा पूरिया हर पाया अगम अपार, हम मैं टुटा मोहड़ा एक सच नाम आधार, जन नानक लगा सेव हर उदरिया सगल संसार, पौड़ी सिफत सलाहन भगत विरले दितियन, सौंपे जिस भंडार फिर पुछ ना लीतियन, जिसनो लगा रंग से रंग रत्या, ओना इको नाम आधार इका उन पत्या, ओना पिछे जग पुंचे भू गई, ओना प्यारा रब ओना हां जो गई, जिस मिलिया गुर आए तिन प्रभ जानिया, हौ बलिहारी तिन जे खसम पाणिया, सलोक महला पंजवा, हर इक सह नाल मैं दोस्ती, हर इक सह नाल मैं रंग, हर इको मेरा सजनो, हर इक सह नाल मैं संग, हर इक सह नाल मैं गोसते, मुह मैला करै ना भंग, जाने बिरथा जी की कदे ना मोड़ै रंग, हर इको मेरा मसलती पन्नन करन समरथ, हर इको मेरा दातार है सिर दात्या जग हाथ, हर इक सह दी मैं टेक है जो सिर सबना समरथ, सतगुर संत मलाया मस्तक तर के हाथ, वड्डा साहिब गुरु मलाया जिन तारिया सगल जगत, मन किया इच्छा पूरिया पाया तुर संजोग, नानक पाया सच नाम साध ही भोगे भोग, महला पंजवा।

टिचर रखन गंड जित दिन किछ ना होवे तित दिन बोलन गंद जी की सार ना जाननी मन मुख ज्ञानी अंद कूड़ा गंड ना चलई चिक्कड़ पत्थर बंद अंधे आप ना जाननी फक्कड़ पिटन तंद।

लाई तहो लगी तू सुन सच संदेसा साई सुहागण साई भागण जय फिर कृपा धारी फिर औगण तिसके सब गवाए गल सीती लाए सवारी कर्महीन धन करे बेनंती कद नानक आवै वारी सब सुहागण मान है रलिया एक देव हो रात मरारी महला पंजवा काहे मन तू डोलता हर मन सा पूर्ण हार सतगुर पुरख त्याए तू सब दुख वसारन हार हर नामा आराध मन सब किल विख जाहे विकार जिनको पूर्व लिखिया तिन रंग लगा निरंकार ऊनी छड़िया माया सुआवड़ा धन संचिया नाम अपार अठे पहर इक तैलिवै मन्ने न हुक्म अपार जन नानक मंगै दान एक देहो दर्श मन प्यार पौड़ी जिस तू आवै चेत तिसनु सदा सुख जिस तू आवै चेता

हर कहावे वैष्णो नाम कर्म हो जुगता तोह कुटे क्या फल पावे हंसां विच बैठा भग न बणी नित बैठा मच्छी नो तार लावे जां हंस सभा विच

पुत्र सत्र समानी औगण कटे करे सुध देहा नानक जिस तुर मस्तक होवे लिखिया तिस सतगुर नाल सनेहा अमृत बाणी सतगुर पूरे की जिस कृपाल होवे तिस हृदय बसेहा आवण जाना तिसका कटिया सदा सदा सुख होहा पौड़ी जो तुद पाणा जंत सो तुद बुझई जो तुद पाणा जंत सो दरगाह सिजई जिसनो तेरी नदर हों मैं तिस गई जिसनो तू संतुष्ट कल मल तिस खई।

नाम सतगुर पाए पै मन तन अंतर वस दुखा नास होए हाथ दे आप रख व्यापै भउ ना कोई।

तेरा अंग सो निर्मली हूँ निर्मला, जिसनो तेरी नदर ना लेखा पुछी है, जिसनो तेरी खुशी तिन नौ निध पुंची है, जिसनो तू प्रभु वल तिस क्या मोह शंदगी, जिसनो तेरी मेहर सो तेरी बंदगी। सलोक महला पंजवा। ओ कृपाल स्वामी मेरे, संता संग विहावे, तुदहो भुले से जम जम मर दे, तिन कदे ना चुकन हावे। महला पंजवा। सतगुर सिमरो अपना, घट अवकट घट घाट,

होगा हरक आनंद हुक्मे जपे निरोधर गुरमंद हुक्मे आवन जान रहाय नानक जाको भगती लाई पौड़ी हौ तिस ढाडी कुर्बान जे तेरा सेवदार हौ तिस ढाडी बलिहार जे गावे गुण अपार सो ढाडी धन धन जिस लोड़े निरंकार सो ढाडी भागठ जिस सत्या द्वार बार वो ढाडी तुद त्याए कलाने दिन रैनार मंगै अमृत नाम ना आवे कदे हार कपड़ भोजन सच रहंदा लिवै धार सो ढाडी गुणवान।

मन तन हृदय सिमर हर आठ पहर गुण गाओ। उपदेश सुनो तुम गुर सिखो सच्चा एह सुआव। जन्म पदार्थ सफल होए मन मह लायो पाओ। सुख सहज आनंद घना प्रभ जपत्या दुख जाए। नानक नाम जपत सुख उपजै दरगाह पाईए थाउ। महला पंजवा नानक नाम त्याई है गुरपूरा मत दे। भाणे जप तप संयम भाणे ही काढ ले। भाणे जून पवाई है भाणे बख्श करे। भाणे दुख सुख भोगी है भाणे कर्म करे। भाणे मिट्टी साज कै भाणे जोत तरे। भाणे भोग पगाए दा भाणे मनह करे। भाणे नरक सुरगे अवतारे भाणे धरन परे। भाणे ही जिस भगती लाए नानक विरले पौड़ी। वडियाई सच्चे नाम की हौ जीवा सुन सुने। पशु प्रेत अज्ञान उधारे एक खणे। दिनस रहन तेरा नाउ सदा सद जापी है। तृष्णा भुख विकराल नाए तेरे त्रापी है। रोग सोग दुख वंजै जिस नाउ मन वसै तिसह प्राप्त लाल। जो गुर शब्दी रसै खंड ब्रह्मांड बेअंत उदाहरण हारिया। तेरी शोभा तुद सच्चे मेरे प्यारिया। श्लोक महला पंजवा मित्र प्यारा नानक जी मैं छड गवाया। रंग कसुंबै भुली तौ सज्जन की मैं कीम ना पाउंदी। हौ तुद बिन अड ना लहंदी। महला पंजवा सस वरायण नानक जीओ ससुरा वादी जेठो पौ पोलू है। हबे भस पुणेंदे वतन जा मैं सज्जन तू है पौड़ी। जिस तू बुठा चित तिस दर्द निवारण। जिस तू बुठा चित तिस कदे ना हारण। जिस मिलिया पूरा गुरु सो सर पर तारनो। जिसनो लाए सच तिस सच संभालनो। जिस आया हाथ निदान सो रहया पालनो। जिसनो एको रंग भगत सो जान।

कोई जाचक सदा जाचो है महला पंजवा देह सजंदड़ी ऊण मचूना गुर सज्जन जियो तराया हब्बे सुख सुहेलड़ा सुता जिता जग सवाया पौड़ी वड़ा तेरा दरबार सच्चा तुद तखत सिर शाह पातशाह निश्चल चौर छत जो पावै पार ब्रह्म सोई सच न्याऊ जे पावै पार ब्रह्म नथावे मिलै थाऊ जो कीनी करतार।

मेरा अंदर ठंडा गुरदर्शन देख निहाली महला पंजवा हठ मंजाहू मैं मानक लद्दा मुल ना किदा मैं कू सतगुर दिता ढूंढ वजाई थिया थिता जन्म पदार्थ नानक जिता पौड़ी जिसका मस्तक कर्म होए सो सेवा लागा जिस गुरमिल कमल परगासिया सो अन दिन जागा लगा रंग चरनार बिंद सब भ्रम पौ भागा आत्म जिता गुरमति आगंजत पागा जिसह त्याया पार ब्रह्म सो कल मह तागा साधु संगत निर्मला अठ सठ मज नागा जिस प्रभ मिलिया आपना सो पुरख सुभागा नानक तिस बलिहार ने जिस एवड भागा।

दलाली सतगुरे आखे सच्चा करे सा बात हुए दरहाली गुरे अंगद दी दोही फिरी सच करते बंद बहाली नानक काया पलट कर मल तख्त बैठा सह डाली दर सेवे उम्मत खड़ी मस कल्ले हुए जंगाली दर दरवेश खसम दे नाए सच्चे बाणी लाली बलवंड खीवी नेक जन जिस बहुती छाओ पतराली लंगर दौलत वंडी है रस अमृत खीर कियाली गुरसिखा के मुख उजले मन मुख थीए पराली पए कबूल खसम नाल जा काल मरदी काली माता खीवी सहो सोए जिन गोए उठाली हो रे ओ गंग बहाई है दुनियाई आखे के क्यों नानक ईसर जगन्नाथ उचहदी वैन बिरक्योन माधाना पर्वत कर नेत्र बासक शब्द रिड़क्योन चौदह रत्न निकालियन कर आवागौन चिलक्योन कुदरत ऐह वे खालियन जिन एवड पिंड ठिणक्योन लहणे धरियन छत्र सिर असमान

मेलो गुर का शब्द गुड़ की नरे तृष्णा काम क्रोध मद मत्सर काट काट कस दी नरे कोई है रे संत सहज सुख अंतर जाको जप तप देव दलाली रे एक बूंद भर तन मन देवो जो मद दे कलाली रे रहाउ पवन चतर दस पाठी कीनी ब्रह्म यगन तन जारी रे मुंदरा मदक सहज धुन लागी सुखमन पोचन हारी रे तीरथ बरत नेम सुच संयम रव सस गहन देओ रे सुरत प्याल सुधा रस अमृत एहो महारस प्यो रे निचार धार चोवै अत निर्मल एह रस मनुआ रातो रे कह कबीर सगले मद छूछै एह महारस साचो रे गुड़ कर ज्ञान ध्यान कर महुआ पौ पाठी मन धारा सुख मन नारी सहज समानी पीवै पीवन हारा औदू मेरा मन मतवारा उन्मद चढ़ा मदन रस चाखिया त्रे भवन भया उजियारा रहाऊ दोए पुर जोर रसाई पाठी पियो महारस भारी काम क्रोध द्वे किए जलेता छूट गई संसारी प्रगट प्रगास ज्ञान गुर गम्मत सतगुर ते सुध पाई दास कबीर तास मत माता उचक ना कबहू जाई तू मेरो मेर पर्वत स्वामी।

कै कर जानी हम निर धन ज्यो एहो धन पाया मरते फूट गमानी करै गमान चुभै तिस सूला को काढ़न को नाही अजै सो चोभ को बिलल बलाते नरके घोर पचाई कवन नरक क्या सुर्ग बिचारा संतन दो रादे हम काहू की कान ना कटते अपने गुर पर सादे अब तो जाए चढ़े सिंघासन।

बोले पांडे दोजक पर है रहा आपनी ऊंच नीच कर भोजन हठे कर्म कर उदर पर है चौदस अमावस रच रच मांग है कर दीपक लै कूप पर है तू ब्राह्मण मैं कांसिक जुल्हा मोहे तोहे बराबरी कैसे कै बन है हमरे राम नाम कह उबरे वेद परोसे पांडे डूब मर है तरवर एक अनंत डार साखा पोहप पत्र रस भरिया ए अमृत की बाड़ी है रे तिन हर पू

जप तप संयम गुरमुख भोगी रहाउ बुद्ध बेपूत चढ़ावो अपनी सिंगी सुरत मलाई कर बैराग फिरो तन नगरी।

जग भीतर जन्म कमन फल पाया भावले धर्म तारन चिंतामन एक निमुख नायो मन लाया गोविंद हम ऐसे अपराधी जिन प्रभ जियो पिंड था दिया तिसकी भाऊ भगत नहीं साधी रहा पर तन परती निंदा पर अपवाद ना छूटै आवागमन होत है फुन फुन एहो प्रसंग ना टूटै जे घर कथा होत हर संतन एक निमख ना कीनो मैं फेरा लंपट चोर दूत मतवारी।

जाहि फलाई, जे सिमरन तुझ पूहै नाम आई। सिमर सिमर हर हर मन गाइए, एहो सिमरन सतगुर ते पाइए। सदा सदा सिमर दिन रात, उठत बैठत सास ग्रास। जाग सोए सिमरन रस भोग, हर सिमरन पाइए संयोग। जेहे सिमरन नाही तुझ भार,

ले सकत सहारम पैसी ले गगन मजारम बेदी अले चक्र पोंगा पेटी अले रायन संगा चूकी अले मोह मै आसा सस तीनो सूर ग्रासा जब कुंभक भरपुर लीना तह बाजे अनहद बीना भक्त बक शब्द सुनाया।

गुडी आकाश मदे परम यले पंच जनास्यो बात बतौआ चीत सो डोरी राखी अले मन राम नामा वेदी अले जैसे कनक कला चित मांडी अले रहाओ आनी ले कुंभ पराई ले उदक राजकुमार पुरंदरिये हस्त बनोद विचार करती है चीत सो गागर राखी अले मंदर एक द्वार दस जाके गऊ चरावन शादी अले पांच कोस पर गऊ चरावत चीत सो बशरा राखी अले कहत नाम देव सुनो तलोचन बालक पालन पौडी अले अंतर बाहर काज विरुद्धि चीत सो बारक राखी अले वेद पुराण शास्त्र अनंता गीत कबेतना गावो गो अखंड मंडल निरंकार मह अनहद बीन बजावो गो वैरागी रामह गावो गो।

दुए सम कर राखो ब्रह्म जोत मिल जाओगो तीर्थ देख ना जल मह पैसो जी जंत ना सतावोगो अठ सठ तीर्थ गुरु दिखाए घट ही भीतर नाओगो पंच सहाई जन की सोबा पलो पलो ना कहावोगो नामा कह चित हर सिओ राता सुन समाद समाओगो माए ना होती बाप ना होता कर्म ना होती काया हम नहीं होते तुम नहीं होते कमन कहां ते आया राम कोई ना किसी केरा जैसे तरवर पंख बसे।

घर दूजा बनारसी तप करै उल्ट तीर्थ मरै अग्न दह काया कल्प कीजै असमेद जग कीजै सोना गर्भ दान दीजै राम नाम सर तऊ ना पूजै छोड़ छोड़ रे पा।

धारी असुर नदी का बंदे मूल पच्छम फेर चढ़ावे सूर अजर जरे सो निचर चरे जगन्नाथ स्यो गोष्ट करे चौमुख जीवा ज्योत द्वार पल्लू अनत मूल बिचकार सर्व कला ले आपे रह मन मानक रत्ना मह गुह मस्तक पदम द्वाले मणि माही निरंजन त्रे पवन धनी पंच शब्द निर्मायल बाजे तुलके चवर शंख कण गाजे दल मल दै

जप एहन सुनाम हरे, कोट कोट दोख बहु कीने, सब पर हर पास तरे रहाउ, हर हर नाम जप है अराध है, सेवक पाए खरे, किल बिख दोख गए सब नीकर, ज्यो पानी मैल हरे, खिन खिन नर नारायण गाव है, मुख बोल है नर नर हरे, पंच दोख असाध नगर में है, एक खिन पल दूर करे, वड भागी हर नाम त्याव है, हर के भगत हरे, तिनकी संगत देहे प्रभ जाच्यों, मैं मूड मुग्ध निस्तरे, कृपा कृपा तार जग जीवन, रख ले वो सरन परे, नानक जन तुमरी सरनाई, हर राख हो लाज हरे, नट महला चौथा, राम जप जन, राम नाम रले, राम नाम जपियो गुरबचनी, हर तारी हर कृपले रहाउ, हर हर अगम अगोचर स्वामी, जन जप मिल सलल सलले, हर के संत मिल आम रस पाया, हम जन कै बल बलले, पुरखोत्तम हर नाम जन गायु, सब दालद दुख दलले, विच देही दोख असाध पंच धातु, हर किए खिन परले, हर के संत मन प्रीत लगाई, ज्यों देखै सस कमले, उनवै कन कन कन हर गरजै, मन बिगसै मोर मुरले, हमरे स्वामी लोच हम लाई, हम जीव है देख हर मिले, जन नानक हर अमल हर लाई, हर मेल हो आनंद भले, नट महला चौथा, मेरे मन जप हर हर नाम सखे, गुर प्रसादी हर नाम त्यायु, हम सतगुर चरण पखे रहाउ, उत्तम जगन्ना जगदीश्वर, हम पापी सरन रखे, तुम वड पुरख दीन दुख भंजन, हर दियो नाम मुखे, हर गुण ऊच नीच हम गाय, गुर सतगुर संग सखे, ज्यो चंदन संग बसै निम बिरखा, गुण चंदन के बसखे, हमरे अवगन बिखिया बिखै के, बहु बार बार निमखे, अवगन यारे पाथर पारे, हर तारे संग जनखे, जिनको तुम हर राखो स्वामी, सब तिनके पाप क्रिखे, जन नानक के दयाल प्रभ स्वामी, तुम दुष्ट तारे हर नखे, नट महला चौथा, मेरे मन जप हर हर राम रंगे, हर हर कृपा करी जगदीश्वर, हर त्यायो जन पग लगे रहाउ, जन्म जन्म के भूल चूक हम, अब आए प्रभ सरन गे, तुम सरनागत प्रतपालक स्वामी, हम राखो वड पाप गे, तुमरी संगत हर को ना उधरेओ, प्रभ किए पतत पवगे, गुण गावत शीपा दुष्टारेओ, प्रभ राखी पैज जनगे, जो तुमरे गुण गाव है स्वामी, हौ बल बल बल तिनगे, पवन पवन पवित्र सब किए, जह तूर परी जन पगे, तुमरे गुण प्रभ कह ना सकह हम, तुम वड वड पुरख वडगे।

जप हर हर नाम मने, जगन्नाथ कृपा प्रभ तारी, मत गुरमत नाम बने रहाउ। हर जन हर जस हर हर गायु, अपदेश गुरु गुर सुने, किल बिख पाप नाम हर काटे, जिव खेत किरसान लुने। तुमरी उपमा तुम ही प्रभ जानहु, हम कह ना सकह हर गुने। जैसे तुम तैसे प्रभ तुम ही, गुण जानहु प्रभ अपने। माया फास बंद बहु बंदे, हर जप्यो खुल खुलने। ज्यों जल कुंचर तंदुए बांधियो, हर चेतियो मोख मुखने। स्वामी पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम खोजो हो जुग जुगने। तुमरी था पाई नहीं पावे, जन नानक के प्रभ वडने। नट महला चौथा, मेरे मन कल कीर्त हर प्रवणे। हर हर दयाल दया प्रभ धारी, लग सतगुरु हर जपने रहाउ। हर तुम वड अगम अगोचर स्वामी, सब त्यावह हर रुड़ने। जिनको तुमरे वड कटाख है, ते गुरमुख हर सिमरने। इहो प्रपंच किया प्रभ स्वामी, सब जग जीवन जुगने। ज्यो सलल सलल उठह बहु लहरी, मिल सलल सलल समणे। जो प्रभ किया सो तुम ही जानो, हम नह जानी हर गहने। हम बारक कौर दे उस्तत तार हो, हम करह प्रभु सिमरणे। तुम जल निद हर मान सरोवर, जो सेवे सब फलने। जन नानक हर हर हर हर पंछ, हर देव हो कर कृपणे। नट नारायण महला चौथा पड़ताल, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मेरे मन सेव सफल हर काल, ले गुर पगरे नरवाल। सब दाल पांच दुख दाल, हर हो नदर निहाल रहाउ। हर का ग्रह हर आप सवारियु, हर रंग रंग महल बेअंत। लाल लाल हर लाल, हर अपनी कृपा करी। आप ग्रह आयु, हम हर की गुर की है बसीठी। हम हर देखे पई निहाल निहाल निहाल निहाल। हर आवते की खबर गुर पाई, मन तन आनंद आनंद पये। हर आवते सुने मेरे लाल हर लाल, जन नानक हर हर मिले पये गलतान। हाल निहाल निहाल, नट महला चौथा। मन मिल संत संगत शुभवंती, सुन कथ कथा सुखवंती। सब किल बिख पाप लहंती, हर हो लिखत लखंती रहाउ। हर कीरत कलयुग विति उत्तम, मत गुरमत कथा पजंती। जिन जन सुनी मनी है जिन जन, तिस जन कै हो कुर्बानंती। हर कथ कथा का जिन रस चाखिया, तिस जन सब भूख लहंती। नानक जन हर कथा सुन तृप्ति, जप हर हर हर होवंती। नट महला चौथा, कोई आन सुनावे हर की हर गाल। तिस को हो बल बल बाल, सो हर जन है पल पाल। हर हो मेल निहाल रहाउ। हर का मार्ग गुर संत बतायु, गुर चाल दिखाई हर चाल। अंतर कपट चकाव हो मेरे गुर सिख हो, निह कपट कमाव हो। हर की हर काल निहाल निहाल निहाल, ते गुर के सिख मेरे हर प्रभ पाई। जिन्ना हर प्रभ जानियो मेरा नाल, जन नानक को मत हर प्रभ दीनी। हर देख निकट हदूर, निहाल निहाल निहाल निहाल। राग नट नारायण।

मन प्यास बहुत दर्शावे रहाउ। सोई ज्ञानी सोई जन तेरा जिस ऊपर रुचि आवे, कृपा करहु जिस पुरख बधाते सो सदा सदा तुद त्यावे। कमन योग कमन ज्ञान त्या

शरीर जम की त्रास मिटी सुख पाया निकसी हम मैं पीर रहाऊ तप्त बुझानी अमृत बानी तृप्ते ज्यो बारक खीर मात पिता साजन संत मेरे संत सहाई वीर खुले ब्रह्म पीत मिले।

खंड खंड कीने बिनस्यो मूड अभमान क्या गुण तेरे आख बखाना प्रभ अंतर जामी जान चरण कमल सरन सुख सागर नानक सद कुर्बान नट महला।

दयाल उठत बैठत सोवत जागत जी प्राण धनवाल दर्शन प्यास बहुत मन मेरे नानक दर्शन हाल नाटक।

नीता बिनसै दुख विपरीत सब अर्पो मन तन चीत रहाओ कोई विरला अपन कीत संग चरण कमल मन सीत कर कृपा हर जस दीत हर भज जन्म पदार्थ जीत कोट पतत होहि पनीत नानक दास बल बल कीत नाट अष्टपदिया महला चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद राम मेरे मन तन नाम आधारी खिन पल रह ना सको बिन सेवा मैं गुरमत नाम संभारी रहाव हर हर हर हर हर मन त्यावहु मैं हर हर नाम प्यारी दीन दयाल भई प्रभ ठाकुर गुर कै शब्द सुवारी मधुसूदन जग जीवन माधु मेरे ठाकुर अगम अपारी एक बिनो बेनती करूं गुर आगे मैं साधु चरण

हर अमृत सर नावारे, सतगुरु ज्ञान मज्जन है नीको, मिल कलमल पाप उतारे रहाउ, संगत का गुण बहुत अधिकाई, पढ़ सुआगन के उधारी, परसन परस भय कुबिजा को, लै बैकुंठ सधारी, अजामल प्रीत पुत्र प्रत कीनी, कर नारायण बोलारी, मेरे ठाकुर कै मन

अभिचारी सत संगत मिले ता दृढ़ता आवे हर राम नाम निस्तारी जब लग जियो पिंड है साबत तब लग किसना संभारी जब घर मंदिर आग लगानी कड कूप कड्डे पनेहारी साकत सियो मन मेल ना करियो जिन हर हर नाम बिसारी साकत बचन बिशुआ ज्यो दसिए तज साकत परे परारी लग लग प्रीत बहु प्रीत लगाई लग साधु संग सुवारी गुर के बचन सत सत कर मानी मेरे ठाकुर बहुत प्यारी पूर्व जन्म परचून कमाए हर हर हर नाम प्यारी गुर प्रसाद अमृत रस पाया।

गुर सरल प्रभु रखवारे, ज्यो कुंचर तंदुए पकर चलायो, कर ऊपर कढ़ निस्तारे रहाओ। प्रभ के सेवक बहुत आत्मिके, मन श्रद्धा कर हर तारे, मेरे प्रभ श्रद्धा भगत मन भावे।

सब एका नदर निहारी हर प्रभ ठाकुर रविया सब ठाई सब चेरी जगत समारी आप दयाल दया दान देवे विच पाथर कीरे कारी अंतरवास बहुत मुचकाई भ्रम भूला मिर्ग सिंघारी।

जन माने प्रतख गुरु निस्तारी सब है ब्रह्म ब्रह्म है पसरिया मन बीजिया खवारी ज्यों जन चंद्र हांस दुखिया त्रिष्ट बुद्धि अपना घर लूकी जारी प्रभ को जन अंतर रिद लोचै प्रभ जन के सास निहारे कृपा कृपा कर भगत दृढ़ाए जन पीछे जग निस्तारे अपने आप आप प्रभ ठाकुर प्रभ आपे सिष्ट सवारी जन नानक आपे आप सब वरतै कर कृपा आप निस्तारी नट महला चौथा राम कर कृपा लेहो उभारी जो पकर द्रौपदी दुष्टायानी हर हर लाज निवारी रहाउ कर कृपा जाचक जन तेरे एक मांगो दान प्यारे सतगुर की नित श्रद्धा लागी मोह कहो हर गुर मेल सवारी साकत कर्म पानी ज्यो मथी है नित पानी झोल चुलारे मिल सत संगत परम पद पाया कड माखन के गटकारे नित नित काया मजन किया नित मल मल दे सवारे मेरे सतगुर के मन बचन ना पाए सब फोकट चार शिंगारे मटक मटक चल सखी सहेली मेरे ठाकुर के गुण सारे गुरमुख सेवा मेरे प्रभ भाई मैं सतगुर अलख लखारी नारी पुरख पुरख सब नारी सब एको पुरख मरारी संत जना की रेन मन पाई मिल हर जन हर निस्तारी ग्राम ग्राम नगर सब फिरिया हृदय अंतर हर जन भारी श्रद्धा श्रद्धा अपाई मलाई मोको हर गुर गुर निस्तारी पवन सूत सब नीका करिया सतगुर शब्द विचारी निज कर जाए अमृत रस पिया बिन नैना जगत निहारी।

मन तीरे नट महला चौथा मेरे मन भज ठाकुर अगम अपारे हम पापी बहु निर्गुण यारे कर कृपा गुर निस्तारे रहाउ साधु पुरख साध जन पाए एक बिनो करो गुर प्यारे राम नाम धन पूंजी देव हो सब तिसना भूख निवारे पचै पतंग मृग भृंग कुंचर मीन एक इंद्री पकर संघारे पंच भूत सबल है देही गुर सतगुर पाप निवारे शास्त्र वेद सोध सोध देखे मुन नारद बचन पुकारे राम नाम पढ़ो गत पाव हो सत संगत गुर निस्तारे प्रीतम प्रीत लगी प्रभ केरी जिव सूरज कमल निहारे मेर सुमेर मोर बहु नाचै जब उनवै कन कन हारे साकत को अमृत बहु सिंचो हो सब डाल फूल बिस्कारे ज्यो ज्यो निवह साकत नर सेती छेड़ छेड़ कड़ै बिख खारे संतन संत साध मिल रही है गुण बोले है पर उपकारी संतै संत मिले मन बिगसै ज्यो जल मिल कमल सवारी लोभ लहर सब सुवान हलक है हलकियो सबह बिगारी मेरे ठाकुर कह दिबान खबर हुई गुर ज्ञान खड़ग लै मारी राख राख राख प्रभ मेरे मैं राखो कृपा तारी नानक मैं

साद अनक जतन कर रहे हर अंत नाही पाया हर अगम अगम अगाध बोध अदेश हर प्रभराया रहाउ काम क्रोध लोभ मोह नित झगरते झगराया हम राख राख दीन तेरे हर शरण हर प्रभ आया शरणागति प्रभ पालते हर भगत वचल नाया प्रहलाद जन हर नाख पकरियो।

हर ठाकुर हर गुरमति प्रभ पाया हर पतत पावन नाम स्वामी भौ भगत भंजन गाया हर हार हर

राम नाम सुख दाता, सत संगत मिल हर साध आया, गुरमुख ब्रह्म पछाता रहाऊ, वडभागी गुर दर्शन पाया, गुर मिलिया हर प्रभ जाता, दुर्मत मैल गई सब नीकर, हर अमृत हर सरनाता, तन तन साध जिन्नी हर प्रभ पाया, इन पूछो हर की बाता, पाए लगो नित करो जुदरिया, हर मेलो कर्म विधाता, ललाट लिखे पाया गुर साधु, गुर बचनी मन तन राता, हर प्रभ आए मिले सुख पाया, सब किल विख पाप गवाता, राम रसायन जिन गुरमत पाया, इनकी उत्तम बाता, इनकी पंक पाइए बड़भागी, जन नानक चरण पराता, माली गौड़ा महला चौथा, सब सिद्ध साधक मुन जना, मन भावनी हर त्यायो, अपरंपरु पार ब्रह्म स्वामी, हर अलख गुरु लखायो रहाओ, हम नीच मध्यम कर्म किए, नहीं चेतेओ हर रायो, हर आन मेलेओ सतगुरु, खिन बंद मुक्त करायो, प्रभ मस्त के तुर लिखिया, गुरमति हर लिव लायो, पंच शब्द दरगाह बाजिया, हर मिलेओ मंगल गायो, पतत पावन नाम नरहर, मंद भागिया नहीं पायो, ते गर्भ जोनी गालिय है, ज्यो लोन जलह गलायो, मत देहे हर प्रभ अगम ठाकुर, गुर चरण मन मैं लायो।

लागा कमल प्रगास पया गुर पाया हर जप्यो ब्रह्म पौ भागा रहा पै पाए भगत लागो मेरा ही अरा मन सोयो गुरमत जागा किल बिख खीन भये शांत आई हर उर धार्यो वड भागा मन मुख रंग कसुंभ है कचुआ ज्यो कुसुम चार दिन चागा खिन मह बिन सजाए परतापै दान धर्म राय का लागा सत संगत प्रीत साधे अत गूड़ी ज्यो रंग मजीत बहु लागा काया कापर चीर बहु फारे हर रंग नाल है सुभागा हर चार

नदान पतत पावन नाम हरि कोट भगत उदार करी हरदास दासा दीन सरन नानक माथा संत चरण माली गौड़ा महला पंजवा ऐसो सहाई हर को नाम साध संगत भज पूर्ण काम रहाउ बूढ़त कौ जैसे बेड़ी मिलत बूजत दीपक मिलत तिलत जलत अग्नि मिलत नीर जैसे बारक मुख है खीर जैसे रण में है सखा प्रात जैसे भूखे भोजन मात जैसे कृख है बरस मेघ जैसे पालन सरन सेंग गर्ण मुख नहीं सरपत रास सुआ पिंजर नहीं खाए बिलास जैसो आंडो हृदय माहे जैसो दानो चकी दराहे बहुत उपमा थोर कही हर अगम अगम अगाध तुही ऊच मूचो बहु अपार सिमरत नानक तरे सार माली गौड़ा महला।

सदा सुख पाईऐ जीवन का मूल रव रहे सरबत ठाई सुख मोह असथूल आल जाल बिकार तज सब।

सलाहिया जिन कर देखिया खेल संजोगी मेलावड़ा इन तन कीते भोग वे जोगी मिल विछड़े नानक भी संजोग मारू महला पहला मिल मात पिता पिंड कमाया तिन करता लेख लिखाया लिख दात जोत वड़ियाई मिल माया सुरत गवाई मूर्ख मन काहे कर सहमाना उठ चलना खसमै पाना रहाउ तज साध सहज सुख होई घर छड़ने रह ना कोई किस खाजै किस धर जाइयै जे बहुड़ दुनिया आइयै सज काया पट हंडाई फरमाइश बहुत चलाई कर सेज सुखाली सोवै हथी पौंदी काहे रोवै घर घूमण वाली पाई

अंग दुख नहीं रे दादर तू कबह न जानस रे पक्षस बाल बसस निर्मल जल अमृत ना लक्ष रे रहाव बस जल नेतना वस्त अलियल मेर चचा गुण रे चंद कुमुंदनी दूरों निवसस।

छोड़स किसन प्रीत ज्योरे पंडित संग वसह जन मूरख आगम सास सुने अपना आप तू कबहु ना छोड़स स्वान पूछ ज्योरे एक पाखंडी नाम ना राच्य है एक हर हर चरण।

का पतत पनीत असंख होहे हर चरनी मन लाग अठसठ तीरथ नाम प्रभ नानक जिस मस्तक भाग शब्द सखी सहेली गर्भ गहेली सुन सह की एक बात सहेली जो मैं बेदन सा किसे आखा माई हर बिन जियो न रह कैसे राखा माई रहाओ हौ दुहागन खरी रजानी गया सो जोबन तन पछताणी।

पैर मनोवा, जपत रहा तेरा नाम। लून हरामी नानक लाला, बख्शे हैं तुद वडियाई। आद जगाद दया पत दाता, तुद विन मुक्त ना।

लै जुगत कर मरत सो सन बंध की जय मीन की चपल सियो जुगत मन राखी है उड़े नह हंस नह कंध सीजै मूड़े काचे भरम भुला।

आओ अजर गहो जार ले अमर गहो मार ले प्रांत तज छोड़ तौ अप्यो पीजै मीन की चपल सियो जुगत मन राखी है उड्डे नह हंस नह कंध सीजै भणत नानक जनो रवै जे हर मनो मन पवन सियो अमृत पीजै मीन की चपल सियो जुगत मन राखी है।

तर ढोई झूठा आवण जान साचा नाम सलाही है साचे ते तृप्त होए ज्ञान रतन मन मांझी है बहुड़ न मैला होए जब लग साहिब मन वसै तब लग

अजाची एको हाट साहो सबना सिर बनजारी एक भांति दोए सिरे सतगुरु नबेड़े सो बूझै जिस एक लिव लागी जियो रह ले परांती।

तोड़े परम चुकाए, सहजे सिफती तनख चढ़ाए, गुर कै शब्द मरे मन मारी, सुंदर जोगा तारी जियो, हम है जलिया मनोव सारी, जमपुर वजह खड़ग करारी, अब कह कहे नाम ना मिले, तू सब

मारू महला तीजा कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद जह बसाल है तह बैसा स्वामी जह भेज है।

सबल कहियत है, इंद्री किसते होई, आपे खेल करे सब करता, ऐसा बूझे कोई। गुर प्रसादी एक लिव लागी, दुबदा तदे बनासी, जो तिस पाणा सो सत कर मानिया, काटी जम की पासी। पणत नानक लेखा मांगे कवना, जा चूकै मन अभमाना, तास तास धर्म

आनंद इन त्याई हर नाओ सतगुर कै बचन अराध तू आन देन गुण गाओ रहाओ गुरमुखे को जानिए जा सतगुर दे बुझाए सो सतगुर सलाही है जिदू ए सोजी पाए सतगुर छोड़ दूजे लगे क्या कर्म अगे जाए जामपुर बदे मार।

जपियो नाम सुख जनक गुर बचनी हर हर सरन परे दालद पंज सुदामे मिलियो भगती पाए तरे भगत वच्छल हर नाम किरतारथ गुरमुख कृपा करे मेरे मन नाम जपत उदरे।

गण गंधर बेजपयो रिख बपरै हर गाया शंकर ब्रह्म देवी जपयो मुख हर हर नाम जपया हर हर नाम जिन्ना मन पीना ते गुरमुख पार पया कोट कोट ते तीस त्यायो हर जपत्या अंत ना पाया वेद पुराण सिमरत हर जपया मुख पंडित हर गाया नाम रसाल जिन्ना मन वसया ते गुरमुख पार पया अंत तरंगी नाम जिन जपया मैं गणत ना कर सकया गोविंद कृपा करे थाए पाए जो हर प्रभ मन पाया गुरतार कृपा हर नाम दरड़ायो जन नानक नाम नया मारू महला चौथा कर तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर हर नाम निदान लै गुरमत हर पत पाए हलत पलत नाल चलदा हर अंते लय छाए जिथै अवकट गलियां पीड़ियां तिथै हर हर मुक्त कराए मेरे सतगुरा मैं हर हर नाम दृढ़ाए मेरा मात पिता सुत बंदपो मैं हर बिन अवर नाम आए रहाऊ।

मेरा प्रीतम देव लाए, सतगुरु पुरख दयाल प्रभ हर मेले ढिल ना पाए। जिन हर हर नाम ना चेतेओ, से भाग हीन मर जाए। हुए फिर जोन पवाई है, मर जम आवै जाए। हुए जम दर बदे मारी है, हर दरगाह मिले सजाए। तू प्रभ हम शरणागति, मोको मेल लहो हर राय। हर तार कृपा जग जीवना, गुर सतगुर की सरनाई। हर जियो आप दयाल हुए, जन नानक।

सुनाई प्रभ गुरमत हर हृदय सुमानी जप हर हर कथा बडभागिया हर उत्तम पद निर्वाणी गुरमुखा मन प्रतीत है गुरपूरै नाम सुमानी मन मेरे मैं हर हर कथा मन पानी हर हर कथा नित सदा कर गुरमुख अकथ कहानी रहाउ मैं मन तन खोज टंडोलिया क्यों पाईऐ कथ कहानी संत जना मिल पाया सुन अकथ कथा मन पानी मेरे मन तन नाम आधार हर मैं मेले पुरख सुजानी गुरपुरख है पुरख मलाए प्रभ मिल सुरती सुरत समाणी बड़ भागी गुर सेविया हर पाया सुगड़ सुजानी।

सुगुण सुजानी जन नानक शरणागती कर कृपा नाम सुमानी। मारू महला चौथा हर भाव लगा बैरागिया वडभागी हर मन राख मिल संगत शरदायु पुजै गुर शब्दी हर रस चाख सब मन तन हरिया होया गुरबाणी हर गुण पाख।

लाग हर हर भगत परे पंडहारा गुरमुख राम करे निसतारा जिसनो कृपा करे मेरा स्वामी सो हर के गुण गावे जियो हर हर कृपा करे बनवाली हर हृदय सदा सदा संभाली हर हर नाम जपो मेरे जियड़े।

हर हर का मन मानिया सो सेवक चहो जुग चहो कुंट जानिया जे उसका बुरा कह कोई पापी तिस जम कंकर खाई जियो सब मह एक निरंजन करता सब कर कर वेख अपने चलता जिस हर राख है तिस कौन मारे जिस करता आप छाई जियो हम अन दिन नाम लई करतारी जिन से

बात सुनी सो सुखिया सो सदा सुहेला जो गुर मिल गाए गुनी रहाओ देह धार अर देवा दर्प है सिद्ध साधक डर मोया लख चौरासी ही मर मर जन्मे फिर जो नी जोया राजस सातक तामस डरप है केते रूप उपाया छल बपरी ये कौला डरप है अत डरप है धर्म राया सगल समगरी डर है ब्यापी बिन डर करने हारा कहो नानक भगतन का संगी भगत सोह है दरबारा मारू महला पंजवा पांच बरख को अनाथ ध्रुव बारक हर सिमरत अमरे अटारी पुत्र हेत नारायण कहियो जम कंकर मार बदारी मेरे ठाकुर केते अगणत उधारी मोहे दीन अल्प

निर्गुण परयो सरद द्वारी रहाओ वाल्मीक सुपचारु तरयो वदक तरे बेचारी एक निमख मन माहे अरादेव गजपत पार उतारी कीनी रखिया भगत प्रहलाद हरनाखस नखह बेदारी विदर दासी सुत भयो पनी।

मान्यो भयो कृपाल ठाकुर सेवक कौ सबरे हलत पलाता धन सेवक सफल ओहो आया जिन नानक खसम पछाता।

पतत पिए खिन पीतर महिमा कथन न जाय निरपौ भये सगल पै खोए गोविंद चरण उटाई।

सुनत भगत अरियै तां स्यो रंग ना लाभ सरी। थोरी बात अल्प सुपने की बहुर बहुर अटका।

बावर दलाब जन्म अकारथ रे नार ऐसी करह यानथ ताज सारंग तार भ्रम तू भूला मोहे लपट्यो दासी संग सानथ रहाओ धरनी तर त्याग नीच कुल सेवह हौ हौ करत बेहावथ हो कट कर्म करह अज्ञानी मन मुख अंध कहावथ सत होता असत कर मानिया जो बिन सत सो निचल जानत पर की को अपनी कर पकरी ऐसे भूल पलानत खतरी।

भोगह तपत थम गल लाय रे नर काए पर ग्रह जाय कुचल कठोर काम गर्धब तुम नहीं सुनियो धर्म राय रहाओ विकार पात्र गलह बांदे निंद पोट सिराय महासागर समुंद लंघना पार न परना जाय काम क्रोध लो

ससी मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी अलिपाई स्वभावत जैसी बैसंतर अलिप्त सदा निर्मलाई जिस कर्म खुलिया तिस लहिया पड़दा जिन गुर पह मने।

परम गुर खोया ता हर महली महल पाया था मारू महला पंजवा जिस है साज निवाजिया।

ए मनुआ भलो समो सुआउ रहाउ खोए खहड़ा परम मन का सतगुर सरणी जाय। कर्म जिस को तुरहु लिखिया।

मुख राग अलापे मन नहीं हर हर गावा हर कसोग लोभ मोह रहत है निर्मल हर के संता।

सब किस जाने मेरे जी का प्रीतम बिसर गए बकबाया रहा दूजा मारू महला पंजवा कोट लाख सर्ब को राजा जिस हृदय नाम तुम्हारा जाको नाम ना दिया मेरे सतगुर से मर जन्म है गावारा मेरे सतगुर ही पत राख चीत आवह तब ही पत पूरी बिसरत रलिए खाक रहाऊ रूप रंग खुशियां मन

मात गर्भ में जिन प्रित पारिया जियो पिंड दे साज सवारिया सोई बधाता खिन खिन जपिए जिस सिमरत अवगुण सब ढकिए चरण कमल उरे अंतर तारू बिठिया बन ते जियो उधारू।

सत करमानी हित लायो सठ मूड अज्ञानी काम क्रोध लोभ मद माता कौडी बदले जन्म गवाता अपना छोड़ पराया राता माया मद मन तन संग जाता त्रिशन ना बूझे करत कलोला ऊनी आस मिथ्या सब बोला आवत अकेला जात अकेला हम तुम संग झूठे सब बोला पाए ठगौरी आप पलायो नानक किरत ना जाए मटायो पास पंखी पू

ओठ ओठ फिर तावे, मन तन बासना बहुत बिस्थारा, अहम में मूठो बेचारा, अनक दोख अर बहुत सजाई, ता की कीमत कहन ना जाई, प्रभ बिसरत नरक में पाया, तह मात ना बंद ना मीत ना जाया, जिस को होत कृपाल स्वामी, सो जन नानक पार ग्रामी, प्रमत प्रमत प्रभ सरनी आया, दीना नाथ जगत पित माया, प्रभ दयाल दुख दर्द बदारन, जिस पावे तिस ही निस्तारन, अंधकूप ते काड नहारा, प्रेम भगत होवत निस्तारा, साध रूप अपना तन तारिया, महा अग्न ते आप उबारिया।

मोहन अलाखे अपारा दान पाव संता संग नानक रेन दसारा मारू महला पंजवा त्रिप्त अगाए संता गुर जाने जिन मंता ताकी किछ कहन ना जाई जाको नाम बढ़ाई लाल अमोला लालो अगह अतोला नामो रहाऊ अवगत सिंह मानिया मानो गुरमुख तत् ज्ञानो पेखत सगल त्यानो तजियो मन ते अभिमानो निश्चल तिनका ठाणा गुर ते महल पछाणा अन दिन गुर मिल जागे हर की सेवा लागे पूरन त्रिपत अगाई सहज समाध सुपहाई हर भंडार हाथ।

चेत मन मह हर हर निदाना एह निर्मल रीत रहाउ कृपाल दयाल गोपाल गोविंद जो जपै तिस सीध नवल नवतन चतर सुंदर मन नान।

सरन भज संग साधु भव सागर उतर है पार। मेरे मन नाम हृदय धार कर प्रीत मन तन लाए हर सिउ अवर सगल विसार रहाउ। जियो मन तन प्राण प्रभ के तू अपने आप निवार। गोविंद भज सब स्वार्थ पूरे नानक।

देख सिमर हर हर सदा नानक तरे कई अनेक मारू महला पंजवा पतत पावन नाम जाको अनाथ को है नाथ महा भोजन माहे तुलहो जाको लिखियो माथ डूबे नाम बिन घन साथ करण कारण चेतना आवे दे कर राखे हाथ रहाऊ साध संगत गुण उच्च।

कर सतवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद संजोग वजोग तुरों ही हुआ पंच धात कर पुतला किया साहै कै फरमाएड़ै जी देही विच जीओ आए पया जिथै अग्नि

पछताए, छूटत नाहिन भाग्यो। एह चिंता उपजी घट मह, जब गुर चरणन अनुराग्यो। सफल जन्म नानक तब हुआ, जो प्रभ जस मह पाग्यो। मारू अष्टपदियां।

नाम रसायन पाए ले, पर हर दुख भारी रहाउ। हर पढ़िए हर बुझिए, गुरमति नाम उधारा। गुरपूरे पूरी मत है, पूरे शब्द विचारा।

उतराइए गाले औगण पारा मानस दात न होवई तू दाता सारा अगम अगोचर तू तनी

या समुंद मजार कंदी देसना आवई ना उरवार ना पार वंजी हाथ ना खेवटू जल सागर असराल बाबा जग फाथा महाजाल गुर प्रसादी उबरे सच्चा नाम संभाल रहाउ सतगुरु है बोहिथा शब्द लगावन हा।

उस पार गुण नहीं, बिन गुण क्यों कर जाओ। सहज शब्द सुख उपजै, बिन भागा तन नाही। जिनकै नाम ना मन वसै,

दुख कणो जम द्वार अग्गे क्या जाना नाही मैं भूले तू समझाए भूले मार्ग जो दसे

मनो विसारी है नित देवै चढ़ै सुआया जियो पिंड सब तिसदा साहु तिन्ह विच पाया जां कृपा करे तां सेवी है सेव सच समाया लाला सो जीवत मरै मर विचों आप गवाए बंधन टूटै मुक्त होए तृष्णा अग्न बुझाई।

चलना मुखे अमृत नाव मेरे ठाकुर हथ वडियाइया मेल है मन चाओ कीता क्या सलाही है कर देख सोई जिनकी आसु मन वसै मैं अवर ना कोई सो साचा सलाही है साची पत होई पंडित पढ़ना पहुंचई बहुआल जंजाला पाप पुन दोए संग में खुदिया जमका।

खार समुंदर कंडो लिए एक मनिया पावे दोए दिन चार सुहावना माटी टिस खावे गुरसागर सत सेवी है।

पीए, पारस संग पीजै, वन्नी साचे लाल की, किन कीमत कीजै, पेखी हाथ न लबई, तीर्थ नहीं दाने, पूछो बेद पढ़ंतिया, मूठी विण माने, नानक कीमत

हर हीरे ग्रह धर्म गवाए सतगुर ना पीटे दुर्मत कुमन कीरे दसंतर भवे पाठ पढ़ थाका तृष्णा हुए बधेरे काची पिंडी शब्द ना चीने उधर परे जैसे टूरे बाबा ऐसी रवत रवे सन्यासी गुर कै शब्द एक लिव लागी तेरे नाम रते त्रिपतासी रहाओ कोली गेरू रंग चढ़ाया वस्त्र पेख पेखारी कापड़ फार बनाई खिंथा चोली माया तारी घर घर मांगे जग प्रबुद्ध मन अंधे पतहारी परम पलाना शब्द ना चीने जुए बाजी हारी अंतर अगन ना गुर बिन बूजे बाहर कुवर तापे गुर सेवा बिन भगत ना होवी क्यों कर चीन से आपे निंदा कर कर नरक निवासी अंतर आत्म जापे अठ सठ तीरथ परम बगूचे क्यों मल धोपे पापे छाणी खाक बेभूत चढ़ाई माया का मग जो है अंतर बाहर एक ना जाने साच कहे ते शो है पाठ पढ़े मुख झूठो बोले निगुरे की मत ओ है नाम ना जपई।

दिस तावै बिन रत आत्म ज्ञाना अमृत छोड़ महाबिख पीवै माया का देवाना कीर्तना मिटई हुक्म ना बूझै पशुआ माहे समाना हाथ कमंडल कापड़िया मन कृष्णा उपजी पारी स्त्री तज कर काम व्यापिया।

परांती तां जम करे खुआरी सो सन्यासी जो सतगुर सेवै विचो हो आप गवाई साधन भोजन की आस न करे अचिंत मिलै सो पाई बकै ना बोलै खिमा धन संग्रह।

गगन पताली जनता जोत तुम्हारी सब सुख मुकत नाम धुन बाणी सच नाम उरतारी।

मेल पेंड करे अंतर गर्भ उर्द लिव लागी सो प्रभ सारे दात करे संसार पव जल क्यों तरे गुरमुख नाम निरंजन पाईए अफरे उपार अफार टरे रहाउ ते गुण विसर गए अपराधी मैं बौरा क्या करूं हरि तू दाता दयाल सबै सिर एहन सदात सुमार करी चार पदार्थ लै जग जन्मिया शिव शक्ति घर वास धरी।

इत्युत ढूंढत थाक परे, काम क्रोध अहंकार व्यापे, कूड़ कतंब स्यों प्रीत करे, खावै भोगै सुन सुन देखै, पहर दिखावै काल करे, बिन गुर शब्द ना आप पछाणै, बिन हर नाम ना काल करे, जेता मोह हमै कर भूले, मेरी मेरी करते शीन खरे, तन धन बिन सह सह सह सहसा, फिर पछतावै मुख धूर परे, बिरद पया जो बन तन खिसिया, कप कंठ बुरु दोह नैनोह नीर धरे, चरण रहे कर कंपन लागे, साकत राम ना हृदय हरे, सुरत गई काली हूं तौले, किसे न पावे रखियो करे, बिसरत नाम ऐसे दुख लागे, जम मार समारे नरक खरे, पूरब जन्म को लेख ना मितई, जन्म मरे का को दोष तरे, बिन गुर बाद जीवन होर मरना, बिन गुर शब्द जन्म जरे, खुशी खुआर पए रस भोगण, फोकट

सखी हमारू कंत सच विछोड़ा ना थी सो सहो रंग रवंत सबे रुती चंगिया जित सच्चे सिहने सा धन कंत पछाणिया सुख सुती निसडे पत्तन कूके पातनी वंजो त्रुक बलाड़ पार पवंदड़े डिठ मैं सतगुर बोहित चाड़ हिकनी लद्या हिक लद गए।

वेद संभाल है बेख भूले लेखारी कल्लर खेती तरवर कंठे बागा पहर है कजल चर है यो संसार तिसे की कोठी जो पैसे सो गर्भ जर है रैयत राजे कहा सबाए दोह अंतर सो जासी कहत नानक गुर सच्चे की पौड़ी रहसी अलख निवासी मारू महला तीजा घर पंजवा अष्टपदी।

देव दृष्ट जागे परम चकाई, गुर प्रसाद परम पद पाई, सो जोगी एह जुगत पछाणे गुर कै

जन सोई सतगुर मिले मरे मंदा होवे ज्ञान बिचारी जियो। एहो शब्द सार जिसनो लाए गुरमुख तृष्णा भुख गवाए। आपन लिया किशु ना पाईए कर कृपा कल तारी जियो। अगम निगम सतगुरु दिखाया कर कृपा अपने घर आया। अंजन माहि निरंजन जाता जिनको नदर तुम्हारी जियो। गुरमुख होवे सो तत पाए अपना आप विचो गवाए। सतगुर बाजो सब धंद कमावे वेखो मन विचारी जियो। एक भ्रम भूले फिर अहंकारी

अष्टपदियां एक ओंकार सतगुरु प्रसाद लाख चौरासी प्रमते द्राब जन्म अब पायो रे मुंडे तू हो छह रस लपटायो अमृत संग बस्त है तेरा बिख्या स्यों उरजायो रहाओ रत्न जवे हर बन जन आयो कालर लाद चलायो जे कर्म है तुद रहना बसना सो कर चीत न आयो अटल अखंड प्राण सुखदाई एक निमुख नहीं तुझ गायो जहां जाना सो थान वसारियो एक निमुख नहीं मन लायो पुत्र कलत्तर ग्रह देख समग्री इस ही मैं उर जायो जित को लायो तित ही लागा तैसे कर्म कमायो जो भयो कृपाल ता साध संग पाया जन नानक ब्रह्म ते आयो।

अगम अगाह सिद्ध साधक देव मुन जन वेद करह ओचार सिमर स्वामी सुख सहज पुंचह नहीं अंत पारावार अनक परासक मिटह खिन मह हृदय जप भगवान पाम नाते महापावन कोट दान इशनान बाल बुद्ध शुद्ध पुराण।

मित्र सत्धर ना कछु जान सर्ब जी समत कर परगास प्रचंड प्रगट्यो अंधकार बनास पवित्र।

गोपाल गुण नित गाहु नानक पए प्रभ कृपाल मारू महला पंजवां घर चौथा अष्टपदियां।

काम क्रोध लोभ त्यागना मांगना मांगन नीका हर जस गुर ते मांगना जागना जागन नीका हर कीर्तन मह जागना लागना लागन नीका गुर चरणी मन लागना एह बिदत सह प्राप्ति जा कह मस्तक भागना कहो नानक तिस सब किशनी।

हर जस श्रवण सुनावना रहाउ। तुदे आवत मेरा मन तन हरिया, हर जस तुम संग गावना। संत कृपा ते हृदय वासै, दूजा पाओ मिटावना। भगत दया ते बुद्ध परगासै, दुर्मत दुख तजावना। दर्शन भेट तो होत पनीता, पुनरप गर्भ ना पावना। नौ निद रिद सिद्ध पाई।

ज्योति सह ग्रह चिंता, जिस ग्रह थोरी सो फिरे परमंता, दुहू व्यवस्था तेजो मुक्ता, सोई सोहेला पाली है, ग्रह राज मह नरक उदास करोदा, बहु विद वेद पाठ सब सोदा, देही मैं जो रह अलिपता, जिस जन की पूर्ण काली है, जागत सूता परम भगूता, बिन गुर मुक्त न होइए मीता, साध संग टुट है हों बंधन, एको एक निहाली है, कर्म करे ता बंदा, नह करे ता निंदा, मोह मगन मन व्यापिया चिंदा, गुर प्रसाद सुख दुख सम जाने।

काल जोबन तन शोड वंजेसा करन करीम ना जातो करता तिल पीड़े ज्यो कहानिया खुस खुस लैंदा वस्त पराई वेखै सुने तेरे नाल खुदाई दुनिया लब पया खाते अंदर

सब आपे एक कड्डे एक लहर व्यापे ज्यों नचाए त्यों त्यों नचन सिर सिर किरत विहानिया मेहर करे ता खसम त्याई संता संगत नरक ना पाई अमृत नाम दान नानक को गुण जीता नित वखानिया।

फुल गोई जो पावे त्यो राखो रहना। तुम सिंह क्या मुकराई है, आप अपाए आप खपाई।

आपे तनख आपे सर्वाणा आपे सुगड़ स्वरूप सियाणा कहता बगता सुनता सोई आपे बणत बनाई है पौन गुरु पानी पित जाता उदर संजोगी धरती माता।

जाता। ना तिस मात पिता सुत भ्राता, सगले सैले उपाए समाए, अलख न लखना जाई। कर कर थाकी मीत कनेरे, कोई न काटै अवगुण मेरे। सुर नर नाथ साहिब सबना सिर, पाए मिले पौ जाई। भूले चूके मार्ग पावह, आप भुलाए तू है समझावह।

संगम 68 अंक समाई है। आपे सिद्ध साधक विचारी, आपे राजन पंचाकारी, तख्त बह अदली प्रभ आपे, परम भेद पहु जाई।

लगाई है। जिस बख्शे तिस दे वड्याई, सब सहदाता तिल ना तमाई। पर पुर धार रहया ने केवल, गुप्त प्रगट सब ठाई है। क्या सलाही अगम अपार है।

नैन जलै पड़कारी मनमुख तके कुंडा चारी बिन सतगुर सेवे क्यों सुख पाई है साचे हाथ वडाई हे काम क्रोध अहंकार निवारी तस्कर पंच शब्द संघारी ज्ञान खड़गलै मन स्यों लूजै मनसा मन है समाई हे माँ की रकत पिता बिद धारा मूरत सूरत।

ब्राह्मण मरना, गुर के समझ पड़ी क्या डरना। तू दयाल दया कर देख, दुख दर्द शरीर हो जाई है। निज कर बैस रहे पहु खाया, तावत राखे ठाक रहाया। कमल विगास हरे सरस पर,

ठाके कर्म कमाई है। कर्म धर्म कर मुक्त मंगाही, मुक्त पदार्थ शब्द सलाही, बिन गुर शब्द मुक्त न हुई, परपंच कर परमाई है। माया ममता छोड़ी न जाई, से छूटे सचकार कमाई, अहनस भगत रते विचारी, ठाकुर स्यों बन आई है। एक जप तप कर कर तीरथ नाव है, ज्यों तुद भावै तिवें चलाव है, हठ निग्रह अपतीज ना पीजै, बिन हर गुर किन पत पाई है। कली काल में है एक कल राखी, बिन गुर पूरे किने ना पाखी, मन

काची मूल न बूझ साच नारी जह दूजह परम पलाई हे गुरमुख जाग रहे दिन राती साचे की लेव गुरमत जाती।

देखो कर नंदर बिघन नाही गुरमुख तर तारी क्यों पव जल पार लंघाई है देही अंदर नाम नवासी आपे करता है अबनासी ना जियो मरे ना मारिया जाई कर देखै शब्द रजाई है ओह निर्मल है ना ही अंधियारा ओह आपे तख्त बह सत्यारा साकत कूड़े बंद पवाई है मर जन्म है आई जाई है गुर के सेवक सत गुर प्यारे वही बैस है तखत सो शब्द विचारे तत लह अंतर्गत जान है।

कोई, सतगुर मिलै ता सो जी होई, बिन गुर बजर कपात ना खुलै, शब्द मिलै निस्तारा ही, बिरद

शब्द घर जाने, किसे ही मंदा आख न चले, सच खरा सचियारा ही, साच बिना दर सिजे ना कोई, साच शब्द पेंज है पत होई, आपे बख्श लए किस पावे, हौ मैं गर्भ निवाराई, गुर कृपा ते हुक्म पछाणे, जुगा

कोई जिन तन मन दिया सुरत समोई सर्व जिया प्रतपाल संभाले सो अंतर दाना बीना है गुर सरवर हम हंस प्यारी सागर मह रतन लाल बहु सारी मोती माणक हीरा हर जस गावत मन तन पीना है हर अगम अगाह अगाध निराला हर अंत न पाइए गुरु गोपाला सतगुर मत तारे तारनहारा मेल लए रंग लीना है सतगुर बाज हो।

पाए अमृत रस पाए जम जगात नाही कर लागे जिस अग्न बुझी ठर सीनाई काया हंस प्रीत बहुतारी ओह जोगी पुरख ओह सुंदर नारी अहनस भोगै चोज बिनोदी उठ चलतै मता ना की नाही श्रिष्ट उपाय रहे प्रभ साजै पौन पानी बह संतर गाजै मनुआ डोलै दूत संगत मिल सो पाए जो किछ की नाही नाम विसार दोख दुख सही है हुक्म भया चलना क्यों रही है नरक कूप में गोते खावे ज्यों जल ते बाहर मीना है चौरासी नरक साकत पोगाई है जैसा की कहते सो पाई है सतगुर बाजो मुक्त ना हुई किरत बांधा ग्रस दीना है खंडे धार गली अत पीड़ी लेखा लीजै तिल ज्यो पीड़ी मात पिता कलत्तर सुत बेली नाही बिन हर रस मुक्त ना की नाही मीत सखे केते जग माही बिन गुर परमेश्वर।

नाही। एक दर सेव है दर्द बुझाई, कोई दरगाह पैंदे सतगुरु छडाई। हम मैं बंधन सतगुर तोड़े, चित चंचल चलन ना दीना है। सतगुर मिलो चीनो बेदसाई, जित प्रभ पावो गणत ना काई। हम मैं मार करो गुर सेवा, जन नानक हर रंग पीना है। मारू महला पहला, असुर संघारण राम हमारा।

सरण तमारी, कर कृपा प्रभ पार उतारी। अगन पानी सागर अत गहरा, गुर सत गुर पार उतारा ही। मनमुख अंदले सो जी नाही, आवह जाहे मरह मर जाही। पूर्व लिखिया लेख न मिटई, जम दर अंध खुआरा ही। एक आवह जावह कर वास न पावह, किरत के बांधे पाप कमावह। अंदले सोजी बूझ न काई, लोभ बुरा अहंकारा ही। पिर बिन क्या तिस धन सिंगारा, पर पिर राती खसम बसारा। ज्यो बेसवा पूत बाप को कही है, त्यों फोकट कार विकारा ही। प्रेत पिंजर मह दुख कनेरे, नरक पचह अग

अगन बिख झाला अपथ पशु मन मुख बेताला आसा मनसा कूड़ कमावह रोग बुरा पुरिया राही मस्तक भार कलर सिर भारा क्यों कर भवजल लंगस पारा।

मनमुख दाजै पढ़ पढ़ पाही अमृत नाम गुरु वद जाना नाम जपो सुख साराही सतगुर तुठा सच दृढ़ाई सब दुख मेटे मार्ग पाई कंडा पाई न गढ़ई मूले जिस सतगुर राखन हाराही खेहू खेहे रलै तन सीजै मनमुख पाथर सैल न पीजै करन पलाव करे बहुतेरे नरक सुरग अवताराही माया बिख पोए अंगम नाले इन दुबदा कर बहुते गाले सतगुर बाजो प्रीत ना उपजै भगत रते पतियाराही साकत माया कौ बहुतावह नाम विसार कहां सुख पावह त्रिहो गुण अंतर।

गह हाराही। सतगुरु मिले त मनुआ टेकै, राम नाम बेसरन परेकै। हर तन नाम अमोलक देवै, हर जस दरगाह प्यारा ही। राम नाम साधु सरनाई, सतगुर बचनी गत मित पाई। नानक हर जाप

राम जपहु अंतरगत ध्यानी, लालच छोड़ रचहु अपरंपर। यूं पावहु मुक्त द्वारा ही, जिस बिसरै जम जोहन लागै। सब सुख जाहे दुखां पुन आगै, राम नाम जप गुरमुख जी अड़ी।

मत खोज लहो घर अपना बहुड़ ना गर्भ मझारा ही सच तीर्थ लावहो हर गुण गावहो तत विचारहो हर लिव लावहो।

जिस कहो सतगुर मेल मलाई, तिस चूका जम पै पाराही, पंच तत् मिल काया कीनी, तिस महराम रतन लै चीनी, आत्म राम राम है आत्म, हर पाइये शब्द विचाराही, सत संतोख रहो जन पाई।

मूड कपट महते का अहन सनिंदा करह अनेका बिन सिमरन आवह फुन जावह गर्भ जोनी नरक मजारा ही साकत जम की कान ना चूकै जम का डांड ना कबहू मूकै बाकी धर्म राय की लीजै सिर अफरे ओ पार अपारा ही बिन गुर साकत कहो को तरिया हम मैं करता पव जल परिया बिन गुर पार ना पावे कोई हर जपिए पार उतारा ही गुर की दात ना मेटे कोई जिस बख्शे तिस तारे सोई जन्म मरण दुख नेड़ ना आवे मन सो प्रभ अपरे अपारा ही गुर ते भूले आवो जावो जन्म मरहो फुन पाप कमावो साकत मूड अचेत ना चेत है दुख लागे ता राम पकारा ही सुख दुख पूर्व जन्म के किए सो जान जिन दाते दिए किसको दोष दे तू प्राणी सहु अपना किया करारा ही हम मैं ममता कर दाया आसा मनसा बंद चलाया मेरी मेरी करत क्या ले चाली बिखला दे शार बिकारा ही हर की भगत करो जन पाई अकथ कथो मन मन समाई उठ चलता ठाक रखो घर अपने दुख काटे काटन हारा ही हर गुर पूरे की ओट पराती गुरमुख हर लेव गुरमुख जाती।

जग जीवन सब कट भोगै हर रस पीवन आपे लेवै आपे देवै तिहु लोई जगत पित दाता ही जगत अपाए।

गुप्त रहता ही। चार नदी ही अग्नि असराला, कोई गुरमुख बूझै शब्द नराला। साकत दुर्मत डूबह ताजह, गुर राखे हर लिवराता ही। अप तेज वाए पृथ्वी अकासा, दिन मह पांच तत् घर वासा। सतगुर शब्द रह रंग राता, तज माया हूं मैं प्रांता ही। इह मन पीजै शब्द पतीजै, बिन नावै क्या टेक टकीजै। अंतर चोर मुह घर मंदर, इन साकत दूत ना जाता ही। दुंदर दूत पूत पिहाले, खिंचो तान करह बेताले। शब्द सुरत बिन आवै जावै, पत खोई आवत जाता ही। कूड़ कलर

रागी मन मनसा मार समाताही सतगुर सेवह से परधाना तिन घट घट अंतर ब्रह्म पछाना नानक हर जस हर जन की संगत दीजै जिन सतगुर हर प्रभ जाताही मारू महला पहला साचे साहेब सिरजनहारी जिन तार चक्कर तर

अंत ना जानी जा को अलख लखाई आपी अकथ कथा बुद्धताहाई जन्मे को वाजह वाधाई सोहे लड़े अज्ञानी गाई जो जन्म है तिस सर पर मरना किरत पया सिर साहाई संजोग वजोग मेरे प्रभ किए।

तेली वै वस्त संभाले बजर कपाट जड़े जड़ जाने गुर शब्दी खोला ईंदा पीतर कोट गुफा कर जाई।

अनहद वाजै ब्रह्म पौ भाजै सगल व्याप रहया प्रभ साजै सब तेरी तू गुरमुख जाता दरसो है गुण गाएं दा आद निरंजन निर्मल सोई।

जाने जो किस करे सो अपन पाने लख चौरासी जी अपाई पाने सहा लवाईंदा जो तिस पावे सो निश्चो होवे मनमुख आप गणाई रोवे।

कोई, गुर बिन सो जी किन ना होई, साच मिलै सो साचे पाई, ना विछड़ दुख पाईंदा, तुरों विछुन्ने ताही रुन्ने, मर मर जन्म है मोहलत पुन्ने, जिस बख्शे

तद जति सती बनवासी ना तद सिद्ध साधक सुखवासी जोगी जंगम भेख ना कोई ना को नाथ कहाईंदा जप तप संयम ना व्रत पूजा।

सुन्नो ब्रह्मा विष्णु महेश उपाई, सुन्ने वर्ते जुग सबाई, इस पद विचारे सो जन पूरा, तिस मिलिए परम चुकाएंदा। सुन्नो सप्त सरोवर थापे, जिन साजे विचारे आपे, इत सत सर मनुआ गुरमुख नावे, फिर बहुड़ जोन ना पाएंदा। सुन्नो चंद सूरज गहनारी, तिसकी जोत त्रिपवन सारी, सुन्ने लख पार नरालम, सुन्ने ताड़ी लाएंदा। सुन्नो धरते आकाश पाई, बिन थम्मा राखे सच कल पाई, त्रिपवन साज में खुली माया, आप उपाय खपाएंदा। सुन्नो खाणी सुन्नो बाणी, सुन्नो उपजी सुन्न समाणी, उत्पुज चलत किया सिर करतै, विस्माद शब्द देखाएंदा। सुन्नो रात दिन सदोह किए, उपत खपत सुखा दुख दिए, सुख दुख ही ते अमर हतीता, गुरमुख निज कर पाएंदा। शाम वेद रिग जुजर अथर बन, ब्रह्मे मुख मा

दुख पाया, जिसनो कृपा करे हर गुरमुख, गुण चौथा मुक्त कराईंदा। सुनो उपजे दास अवतारा, शिष्ट उपाय किया पासारा, देव दानव गण गंधर्व साजी, सब लिखिया कर्म कमाईंदा। गुरमुख समझे रोग ना होई, ये गुर की पौड़ी जाने जन कोई, जुगा जगंतर मुक्त परायण, सो मुक्त भया पत पाईंदा। पंच तत् सुनो परगासा, देह संजोगी कर्म अभ्यासा, बुरा भला दोए मस्तक लिखे, पाप पुन भी जाएंदा। उत्तम सतगुर पुरख निराले, शब्द रत्ते हर रस मत वाले, रिद बुद्ध सिद्ध ज्ञान गुरु ते पाईए, पूरा भाग मलाएंदा। इस मन माया को नेहो कनेरा,

शब्द अत शीतल सहज पाए लिवलाया त्रै वरताए चौथे घर वासा काल बिकाल किए एक ग्रासा निर्मल ज्योत सर्व जग जीवन गुर अनहद शब्द दिखाया उत्तम जन संत भले हर प्यारी हर रस माते पार उतारी नानक रेण संत जन संगत

संचो रे जन पाई सतगुर सेव रहो सरनाई तस्कर चोर न लागे ताको धुन उपजै शब्द जगाया तू एकंकार नरानम राजा तू आप सवार है जन के काजा अमर अडोल अपार अमोलक हर अस्थर तान सुहाया देही नगरी उत्तम थाना पंच लोक वसह परधाना।

जन राया दुख भय भंजन प्रभ अविनाशी रोग कटे काटी जम फासी नानक हर प्रभ सो पौ भंजन गुर मिले हर प्रभ पाया काले कवल निरंजन जाने बूझे कर्म सो शब्द पछाणे आपे जाने आप पछाणे सब तिसका चोज सबाया आपे साहु आपे वणजारा आपे परखे परखणहारा आपे कस कस वट्टी लाए आपे कीमत पाया आप दयाल दया प्रभतारी घट घट रब रहया बनवारी।

उन निरंजन गाया हम अमित शब्द सुख हुई आप विचारे ज्ञानी सोई नानक हर जस हर गुण लाहा सत संगत सच फल पाया मारू महला पहला सच कहो सच्चे कर रहना जीवत मरहो पव जल जग तरना गुर बोहित गुर बेड़ी तुलहा मन हर जप पार लंघाया हूं मैं ममता लोभ बनासन नौ दर मुक्ते दसवै आसन ऊपर परे परे अपरंपर जिन आपे आपे उपाया गुरमत लेव हर लिव तरिय अकल गाए जमते क्या डरिय।

गुरमुख बूजै शब्द पतीजै उस्तत निंदा किस की कीजै तीनों आप जपो जगदीसर हर जगन्नाथ मन पाया जो ब्रह्मांड खंड सो जान हो गुरमुख बूजो हो शब्द पछाण हो कट कट भोगे भोगण हारा रह अतीत सबाया गुरमत बोलो हर जस सूचा गुरमत आखी देखो ऊचा सरवणी नाम सुने हर बाणी नानक हर रंग रंग।

नानक गुरमत सो पाया अंतर की गत सत गुर जाने सो निरभउ गुर शब्द पछाण अंतर देख निरंतर बूझे अनत ना मन डोलाया निरपौ सो आबे अंतर वसिया अहनस नाम निरंजन रसिया नानक हर जस संगत पाई है।

आपे सिर सिर हुक्म चलाया, हुक्म चलाए रहे पर पूरे, किस नेड़े किस आखा दूरे, गुपत प्रगट हर कट कट देखो, वरतै ताक सुबाया, जिसको मेले सुरत समाए, गुर शब्दी हर नाम ते आए, आनंद रूप अनूप अगोचर, गुर मिले है परम जाया, मन तन तन ते नाम प्यारा, अंत सखाए चलन वारा, मोह पसार नहीं संग बेली, बिन हर गुर किन सुख पाया, जिसको नदर करे गुर पूरा, शब्द मलाए गुरमत सूरा, नानक गुर के चरण सरेव हो, जिन पूला मार्ग पाया, संत जना हर तन जस प्यारा, गुरमत पाया नाम तुम्हारा, जाचक सेव करे दर हर कै, हर दरगाह जस गाया, सतगुर मिले त महल बुलाई, साची दरगाह गत पत पाई, साकत ठोर नाही हर मंदर, जन्म मरे दुख पाया, सेवहु सतगुर समुंद अथाहा, पावहु नाम रतन तन लाहा, बिखिया मल जाए अमृत सर नाहु, गुर सर संतोख पाया, सतगुर सेव हो संक ना कीजै, आसा माही निराश रही जै, संसा दुख बनासन सेव हो, फिर बहुड़ रोग ना लाया, साचे भावै तिस वडियाई, कौन सो दूजा तिस समझाई, हर गुरु मूरत एका वरतै,

राम नाम बिन क्यों सुख पाईऐ, बिन सतगुर परम ना जाया। न्योली कर्म पुयंगम पाठी, रेचक कुंभक पूरक मन हाठी। पाखंड धर्म प्रीत नहीं हर सौ, गुर शब्द महारस पाया। कुदरत देख रहे मन मानिया, गुर शब्दी सब ब्रह्म पछानिया। नानक आत्म राम सबाया, गुर सतगुर अलख लखाया। मारू सोले महला तीजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हुक्मी सहजे सृष्टि उपाई।

आई, गुर प्रसादी कीमत पाई, मन मुख बहुत फिरै बिल लांदी, दूजे पाए खुआई, हो मैं माया विचे पाई, मन मुख भूले।

राम रतन पाया, मनसा मार मन माहि समाया, आपे खेल करे सब करता, आपे दे बुझाई है।

तिस जोहे ना साकै साचे स्यों बने आई हे। तृष्णा अग्न जलै संसारा जल जल खपै बहुत विकारा। मन मुख ठौर न पाए कबहू सतगुर बूझ बुझाई हे। सतगुर सेवन से वडभागी साचै नाम सदा लिभ लागी। अंतर नाम रव्या नेह केवल तृष्णा शब्द बुझाई हे। सच्चा शब्द सच्ची है बाणी गुरमुख विरलै किने पछाणी। सच्चा शब्द रत्ते बैरागी आवण जान रहाई हे। शब्द बुझै सो मैल चुकाई निर्मल नाम वसै मन आई। सतगुर अपना सद ही सेवह हम मैं विचों जाई हे। गुरते बूजै तां दर सूजै नाम मिहूणा कथ कथ लूजै। सतगुर सेवे की वडियाई तृष्णा भूख गवाई हे। आपे आप मिलै तां बूजै ज्ञान मिहूणा किशु ना सूजै। गुर की दात सदा मन अंतर बाणी शब्द बजाई हे। जो तुर लिखिया सो कर्म कमाया कोई ना मेटै तुर फुरमाया। सत संगत मह तिन्ही वासा जिनको तुर लिख पाई।

सब सोई गुरमुख विरला बूझै कोई एको रव रहया सब अंतर तिस बिन अवर ना कोई है। लख चौरासी जी उपाए ज्ञानी ध्यानी आख सुनाए सबना रिजक समाहे आपे कीमत होर ना होई है। माया मोह अंध अंधारा हम मैं मेरा पसरिया पासारा अन दिन जलत रह दिन राती गुरबिन शांत ना होई है। आपे जोड़ बछोड़े आपे

लाई। जे सौ धोवै ता मैल ना जाई, शब्द धोपै ता हच्छी होवै, फिर मैली मूल ना होई हे। पंच दूत काया संगारह, मर मर जमह शब्द ना विचारह। अंतर माया मोह गुबारा, ज्यो सुपने सुध ना होई हे। एक पंचा मार शब्द है लागे, सतगुर आए मिलिया बडभागे। अंतर साच रवह रंग राती, सहज समावै सोई हे। गुर की चाल गुरु ते जापै, पूरा सेवक शब्द समझापै। सच्चा शब्द रवै काट अंतर, रसना रस चाखै सच सोई हे। हउमै मारे शब्द निवारी, हर का नाम रखै उर धारी। एक सुबिन हो होर न जाना, सहजे होए सो होई हे। बिन सतगुर सहज किने नहीं पाया, गुरमुख बूजै सच समाया। सच्चा सेव शब्द सच राती, हउमै शब्द खोई हे। आपे गुणदाता बिचारी, गुरमुख देवै पक्की सारी। नानक नाम समावै साचै, साचे ते पत होई हे। मारू महला तीजा, जग जीवन साचा एको दाता। गुर सेवा ते शब्द पछाता, एको अमर एका पातशाही। जुग जुग सिरकार बनाई हे, सो जन निर्मल जिन आप पछाता। आपे आए मिलिया सुखदाता, रसना शब्द रती गुण गावे।

हंस बैरागी निज कर ताड़ी लाई हे। शब्द मरे सोई जन पूरा सतगुर आख सुनाए सूरा। काया अंदर अमृत सर साचा मन पीवे पाए सुपाई हे। पढ़ पंडित अवरा समझाए घर जलते की खबर ना पाई। बिन सतगुर सेवे नाम ना पाईए पढ़ था के शांत ना आई हे। एक भस्म लगाए फिर भेख तारी बिन शब्द हूं मैं किन मारी। अन दिन जलत रह दिन राती परम भेख परमाई हे। एक ग्रह कटंब मैं सदा उदासी शब्द मोए हर नाम निवासी। हर दिन सदा रह रंग राती पै पाए भगत चित लाई हे। मनमुख निंदा कर कर विगुत्ता अंतर लोभ भौंकै जिस कुत्ता।

पावे कोई, बिन सतगुरु को नाव ना पाए, प्रभ ऐसी बणत बनाई है। एक सिद्ध साधक बहुत विचारी, एक अहनस नाम रते निरंकारी, जिसनो आप मलाए सो बूझै, भगत पाए पहु जाई है। इस्नान दान करह नहीं बूझै।

आपे पाणे दे मलाई, आपे नदर करे मन वस्या, मेरे प्रभ यूं फरमाई है, सतगुर सेवह से जन साची, मनमुख सेव न जानन काची, आपे करता कर कर वेखे, ज्यों पावे त्यों लाई है, जुग जुग साचा इको दाता, पूरे भाग गुर शब्द पछाता, शब्द मिले से विछड़े नाही, नदरी सहज मलाई है, हम मैं माया मैल कमाया, मर मर जम्मे दूजा पाया, बिन सतगुर सेवे मुक्त ना होई, मन देखो निवलाई है, जोत सुभावे सोई करसी, आप हो आना किस होसी।

सो सब को जासी, दूजै भाए बहदा जम फासी, सतगुर राखे से जन उबरे, साचे साच समाई हे। आपे करता कर कर वेखै, जिसनो नदर करे सोई जन लेखै, गुरमुख ज्ञान तिस सब किस सूजै, अज्ञानी अंध कमाई हे। मनमुख सहसा बूझ ना पाई, मर मर जम्मै जन्म गवाई, गुरमुख नाम रते सुख पाया, सहजे साच समाई हे। धंधै धावत मन भया मनूरा, फिर होवै कंचन भेटै गुरपूरा, आपे बख्श लए सुख पाए, पूरै शब्द मलाई हे। दुरमत झूठी बुरी बुरियार, औगण यारी औगण यार, कच्ची मत फीका मुख बोले, दुरमत नाम ना पाई हे। औगण यारी कंत ना पावे, मन की झूठी झूठ कमावे, फिर का साहु ना जाने मूरख, बिन गुर बूझ ना पाई हे। दुरमत खोटी खोट कमावे, सिंगार करे फिर खसम ना पावे,

मेहरवान मधसूदन जिसदा हुक्म ना मेटिया जाई है। से वडभागी जिनी एको जाता घट घट वस रहा जग जीवन दाता। एक थै गुप्त प्रगट है आपे गुरमुख ब्रह्म पौ जाई है। गुरमुख हर जियो एको जाता अंतर नाम शब्द पछाता। जिस तू देहे सोई जन पाए नानक नाम वडाई है। मारु महला तीजा सच सलाही गैर गंभीर है। सब जग है तिस ही कह चीर है। सब कट भोग वै सदा दिन राती

कंचन काया गुरमुख बूझै जिस अंतर नाम नवासी है। सच्चा चौका सुरत की कारा हर नाम पूजन सच आधारा। सदा त्रिपत पवित्र है पावन जित घट हर नाम नवासी है। हों तिन बलिहारी जो साचै लागे हर गुण गावह अन दिन जागे। साचा सूख सदा तिन अंतर रसना।

सूते अपना घर ना संभाल है अंत बगूते पर निंदा करह बहु चिंता जल दुखे दुख नवासी आपे करत कार कराई आपे गुरमुख दे बुझाई नानक नाम रते मन निर्मल।

एहो मन पी जाही। माया लहर शब्द निवारी, एहो मन निर्मल हो मैं मारी। सहजे गुण गावे रंग राता।

वेद बात सब आख बखान है, ना अंतर पीजै ना शब्द पछाण है। पुन पाप सब वेद दृढ़ाया, गुरमुख अमृत पीजै ही। आपे साचा एको सोई, तिस बिन दूजा अवर ना कोई। नानक नाम रते मन साचा, सचो सच रवीजै ही। मारू महला तीजा, सच्चा सच्चा तख्त रचाया। निज कर वसिया तिथै मोह न माया, सद ही साच वसिया घट।

सच कमावे साची करनी सारी है। कार कमाई जो मेरे प्रभ भाई हम मैं तृष्णा शब्द बुझाई गुरमत सद ही अंतर शीतल हम मैं मार निवारी है। सच लगे तिन सब किछ पावे सच्चे शब्द सच सुहावे एथे साचे ते दर साचे नदरी नदर सवारी है। बिन साचे जो दूजे लाया माया मोह दुख सबाया बिन गुर दुख सुख जापे नाही माया मोह दुख भारी है। साचा शब्द जिन्ना मन पाया पूरब लिखिया तिनी कमाया सचो सेव है सच त्याव है सच रते विचारी है। गुर की सेवा मीठी लागी अन दिन सूख सहज समाधि हर हर करत्या मन निर्मल होआ गुर की सेव प्यारी है। सेजन सुखिए सतगुर सच्चे लाए आपे भाणे आप मलाए सतगुर राखे सेजन उबरे होर माया मोह खुआरी है। गुरमुख साचा शब्द पछाता ना तिस कटंब ना तिस माता एको एक रव्या सब अंतर सबना जिया काया धारी है। हम मैं मेरा दूजा पाया किसना चल तुर खसम लिख पाया।

तन साचा भगत परे भंडारी है। आपे वेखै हुक्म चलाए अपना पाणा आप कराए। नानक नाम रते बैरागी मन तन

जीवन जिन अपनाया पछाता ही जिन ब्रह्मा विष्णु महेश उपाई सिर सिर तंदै आपे लाई जिस पावे।

लह तोल ज्यों भावै त्यों राखै रहना गुरमुख एको जाताई जातुद पाणा ता सच्ची कारै लाई अवगण छोड़ गुण माहि समाई गुण मह एको निर्मल साचा गुर कै शब्द पछाताई जह देखा तह एको सोई दूजी दुर्मत शब्दे खोई एक समह प्रभ एक समाना अपने रंग सद राता ही काया कमल है कुमलाना मनमुख शब्द ना बुझे एयाना गुर प्रसादी काया खोजे पाए जग जीवन दाता ही कोट गही के पाप निवारे सदा हर जीओ राखे उर तारी।

कोई। गुरमुख ज्ञान सदा सलाही, जुग जुगे को जाता ही। मनमुख कार करे सब दुख सबाई, अंतर शब्द नाही क्यों डर जाई। गुरमुख शब्द वसै मन साचा, सद सेवे सुख दाता ही। जह देखा तू सबनी थाई, पूरै गुर सब सोजी पाई। नामो नाम त्याई सदा सा।

कह तेरी बिन शब्द चूके नहीं फेरी साच सलाहे साच समावे जिन गुरमुख को जाताई जिसनो नदर करे सो पाई साचा शब्द वसे मन आई नानक नाम रते निरंकारी दर साचे साच पछाताई मारू सो लेह तीजा आपे करता सब जिस करना जी जंत सब तेरी सरना आपे गुपत वरत सब अंतर गुर कै शब्द पछाताई हर के भगत परे भंडारा आपे बख्शे।

द्वारा पूर्व लिखिया सो फल पाया जिन आप मार पछाताई माया मोहे हर स्यों चित न लागे दूजे पाए कणा दुख आगे मन मुख परम भुले भेख धारी अंतकाल पछताताई हर कै भाणे हर गुण गाई सब किलविक काटे दुख सबाई हर निर्मल निर्मल है बाणी हर सेती मन राता ही जिसनो नदर करे सो गुण निद पाई हम मैं मेरा ठाक रहाई गुण अवगुण का एको दाता गुरमुख विरली जाता ही मेरा प्रभ निर्मल आते।

सच्चा सच्ची नाई, गुरमुख देवै मन वसाई, जिन मन वसया से जन सो है, तिन सिर चूका काहाहे, अगम अगोचर कीमत नहीं पाई, गुर प्रसादी मन वसाई, सदा शब्द सलाह।

पारा मनमुख हुक्म न जाने सारा हुक्मे मन्ने हुक्मे वड़ियाई हुक्मे वे परवाहाई गुर प्रसादी हुक्म पछाणे तावत राखै इकत कर आणे नामे राता सदा बैरागी नाम रतन मन ताहाई सब जग मह वरतै इको सोई गुर प्रसादी प्रगट होई शब्द सलाह है से जन निर्मल निज करवासा ताहाई सदा भगत तेरी सरनाई अगमे अगोचर कीमत नहीं पाई ज्यों तुद भावे है त्यों त्यों राख है गुरमुख नाम त्याहाई सदा सदा तेरे गुण गावां सच्चे साहिब तेरे मन पावां नानक साच कह बेनंती सच देव हो सच समाहाई मारू महला तीजा सतगुर सेवन से वडभागी अन दिन साच नाम निवलागी सदा सुखदाता रव्या घट अंतर शब्द सच्चै ओ माहाई नदर करे ता गुरु मलाई हर का नाम मन वसाई हर मन वसिया सदा सुखदाता शब्दे मन ओ माहाई कृपा करे ता मेल मलाई हूं मैं ममता शब्द जलाई सदा मुकत रह एक रंगी नाही किसे नाल काहाई बिन सतगुर सेवे कोर अंधारा बिन शब्द कोई ना पावे पारा जो शब्द राते महा बैरागी सो सच शब्दे लाहाई दुख सुख करते तुर लिख पाया दूजा भाव आप वरताया गुरमुख होवै सो अलिप तो वरतै मनमुख का क्या विसाहाई से मनमुख जो शब्द ना पछाण है गुर के भय की सार ना जान है भय बिन क्यों निरभउ सच पाई है जम काड लएगा साहाई अफरियो जम मारिया न जाई गुर कै शब्दे नेड़ ना आई शब्द सुने ता दूर हो भागै मत

सो नाम बुझे काटे दुर्मत फाहाई गुरमुख उपजे सात समावे ना मर जमे ना जूनी पावे गुरमुख सदा रह रंग राती अन दिन लेंदे लाहाई गुरमुख भगत सोह दरबारी सच्ची बाणी शब्द सवारी अन दिन गुण गावे दिन राती सहज सेती घर जाहाई सतगुरु पूरा शब्द सुनाई अन दिन भगत करहो निवलाई हर गुण गावे सद ही निर्मल निर्मल गुण पातशाहाई गुण का दाता सच्चा सोई गुरमुख विरला बूझे कोई नानक जन नाम

पूरे सतगुर बूझ बुझाया, हुक्मे ही सब जगते पाया, हुक्म मन्ने सोई सुख पाए, हुक्म सिर चाहा पात चाहाई, सच्चा सतगुर शब्द अपारा।

नाही, कूट मदे किसे बुझाई, गुर कै शब्द रत्ती रंग लाई, हर सलाह है सदा सुखदाता, हर बख्शे भगत सलाहाई, सतगुर सेव है से जन साची, जो मर जम है काचन काची, अगम अगोचर वे परवाह, भगत वच्छल आथाहाई, सतगुर पूरा साच दृढ़ाई, सच्चे शब्द सदा गुण गाई, गुणदाता वरतै सब अंतर, सिर सिर लिखदा सहाई, सदा हदूर गुरमुख जापै, शब्दे सेवै सो जन त्रापै, अनदिन सेवै सच्ची बाणी, शब्द सच्चै ओ माहाई, अज्ञानी अंधा बहु कर्म दृढ़ाई, मन हठ कर्म फिर जोनी पाई, बिख्या कारण लब लोभ कमावै, दुर्मत का दुराई, पूरा सतगुर भगत दृढ़ाई, गुर कै शब्द हर नाम चित लाई, मन तन हर रविया काट अंतर, मन पीनै भगत सलाहाई, मेरा प्रभ साचा असुर संघारण, गुर कै शब्द भगत निस्तारण, मेरा प्रभ साचा सद ही साचा, सिर शाह पातशाही, से भगत सच्चे तेरे मन पाई, दर कीर्तन करह गुर शब्द सुहाई।

उपाया आपे फर्क करे वेख विगसै सब रस देही माहाई वाजे पौन तै आप बजाई शिव शक्ति देही मह पाई गुर प्रसादी उल्टी होवै ज्ञान रतन।

संसारा सब जग बिन सह नाम वसारा बिन सतगुर सेवे नाम ना पाई है नाम सच्चा जग लाही सच्चा अमर शब्द सुहाया पंच शब्द मिल वाजा वाया सदा कार्य सच नाम सुहेला बिन शब्द है कार्य के हाही खिन मह हस्त है खिन मह रोवै दूजा

ते बैरागी निज करवासा पाएंदा गुर की साखी अमृत पाखी सच्चा शब्दे सच सुपाखी सदा सच रंग राता मन मेरा सच्चे सच सुमाएंदा गुरमुख मन निर्मल सत सर नावे मैल न लागे सच सुमावे सचो सच कमावे सद ही सच्ची भगत दिरड़ाएंदा गुरमुख सच बैणी गुरमुख सच नैणी गुरमुख सच कमावे करनी सद ही सच कह दिन राती अवरा सच कहाएंदा गुरमुख सच्ची उत्तम बाणी गुरमुख सचो सच बखाणी गुरमुख सद सेव है सचो सच्चा गुरमुख शब्द सुनाएंदा गुरमुख होवै सो सोजी पाए हमै माया परम गवाए गुर की पौड़ी उत्तम उची दर सच्चै हर गुण गाएंदा गुरमुख सच संजम करनी सार गुरमुख पाए मोख द्वार पाए भगत सदा रंग राता आप गवाए समाएंदा गुरमुख होवै मन खोज सुनाए सच्चै नाम सदा निभलाए जो तिस भावै सोई करसी जो सच्चे मन पाएंदा जा तिस भावै सतगुरु मलाए जा तिस भावै ता मन वसाए अपने भाणे सदा रंग राता भाणे मन वसाएंदा मन हथ कर्म करे सो सीजै बहुते भेख करे नहीं पीजै भिखिया राते दुख कमावै दुखे दुख समाएंदा गुरमुख होवै सो सुख कमाए मरण जीवन की सोजी पाए मरण जीवन

दुख पाए, मन ही मन है समाएंदा, सेवड भागी जिन्नी सतगुर पाया, हम मैं विचो मोह चुकाया, मन निर्मल फिर मैल ना लागे, दर सच्चे सोभा पाएंदा, आपे करे कराए आपे, आपे वेखे थापे उथापे, गुरमुख सेवा मेरे प्रभ पावे, सच सुन लेखे पाएंदा, गुरमुख सचो सच कमावे।